मीडियम वेव 396.82 मीटर अर्थात 756 किलोहर्ट्ज़, एफएम बैंड 100.1 मेगाहर्ट्ज़ और न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर ये आकाशवाणी का जगदलपुर केंद्र है। आज गुरुवार है, शक संवत 1948 के ज्येष्ठ मास की दूसरी तिथि, तदनुसार 21 मई सन 2026। इस समय प्रातः के 5:56 और 35 सेकंड हुए हैं। अब हमारी प्रातःकालीन सभा आरंभ होती है।

0: ये आकाशवाणी का जगदलपुर केंद्र है। इस समय प्रातः के 6 बजने वाले हैं। अब हिंदी में समाचार हम आकाशवाणी की दिल्ली केंद्र से रिले कर रहे हैं।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सर फिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी 5 देशों की आधिकारिक यात्रा के अंतिम चरण में इटली की सफल यात्रा पूरी कर नई दिल्ली लौट आए हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने इटली की प्रधानमंत्री के साथ बातचीत के बाद संयुक्त प्रेस वक्तव्य में भारत इटली संबंधों को विशेष रणनीतिक साझेदारी तक ले जाने की घोषणा की।
2: हमने हमारी भावी साझेदारी को और सशक्त बनाने के लिए विस्तृत रूप से चर्चा की। भारत इटली ज्वाइंट स्ट्रेटेजिक एक्शन प्लान 2025-2029 हमारी साझेदारी को एक प्रैक्टिकल और फ्यूचरिस्टिक ढांचा प्रदान करता है। हम इस पर समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। हमारे साझा प्रयासों में द्विपक्षीय व्यापार 20 बिलियन यूरो के लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रहा है।
1: भारत और इटली ने कृषि, अहम खनिजों, आयुर्वेद, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, समुद्री परिवहन तथा बंदरगाहों के क्षेत्र में सहयोग को और गहरा करने के लिए कई समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए। भारत की नर्सों के इटली आने जाने को आसान बनाने के लिए भी एक समझौता किया गया। भारत और इटली ने कर अपराधों, धन शोधन और आतंकवाद के लिए धन जुटाने के खिलाफ तालमेल को मजबूत करने पर भी सहमति व्यक्त की। श्री मोदी ने कहा कि भारत और इटली समुद्री महाशक्तियों के तौर पर शिपिंग, बंदरगाहों के आधुनिकीकरण, लॉजिस्टिक्स और समुद्री अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में सहयोग का विस्तार करेंगे। वैश्विक चुनौतियों का उल्लेख करते हुए श्री मोदी ने बातचीत और कूटनीति को संघर्ष के समाधान का एकमात्र रास्ता बताया। इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने कहा कि विशेष रणनीतिक साझेदारी भारत और इटली के रिश्तों की बढ़ती गहराई को दिखाती है, जो आपसी भरोसे और साझा मूल्यों पर आधारित है। भारत और इटली 2027 को संस्कृति और पर्यटन वर्ष के रूप में मनाएंगे। इसका उद्देश्य सांस्कृतिक आदान प्रदान को बढ़ावा देना और दोनों प्राचीन सभ्यताओं के बीच संवाद को मजबूत करना है। संयुक्त प्रेस वार्ता में इटली की प्रधानमंत्री ने कहा कि इस पहल से दोनों देशों के बीच आपसी समझ को गहरा करने और सांस्कृतिक कूटनीति को और मजबूत करने में मदद मिलेगी। इसके बाद रोम में प्रधानमंत्री मोदी को संयुक्त राष्ट्र खाद्य और कृषि संगठन का सर्वोच्च सम्मान एग्रीकोला मेडल से सम्मानित किया गया। उन्होंने इसे भारतीय किसानों, पशुपालकों, मछली पालकों, कृषि वैज्ञानिकों और श्रमिकों को समर्पित किया। गृहमंत्री अमित शाह, वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन तथा वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एग्रीकोला मेडल से सम्मानित किए जाने पर बधाई दी है। पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले की फलता विधानसभा सीट पर आज दोबारा मतदान होगा। मतदान सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक चलेगा। इस सीट पर 2 निर्दलीय उम्मीदवारों सहित कुल 6 उम्मीदवार मैदान में हैं। तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवार जहांगीर खान ने चुनाव न लड़ने की घोषणा की है। हालांकि नाम वापस लेने की समय सीमा समाप्त हो चुकी है, इसलिए औपचारिक रूप से उनका नाम मतपत्र पर बना हुआ है। भाजपा के उम्मीदवार देवांशु पांडा हैं। कांग्रेस ने अब्दुल रजाक मोहल्ला और CPIM ने शंभुनाथ कुर्मी को उम्मीदवार बनाया है। निर्वाचन आयोग ने शांतिपूर्ण मतदान सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक तैयारियां की हैं। पश्चिम बंगाल सरकार ने भारत बांग्लादेश सीमा पर कंटीले तारों की बाड़ लगाने के लिए सीमा सुरक्षा बल को जमीन सौंपना शुरू कर दिया है। नबन्ना में कल मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने BSF अधिकारियों की मौजूदगी में औपचारिक रूप से इस प्रक्रिया की शुरुआत की। पश्चिम बंगाल भारत बांग्लादेश की 4000 किलोमीटर लंबी सीमा का लगभग 2200 किलोमीटर हिस्सा साझा करता है। इनमें लगभग 1600 किलोमीटर पर बाढ़ लग चुकी है, जबकि 600 किलोमीटर हिस्सा अभी भी खुला है। IPL क्रिकेट में कोलकाता नाइट राइडर्स ने कल ईडन गार्डन्स में मुंबई इंडियंस को 4 विकेट से हरा दिया। मनीष पांडे को मैन ऑफ द मैच चुना गया। प्रतियोगिता में आज गुजरात टाइटंस का मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स से होगा। अहमदाबाद में ये मैच शाम 7:30 बजे खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
0: मीडियम वेव 396.82 मीटर अर्थात 756 किलोहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी का जगदलपुर केंद्र है। आप हमें एफएम बैंड 100.1 मेगाहर्ट्ज़ और न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी ट्यून कर सकते हैं। प्रातः के 6:05 हुए हैं। प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। कार्यक्रम का आरंभ हम कर रहे हैं समूह स्वरों में रविन्द्रनाथ टैगोर की इस देशभक्ति रचना से। मन जहां निर्भय हो, जहां हर माथा सम्मान से ऊंचा उठ सके, जहां ज्ञान पर किसी बंधन की पहरेदारी ना हो और जहां इंसानियत संकीर्ण दीवारों में बटने के बजाय प्रेम और विश्वास के धागों में जुड़े हों, ऐसे ही स्वप्निल भारत की कल्पना लिए सुनते हैं ये रचना।

समूह स्वरों में अभी आपने ये देशभक्ति रचना सुनी। अब प्रस्तुत है सपना मुखर्जी के स्वर में भजन। सबका मालिक एक है, यही वो सरल लेकिन गहरा संदेश है जो मानवता, प्रेम और समानता की राह दिखाता है। जब मन सच्चा हो, नियत नेक हो और दिल में सेवा का भाव हो, तब ईश्वर हर रूप में अपने होने का एहसास करा देता है।

0: अभी भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना का प्रसारण किया गया। आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। प्रातः के 6:20 हुए हैं। अब सुनिए चिंतन। आलेख और स्वर है शिव सागर त्रिपाठी का।
1: जो सत्य नहीं है पर सत्य की तरह आभास होता है, दिखता है, उसे स्वप्न कहते हैं। रात्रि को सोते समय मन क्षेत्र में जो चित्र तैरते हैं उन्हें स्वप्न कहा जाता है। मन चेतन और अचेतन दो भागों में बटा है। जागृत अवस्था में चेतन मन कल्पना विचारों में भ्रमण करता है, निद्रा अवस्था में चेतन मन सोता है और अचेतन मन जागृत रहता है, जिसमें नाना प्रकार के चित्र व घटनाएं उभरी हैं, इन्हें ही स्वप्न कहते हैं। जागृत अवस्था आने पर ये चित्र घटनाएं चेतन मन से गायब होने लगती हैं। अचेतन के स्वप्नों का कारण मनोवैज्ञानिक दबी हुई इच्छाओं व वासनाओं को बताते हैं। स्वप्न के समय मानव शरीर में भाव के अनुसार नाना प्रकार के परिवर्तन होते हैं। नाड़ी गति का मध्यम होना, रक्तचाप का घटना या बढ़ना, विचारों में शिथिलता आना, देखने सुनने सूंघने स्पर्श स्वाद आदि की शक्ति न रहना आदि स्वप्नावस्था के चित्र या घटनाएं जागृत अवस्था में असत्य परंतु कभी कभी सत्य होती हैं। हमारे अचेतन में भूतकाल की प्रिय अप्रिय सार्थक निरर्थक स्मृतियाँ दबी होती हैं, जो रूप बदलकर स्वप्न रूप में दिखती रहती हैं। हमारा अतृप्त मानव अतृप्तता के साथ खेलता रहता है, जो स्वप्न कहे जाते हैं। मनोवैज्ञानिक फ्रायड ब्रेमर आदि के अनुसार गहरी और हल्की निद्रा के स्वप्न अलग अलग होते हैं। शरीर के भीतरी अवयवों की पीड़ा तनाव थकान गर्मी घुटन आदि के कारण अशुभ स्वप्न आते हैं। गहरी नींद में हल्के अच्छे स्वप्न आते हैं। बुद्धिमान और चिंताग्रस्त मनास्थिति वाले लोग गहरी नींद नहीं ले पाते, अतः उन्हें प्रायः निरर्थक स्वप्न आते हैं। सामान्य लोग निद्रा का पूरा लाभ लेते हैं, अतः उन्हें विधायक और प्रसन्नता के स्वप्न आते हैं। डॉक्टर कॉमलिन के अनुसार स्वप्न शारीरिक स्थिति से भी प्रेरित होते हैं। स्वस्थता का ज्ञान स्वप्नों से होता है। प्रगाढ़ निद्रा के स्वप्न स्पष्ट और सार्थक होते हैं। प्रातः ब्रह्म मुहूर्त के वो मन की शांत अवस्था के स्वप्न सत्य घटनाओं के पूर्वाभास

0: सभी होते हैं। सत्वगुण का विकास कर इनसे मुक्ति पाई जा सकती है। डॉक्टर कोमनल के अनुसार स्वप्न देखना सांस लेने की तरह जीव की एक स्वाभाविक क्रिया है। भारत विज्ञान स्वप्नों को दृश्य अदृश्य के बीच संधि द्वार मानते हैं। लोक और परलोक के संधि स्थल को स्वप्न स्थान कहा गया है। योगी अपने मन को आत्मा के व्यापक क्षेत्र में प्रवेश कर स्वप्नों में आत्म जगत का आनंद लेते हैं। एक विद्वान के शब्दों में, स्वप्न जो गौरव के साथ व्यक्त होता है वो आत्मा है। प्रगाढ़ निद्रा में आनंदित होता हुआ जो उस स्वप्न से भी शाश्वत है वो आत्मा है, उसका कभी अंत नहीं होता। स्वप्न जितनी गहरी परतों से उभर कर आते हैं उससे स्थित में हुए वस्तु स्थित की जानकारी देने में सक्षम होते हैं। एक ऋषि के अनुसार निद्रा एक यज्ञ है और श्वास प्रश्वास आहुतियाँ हैं। स्वप्न के माध्यम से जीव जीवात्मा के पास पहुँचने का प्रयत्न करता है। यज्ञ स्तर वाले स्वप्न की निद्रा मन को ऐसे उच्च लोकों की यात्रा करा देती है जिन्हें वरदान और अलौकिक अनुभूतियाँ कहा जा सकता है। इस तरह स्वप्न केवल दमित भावनाओं का परिणाम न होकर मन चेतना को अंत चेतना से जोड़ने वाले संपर्क सूत्र भी होते हैं। स्वप्न जागृत सुषुप्त की तरह मन की तीसरी स्थिति है। स्वप्नों के तीन प्रकारों में बांटा जा सकता है, शारीरिक दशाओं से प्रभावित स्वप्न, मानसिक स्थिति प्रतिक्रिया स्वरूप स्वप्न, आध्यात्मिक स्वप्न। स्वप्न न स्वच्छंद होते हैं, वे कई बार स्वप्न इतने प्रेरक होते हैं कि जीवन दिशा बदल देते हैं। विकसित मनोभूमि वाले व्यक्तियों को दिव्य प्रेरणा वाले स्वप्न आते हैं। स्वप्न मन को आत्मा से जोड़े जाने वाली अवस्था कही जा सकती है। सपने के माध्यम से रोग निदान संभव है। स्वप्नों को प्रेरणाप्रद बनाया जा सकता है। वास्तव में स्वप्नातीत की अनुभूतियों व दैहिक संवेदनाओं और विकारों का संयुक्त परिणाम होते हैं।
1: ये था चिंतन। आलेख और स्वर था शिव सागर त्रिपाठी का। आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। प्रातः के 6:25 हुए हैं। प्रस्तुत है श्री रामचरित मानस का गायन। स्वर है ए हरिहरन और सुरेश वाडकर का। संगीत निर्देशक हैं सतीश भाटिया।

हे नाथ, मैं दशमुख रावण का भाई विभीषण हूं। मेरा जन्म राक्षस कुल में हुआ है। मेरी काया तामसी है। स्वभाव से ही मैं पापी हूं। कानों से आपका सुयश सुनकर आपकी शरण आया हूं। मेरी रक्षा कीजिए। विभीषण ये वचन कहकर श्रीराम के चरणों में दंडवत आ गिरे। हर्षित होकर श्रीराम उन्हें गले से लगा लेते हैं। कहते हैं, हे लंकेश, परिवार सहित अपना कुशल क्षेम सुनाइए। दिन रात दुष्टों के बीच आपका निवास है। आप अपना धर्म भला किस प्रकार निभाते हैं? मैं जानता हूं कि आप नीति कुशल हैं। अनीति से आपका कोई संबंध नहीं। विभीषण निवेदन करते हैं, हे प्रभु, नरक में रहना श्रेयस्कर है, किंतु विधाता किसी को दुष्टों की संगति न दे। लोभ, मोह, मद और अभिमान तभी तक हृदय में बसते हैं जब तक श्री रघुनाथ का वहां निवास नहीं होता। ये मेरा परम सौभाग्य है कि मैंने उन चरणों में शरण प्राप्त कर ली जिनकी पूजा स्वयं ब्रह्मा तथा शिव करते हैं। श्रीराम ने विभीषण को अपनी भक्त वत्सलता से आश्वस्त कर दिया। प्रभु के वचन सुनकर विभीषण का जीवन धन्य हो गया।

0: अभी श्री रामचरितमानस का गायन प्रसारित किया गया। स्वर था सुरेश वाटकर और ए हरिहरन का। संगीत निर्देशक थे सतीश भाटिया। आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। प्रातः के 6:35 हुए हैं। अब सुनिए कृषि सामयिकी की बेड़ा खाड़ा चुगोट।
1: काश्तकार भाई बहन मन, कहीं भले फसल चो कमानी कर ले, बेड़ा ने खरपतवार बल्ले लाटा बूटा बल्ले अखरू आए और बेड़ा ने जितलो लाटा बूटा रह दे हुतलो फसल के नुकसान करे दे। ऐ लागुन एच रोकथाम करतोर खूबे जरूरी आए। गोटोक गोट बल्लो आसे बेड़ा ने कुनी बले एक बरक लाटा बूटा अखरुक देतोर, जो मतलब आए 7 बरक तक लगातार लाटा बूटा के बेड़ा ने अखरातोर। ऐ लागुन बेड़ा के लाटा बूटा ले बचातोर खूबे जरूरी आए। फसल संगे लाटा बूटा बले खद भात और दूसर जीनिस पाउन बाढ़ते जाऊआ और फसल संगे हरा जीता बाढ़ते जाऊआ। जेचो लागुन बेड़ा ने फसल जो उत्पादन कम हुआ है, संगे संगे बेड़ा ने अखर तो लाटा बूटा ने फसल जो दुश्मन कीड़ी मन जाऊटुआत, जोन फसल काजे खूब हानिकारक हुआत। ऐ लागुन फसल जो अच्छा कमानी करतो काजे ए वाट मन के करतो राय। सबले पहल शुद्ध और साफ बीज के बुनतो राय। हमके कैंच बले फसल चो बीज के धरतो पहिल हुनके अच्छा दखुन पाकिट बीती बीज के बुनतो राय। संगे संगे बीज के पाकिट ले निस्काउन साफ करतो राय और कैंच बले दूसर बीज रले हुनके निस्कातो राय और सिर्फ फसल बीती बीज के बुनतो राय। दूसर वाट जोन बेड़ा ने लाटा बूटा जुगे अखरुआ हुन थाने झपके बाढ़ तो बीती फसल के बुनतो राय। असन झपके बाढ़ तो बीती फसल बाड़ून भूई के ढाके से जेचो लागुन घाम खाले नी पाए और घाम नी पाओ तो लागुन बेड़ा ने लाटा बूटा जुगे नी अखरुक सके। लाटा बूटा चो रोकथाम काजे तीसर वाट बुनतोर विधि आए। फसल के हमी छिड़काव बुनवाऊ। छिड़काव विधि ने बुनले पाछे बाढ़लो फसल ले लाटा बूटा झिकतोर बले बल्ले मिजानी ने भारी तकलीफ होय से। संगे संगे ये विधि ने बेड़ा चो सभय भाग ने फसल चो बूटा समान नी रहे से, जेचो लागुन उत्पादन ने कमी होय से। ऐ काजे रोपा विधि ले बेड़ा ने फसल लगा ले बेड़ा चो लाटा बूटा के छुकछुका गुचाई होय से, जेचो लागुन उत्पादन बले आगर होय से।

0: कि जोन ट्रैक्टर नहाले नागर ले कोनी बेड़ा ने बुनू से और हुन बेड़ा ने लाटा बूटा आगर आसोत, असन बेड़ा ने बुनुन दूसर निको बेड़ा जोन थाने लाटा बूटा कम आसोत, असन थाने हुनी ट्रैक्टर नहाले नागर ने बुन ले पहिल लाटा बूटा बीती बेड़ा चो बीज दूसर निको बेड़ा ने जाय से जेचो लागुन हुन बेड़ा ने बले लाटा बूटा अखरुक सके। अई लागुन गोटोक बेड़ा ने बुनलो पाछे नागर के अच्छा ले साफ सफाई करतो राय, एचो पाछे दूसर अच्छा बेड़ा ने बुनतो राय। ये गोट के बले ध्यान देतो राय कि भूई ने फसल चो बूटा चो संख्या ने कमी बले नहीं हो और आगर बले नहीं होतो राय। बूटा कम होले लाटा बूटा आगर बाड़ुआ और बूटा जन होले पौधा चो बाड़ती अच्छा हो नहीं सकुआ। अई काजे बूटा चो संख्या भूई चो अनुसार बराबर होतो राय। असने बेड़ा मन ने फसल चक्र बले अपनातो राय। फसल चक्र बले हमेशा धान नहीं बुनतो राय, कोनी कोनी बरक दूसर फसल बुनुन देतो राय। असन कर ले बले लाटा बूटा चो रोकथाम करुक लाय सकू। लाटा बूटा चो रोकथाम काजे अकरस जोताई करतो राय। अकरस जोताई कर ले गरम दिने घाम ने लाटा बूटा चो बीज मरे से संगे संगे ये बीज के चढ़ी चुड़ुम बले खास होत। जेचो लागुन अकरस जोताई कर लो ने बेड़ा मन ने लाटा बूटा चो अखर तो के रोकथाम करुक लाय सकू। असने बेड़ा मन ने पानी भरुन देतो राय। बेड़ा ने पानी भरु रले भूई ने बल्ले लेहरा अमरुक नहीं सके, जेचो लागुन लाटा बूटा मरुन जाऊआत। अजिक दिन पाछे पानी के बेड़ा ले बाहर निस्काउन भूई सुकुक देतो राय। असनु आट दुई तीन हार कर ले बेड़ा ने लाटा बूटा मन नष्ट हो सोत। कास्तकार भाई बहन मन एबे सांगलो वाट के धरुन बेड़ा मन ने लाटा बूटा चो रोकथाम चो उपाय कर ले, फसल चो उत्पादन नगद होय दे और फसल चो नगद उत्पादन होले आमदनी बले नगद होय दे।
1: आप सुन रहे थे कृषि सामयिकी बेड़ा खाड़ा चुगोट, ये आकाशवाणी का जगदलपुर केंद्र है। इस समय प्रातः के 6:40 हुए हैं। हुलहुली कार्यक्रम में आज सुनिए उलट भैरम पाड़। वादक कलाकार हैं भारत और साथी।

हुलहुली कार्यक्रम में भी आप उलट भैरमपाड़ सुन रहे थे। वादक कलाकार थे भारत और साथी। ये आकाशवाणी का जगदलपुर केंद्र है। इस समय प्रातः के 6:50 हुए हैं। अब सुनिए हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की जानकारी। अब से कुछ देर बाद सुबह 7:05 पर हम पेश करते हैं कार्यक्रम नमस्कार जगदलपुर। आज इसमें आप सुनेंगे झलकी कुंदरू। लेखिका हैं जयश्री शेंडे, प्रस्तुति होगी मायाराम नेताम और नारायण सिंह बघेल की, और होगी मधुर गीतों की मधुरिमा। बस्तर के विभिन्न बोलियों में लोकगीत हम लेकर आएंगे सुबह 8:30 पर कार्यक्रम लोकमंजरी में। प्रायोजित कार्यक्रम एनसीआरटी का समय होता है सुबह 9:00 का। एक ही फिल्म से सुबह 9:30 पर आज इस कार्यक्रम में हम लेकर आएंगे फिल्म रांझणा के गीत। सुबह 10:00 कार्यक्रम गुलशन के अंतर्गत शास्त्रीय रागों पर आधारित फिल्मी गीत प्रस्तुत किए जाएंगे। बस्तर के लोकगीतों के कार्यक्रम गुड़दुम में सुबह 10:30 पर सुनिएगा धुरवी गीत। कलाकार होंगे आयतू नाग और साथी। एक ही कलाकार सुबह 11:00। आज का हमारा ये कार्यक्रम केंद्रित होगा जाने माने अभिनेता आर माधवन पर। गैर फिल्मी गीतों गजलों का कार्यक्रम गुलदस्ता हम पेश करेंगे सुबह 11:30 पर। दिन में 12:00 धुरवी लोकगीत आप सुनेंगे कार्यक्रम पाटा केंजा में। कलाकार होंगे महंगूराम और साथी। दिन में 12:30 पर ग्रामीण महिलाओं का कार्यक्रम घर द्वार का प्रसारण किया जाएगा। कृषि सामे की बेड़ा खाड़ा चौकोट का पुनः प्रसारण किया जाएगा दोपहर 1:05 पर। फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम श्रोता सुमन आप सुनते हैं रोजाना दोपहर 1:10 पर। दोपहर 2:30 पर प्रस्तुत किया जाएगा कार्यक्रम कला और कलाकार। हमारी विशेष सभा आरंभ होगी शाम 4:00 कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से हम रिले करेंगे। शाम 5:05 पर हल्बी बोली में होगा समसामयिक विषय पर आधारित कार्यक्रम भारत सरकार आपके द्वार। युवा श्रोताओं का कार्यक्रम युववाणी का प्रसारण किया जाता है रोजाना शाम 5:10 पर। रामू बिसाई और साथियों का गाया हल्बी गीत आप सुनेंगे शाम 6:35 पर। बस्तर के स्वर ये कार्यक्रम आप सुनते हैं शाम 7:00। शाम 7:21 पर हम प्रस्तुत करेंगे प्रायोजित कार्यक्रम किसान वाणी। रात 8:00 कार्यक्रम डांडामाली में सुनिएगा झिनकी नाग और साथियों के गाए धुरवी लोकगीत। रात्रि 8:30 पर केंद्रित होगा महात्मा गौतम बुद्ध पर कार्यक्रम पीलामन काजीकोट। प्रस्तुति होगी शांति नाग।

की। रात 9:15 पर हल्बी बोली में होगा कार्यक्रम ग्राम पंचायत की विकास गाथा। इसमें सुनिएगा वार्ता, साहूकारी लेन देन पर प्रतिबंध, अंधविश्वास, जादू टोना। वार्ताकार होंगे बलबीर सिंह कच्छ। रात्रि 9:30 पर कार्यक्रम घुमकली में नाट गीत सुनेगा, कलाकार होंगे लंबोधर और साथी। रात 10 हम पेश करेंगे गैर फिल्मी गीत और रात्रि 10:30 पर आनंद उठाइएगा फिल्म संगीत का। अभी आप सुन रहे थे हमारे केंद्र से आज की सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की जानकारी। ये आकाशवाणी जगदलपुर है।

0: मीडियम वेव 396.8 मीटर अर्थात 756 किलोहर्ट्ज, एफएम बैंड 100.1 मेगाहर्ट्ज और न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर यह आकाशवाणी का जगदलपुर केंद्र है। इस समय प्रातः के 6:55 होने वाले हैं। अब क्रमशः संस्कृत और हिंदी में समाचार हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करते हैं।
1: इयम् आकाशवाणी, सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम्, प्रवाचकः डॉक्टर गणेशः हेगडे। अथ वार्ताः। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी पञ्चराष्ट्रयात्रायाः पञ्चमं अन्तिमं च चरणं सफलतया सम्पाद्य इटली देशात् नवदिल्लीं प्रत्यागतवान्। यः भारत इटली देशयोः मध्ये विशेष रणनैतिक सहयोगरूपेण स्वसम्बन्धस्य उन्नयनस्य घोषणा अभवत्। कृषिः, महत्वपूर्ण खनिजाः, आयुर्वेदः, विज्ञानं, तन्त्रज्ञानम् इत्यादिषु अनेकेषु क्षेत्रेषु द्वयोः देशयोः मध्ये अनेकाः सन्धयः हस्ताक्षरिताः। कर अपराधानां, धनशोधनस्य, आतंकवित्तपोषणस्य च निवारणार्थम् अपि राष्ट्रद्वयेन ज्ञापनपत्रेषु हस्ताक्षरं जातम्। इटली देशस्य प्रधानमन्त्रिणा जॉर्जिया मेलोनी इत्यनया सह रोम नगरे संयुक्त वक्तव्ये प्रधानमन्त्रिणा श्री नरेन्द्र मोदिना उक्तं यत् उभौ देशौ नौकावहन क्षेत्रेषु नौकापत्तनानां आधुनिकीकरणे, रसद क्षेत्रे नील अर्थव्यवस्थायां च मिलित्वा कार्यं करिष्यतः।
2: दोनों देशों के स्टार्टअप्स, रिसर्च सेंटर्स और उद्योगों को आपस में जोड़ने के लिए हम इंडिया इटली इनोवेशन सेंटर पर काम कर रहे हैं। हमारी सेनाओं के साथ साथ दोनों देशों के रक्षा उद्योगों के बीच भी सहयोग बढ़ रहा है। मैरिटाइम पावर्स के रूप में भारत और इटली के बीच करीबी सहयोग स्वाभाविक है। हम मिलकर शिपिंग, पोर्ट्स मॉडर्नाइजेशन, लॉजिस्टिक और ब्लू इकोनॉमी पर काम करेंगे।
1: इटली देशस्य प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी इत्येषा अवदत् यत् भारत इटली देशयोः सम्बन्धः विशेष सामरिक सहभागित्वरूपेण वर्धमानः अस्ति, अपि च उभौ देशौ उन्नत निर्माणस्य आधारभूत संरचनायाः, ऊर्जायाः, अर्थव्यवस्थायाः, रक्षायाः च क्षेत्रेषु परिश्रमेण कार्यं कुर्वन्तौ स्तः। भारतम् इटली च सांस्कृतिक विनिमयं प्रवर्धयितुं, प्राचीन सभ्यतानां मध्ये संवादं सुदृढं कर्तुं च 2000 27वं वर्षं संस्कृतेः पर्यटनस्य वर्षरूपेण आचरिष्यतः। इटली देशस्य प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी इत्यनया उक्तं यत् एषः उपक्रमः द्वयोः देशयोः मध्ये परस्परं अवगमनं गभीरं कर्तुं, सांस्कृतिक कूटनीतिञ्च अधिकं सुदृढं कर्तुं साहाय्यं करिष्यति। सा अवदत् देशयोः मध्ये सुदृढतर सम्बन्धाः न केवलं राजनैतिक आर्थिक सम्बन्धैः अपि तु जनानां समाजानाञ्च मध्ये सम्पर्कस्य माध्यमेन अपि मापिताः भवन्ति। प्रधानमन्त्रिणे श्रीनरेन्द्रमोदिने इटली देशस्य रोम नगरे खाद्य कृषि संघटनेन प्रतिष्ठितं एग्रीकोला पदकं प्रदत्तम्। पुरस्कारं प्राप्य श्रीमोदी भारतस्य कोटि कोटि कृषकाणां, पशुपालकानां, मत्स्यपालकानां, कृषिवैज्ञानिकानां, श्रमिकाणां च कृते एतत् सम्मानं समर्पितवान्। पदकमिदं खाद्य कृषि संघटनस्य महानिदेशकेन प्रदत्तम्। गृहमन्त्री अमितशाहः, वित्तमन्त्री निर्मला सीतारामन् तथा वाणिज्य उद्योगमन्त्री पीयूषगोयलः प्रधानमन्त्रिणः कृते एग्रीकोला पदकं प्राप्त्यर्थम् अभिनन्दनं कृतवन्तः। गृहमन्त्री अमितशाहः अवदत् यत् भारतं कृषिक्षेत्रे वैश्विकनेतृत्वेन उद्भूतम् अस्ति तथा च देशस्य कृषिप्रतिरूपं समग्रविश्वस्य कृते एकं मानदण्डं स्थापयति। पश्चिमबङ्गालराज्ये दक्षिणचतुर्विंशतिः परगणमण्डलस्य फाल्टा विधानसभाक्षेत्रे पुनर्मतदानम् अधुना 7 आरभ्यते, यद्धि सायं 6 समाप्तं भविष्यति। आहत्य 6 सौभाग्यस्य प्रतीक्षां कुर्वन्ति, येषु 2 निर्दलीयौ अपि स्तः। भारतीय ऋतुविज्ञान विभागेन रक्तवर्णीय संचेतना प्रख्यापिता यत् उत्तरप्रदेशस्य, मध्यप्रदेशस्य, विदर्भस्य च भागेषु आगामि दिनत्रयं यावत् तापतरङ्गतः तीव्रतापतरङ्गस्य स्थितिः भवति। विभागेन अनुमानितं यत् हरियाणा, चण्डीगढ़, दिल्ली, पंजाब, बिहार, छत्तीसगढ़, तटीय आंध्र प्रदेश हिमाचल प्रदेश ओडिशा राजस्थान तेलंगाना उत्तराखंडे च एतादृशाः एव परिस्थितयः सम्भवन्ति। आईपीएल इति विंशतिं प्रतिविंशतिः क्रिकेट लीग प्रतिस्पर्धायां गतरात्रौ कोलकाता नाइट राइडर्स दलेन मुंबई इंडियंस दलं चतुस्तोबकैः पराजितम्। अद्य सायं सार्धसप्तवादने गुजरात टाइटन्स दलं अहमदाबाद नगरे चेन्नई सुपर किंग्स दलं सम्मुखी करिष्यति इति वार्ताः।
3: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पांच देशों की आधिकारिक यात्रा के अंतिम चरण में इटली की सफल यात्रा के बाद नई दिल्ली लौट आए हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कल इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के साथ द्विपक्षीय वार्ता के बाद संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में दोनों देशों के बीच संबंधों को विशेष रणनीतिक साझेदारी तक ले जाने की घोषणा की।
2: हमने हमारी भावी साझेदारी को और सशक्त बनाने के लिए विस्तृत रूप से चर्चा की। भारत इटली ज्वाइंट स्ट्रेटेजिक एक्शन प्लान 2025-2029 हमारी साझेदारी को एक प्रैक्टिकल और फ्यूचरिस्टिक ढांचा प्रदान करता है। हम इस पर समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। हमारे साझा प्रयासों में द्विपक्षीय व्यापार 20 बिलियन यूरो के लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रहा है।
3: भारत और इटली ने कृषि, महत्वपूर्ण खनिजों, आयुर्वेद विज्ञान और प्रौद्योगिकी तथा बंदरगाहों के क्षेत्र में सहयोग को और गहरा करने के लिए कई समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए। भारत की नर्सों के इटली आने जाने को आसान बनाने के लिए भी एक समझौता किया गया। भारत और इटली ने कर से जुड़े अपराधों, मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवाद के लिए धन मुहैया कराने की समस्या से निपटने में भी समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। श्री मोदी ने कहा कि भारत और इटली समुद्री महाशक्तियों के तौर पर जहाजरानी, बंदरगाहों के आधुनिकीकरण, लॉजिस्टिक्स और समुद्री अर्थव्यवस्था के क्षेत्रों में सहयोग का विस्तार करेंगे। वैश्विक चुनौतियों का उल्लेख करते हुए श्री मोदी ने बातचीत और कूटनीति को संघर्ष के समाधान का एकमात्र रास्ता बताया। इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने कहा कि विशेष रणनीतिक साझेदारी भारत और इटली के रिश्तों की बढ़ती गहराई को दिखाती है, जो आपसी भरोसे और साझा मूल्यों पर आधारित है। भारत और इटली 2027 को संस्कृति और पर्यटन वर्ष के रूप में मनाएंगे। इसका उद्देश्य सांस्कृतिक आदान प्रदान को बढ़ावा देना और दोनों देशों की प्राचीन सभ्यताओं के बीच संवाद को मजबूत करना है। इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने कहा कि इस पहल से दोनों देशों के बीच आपसी समझ को गहरा करने और सांस्कृतिक कूटनीति को और मजबूत करने में मदद मिलेगी। रोम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को संयुक्त राष्ट्र खाद्य और कृषि संगठन का सर्वोच्च सम्मान उग्रिक उला मेडल से सम्मानित किया गया है। पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले की फलता विधानसभा सीट पर आज दोबारा मतदान हो रहा है। मतदान शाम 6 बजे तक चलेगा। इस सीट पर दो निर्दलीय उम्मीदवारों सहित कुल 6 उम्मीदवार मैदान में हैं। पश्चिम बंगाल सरकार ने भारत बांग्लादेश सीमा पर कंटीले तारों की बाड़ लगाने के लिए सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ को जमीन सौंपना शुरू कर दिया है। नबन्ना में कल मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने बीएसएफ अधिकारियों की मौजूदगी में औपचारिक रूप से इस प्रक्रिया की शुरुआत की। मुख्यमंत्री ने पिछली सरकार पर सीमा सुरक्षा में बाधा डालने का आरोप लगाया। पश्चिम बंगाल भारत बांग्लादेश की 4000 किलोमीटर लंबी सीमा का लगभग 2200 किलोमीटर हिस्सा साझा करता है। इनमें लगभग 1600 किलोमीटर पर बाढ़ लग चुकी है, जबकि 600 किलोमीटर हिस्सा अब भी खुला है। साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलाइट्स एक उच्च स्तरीय शिष्टमंडल के साथ 4 दिन की आधिकारिक यात्रा पर कल शाम मुंबई पहुंचे। साइप्रस का शिष्टमंडल आज दिल्ली के लिए रवाना होगा। साइप्रस के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री मोदी कल मुलाकात करेंगे। ये राजकीय यात्रा ऐसे समय में हो रही है जब साइप्रस यूरोपीय संघ परिषद की अध्यक्षता कर रहा है। ये यात्रा प्रधानमंत्री मोदी की साइप्रस यात्रा के एक साल से भी कम समय बाद हो रही है। आईपीएल क्रिकेट में कोलकाता नाइट राइडर्स ने कल ईडन गार्डन्स में मुंबई इंडियंस को 4 विकेट से हरा दिया। प्रतियोगिता में आज गुजरात टाइटन्स का मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स से होगा। अहमदाबाद में यह मैच शाम 7:30 बजे खेला जाएगा। भारतीय अंडर 18 पुरुष हॉकी टीम और ऑस्ट्रेलियाई टीम के बीच कल भोपाल में सीरीज का चौथा और अंतिम मैच 3-3 से ड्रॉ रहा। आज अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस मनाया जा रहा है। ये दिवस संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन FAO द्वारा मनाया जाता है। इस वर्ष का विषय है चाय को बनाए रखना, समुदायों का समर्थन करना। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
0: मीडियम वेव 396.82 मीटर अर्थात 756 किलोहर्ट्ज़, एफएम बैंड 100.1 मेगाहर्ट्ज़ और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर ये आकाशवाणी का जगदलपुर केंद्र है। सुबह के 7:05 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम नमस्कार जगदलपुर।

गुजर गई वो सितारों वाली सुनहरी रात, आ गई अब आपकी याद। अक्सर होते रहती है हमारी आपकी मुलाकात, बिन आपके न होती अब तो दिन की शुरुआत। जी हाँ, शुरू हो चुका है आपका पसंदीदा कार्यक्रम नमस्कार जगदलपुर, और मैं हूँ आपका रेडियो हमसफर मनिंदर सिंह देवगुण। कार्यक्रम सुन रहे सभी श्रोताओं को मेरा प्यार भरा नमस्कार, गुड मॉर्निंग टू ऑल।

सैर कर दुनिया की गाफिल जिंदगानी फिर कहाँ, जिंदगानी गर रही तो नौजवानी फिर कहाँ। जी हाँ दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि घूमना फिरना दुनिया के उन जुनूनी शौकों में शामिल है जिसकी थोड़ी बहुत मात्रा हर शख्स के अंदर मौजूद है। हर किसी व्यक्ति के अपने अपने विचार हैं। ज्यादातर लोगों से पूछने पर वे यही कहेंगे कि भाई, रोजमर्रा की उबाऊ जिंदगी से कुछ समय निकालने के लिए, जरा सा छुटकारा पाने के लिए वे घूमना पसंद करते हैं और साल में कम से कम एक बार लंबी सी छुट्टी पर कहीं ना कहीं जाते ही हैं। श्रोताओं, धरती पर संतुलित कदम और पंखों के नीचे हवाओं का साथ सुकून के लिए घूमने जाने का यही तो मकसद होता है, क्योंकि चित परिचित के प्रति उदासीनता स्वाभाविक है। एक रास्ता कदमों से उछाल छीन लेती है, मानो जीना कोई रस्म हो, लेकिन जरा सा मंजर बदल जाए तो फिर देखिए क्या होता है। आंखें भी नए रंगों को देखकर चमक उठती है, तभी तो जरूरी है मंजर में तब्दीली। जिंदगी को जिंदगी लौटाने का नाम है घूमना, यानी यात्रा करना। जब किसी नई जगह पर, स्टेशन पर आप कदम रखते हैं तो आंखें गौर करने के लिए तैयार हो चुकी होती है, दिमाग नए रास्तों को खोजने की जुगत में होता है और दिल कमर कस चुका होता है नए तजुर्बे लेने के लिए। मित्रों, अजनबी शहर का आसमान अजब लगता है, अनजाने रास्ते रहस्यों को सुलझाने की चुनौती देने लगते हैं, नया माहौल उस्ताद की तरह खड़ा रहता है सबक देने के लिए। मंजर इतने तेजी से बदलते हैं कि कभी आंखें जीत जाती हैं तो कभी यादों के हाथों से कुछ फिसल जाने का अफसोस करता रह जाता है ये दिल। ऐसा लगता है कि मानो अपने ही वजूद के भीतर कोई और आ बैठा हो, जिसके लिए दुनिया में आज उसका पहला दिन है। वहीं बच्चों वाला कौतूहल, बेसाख्ता ऊंची हो जाने वाली आवाज और वहीं सीखने समझने की ललक। यात्रा में निकला हर इंसान फिर से जिंदगी का शागिर्द बन जाता है। तो दोस्तों, आज घूमने फिरने की बातें हम इसलिए कर रहे हैं कि अब गर्मियों की छुट्टियां बहुत जल्द पूरी होने को है और अब यही तो वह वक्त है जब हम अपनों के साथ, अपने परिवार के साथ, अपने दोस्तों के साथ, अपने बच्चों के साथ प्लानिंग करते हैं घूमने जाने की। और गर्मियों की छुट्टियां आते ही मन किसी ठंडी वादियों की ओर उड़ चलने को बेचैन हो उठता है और तब याद आता है धरती का वो जन्नत सा नजारा, जहां बर्फ से ढकी चोटियां, हरे भरे मैदान, शांत लहरें मानो हर दिल को सुकून दे जाती है।

0: आनंद बख्शी का लिखा गीत अभी आपने फिल्म बेमिसाल से सुना। आर डी बर्मन की धुन पर मिली जुली आवाजें थी किशोर कुमार, लता मंगेशकर और सुरेश वाडकर की।
1: एक मजबूत घर बिल्कुल उस पिता की तरह होता है जो हर मौसम सह कर भी घर की नींव को कभी हिलने नहीं देता।
2: आपके घर के लिए भरोसे का दूसरा नाम चेटिनाड सीमेंट का मैक्स क्रीट सीमेंट, 64 सालों की बुनियाद के साथ। चेटिनाड सीमेंट, द परफेक्ट कंक्रीट चॉइस।
3: देश के कोने कोने तक पहुंचाने के लिए अपनी बात कीजिए विज्ञापन आकाशवाणी के साथ। डायल कीजिए हमारा टोल फ्री नंबर 1512।
4: विविध भारती के खजाने से हम आपके लिए लाते हैं अनमोल कार्यक्रम।
5: फौजी भाइयों की खिदमत में आपका खादिम नौशाद आदाब पेश करता है, कबूल फरमाइए।
4: कल और आज के ऐसे ही नामचीन सितारों को आप सुनते हैं विशेष जयमाला में हर शनिवार और रविवार शाम 7:05 पर। विविध भारती आप सुन सकते हैं देश के कोने कोने में मीडियम वेव पर, शॉर्ट वेव पर, एफएम पर। विविध भारती, आपकी बात पहुंचाए करोड़ों तक। विविध भारती पर विज्ञापन बुक कराने के लिए हमारा टोल फ्री नंबर है 15102 या लॉग ऑन करें csuair.org.in। विविध भारती, देश की सुरीली धड़कन।
6: जीएसटी काउंसिल ने बीमा पर लगने वाले 18% टैक्स को घटाकर जीरो कर दिया है। ऐसे में जीवन बीमा लेने वालों को अब सिर्फ इंश्योरेंस का प्रीमियम ही भरना होगा और इस पर कोई भी अतिरिक्त टैक्स नहीं देना होगा। ये हेल्थ इंश्योरेंस लेने वालों के लिए बड़ा फायदा है क्योंकि LIC को पहले से ही इनकम टैक्स में छूट मिली हुई है। वहीं अब GST भी हटने से बीमा लेना फायदे का सौदा होगा।
7: किसान भाई बहनों के लिए आकाशवाणी जगदलपुर की नई पहल, अब हर शनिवार को शाम 7:30 से 8 तक सुनिए फोन इन किसान वाणी, जहां कृषि विशेषज्ञ देंगे आपकी खेती से जुड़ी हर समस्या का आसान समाधान। बीज से लेकर बाजार तक हर सवाल का जवाब सीधे आपके लिए। और हाँ, इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग होगी हर मंगलवार दोपहर 3:30 से 4 तक, तो आप भी जुड़िए और अपने सवाल हमें सीधे फोन पर बताइए। हमारा नंबर है 07782222666। फोन इन किसान वाणी, आपकी आवाज, आपकी कहानी, आपके खेतों की जुबानी।
0: नमस्कार, जगदलपुर में आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। श्रोताओं, सुबह सुबह अगर चेहरे पर मुस्कान आ जाए तो पूरा दिन अच्छा गुजर जाता है। इसी मुस्कुराहट और हल्की फुल्की हंसी के साथ पेश है हास्य झलकी कुंदरू। लेखिका है जयश्री शेंडे और प्रस्तुति है मया राम नेताम और नारायण सिंह बघेल की।

0: अरे कुंद्रू, अरे कुंद्रू रे,
1: का है दादा?
2: चल तो झट ले तैयार हो जा। तो
1: काबर दादा, सनीमा देखे ला जाबो का?
2: अरे सनीमा नहीं है रे भोकवा।
1: मोला भोकवा काबर कथस दादा?
2: और का कहूं, भोकवा तो हस नीचट्टू भोकवा।
1: मैं भोकवा हूँ?
2: हाँ।
1: तो मैं नहीं जाऊं तोर संग।
2: अरे अरे अरे, ऐसा झन कर रे भाई, ऐसा झन कर।
1: फिर कभी मोला भोकवा?
2: नी कहूं मोर बाप, नी कहूं।
1: हाँ तो चल ले, सनीमा देखे ले जाता।
2: अरे नहीं रे भोकवा। ओहो नहीं नहीं रे कुंद्रू, सनीमा नहीं जाना है रे बेटा।
1: तो कहाँ जाना है?
2: लड़की देखे ला जाना है।
1: लड़की देखे ला जाना?
2: हाँ।
1: ये उम्र में लड़की देख बे दादा? तोला कुछ लाज शरम है कि नहीं? 5 लड़का के बाप हसो, टूरी देखे ला जाबे? और दाए के का होई दादा?
2: मोर बर नहीं है रे, तोर बर लड़की देखे ला जाना है रे भाई।
1: ए मोर बर?
2: हाँ तोर बर। ए कुंद्रू के दाई, झट ले चाह बना, तो चाह पीबो निकलबो।
3: ओहो बनाते तो हो चाह ला है? मैं कोई मशीन तो न हो जो औ झट के बनाहूं।
2: ओहो तो अतिक झल्ला ले का होगी सर भाई?
3: मैं झल्लात हूं है, अतिक सुंदर गोठियात हूं तो तोला झल्लाया सन लागथे। अब झल्ला हूं तो का लागही?
2: अच्छा अच्छा कुंद्रू की दाई, बस कर बस कर, ला चाह होगे सोही। जा देख, नहीं तो उपन के आगी में गिर जाही। जा।
3: हाओ हाओ जात हूं।
1: ए दादा, दाई हकसन आगी में चढ़े तवासन गर्मेच रथे।
2: छन कह रे कुंद्रू, ओदे तोर दाई हा आवत्य छे।
3: का कहा था सरे कुंद्रू? मोर बारे में ते काय बोलत रहे सरे?
1: मैं कुछ नहीं बोले हूँ दाई। ये दादा छ बोलत रही से।
3: काय बोलत रही से रे?
1: दादा कहत रही से कि दाई कैसन हमेशा आगी में चाय उफने सन उफनाते च रथे।
2: अरे अरे अरे अरे अरे, काय कहा था सरे कुंद्रू? मैं कहे हूँ असन?
1: नी तो का मैं कहे हूँ?
3: हाँ हाँ, मैं तो ऐसे छो खराब हो उपनत रहो।
2: चुप हो जा, चुप हो जा कुंद्रू दाई, चुप हो जा। देख कुंद्रू हा झूठ मूठ कहत रही से, मैं नहीं कहूँ रे भाई।
1: ए दाई
3: का है रे कुंद्रू?
1: झनरो दादा मोर बट टूरी देखे ला मोला शहर ले जाते ना, तो तोर बर अच्छा वाले लुगरा ले क्या हुआ है?
3: हाँ हाँ रे कुंद्रू, अच्छा वाला लुगरा लान बे है। हम ये ले ले, झट के चाय पियो और जाओ।
1: तोर बर लुगरा तो जरूर लानबो, पर दाई
3: हाँ,
1: मैं अभी शादी नहीं करूं।
2: अरे रे, और जेन टूरी देखे ला जात हन ओकर का होई रे?
1: टूरी देख ले बो दादा, टूरी देखे में का बुराई है?
3: पर रे कुंद्रू, उस शादी काबर नहीं कर बे रे कुंद्रू?
1: मैं अभी 21 साल के नहीं होए हो ना दाई।
3: कौन है कही से रे तोला 21 साल में शादी करेला?
1: सरकार है कही से।
3: कौन सरकार रे? वो स्कूल में बाबू हवे दे सरकार? अरे ओकर काम है छे भड़काना।
1: सरकार बाबू नी दाई, वो वाले सरकार।
3: वो वाले सरकार? वो कौन सरकार है रे कुंद्रू? हमर गांव मा तो एक ठन सरकार बाबू हवे, और तो कोनो सरकार नहीं है रे।
1: अरे दाई, सरकार बाबू नी
3: तो फिर अव कौन सरकार है जो तोला उल्टा सीधा पढ़ावत है?
1: ओहो दाई, उल्टा सीधा नहीं, सीधा सीधा पढ़ावत है।
3: अच्छा तो तोर सरकार है 21 साल में शादी करी से का?
1: ओहो दाई, सरकार शादी नहीं करे।
3: शादी नहीं करे तो हमर शादी में काबर टांग अड़ावत है? खुद तो शादी सुधा नहीं है, और हमन करेल जात हन तो नहीं करो कथे। ये कौन सरकार है? सरकार लो तो।
1: अब तो लग कैसे समझाओ महातारी?
3: मोला समझाए के जरूरत नहीं है रे कुंद्रू, तय वो सरकार ला बला के लान, मैं वोला समझाऊ।
1: ओहो सरकार के माने वो प्रधानमंत्री होते दाई? प्रधानमंत्री?
3: प्रधानमंत्री ये का मंत्री वंत्री है रे? मैं नी जानो।
1: हमर देश के सबसे बड़े मंत्री होते प्रधानमंत्री।
3: हमर पटवारी ले भी बड़े होते का?
1: हाँ दाई हाँ, सबले बड़े होते दाई।
2: अरे कुंद्रू, एक काय मंत्री उंत्री लगाए हस रे, हैं? चल जल्दी चल, बड़ देर हो गए है। चल
1: चल दादा, ये दाई के समझ में कुछ आने वाला नहीं है।
2: अच्छा निकला था कुंद्रुक दाई,
3: संभल के जाहू है, बड़े शहर के मामला है, रास्ता वास्ता झन भटक जाहू है।
2: तय फिकर झन कर, हमन ये दे गेन और ये दे आइन समझ।
1: अभी गेनेच नहीं हन तो आइन कैसे दादा?
2: ओह रे, तय चुप कर तो, अब चल मोर संग।
1: चल दादा।

0: ये काय हवे बाबू?
1: अरे मोला बाबू झन कहे कर, दादा कहे कर।
0: बाबू में काय खराबी है बाबू?
1: फेर बाबू, अरे कुंदरू के बाबू के मतलब वो ऑफिस वाले बाबू होते रे।
0: तो वो में काय होगे?
1: वो बाबू मन के झन पूछ रे भाई, वो बाबू मन तो हमार गुरुजी मन ला घलो भावर घुमा देते हैं। तो हम मन कौन खेत के ढेला हन रे भाई?
0: कौन खेत के ढेला हन बाबू?
1: अरे कुंदरू नी तो तोला काय समझाओ रे?
0: झन समझा दादा।
1: आए काबर नहीं समझाओ?
0: मोला समझ में नहीं आए।
1: काबर समझ में नहीं आवे रे?
0: तोला अच्छा समझाए ला नहीं आया दादा।
1: अरे बाप रे, अरे बाप रे, तोर बाप में हो कि मोर बाप? तय हंस रे कुंदरू।
0: तोर बाप में हो?
1: का का कहेस?
0: मैं कहत रहे हूँ तोर बाप है और मोर बाप है।
1: तो कौन है तोर बाप?
0: दाइल पूछ के बताऊ ना।
1: काय कहेस रे कुंदरू?
0: मैं कहूँ मोर बाप के छास। सबे जन कथे कि कुंदरू का नाक अपन बाप जैसे समोसा आसन दिखते बोल के।
1: कैसे?
0: कुछ नहीं दादा, चल मोर शादी में देर होवत
1: है। तूर शादी में देरी होवत है? अरे अबे तो टूरी देखे नहीं हन अब।
0: तभी तो कहा था दादा, जल्दी टूरी देखबो तो जल्दी शादी हो ही, और देरी करबे तो देरी नहीं होई दादा।
1: अरे तय तो बिल्कुल ठीक कहा था श्री।
0: हाँ हाँ मैं ठीक कहता हूँ। माय नेम इज कुंदरू, सन ऑफ लौकी राम।
1: अरे इंग्लिश तो बड़ा बढ़िया गोठिया था श्री। तय
0: गौ की दादा?
1: ओह अरे गौ की कहा था रे भाई, पर ये तो बता रे कुंदरू
0: काय
1: मोर नाव ला तय लौकी राम काबर कहतस? सीधे ले लौकी राम नी कहल सकस काय?
0: ए दादा ते लौकी देखे हस?
1: हाँ देखे हूँ।
0: तो लौकी अब्बड़ लंबा रथे ना?
1: हाँ रथे।
0: तो फिर तोर नाव ला लंबा ले तो काबर खिथिया थस?
1: ओह रे धन्य हो भगवान, धन्य हो, तय तो मोर बाप हस रे कुंदरू, मोर बाप हस रे भाई।
0: नहीं दादा ते मोर बाप हस।
1: तय मोर बाप हस दादा?
0: नहीं नहीं मैं नहीं हूँ तोर बाप।
1: काबर रे?
0: अति गधा टूरा के बाप मैं नहीं बनो। कुछ नहीं दादा, मैं अपने आप बड़बड़ात रहे। ये का है दादा?
1: ये है टाकीज है रे।
0: लेडीज है?
1: लेडीज नो है रे, टाकीज है बाबा, टाकीज है।
0: अच्छा अच्छा अच्छा, वो टाकीज।
1: हाँ
0: बड़ चमकत है नहीं? अब देखना दादा कैसन सुंदर सुंदर डौकी मन के फोटो टंगाए हावे। मोला तो लागते दादा ये फोटो खिंचाए दुकान हावे। चल ना दादा हम मन एक आठन फोटो खिंचवाबो।
1: नो है रे, फोटो खिंचाए दुकान नो है, तुला बताए हो ना टाकीज है टाकीज।
0: फोटो दुकान नहीं है तो ये डौकी मन के फोटो कैसे टंगाए हावे?
1: एमन हीरोइन हन है? ओ दे ओ वाली है ना हेमा मालिनी हवे, और ओ श्री देवी।
0: दादा मोर बिहाओ हेमा मालिनी संग कर देना, तोर पाँव पड़त हो दादा।
1: अरे छोड़ ली मोर पाँव ला, छोड़।
0: नहीं दादा पहले मोर बिहाओ हेमा मालिनी संग करा दे तो छोड़ दू।
1: ओहो रे तोला कैसे समझाओ रे, हेमा मालिनी संग नहीं हो सके रे तोर बिहाओ।
0: तो श्री देवी संग करा दे दादा, तोर पाँव पड़त हो।
1: अरे अरे अरे ये कुंदरू रे, ये मन यहाँ नी रहा रे, बम्बई में रहते, और इकर मन करा हमर जैसे कई ठन नौकर चाकर रहते समझे।
0: तो का हो गये दादा, मोर संग शादी हो जाही तो मैं वाला नौकर बना कर रखू।
1: ओहो रे चल चल यहाँ ले चल, तो अब बड़ देर हो गये, फोटो देखत रहे बेका। चल चल
0: कब आई दादा? चलत चलत थक गयो मोर डौकी, घर कब आई कहा?
1: तो डौकी नो है रे भाई।
0: ओहो होने वाला तो है दादा।
1: हाँ हाँ चल चल चल
0: चल दादा। ये का है दादा?
1: ये साला है।
0: साला?
1: हाँ
0: मतलब मोर मामा है? नहीं दिखत तो नहीं है, ये तो घर असन लागते और टूरा टूरी मन के भीड़ घलो दिखत है।
1: अरे यही ना तो साला कथे रे भाई।
0: तुम तय मोला काबर नहीं साला भेजिस दादा?
1: अब का बताऊं तोला, तय गधा हस
0: और तय मोर बाप हस ना।
1: हाँ हाँ आई का कहे?
0: कुछ नहीं दादा, मैं कहा था देर होवत है, चल।

0: ए दादा
1: का है रे?
0: ए दे ओ दे ओ आवाज ला सुना था का?
1: हाँ सुना था।
0: कितनी बढ़िया बाजत है दादा। नहीं
1: ये शादी हुआ थे रे।
0: शादी हुआ थे?
1: हाँ
0: चल ना दादा हमू मन देखबो शादी ला।
1: ले चल तोरो शादी कराने छे ओकर पहली तोला बता दे तू। चल
0: तोरो बाप तोला बताए रही से का दादा?
1: काय कहेस?
0: कुछ नहीं दादा यदि शादी के जगह आगे

0: ना देखा था सरे, वो देख दूल्हा डौका। अरे ए
1: का है दादा?
0: वो देख दूल्हा डौका कति बढ़िया सजे है। नहीं
1: दूल्हा डौका लते हैं देख दादा, मैं तो ये दे दूल्ही डौकीला देखत रह हूं। आहा कति सुघर हावे, मोरो ऐसने हो ही ना दादा।
2: ये क्या हो रहा है? रोको ये शादी, रोको। कौन है लड़की का बाप?
3: मैं हूँ इंस्पेक्टर साहब।
2: क्यों क्या हुआ इंस्पेक्टर साहब? इधर आओ, इस लड़की की उम्र अभी 18 बरस से कम है।
4: 18 बरस से कम है, इससे क्या होता है इंस्पेक्टर साहब? हमने इतना इंतजाम किया है, इतना पैसा खर्चा किया है, और आप कहते हैं कि यह शादी नहीं हो सकती।
2: आपको नहीं मालूम 18 बरस से कम उम्र की लड़की की शादी करना कानूनन जुर्म है?
4: लेकिन लेकिन इंस्पेक्टर जी, ये तो 18 बरस की हो चुकी है, आपको जरूर किसी ने गलत खबर दी होगी।
5: नहीं पिताजी, गलत खबर नहीं दी है, ये खबर मैंने खुद पुलिस में दी है।
4: ये तुम कह रही हो सुधा?
5: मैं सच कह रही हूँ पिताजी।
4: तुमने ये क्या किया सुधा? तुम अपनी जिंदगी बर्बाद करने पर क्यों तुली हुई हो बेटा?
5: मैं अपनी जिंदगी बर्बाद नहीं कर रही हूँ पिताजी, बल्कि मैं अपनी जिंदगी को बर्बाद होने से बचा रही हूँ। मैंने आपको पहले भी कई बार बताया था कि मेरी शादी अभी मत कीजिए, मुझे 18 साल की पूरी होने दीजिए, पर आप तो मेरी कभी सुनते ही नहीं थे।
4: लेकिन बेटी, तुम ये शादी करने से इनकार क्यों कर रही हो?
5: आप भी पिताजी इतने पढ़े लिखे होकर भी ये पूछ रहे हैं कि मैं शादी से इनकार क्यों कर रही हूँ। सभी जानते हैं कि 18 से कम की उम्र में लड़की शादी के लिए परिपक्व नहीं होती है।
2: शाबाश बेटी, तुमने आज अपने परिवार की ही नहीं सारे समाज की और देश की भी आंखें खोली है। कम उम्र में शादी करके माँ बाप तो चैन की सांस लेते हैं, पर लड़की की हालत क्या हो जाती है ये कोई नहीं सोचता।
6: ये काय हुआ थे दादा? मोला तो कुछ समझ में नहीं आवत है। और ये देखना, ये खाकी खाकी असन कपड़ा पहन के ये मन कौन आए?
7: अरे कुंद्रू, देखत नहीं हस, ये पुलिस वाला है।
6: अरे बाप रे, पुलिस वाला मन हवे? चल भाग दादा, नहीं हम मनला धर के ले जाइता।
7: ओहो रे, हम मनला नहीं धरे, पुलिस वाला यहाँ ये शादी रोकवाए बर आए हैं। ओहा ना इंस्पेक्टर है।
6: शादी रोकवाला है? काबर शादी रोकवा थे दादा? का दुल्हिन डौकी संग इंस्पेक्टर के प्यार व्यार तो नहीं होए दादा?
7: अत्रे कुंद्रू लड़का, वो दुल्हिन टूरी हा 18 बरस ले कम है, तेकरे बर वो इंस्पेक्टर हा शादी रोकवावा थे, कहा थे कानून में जुर्म है।
6: यही गोठला तो मैं दाई ला बताए रहे हूँ, दाई तो पतिया इसने।
7: ते सही गोठला गोठिया है हसरे कुंद्रू, तोरो शादी अभी नी करना है रे बाबू, हमन तो तोला निच्चट गधा समझते रहें रे।
6: महू तो तोला मोर बाप समझे हो दादा।
7: काय कहे?
6: कुछ नहीं दादा, चल घर डहर रेंगबो का।
7: चल

अभी छत्तीसगढ़ी बोली में आप सुन रहे थे झलकी कुंदरू। लेखिका थी जयश्री शेंडे, प्रतिभागी कलाकार थे शशांक शेंडे और एमए रहीम, इंदिरा असाई, विजय कुर्म, अनुषा थॉमस और हर्ष कुमार स्कॉट। इस झलकी के प्रस्तुतकर्ता थे मयाराम नेताम और नारायण सिंह बघेल। श्रोताओं, आज 21 मई है और आज अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये इसलिए मनाया जाता है ताकि चाय के महत्व, उससे जुड़े लाखों कामगारों और चाय उद्योग के योगदान को सम्मान दिया जा सके। ये दिन खास तौर पर चाय बागानों में काम करने वाले मजदूरों, किसानों और चाय उत्पादन से जुड़े लोगों की मेहनत को याद करने के लिए मनाया जाता है। साथ ही लोगों को ये भी बताया जाता है कि चाय केवल एक पेय नहीं बल्कि कई देशों की संस्कृति और अर्थव्यवस्था का महत्वपूर्ण हिस्सा है। संयुक्त राष्ट्र ने 21 मई को अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस घोषित किया था ताकि दुनिया भर में चाय के उत्पादन, उसके व्यापार और उससे जुड़े लोगों के अधिकारों पर ध्यान दिया जा सके। श्रोताओं, चाय सिर्फ स्वाद नहीं बल्कि मेहनतकश हाथों की खुशबू है। इसी एहसास और चाय से जुड़े करोड़ों लोगों के सम्मान में हर वर्ष अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस एक ऐसा दिन जो सिर्फ एक पेय नहीं बल्कि अपनापन, बातचीत और रिश्तों की मिठास का उत्सव है। भारत में चाय केवल स्वाद नहीं एक एहसास है। सुबह की शुरुआत हो, दोस्तों की महफिल हो, बारिश की फुहार हो या फिर काम के बीच थोड़ी सी राहत, एक प्याली चाय हर मौके को खास बना देती है। कहते हैं जहां शब्द कम पड़ जाते हैं वहां एक कप चाय रिश्तों को जोड़ देती है। हमारे देश में चाय की खुशबू खेतों से लेकर चौपालों तक फैली हुई है। किसी के लिए अदरक वाली चाय सुकून है तो किसी के लिए कुल्हड़ की चाय बचपन की याद, और सच पूछिए तो कई रिश्तों की शुरुआत भी अक्सर एक प्याली चाय से होती है। जरा सोचिए, चाय की भाप में कितनी कहानियां छुपी होती हैं। कभी दोस्ती, कभी मोहब्बत तो कभी यादों की गर्माहट। तो इसी प्यारे से एहसास के साथ अब पेश है ये गीत जो जाना पहचाना है और आपने इसे कई बार सुना और एहसास भी किया है। आइए सुनते हैं जी की।

इतना करीब हो जाता है कि वो सिर्फ दिल में नहीं सांसों में बस जाता है। हर धड़कन में उसी का नाम, हर ख्वाब में उसी की तस्वीर नजर आने लगती है।

जब दिल में प्यार की हल्की सी दस्तक होती है तो मन जैसे उड़ान भरने लगता है। हर धड़कन में एक नई खुशी, हर एहसास में एक मीठी सी सरगम सुनाई देने

कुछ रिश्ते वादों से नहीं एहसासों से बंधे होते हैं, जहां दूरियां भी प्यार को कम नहीं कर पाती। साथ रहने की चाह जब दिल से निकलती है तो हर धड़कन बस यही कहती है।

जब दिल पहली बार किसी के एहसास को महसूस करता है तो हर धड़कन में एक मीठी सी बेचैनी उतर आती है। नजरें बार बार उसी चेहरे को तलाशती हैं और मन हर पल किसी अनकहे एहसास में खोया रहता है।

जब दुआओं में किसी का नाम शामिल हो जाए तो हर रास्ता भी जैसे रोशन नजर आए। जब दुआओं में किसी का नाम शामिल हो जाए तो हर रास्ता भी जैसे रोशन नजर आए। दिल की हर धड़कन बस यही कहने लगे, खुदा भी मोहब्बत पर फिर मेहरबान हो जाए।

मधुरिमा में आज आपने जिन फिल्मों के गीत सुने वे फिल्में थीं गुप्त, हमको तुमसे प्यार है, खाकी, क्या यही प्यार है और बिल्लू बार बार। आवाजें थी अलका याग्निक, कुमार शनो, ए चक्रवर्ती, श्रेया घोषाल, उदित नारायण, सोनू निगम, सोहम, आकृति कक्कड़ और मोनाली ठाकुर की। सुबह की सुरीली सभा में कार्यक्रम मधुरिमा के साथ हमने गीतों के रंगों में प्यार, एहसास और मुस्कुराहटों के कई खूबसूरत पल आपके साथ बांटे। उम्मीद है सुरों की ये मिठास आपके पूरे दिन की ताजगी और खुशियों से भर देगी। इसी शुभकामनाओं के साथ अब दीजिए अनुमति नमस्कार जगदलपुर कार्यक्रम से। मनिंदर सिंह देवगुण को नमस्कार, आपका दिन मंगलमय हो।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम नमस्कार जगदलपुर। ये आकाशवाणी का जगदलपुर केंद्र है। इस समय सुबह के 8 बजने वाले हैं। अब समाचार प्रभात हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले कर रहे हैं।
1: बेटा, मैं कल अपने भतीजे के घर होके आया, देखकर हैरान रह गया कि वो लोग दिन भर एसी चलाते हैं, रोज वॉशिंग मशीन चलाते हैं, घर में दो दो फ्रिज हैं, फिर भी उसका बिजली बिल पता है कितना आता है? 0। मैंने पूछा तो भतीजा बोला, चाचा जी सब ऊपर वाले की दया है। मतलब सोलर पैनल की। मैंने सोचा अब तो लगवाना ही पड़ेगा।
2: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
3: हर घर सूर्य घर।
4: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों की यात्रा के अंतिम चरण में इटली की सफल यात्रा के बाद स्वदेश लौटे। भारत और इटली सांस्कृतिक संबंध को मजबूत करने के लिए वर्ष 2027 को संस्कृति और पर्यटन वर्ष के रूप में मनाएंगे। केंद्र सरकार ने नीट यूजी पुनः परीक्षा से पहले अफवाहों और फर्जी पेपर लीक की खबरों पर नकेल कसने के लिए प्रमुख सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को निर्देश जारी किए। पश्चिम बंगाल सरकार ने भारत बांग्लादेश सीमा पर बाड़ लगाने के लिए बीएसएफ को जमीन सौंपना शुरू किया। पश्चिम बंगाल की फलता विधानसभा सीट पर पुनः मतदान जारी। और आईपीएल क्रिकेट में कोलकाता नाइट राइडर्स ने मुंबई इंडियंस को 4 विकेट से हराया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों की आधिकारिक यात्रा के अंतिम चरण में इटली की सफल यात्रा के बाद नई दिल्ली लौट आए हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कल इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के साथ द्विपक्षीय वार्ता के बाद संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में दोनों देशों के बीच संबंधों को विशेष रणनीतिक साझेदारी तक ले जाने की घोषणा की।
5: हमने हमारी भावी साझेदारी को और सशक्त बनाने के लिए विस्तृत रूप से चर्चा की। भारत इटली ज्वाइंट स्ट्रेटेजिक एक्शन प्लान 2025-2029 हमारी साझेदारी को एक प्रैक्टिकल और फ्यूचरिस्टिक ढांचा प्रदान करता है। हम इस पर समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। हमारे साझा प्रयासों में द्विपक्षीय व्यापार 20 बिलियन यूरो के लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रहा है।
4: दोनों पक्षों ने कृषि, महत्वपूर्ण खनिजों, आयुर्वेद, विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग को और सुदृढ़ करने तथा भारत की नर्सों के इटली आने जाने को आसान बनाने से जुड़े कई समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए। भारत और इटली ने कर से जुड़े अपराधों, धन शोधन और आतंकवाद के लिए धन मुहैया कराने की समस्या से निपटने में भी समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। श्री मोदी ने कहा कि भारत और इटली समुद्री महाशक्तियों के तौर पर जहाजरानी, बंदरगाहों के आधुनिकीकरण, लॉजिस्टिक्स और समुद्री अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में सहयोग का विस्तार करेंगे। वैश्विक चुनौतियों का उल्लेख करते हुए श्री मोदी ने बातचीत और कूटनीति को संघर्ष के समाधान का एकमात्र रास्ता बताया। इस अवसर पर इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने कहा कि भारत और इटली वर्ष 2027 को संस्कृति और पर्यटन वर्ष के रूप में मनाएंगे। इसका उद्देश्य सांस्कृतिक आदान प्रदान को बढ़ावा देना और दोनों प्राचीन सभ्यताओं के बीच संवाद को मजबूत करना है। उन्होंने कहा कि भारत और इटली भारत पश्चिम एशिया यूरोप आर्थिक गलियारे को और विकसित करने की दिशा में भी मिलकर काम करेंगे। हमारी संवाददाता ने बताया है कि प्रधानमंत्री मोदी की यात्रा भारत और इटली के बीच अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और सांस्कृतिक संबंधों को सुदृढ़ करने की दिशा में महत्वपूर्ण रही।
6: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सफल यात्रा भारत के अंतर्राष्ट्रीय संबंधों और सांस्कृतिक सहयोग को मजबूत करने के उनके निरंतर प्रयासों का महत्वपूर्ण हिस्सा रही है। उन्होंने इटली के राष्ट्रपति सर्जियो मातारेला से मुलाकात की, इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के साथ प्रतिनिधि मंडल स्तरीय वार्ता की, जिसमें भारत इटली सहयोग को और बढ़ाने पर विशेष ध्यान दिया गया। उन्होंने खाद्य एवं कृषि संगठन का दौरा किया, जहां भारत की बहुपक्षवाद और वैश्विक खाद्य सुरक्षा के प्रति प्रतिबद्धता को रेखांकित किया गया और उन्हें प्रतिष्ठित संयुक्त राष्ट्र एग्रीकोला मेडल से सम्मानित किया गया। रोम से सुपर्णा भाटिया, आकाशवाणी समाचार के लिए।
4: शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कल मेटा, गूगल और टेलीग्राम सहित प्रमुख सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। इस दौरान प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित गलत सूचनाओं के बढ़ते प्रसार को रोकने पर ध्यान केंद्रित किया गया। ये बैठक 21 जून को फिर से होने वाली नीट यूजी परीक्षा से पहले काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। अधिकारियों ने बताया कि कई ऐसे सोशल मीडिया अकाउंट हैं जो परीक्षाओं से पहले अत्यधिक सक्रिय हो जाते हैं तथा फर्जी पेपर लीक के दावे, क्लिकबेट सामग्री और अफवाहें फैलाते हैं। इससे विद्यार्थियों और अभिभावकों में चिंता और भ्रम की स्थिति पैदा होती है। एक अन्य बैठक में श्री प्रधान ने नीट यूजी की पुनः परीक्षा के सुरक्षित, निष्पक्ष और सुचारू संचालन को सुनिश्चित करने के लिए कड़ी निगरानी और पुख्ता सुरक्षा व्यवस्था की आवश्यकता पर बल दिया। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।
7: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा, अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
8: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
7: अब तक इस योजना से 8,85,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
4: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। पश्चिम बंगाल सरकार ने भारत बांग्लादेश सीमा पर कंटीले तारों की बाड़ लगाने के लिए सीमा सुरक्षा बल BSF को जमीन सौंपना शुरू कर दिया है। नबन्ना में कल मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने BSF अधिकारियों की मौजूदगी में औपचारिक रूप से इस प्रक्रिया की शुरुआत की। एक रिपोर्ट।
9: मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया कि पिछली सरकार ने असहयोग के माध्यम से सीमा सुरक्षा में बाधा डाली। उन्होंने जोर देकर कहा कि सीमा पर बाड़ लगाना राष्ट्रीय और राज्य सुरक्षा के लिए अत्यंत आवश्यक है। उन्होंने घुसपैठ, तस्करी, नकली मुद्रा, जबरन धार्मिक परिवर्तन और अवैध बांग्लादेशी प्रवेशों को जुड़े अपराध जैसे समस्याओं को उल्लेख किए। पश्चिम बंगाल लगभग 2,200 किलोमीटर लंबी भारत बांग्लादेश सीमा साझा करते हैं, जो कुल 4,000 किलोमीटर है। मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया है कि जल्दी और भूमि हस्तांतरित किया जाएगी, जिसकी लागत पूरी तरह केंद्र सरकार और BSF द्वारा वहन किया जाएगी। संदीप अंदाज गुप्ता, आकाशवाणी न्यूज, कोलकाता।
4: इस बीच राज्य के दक्षिण 24 परगना जिले में फलता विधानसभा सीट के लिए आज पुनः मतदान हो रहा है। मतदान शाम 6 बजे समाप्त होगा। निर्वाचन आयोग ने फलता विधानसभा क्षेत्र में सभी मतदान केंद्रों पर पुनः मतदान का आदेश दिया था और 29 अप्रैल को हुए मतदान को रद्द कर दिया था, क्योंकि मतदाताओं को डराने धमकाने, मतदान केंद्रों के अंदर अनधिकृत उपस्थिति और मतदान मशीनों के साथ संभावित छेड़छाड़ सहित कई खबरें मिली थी। और अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद है हमारे संवाददाता कल्याण लाहा। जी कल्याण, मतदान की क्या ताजा स्थिति है और इस सीट पर किन उम्मीदवारों के बीच आप कड़ा मुकाबला देख रहे हैं?
10: देखिए प्रियंका, अभी जो मतदान की ताजा स्थिति है, मतदान अभी शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा है और इसी हफ्ते मंगलवार ने TMC का कैंडिडेट है जहांगीर खान, उसने डिक्लेयर किया था कि वो कॉन्टेक्ट में नहीं रहेगा। तो अभी BJP का कैंडिडेट देवांशु पांडा, तृणमूल CIM का कैंडिडेट कांग्रेस का कैंडिडेट के बीच में अभी मुकाबला होगा। कांग्रेस का कैंडिडेट अभी है जो अब्दुल रज्जाक मुल्ला है और CIM का कैंडिडेट है सोमनाथ तुर्मी। प्रियंका
4: जी, जी धन्यवाद कल्याण इस जानकारी के लिए, आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। 16वीं असम विधानसभा का पहला सत्र आज से शुरू होगा। इस सत्र के दौरान कुल 4 बैठकें होंगी। सत्र के पहले दिन अस्थाई अध्यक्ष की घोषणा की जाएगी। असम के राज्यपाल ने वरिष्ठ भाजपा विधायक चंद्र मोहन पटवारी को अस्थाई अध्यक्ष नियुक्त किया है। श्री पटवारी नवनिर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाएंगे। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय आज अपने मंत्रिमंडल का विस्तार करेंगे। कांग्रेस विधायक दल के नेता राजेश कुमार और मेल्लूर से विधायक पी विश्वनाथन को मंत्रिमंडल में शामिल किया जाएगा। 1967 के बाद ये पहली बार है कि कांग्रेस सदस्य राज्य मंत्रिमंडल में शामिल होंगे। शपथ ग्रहण समारोह आज सुबह 10 बजे लोकभवन में होगा। राज्यपाल विश्वनाथ अरलेकर नवनियुक्त मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाएंगे। अमरीका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा है कि वे भारत के साथ अमरीका की 250वीं वर्षगांठ मनाने के लिए उत्सुक हैं। अपनी यात्रा से पहले श्री रूबियो ने एक वीडियो संदेश जारी किया है।
11: अमरीका अपनी 250वीं वर्षगांठ मनाने की तैयारी कर रहा है और हम भारत में अपने साझेदारों के साथ इसे मनाने के लिए उत्सुक हैं। भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और हम विश्व के सबसे पुराने लोकतंत्र हैं, इसीलिए हम साथ मिलकर जश्न मनाने के लिए तत्पर हैं।
4: श्री रूबियो शनिवार से भारत की 4 दिन की यात्रा पर रहेंगे। भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में पाकिस्तान में वर्षों से जारी नरसंहार की निंदा की है। कल सशस्त्र संघर्ष में नागरिकों की सुरक्षा विषय पर आयोजित संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की वार्षिक खुली बहस में संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी राजदूत हरीश पर्वतन नैनी ने कहा कि पाकिस्तान का अमानवीय आचरण दशकों से अपनी आंतरिक विफलताओं को हिंसा के माध्यम से छिपाने के प्रयासों को दर्शाता है। आईपीएल क्रिकेट में कोलकाता नाइट राइडर्स ने कल ईडन गार्डन्स में मुंबई इंडियंस को 4 विकेट से हरा दिया। इस जीत के साथ कोलकाता नाइट राइडर्स की प्लेऑफ में पहुंचने की उम्मीदें अब भी बरकरार हैं। मनीष पांडे को मैन ऑफ द मैच चुना गया। प्रतियोगिता में आज गुजरात टाइटंस का मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स से होगा। अहमदाबाद में ये मैच शाम 7:30 बजे खेला जाएगा। और भारतीय अंडर 18 पुरुष हॉकी टीम और ऑस्ट्रेलियाई टीम के बीच कल भोपाल में श्रृंखला का 4था और अंतिम मैच 3-3 से ड्रॉ रहा। भारत की ओर से कप्तान केतन कुशवाहा, करण गौतम और बेन सिद्धार्थ ने गोल किए। भारत ने ऑस्ट्रेलिया के साथ 4 मैचों की श्रृंखला 1 जीत 2 ड्रॉ और 1 हार के साथ समाप्त की। मौसम विभाग ने आज दिल्ली, हरियाणा और चंडीगढ़ के कुछ हिस्सों में लू चलने का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। मध्य प्रदेश, पंजाब, उत्तर प्रदेश और विदर्भ, बिहार, छत्तीसगढ़, तटीय आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान, तेलंगाना और उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में भी लू चल सकती है। पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकाल में आज गर्म और उमस भरा मौसम रहने की संभावना है। आज अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस मनाया जा रहा है। ये दिवस संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन द्वारा मनाया जाता है। चाय की खेती और उत्पादन में पर्यावरण की रक्षा तथा किसानों और मजदूरों की आजीविका में सुधार लाने के उद्देश्य से इस वर्ष का विषय है सतत चाय उत्पादन, मजबूत समुदाय। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं सरफिरोजी।
12: धन्यवाद प्रियंका। एआई से अंतरिक्ष तक भारत इटली साथ बढ़ेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 5 देशों की यात्रा के अंतिम चरण में इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के साथ द्विपक्षीय वार्ता को हिंदुस्तान और जनसत्ता सहित सभी अखबारों ने प्रमुखता दी है। नवभारत टाइम्स ने मेलोडी डिप्लोमेसी शीर्षक से लिखा है, मोदी मेलोनी की बातचीत में भारत और इटली के बीच विशेष रणनीतिक साझेदारी का हुआ ऐलान। हिंदुस्तान ने अपने संपादकीय में लिखा है, प्रधानमंत्री की संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की यात्रा का उद्देश्य जितना आर्थिक है उतना ही रणनीतिक भी। पत्र लिखता है, यूरोप के 5 देश नॉर्डिक समूह में गिने जाते हैं जो अमरीकी रवैये से बहुत निराश हैं और स्वतंत्र रूप से दुनिया में खुद को मजबूत करना चाहते हैं। इस कार्य में उन्हें भारत जैसे विशाल देश की जरूरत पड़ेगी। दैनिक जागरण की सुर्खी है, सूर्यास्त्र रॉकेट सिस्टम का सफल परीक्षण, 330 किलोमीटर दूर लक्ष्य पर करेगा सटीक प्रहार। पत्र ने नई पीढ़ी के युद्धपोत संघमित्रा के जलावतरण की खबर भी प्रकाशित की है। दैनिक भास्कर ने लिखा है, सीबीएसई की 12वीं परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं की पुनः मूल्यांकन की साइट दूसरे दिन भी अटकी। चालू होते ही 3 घंटे में 1,27,000 आवेदन आए। पत्र ने सीबीएसई के हवाले से कॉपियों की स्कैनिंग में गड़बड़ी के दावे को गलत बताया है। अमर उजाला की खबर है, यूजीसी नेट के लिए अब 23 मई तक कर सकेंगे आवेदन। ताइवान की लेखिका यांग शुआंगजी और अनुवादक लिन किंग को उपन्यास ताइवान ट्रेवलॉग के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार मिलने की खबर को राजस्थान पत्रिका सहित कई अखबारों ने प्रकाशित किया है।
4: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों की यात्रा के अंतिम चरण में इटली की सफल यात्रा के बाद स्वदेश लौटे। भारत और इटली सांस्कृतिक संबंध को मजबूत करने के लिए वर्ष 2027 को संस्कृति और पर्यटन वर्ष के रूप में मनाएंगे। केंद्र सरकार ने नीट यूजी पुनः परीक्षा से पहले अफवाहों और फर्जी पेपर लीक की खबरों पर नकेल कसने के लिए प्रमुख सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को निर्देश जारी किए। पश्चिम बंगाल सरकार ने भारत बांग्लादेश सीमा पर बाड़ लगाने के लिए बीएसएफ को जमीन सौंपना शुरू किया। पश्चिम बंगाल की फलता विधानसभा सीट पर पुनः मतदान जारी। और आईपीएल क्रिकेट में कोलकाता नाइट राइडर्स ने मुंबई इंडियंस को 4 विकेट से हराया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
13: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I am Saira Mujtaba. The headlines. Prime Minister Narendra Modi successfully concludes his visit to Italy, marking final leg of his 5-nation official tour. India and Italy to celebrate 2027 as Year of Culture and Tourism to strengthen dialogue between the two ancient civilizations. Center ropes in major social media platforms to crack down on rumors and fake paper leak claims ahead of NEET UG re-examination. West Bengal government begins handing over land to BSF for barbed wire fencing along Indo-Bangladesh border. Re-polling begins in Falta Assembly constituency of West Bengal. And in IPL cricket, Kolkata Knight Riders beat Mumbai Indians by 4 wickets to keep their playoff hopes alive. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi returned to New Delhi after successfully concluding his visit to Italy, marking the final leg of his 5-nation official tour. India and Italy yesterday announced the upgradation of their ties to a special strategic partnership, marking a major step forward in bilateral relations. The two countries signed several agreements in areas including agriculture, critical minerals, Ayurveda, science and technology, and facilitation of mobility of Indian nurses from India to Italy. Both nations also signed MOUs for curbing tax crimes, money laundering and terror financing. In a joint press statement with his Italian counterpart Giorgia Meloni in Rome, Prime Minister Narendra Modi said, "Italy is renowned worldwide for design and precision, and India's identity is that of a powerhouse of scale, talent and affordable innovation." The Prime Minister said that India and Italy will move forward on the principle of design and develop in India and Italy and deliver for the world. He said the India-Italy Defence Industrial Roadmap has paved the way for co-development and co-production.
5: हमने हमारी भावी साझेदारी को और सशक्त बनाने के लिए विस्तृत रूप से चर्चा की। भारत इटली जॉइंट स्ट्रेटेजिक एक्शन प्लान 2025 टू 2029 हमारी साझेदारी को एक प्रैक्टिकल और फ्यूचरिस्टिक ढांचा प्रदान करता है। हम इस पर समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। हमारे साझा प्रयासों में द्विपक्षीय व्यापार 20 बिलियन यूरो के लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रहा है।
13: More from our correspondent.
6: Prime Minister Narendra Modi's successful visit has been a part of his ongoing efforts to strengthen India's international relations and cultural cooperation. This is Prime Minister Modi's first bilateral visit to Italy and third overall. His visit was marked by a series of significant events and engagements. He called on Italian President Sergio Mattarella, held delegation-level talks with Prime Minister Giorgia Meloni, focusing on enhancing cooperation between India and Italy. The visit to the Food and Agriculture Organization was to strengthen India's commitment to multilateralism and global food security, where he was honored with the prestigious UN Agricola Medal. Both sides also decided to launch the Italy-India Year of Culture and Tourism for 2027, which is a unique opportunity to have the century-old cultures develop a dialogue and make them more and more connected. He also met enthusiastic Indian diaspora and Italian artists who welcomed him on his arrival in Rome. This is Suparna Bhatia for Akashvani from Rome.
13: India and Italy will celebrate 2027 as the Year of Culture and Tourism to promote cultural exchanges and strengthen dialogue between the two ancient civilizations. Italian Prime Minister Giorgia Meloni said the initiative will help deepen mutual understanding and further strengthen cultural diplomacy between the two countries. She says stronger ties between countries are measured not only through political and economic relations, but also through connections between people and societies. Union Education Minister Dharmendra Pradhan held a meeting with representatives of major social media platforms including Meta, Google and Telegram yesterday, raising serious concerns over the growing spread of misinformation related to competitive exams, particularly through Telegram channels and anonymous online groups. The meeting was crucial ahead of the re-examination of NEET UG 2026 on 21st of June. Officials noted that several such channels become highly active in the run-up to major exams, circulating fake paper leak claims, clickbait content and unverified information that trigger panic, anxiety and confusion among students and parents. It was highlighted that many such links redirect users to automated bots and fake groups designed to amplify misinformation. In West Bengal, re-polling has begun for the Falta Assembly constituency in South 24 Parganas district. Voting, which started at 7 a.m., will conclude at 6 p.m. The Election Commission had ordered a complete re-poll in Falta Assembly constituency, scrapping the voting that was held on 29th of April following multiple reports of irregularities, including voter intimidation, unauthorized presence inside polling booths, and possible tampering with voting machines. A total of six candidates are in the fray, including two independents. Trinamool Congress candidate Jahangir Khan has announced that he would not contest the election. However, his name remains on the ballot as the deadline for withdrawal of candidature has already passed. BJP's candidate is Dibangshu Panta. Congress has fielded Abdul Razak Maulna, while the CPIM has fielded Shambhu Nath Kurmi. Now we go over live to our correspondent Kalyan Laha for the latest update. Kalyan, what's the latest update that you have?
14: Sarah, the latest update is and the voting is going on peacefully and no reports of violence or any untoward incident came in, and that this week, candidate Jahangir Khan declared that he would not contest in the election. And in this situation, the fight is among the candidates of BJP, TMC, BJP, CPIM and Congress. We can expect that peaceful voting trend can continue throughout the day. Sarah.
13: Right. Thank you so much, Kalyan, for that update. Moving on, West Bengal government has begun handing over land to Border Security Force, BSF, for barbed wire fencing along the Indo-Bangladesh border. More from our correspondent.
15: Yesterday at the State Secretariat Navarno, Chief Minister Shubhendu Odigari formally initiated the process in the presence of BSF officials. The Chief Minister accused the previous government of obstructing border security through non-cooperation. He stressed that fencing the border is vital for national and state safety, citing issues such as infiltration, smuggling, counterfeit currency, forced religious conversions and crimes linked to illegal Bangladeshi entrants. West Bengal shares nearly 2,200 kilometers of the 4,000 kilometer India-Bangladesh border, while fencing already covers about 1,600 kilometers. 600 kilometers remain unfenced. Yesterday's handover included the land for 27 kilometers, out of which 18 kilometers for fencing and 9 kilometers for BSF outposts and infrastructure. The Chief Minister assured that more land will be transferred soon, with costs fully covered by the central government and BSF. BSF Director General Praveen Kumar praised the state government, noting that cooperation long needed in border operations is now being received under the new administration. Sandipan Dashgupta, Akashvani News, Kolkata.
13: This is Akashvani giving you the news. For quick news updates round the clock, follow us on our X handle at AIR News Alerts. And for details of these stories and more, log on to our website www.newsonair.gov.in and download the News on AIR app. Welcome back. You're listening to Morning News. India has called out Pakistan's long-tainted record of genocide

लोक मंजरी कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के जगदलपुर केंद्र से। लीजिए अब सुनिए अगला गीत छत्तीसगढ़ी में, स्वर है राजकिशोर नाग और साथियों का।

आप सुन रहे थे ध्रुवी लोकगीत। लीजिए अब लोकमंजरी कार्यक्रम में हम आपको सुनवाते हैं त्रिनाथ सिंह छत्री और साथियों की आवाजों में हल्बी गीत।

अभी आप सुन रहे थे बस्तर के लोकगीतों का कार्यक्रम लोकमंचरी। आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। सुबह के 9 बजे हैं। प्रस्तुत है प्रायोजित कार्यक्रम NCERT।

0: शब्दांक
1: CIET प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: सभी श्रोताओं का स्वागत है उमंग कार्यक्रम में। नमस्कार, मैं हूं विमलेश।
3: और मैं हूं अजीत। नमस्कार श्रोताओं, कच्छ भुज से जगदीश जौहरी, पूजा और पायल जी ने सुविचार भेजा है। आइए सुनते हैं क्या लिखा है।
2: सुंदरता हमेशा अच्छी नहीं होती, लेकिन अच्छाई हमेशा सुंदर होती है। महत्वपूर्ण होना ही अच्छा नहीं होता, लेकिन अच्छा होना हमेशा महत्वपूर्ण होता है।
3: बहुत सुंदर विचार आपका, इसके लिए आपको हम अपना धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। और आइए अब सुनते हैं श्रोताओं के नाम और उनके संदेश। तो पहला संदेश हमें मिला है आर्यनगर कोहका भिलाई से। उत्तम सिंह जंघेल, मोरस जंघेल, अनिल कुमार, अजीत कुमार, आयुष जंघेल और नंदिनी जंघेल के साथ साथ धमधा ग्राम सुखरी कला से अमित जंघेल, शगुन जंघेल, आरुषि, ओशिका, आदित्य जंघेल और अंजलि जंघेल लिखते हैं।
2: उमंग कार्यक्रम हिंदी में प्रसारित होता है, पर आज हम एक बधाई मेल को छत्तीसगढ़ी में भेज रहे हैं। हमारे मेल को जरूर शामिल करें, बहुत बहुत धन्यवाद। लिखते हैं,
3: अक्ति तिहार के पावन दिन माँ उमंग NCERT सुख समृद्धि और नेकी के बीजा हमेशा फलत फूलत रहे।
2: उमंग NCERT के साथ सभी श्रोता मित्रों को अक्षय तृतीया की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बहुत बहुत बधाई।
3: आपका बहुत धन्यवाद, आपने अपनी क्षेत्रीय भाषा में हमें बधाई संदेश भेजा है।
2: जी,
3: अगला संदेश हमें मिला है
2: विलेज तेहका बजरंग चौक से चौलेश कौशल्या नवरंग, लकी और ऋषि नवरंग,
3: और ग्राम पुतकी कला कवर्धा छत्तीसगढ़ से राधेश्याम पांडे, वीणा पांडे, विनय शंकर पांडे, नयन पांडे और सुमांशु पांडे जी ने लिखा है।
2: NCERT के सभी कार्यकर्ताओं को राधेश्याम पांडे के परिवार की तरफ से सादर नमस्कार।
3: और अगला संदेश हमें मिला है ऊपरकोट बुलंदशहर से मोहम्मद सईद अब्बासी, निगहत परवीन, शाहनवाज, सरफराज, फरदीन, सुहान, अरजान और अबान अब्बासी,
2: और ग्राम ममना जिला हमीरपुर बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश से रामशरण विश्वकर्मा, साहिल विश्वकर्मा, मंजू, रंजना, वंदना और प्रियल।
3: आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद संदेश भेजने के लिए। श्रोताओ, एक बार फिर से आप सबका स्वागत श्रृंखला ये भी जानिए में। और आइए अब सुनते हैं इसकी अगली कड़ी।
2: श्रोताओ, कल हमने चर्चा की थी अमेजन के वर्षा वनों के बारे में, तो अजीत जी आज हम क्या चर्चा करने जा रहे हैं?
3: विमलेश जी, कल हमने चर्चा की थी दुनिया के सबसे बड़े वर्षा वन अमेजन की।
2: जी,
3: आज हम सैर करेंगे भारत के सबसे बड़े वर्षा वन पश्चिमी घाट की, जिसे वेस्टर्न घाट भी कहते हैं।
2: जी,
3: हरियाली, वन्य जीवों और जैव विविधता से भरपूर वेस्टर्न घाट यानी पश्चिमी घाट।
2: जी,
3: तो शुरू करें?
2: जी जरूर, चलिए मैं करती हूँ शुरुआत।
3: जी
2: श्रोताओ, पश्चिमी घाट भारत का सबसे बड़ा प्राचीन और घना वर्षा वन है। अनुमान है कि इसकी आयु लगभग 16 करोड़ साल है, यानी हिमालय से भी 3 गुना पुराना। और अब जानते हैं इसका विस्तार कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है। अजीत जी, अब आपकी बारी।
3: जी श्रोताओ, वेस्टर्न घाट या पश्चिमी घाट गुजरात से शुरू होता हुआ महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक और केरल होते हुए तमिलनाडु से कन्याकुमारी तक फैला हुआ है।
2: जी,
3: यहाँ सालाना वर्षा 2000 से 7000 मिलीमीटर तक होती है।
2: जी हाँ श्रोताओ, इसलिए यहाँ पर हर समय हरियाली बनी रहती है। यही कारण है कि यहाँ के जंगलों को सदाबहार भी कहा गया है।
3: जी, शोधों में पाया गया है कि पश्चिमी घाट में लगभग 7000 से भी अधिक पौधों की प्रजातियाँ मिलती हैं, जिनमें ऊंचे ऊंचे सदाबहार वृक्ष, औषधीय पौधे और मसालों के पौधे विशेष रूप से जाने जाते हैं।
2: यदि मसालों की बात करें तो यहाँ काली मिर्च, इलायची, लौंग और दालचीनी की भरमार है। यही कारण है कि पश्चिमी घाट को भारत के मसालों की वाटिका भी कहा जाता है।
3: और चाय एवं कॉफी का तो कहना ही क्या, यहाँ के बागानों में उगने वाली चाय और कॉफी विश्व स्तरीय मानी जाती है और इनकी मांग दुनिया भर में बहुत अधिक है।
2: श्रोताओ, जहाँ तक प्राकृतिक सुंदरता का प्रश्न है, यहाँ की सुंदरता का कोई सानी नहीं है। मुनार और कुर्ग जैसे स्थान मानो पृथ्वी के स्वर्ग हैं।
3: और नीलगिरी के उदक मंडलम जैसे सुरम्य स्थान यानी ऊटी के बारे में भला कौन नहीं जानता।
2: जी,
3: यही वो अनोखी जगह है जहां विश्व प्रसिद्ध नील कुरिंजी के फूल खिलते हैं।
2: जी,
3: अद्भुत बात ये है कि 12 वर्षों में ये एक बार खिलते हैं। पिछली बार ये फूल सन 2018 में खिले थे और अब सन 2030 में इनके खिलने की संभावना है।
2: वहाँ के जनजातीय लोग नील कुरंजी के फूलों के खिलने के समय के अनुसार अपनी उम्र बताते हैं। यहाँ का मौसम ठंडा और सुहाना रहता है। पश्चिमी घाट की एक बहुत बड़ी विशेषता है यहाँ के शोला वन यानी शोला फॉरेस्ट।
3: श्रोताओ, शोला वन उन्हें कहते हैं जहाँ बहुत बड़े क्षेत्र में घास के मैदान होते हैं और बीच बीच में छोटे छोटे जंगल होते हैं। इन जंगलों के पेड़ बहुत ऊँचे नहीं होते।
2: शोला वनों को देखने से ऐसा लगता है मानो घास के बहुत बड़े मैदान में किसी ने छोटे छोटे जंगलों के टुकड़े रख दिए हों। इसका कारण है यहाँ की मिट्टी। एक ही मैदान में मिट्टी की ऐसी विविधता है कि कहीं सिर्फ घास ही उगती है और कहीं छोटे छोटे पेड़।
3: ये तो बड़ी रोचक बात है। और श्रोताओ, आइए जानते हैं शोला वन के बारे में कुछ और बातें। शोला वन वर्षा के पानी को धीरे धीरे संचित करते हैं और फिर उन्हें छोटी छोटी जलधाराओं के रूप में छोड़ते हैं। यही धाराएं मिलकर बड़ी बड़ी नदियां बनाती हैं। कृष्णा, कावेरी, तुंगभद्रा और पेरियार नदी इनका उदाहरण है।
2: इसीलिए शोलावनों को प्रकृति का जल भंडार भी कहते हैं। एक और तथ्य हम आपसे साझा करना चाहते हैं, वो ये है कि अक्सर कहा जाता है
3: यहाँ के पेड़ दूसरे पेड़ों का पोषण भी करते हैं। आइए जानते हैं वो भला कैसे।
2: वो ऐसे कि यहाँ के बड़े बड़े पेड़ों की जड़ें बहुत दूर दूर तक फैली होती हैं और उन जड़ों से फंगस के जाल के जरिए छोटे छोटे पेड़ों की जड़ें भी जुड़ जाती हैं। बड़े पेड़ अपनी जड़ों से छोटे छोटे या कमजोर पेड़ों और पौधों को पोषण भी देते हैं, इसलिए इन पेड़ों को बड़े आदर से मातृवृक्ष कहा जाता है, क्योंकि पोषण करके एक माँ की भूमिका निभाते हैं।
3: तो श्रोताओं, पश्चिमी घाट के वर्षा वन भारत की जलवायु के इंजन भी माने जाते हैं। ये न सिर्फ वर्षा लाते हैं लेकिन असंख्य जीवों के भी शरण स्थान हैं। तो ये थी हमारी आज की जानकारी। अब सुनिए आज का प्रश्न हमारी आज की ही जानकारी से। तो हमारा आज का प्रश्न है, मातृवृक्ष किसे कहते हैं। प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
2: मातृवृक्ष किसे कहते हैं।
3: 8800-440-559 यानी हमारे IVRS नंबर और audio@cit.nic.in यानी हमारे ईमेल पर आप अपने संदेश और प्रश्नों के उत्तर भेज सकते हैं।
2: एक्स, इंस्टा, फेसबुक और लिंक्डइन पर भी आप CIT NCERT को फॉलो कर सकते हैं।
3: और अब बारी है हमारे शैक्षिक कार्यक्रमों की। आइए सबसे पहले सुनते हैं कार्यक्रम पड़ोसी।
2: उर्दू की कक्षा 2 की पाठ्य पुस्तक पर आधारित ये कार्यक्रम बताता है कि एक अच्छा पड़ोसी वही होता है जो हर सुख दुख में हमारे काम आए और सबके साथ प्रेम एवं सहयोग की भावना के साथ पेश आए।
3: CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है कक्षा 2 की उर्दू की पाठ्य पुस्तक शहनाई के एक पाठ पर आधारित कार्यक्रम पड़ोसी।

0: कई रोज से चिड़ा और चिड़िया बहुत परेशान थे। उन्हें अपना घोंसला बनाने के लिए कोई महफूज जगह नहीं मिल रही थी। ढूंढते ढूंढते वो एक घने जंगल में पहुंच गए। उस जंगल में एक बहुत पुराना दरख्त था। उन्होंने उसकी शाख पर अपना घोंसला बना लिया। चिड़िया अपने घोंसले में बहुत खुश थी। उसे अगर दुख था तो बस ये कि वहां चिड़ियों के और घोंसले नहीं थे और न ही जान पहचान वाले थे। उसने अपने दिल की बात चिड़े से कह दी। बोली,
1: देखो, कल ही कव्वे ने हमारे पड़ोस की शाख पर घोंसला बनाया है। कव्वा अकेला रहता है,
2: मुझे बड़ा डर लगता है।
1: हमें यहाँ अपनी जान पहचान बढ़ानी चाहिए। कुछ दूसरी चिड़ियों के घोंसले होते तो किसी बात का खटका नहीं रहता।
0: चिड़ी ने कहा,
3: घबराने की बात नहीं, वक्त पर जो काम आए वही अपना होता है।
0: धीरे धीरे चिड़िया चिड़े और कव्वे में खूब दोस्ती हो गई और वो मिलजुल कर रहने लगे। कुछ दिनों के बाद चिड़िया ने दो अंडे दिए और उन अंडों से दो नन्हे मुन्ने खूबसूरत बच्चे निकले।

कौवा चिड़िया के बच्चों से बहुत प्यार करता था। जब चिड़िया दाना चुगने बाहर जाती, कौवा उसके बच्चों की निगरानी करता। कौवा बाहर जाता तो चिड़िया और चिड़ा उसके घोंसले की देखभाल करते। इस तरह वो दोनों पड़ोसी एक दूसरे की जरूरत में काम आने लगे। एक दिन की बात है, घोंसले में बच्चे अकेले थे। अचानक बच्चों की ची ची की आवाज सुनकर कौवे ने अपने घोंसले से सिर बाहर निकाला। उसने देखा कि एक बिल्ली चिड़िया के बच्चों की ताक में बैठी है। कौवा सहम गया। वो बच्चों को बचाने की तरकीब सोचने लगा। वो दरख्त की सबसे ऊंची शाख पर बैठकर जोर जोर से काए काए करने लगा। उसकी आवाज सुनकर सारे पड़ोसी जमा हो गए। सब के सब जोर जोर से चीखने चिल्लाने लगे।

0: दादी माँ दादी माँ, आज मुझे परियों की कहानी नहीं सुननी। आप रोज रोज परियों की कहानी सुना देते हो, आज तो मुझे जंगल की कहानी सुननी है। मेरा जंगल देखने को बड़ा मन करता है। दादी माँ का सुनाओ भी कहानी। चुप क्यों हो, सुनाओ ना।
1: अरे सुनाती हूँ दी।

अभी सुनाती हूँ, जरा मिश्री तो खा लूं। अब जरा गला तर हो गया है, लो सुनो।

0: दादी माँ आप सुनाओ भी कहानी जल्दी से।
1: हाँ सुनाती हूँ दीपू। एक जंगल में रहता था एक हिरन भाई एक हिरन, एक हिरन भाई एक हिरन, एक हिरन भाई एक हिरन। एक जंगल में रहता था एक हिरन भाई एक हिरन। क्यों जी दीपू, कौन रहता था जंगल में?
0: दादी माँ एक हिरन।
1: शाबाश, लंबे लंबे सींगों वाला एक हिरन भाई एक हिरन, लंबे लंबे सींगों वाला एक हिरन भाई एक हिरन।
0: दादी माँ, दादी माँ, क्या हिरन अकेला था या उसका कोई साथी था? बताओ ना दादी माँ, बताओ ना, बोलो ना दादी माँ।
1: अरे उसका कोई साथी नहीं, साथी नहीं भाई, साथी नहीं, उसका कोई साथी नहीं, साथी नहीं भाई, साथी नहीं। उछलता रहता कभी कहीं, कभी कहीं भाई, कभी कहीं, उछलता रहता कभी कहीं, कभी कहीं भाई, कभी कहीं।
2: मेरा कोई साथी नहीं, साथी नहीं, साथी नहीं, अब मैं क्या करूं, क्या करूं भाई, क्या करूं, क्या करूं भाई, क्या करूं।
1: चलते चलते घूमते घूमते थके जो उसके पांव, चलते चलते घूमते घूमते थके जो उसके पांव। एक जगह पर बैठ गया वो देख के ठंडी छांव, एक जगह पर बैठ गया वो देख के ठंडी छांव। और दीपू तब तब देखा उसने एक नन्ना मुन्ना खरगोश। क्या देखा दीपू?
0: एक नन्ना मुन्ना खरगोश।
1: शाबाश, एक खरगोश भाई एक खरगोश, एक खरगोश भाई एक खरगोश। इधर उछलता उधर कूदता, उधर उछलता इधर कूदता, इधर उछलता उधर कूदता, उधर उछलता इधर कूदता। मस्ती में था गुनगुन गाता, बच्चों के मन को था भाता। मस्ती में था गुनगुन गाता, बच्चों के मन को था भाता। हरी हरी वो घास था खाता, हरी हरी वो घास था खाता। क्यों भाई दीपू जी, क्या खाता था वो खरगोश?
0: हरी हरी वो घास था खाता।
1: शाबाश, फिर क्या हुआ? धीरे धीरे धीरे धीरे खरगोश आगे बढ़ा तो क्या देखता है?
0: अरे ये क्या, ये तो हिरन भाई लेटे हैं। क्यों भाई क्यों, हिरन जी क्यों लेटे यूं उदास हो क्यों? क्या कुछ खोया है तुम्हारा, क्या मम्मी ने है तुमको मारा?
2: ना कुछ खोया है हमारा, ना मम्मी ने हमको मारा, है ना मेरा कोई साथी, यही बात ना मुझको भाती, है ना मेरा कोई साथी, यही बात ना मुझको भाती।
0: क्या तुम मेरे साथी बनोगे, मेरे साथ खेलोगे?
3: हाँ हाँ क्यों नहीं, बड़ा मजा आएगा, हम दोनों मिलकर खेलेंगे घूमेंगे और साथ साथ रहेंगे।

0: दादी माँ दादी माँ, जंगल में तो खरगोश और हिरन बड़े मजे करते होंगे ना, क्या मैं उनके साथ दोस्ती कर सकता हूँ?
1: हाँ हाँ, क्यों नहीं। अब तुम सो जाओ दीपू, बहुत नींद आ रही है मुझे। आगे की कहानी कल सुनाऊंगी।
0: नहीं दादी माँ, मुझे अभी नींद नहीं आ रहा है, आगे सुनाओ ना। क्या हुआ?
1: ओफो, बड़े जिद्दी हो तुम। अच्छा सुनो, जंगल में जब हिरन और खरगोश उछलते कूदते घूम रहे थे ना, तब उन्होंने आकाश में बादल देखे।
0: बादल देखे, फिर दादी माँ?
1: फिर चलते चलते दिखा एक मोर, रंग बिरंगा सुंदर मोर। चलते चलते दिखा एक मोर, रंग बिरंगा सुंदर मोर। रंग बिरंगा सुंदर मोर, रंग बिरंगा सुंदर मोर। क्या दिखा दीपू?
0: रंग बिरंगा सुंदर मोर दादी माँ।
1: शाबाश। छाई थी घटा घन घोर, नाच रहा था सुंदर मोर। नाच रहा था सुंदर मोर, नाचे मोर भई नाचे मोर। नाचे मोर भई नाचे मोर, पंख फैला कर नाचे मोर। नाचे मोर भई नाचे मोर, ताता थैया नाचे मोर। ताता थैया नाचे मोर, ताता थैया नाचे मोर। रंग बिरंगा सुंदर मोर, ताता थैया नाचे मोर। नाचे मोर भई नाचे मोर, रंग बिरंगा सुंदर मोर। और भाई दीपू, फिर मोर को देखकर खरगोश बोला,
0: क्यों भाई क्यों मोर जी, हमसे दोस्ती करोगे?
2: हाँ हाँ, क्यों नहीं, मैं तो साथी ही ढूंढ रहा था।
0: दादी माँ दादी माँ, अब तो तीनों दोस्त बन गए, फिर?
1: फिर? अरे फिर क्या दीपू, अब तो तीनों यानी
0: खरगोश, हिरन और मोर।
1: शाबाश, तो अब ये तीनों जंगल में साथ साथ घूमते, साथ साथ नाचते और साथ साथ गाते, मिलजुल कर रहते।
0: फिर तो दादी माँ तीनों ही गाते होंगे।
1: क्या गाते होंगे रे, क्या गाते होंगे?

0: बांटेंगे हम तुम।
1: अरे तुझे तो बड़ा गाना याद है, अब सो जा, गाते गाते रात हो जाएगी, सो जा।
2: अभी आपने सुना कार्यक्रम जंगल के साथी, और आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम पेड़ हमारे दोस्त।
3: इस कार्यक्रम के द्वारा बच्चों को बताया गया है कि हमारे जीवन में पेड़ों का कितना महत्व है। बच्चों को पेड़ पौधों की देखभाल करने और वृक्षारोपण के लिए भी प्रोत्साहित किया गया है।
4: किशनपुर गांव में अटकू मटकू नाम के दो शरारती दोस्त रहते थे। दोनों कोई काम नहीं करते थे और सारा दिन इधर उधर घूमते रहते। कभी कभार तो वो गांव से लोगों की मुर्गियां चोरी कर बाजार में बेच देते और जो पैसा मिलता उससे मन मर्जी का खाते पीते। उनकी इस हरकत से सारा गांव परेशान था। एक दिन अटकू के दिमाग में एक युक्ति सूझी। वो मटकू से बोला,
5: अरे भाई मटकू, मैं सोच रहा हूँ क्यों ना आज हम जंगल में चलकर पेड़ काटें और उसकी लकड़ी बेचकर जो पैसे मिले उससे हम खूब मजे करें।
6: अरे वाह अटकू भाई, तुमने तो बड़े काम की बात बोल दी। फिर कोई हमसे झगड़ा भी नहीं करेगा कि हमने उनका कोई सामान बिना पूछे ले लिया। चलो जल्दी से जंगल में चलते हैं और लकड़ी काट कर लाते हैं।
5: हाँ, बहुत सारी लकड़ी काट कर लाएंगे
6: और बहुत सारे पैसे कमाएंगे।
5: हाँ। अरे भाई मटकू, वो देखो आम का पेड़। इसके मोटे मोटे तने बेचकर हमें कितना अच्छा पैसा मिलेगा।
6: बिल्कुल सही कहा अटकू, इसे काटो।
7: भाई मुझे मत काटो, मैं तुमको मीठे मीठे आम दूंगा जिनको खाकर तुम्हारा दिल खुश हो जाएगा, और इसके लिए तुम्हें कोई पैसे भी नहीं देने पड़ेंगे।
6: अच्छा चल अटकू, आम का पेड़ नहीं काटते, कोई और पेड़ देखते हैं। चल चल।
4: अटकू मटकू को आम के पेड़ की बात पसंद आ गई और वो आगे बढ़ गए। थोड़ी दूरी पर उन्हें एक बरगद का बड़ा सा पेड़ दिखाई दिया और उसे देखते ही दोनों की आंखों में चमक आ गई। जैसे ही वे बरगद के पेड़ को काटने लगे, पेड़ उनसे बोला,
8: अरे अरे रुको रुको रुको रुको, काटो मत मुझे, काटो मत मुझे, छाया दूंगा तुम्हें, छाया दूंगा तुम्हें मैं।
5: अच्छा चलो कोई और पेड़ ढूंढते हैं।
6: हाँ अटकू चल आगे चलते हैं।
4: जंगल में कुछ आगे बढ़े ही थे,
6: अरे अटकू भाई वो देख, कटहल का एक पेड़।
5: अरे वाह क्या लंबा चौड़ा पेड़ है, वो भी कटहल से लदा हुआ।
4: वो उसे काटने लगे।
7: काटो मत मुझे, कटहल दूंगा तुम्हें, तुम्हें मैं कटहल दूंगा।
5: अच्छा ठीक है
6: चलो अटकू आगे बढ़ते हैं।
4: आगे जाने पर उन्हें एक नीम का पेड़ दिखा। वे दोनों नीम के पेड़ को काटने लगते हैं।
9: ना, क्या मिलेगा काट कर मुझे, अरे जीने दो, मैं तुम्हें हवा दूंगा। अगर हम पेड़ ना होंगे तो जीवित रहने के लिए शुद्ध हवा कहाँ से मिलेगी तुम्हें।
6: हाँ बिल्कुल सही कह रहा है ये पेड़।
4: अब अटकू मटकू सोच में पड़ गए कि पेड़ पौधों से हमें छाया, फल, सब्जियां आदि बहुत कुछ मिलता है। पेड़ तो हमारे दोस्त हैं, इसलिए हमें इन्हें काटना नहीं चाहिए बल्कि हमें पेड़ लगाने चाहिए। दोनों वापस गांव पहुंचे और उन्होंने अपने बगीचे में पेड़ पौधे लगाना शुरू किया। अब वे रोज बगीचे में जाने लगे और पेड़ पौधों की देखभाल करने लगे। अटकू मटकू में आए इस बदलाव को देखकर गांव वाले बहुत हैरान थे।
0: अरे वाह अटकू मटकू,
4: जब भी कोई उनसे पूछता कि तुम दोनों ये क्या कर रहे हो तो वो सामने से मुस्कुराते हुए जवाब देते,
10: पेड़ हमारे
11: दोस्त हैं।
10: जीवन में हरियाली लाओ,
11: पेड़ लगाओ, पेड़ लगाओ।
2: पेड़ हमारे दोस्त, अभी आपने सुना ये कार्यक्रम। और अब इसी के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अब अपने मित्र अजीत
3: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए।
2: नमस्कार।
12: उमंग उमंग उमंग उमंग।
13: अभी आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम NCERT। ये आकाशवाणी का जगदलपुर केंद्र है। सुबह के 9:30 हुए हैं। पेश है कार्यक्रम एक ही फिल्म से।

श्रोताओं, आज के इस कार्यक्रम में हम लेकर आए हैं एक ऐसी फिल्म जिसने न केवल दर्शकों के दिलों में अपनी जगह बनाई बल्कि कई कलाकारों के करियर को भी नई पहचान दी। प्रेम, जुनून और भावनाओं से सजी ये फिल्म है रांझणा।

फिल्म रांझणा 21 जून 2013 को फिल्मी पर्दे पर रिलीज हुई थी। फिल्म के निर्माता हैं कृषिका लुल्ला और आनंद एल राय। कहानी लिखी है हिमांशु शर्मा ने और इस फिल्म का निर्देशन किया है आनंद एल राय ने। रांझणा 2013 की एक तरफा जुनून और त्याग की एक बेहतरीन हिंदी प्रेम कहानी है। बनारस की पृष्ठभूमि पर बनी इस फिल्म में कुंदन धनुष का किरदार एक मुस्लिम लड़की जोया सोनम कपूर से बचपन के प्यार और उसके त्रासद अंत की मार्मिक दास्तान को दिखाता है। कहानी की मुख्य रूपरेखा इस प्रकार है। कहानी की शुरुआत वाराणसी से होती है। कुंदन जो कि एक तमिल ब्राह्मण परिवार का लड़का है, उसे जोया नाम की मुस्लिम लड़की से पहली नजर में प्यार हो जाता है। कुंदन अपने प्यार के इजहार के लिए जोया के पीछे पड़ता है और जोया के गुस्से और थप्पड़ खाने के बावजूद उसका जुनून कम नहीं होता।

एक ही फिल्म से कार्यक्रम में श्रोताओं आज आप सुन रहे हैं फिल्म रांझणा के गीत और इस फिल्म से जुड़ी कुछ बातें। फिल्म रांझणा में जिन कलाकारों ने अभिनय किया है वे थे धनुष,

श्रोताओं, एक ही फिल्म से कार्यक्रम में आज आप सुन रहे हैं फिल्म रांझना के गीत, और इस फिल्म के गीत लिखे हैं इरशाद कामिल ने, फिल्म का संगीत दिया है A.R. रहमान ने, और इनके संगीत निर्देशन में आवाजें हैं शिराज उप्पल, जसविंदर सिंह, श्रेया घोषाल, अन्वेषा दत्ता, मिनल जैन, KMCC सूफी इंसेंबल, राशिद अली, नीति मोहन, नक्श अजीज, A.R. रहमान, कार्थी, जावेद अली, पूजा वैद्यनाथ, कीर्ति सगाथिया, रब्बी शेरगिल, मधुश्री, चिन्मय वैशाली और अंचल सेठी की।

रांझना फिल्म की कहानी अलग मोड़ लेती है। 8 साल बाद जोया वापस बनारस आती है और कुंदन को बताती है कि वे अक्रम से शादी करने जा रही है। कुंदन टूट जाता है, लेकिन जोया की खुशी के लिए वो खुद उनकी शादी की तैयारियों में जुट जाता है। शादी के दिन कुंदन को पता चलता है कि अक्रम असल में एक हिंदू जसजीत सिंह है, जिसने जोया के परिवार को धोखा देने के लिए मुस्लिम होने का नाटक किया था। गुस्से में आकर कुंदन हंगामा करता है, जिससे भड़की सांप्रदायिक हिंसा में अक्रम की जान चली जाती है। जोया को कुंदन पर शक हो जाता है। इसके बाद कुंदन खुद को दोषी मानते हुए जोया से माफी मांगने के लिए दिल्ली चला जाता है। वहां वो जोया का विश्वास जीतने और राजनीतिक की जटिलताओं में फंसकर खुद को आग के हवाले कर देता है। अंत में जोया को कुंदन के सच्चे प्यार और त्याग का एहसास होता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है।

0: अभी आप सुन रहे थे एक ही फिल्म से। आज इस कार्यक्रम में आपने सुने फिल्म रांझना के गीत। ये आकाशवाणी का जगदलपुर केंद्र है। इस समय सुबह के 9:55 होने वाले हैं। अब प्रादेशिक समाचार हम आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से रिले करते हैं।
1: आकाशवाणी का ये रायपुर केंद्र है। सुबह के 9:55 होने को हैं। अब सुनते हैं प्रादेशिक समाचार।
2: ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं शुभ्रा भट्टाचार्य। और अब पेश हैं आज के मुख्य समाचार। छत्तीसगढ़ शासन ने निजी स्कूलों की मनमानी रोकने के लिए प्रदेश भर में निगरानी और जांच समितियों का गठन किया है। भारतीय सेना ने ऑनलाइन सामान्य प्रवेश परीक्षा की तिथि घोषित कर दी है। और आकाशवाणी द्वारा कल रायपुर में स्वरोत्सव संगीत समारोह का आयोजन किया जाएगा। अब समाचार विस्तार से। छत्तीसगढ़ शासन के स्कूल शिक्षा विभाग ने निजी स्कूलों की मनमानी रोकने के लिए प्रदेश भर में निगरानी और जांच समितियों का गठन किया है। इस संबंध में स्कूल शिक्षा विभाग ने सभी जिला कलेक्टरों को पत्र जारी किया है। ये समिति अशासकीय स्कूलों में फीस बढ़ोतरी तथा पुस्तक गणवेश खरीदी की शिकायतों की निगरानी करेगी। जारी आदेश में कहा गया है कि शासन के संज्ञान में ये बात आई है कि छत्तीसगढ़ में संचालित अशासकीय शालाओं द्वारा पालकों को पुस्तक गणवेश और अन्य सामग्री किसी एक ही फर्म से खरीदने के लिए बाध्य किया जा रहा है। फर्म के अप्रत्याशित दाम की वजह से पालकों पर वित्तीय बोझ बढ़ रहा है। इस संबंध में मीडिया में लगातार शिकायतें प्रकाशित हो रही हैं। इन्हीं शिकायतों के त्वरित निराकरण के लिए जिला और विकास खंड स्तर पर निगरानी और जांच समितियों का गठन किया गया है। भारतीय सेना ने ऑनलाइन सामान्य प्रवेश परीक्षा की तिथि घोषित कर दी है। विभिन्न श्रेणियों के लिए निर्धारित ये ऑनलाइन परीक्षा आगामी 1 जून से 5 जून तक और इसके बाद 8 जून से 12 जून तक आयोजित की जाएगी। परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड जारी होने का सिलसिला शुरू हो चुका है। छत्तीसगढ़ के 5 प्रमुख शहरों भिलाई, दुर्ग, रायपुर, बिलासपुर और जगदलपुर में इसके लिए कुल 10 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जहां प्रत्येक दिन परीक्षा का आयोजन 3 से 4 शिफ्टों में किया जाएगा। सभी पंजीकृत उम्मीदवार भारतीय सेना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपना प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकते हैं। राज्यपाल रमन डे का कल जनगणना 2026 प्रक्रिया में शामिल हुए। जनगणना 2026 की प्रक्रिया के तहत नगर निगम के अधिकारियों ने लोक भवन पहुंचकर राज्यपाल से जनगणना के 33 बिंदुओं से जुड़ी जानकारी प्राप्त की। अधिकारियों ने निर्धारित प्रश्नों के आधार पर राज्यपाल से व्यक्तिगत, सामाजिक और अन्य सामान्य विवरण लिए। राज्यपाल ने जनगणना कार्य में सहयोग करते हुए सभी आवश्यक जानकारियां उपलब्ध कराई। इस अवसर पर नगर निगम रायपुर की जोन कमिश्नर और संबंधित अधिकारी मौजूद थे। मुख्य सचिव विकासशील ने जल जीवन मिशन के तहत राज्य में नियमित पेयजल आपूर्ति और पानी की गुणवत्ता की लगातार जांच सुनिश्चित करने के निर्देश अधिकारियों को दिए हैं। मंत्रालय महानदी भवन में राज्य जल और स्वच्छता मिशन की अपेक्स कमेटी की बैठक में जल जीवन मिशन 2.0, पीएम जनमन कार्यक्रम और पीवीटीजी बसाहटों में पेयजल व्यवस्था सहित कई विषयों पर चर्चा हुई। मुख्य सचिव ने कहा कि अब नल जल योजनाओं के सुचारू संचालन और मॉनिटरिंग पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। आकाशवाणी के गौरवमयी 90 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आकाशवाणी केंद्र रायपुर द्वारा कल 22 मई को रायपुर में स्वरोत्सव संगीत समारोह का आयोजन किया जाएगा। ये कार्यक्रम शांति नगर स्थित विमतारा ऑडिटोरियम में शाम 6:30 से आयोजित किया जाएगा। 2 सत्रों में होने वाले इस कार्यक्रम के दौरान सुगम संगीत और उपशास्त्रीय प्रस्तुतियां होंगी। पद्मश्री मदन चौहान सुगम संगीत कार्यक्रम पेश करेंगे, वहीं श्वेता शिवाले द्वारा उपशास्त्रीय संगीत की प्रस्तुति दी जाएगी। आकाशवाणी रायपुर के उप महानिदेशक तथा क्लस्टर प्रमुख वी राजेश्वर ने बताया कि आकाशवाणी ने लोक प्रसारक के रूप में पिछले 90 वर्षों में उल्लेखनीय कार्य किया है। इस दौरान आकाशवाणी ने सूचना, शिक्षा, समाचार, मनोरंजन के माध्यम से अपने ध्येय वाक्य बहुजन हिताय बहुजन सुखाय की परिकल्पना को साकार करने का काम किया है। आकाशवाणी केंद्र रायपुर ने भी स्थानीय संस्कृति, लोक कला, शिक्षा, समाचार और मनोरंजन को गांव गांव तक पहुंचाने में अहम भूमिका निभाई है। रायपुर में अब से कुछ देर बाद गिफ्ट तिलापिया की वैज्ञानिक खेती विषय पर चिंतन शिविर का आयोजन किया जाएगा। केंद्रीय मत्स्य पालन विभाग और राष्ट्रीय मत्स्य विकास बोर्ड के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित किए जा रहे इस शिविर का उद्घाटन कृषि मंत्री रामविचार नेताम करेंगे। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। छत्तीसगढ़ शासन ने निजी स्कूलों की मनमानी रोकने के लिए प्रदेश भर में निगरानी और जांच समितियों का गठन किया है। भारतीय सेना ने ऑनलाइन सामान्य प्रवेश परीक्षा की तिथि घोषित कर दी है और आकाशवाणी द्वारा कल रायपुर में स्वरोत्सव संगीत समारोह का आयोजन किया जाएगा। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला प्रादेशिक हिंदी समाचार बुलेटिन 11:55 पर सुना जा सकता है। नमस्कार।
0: मीडियम वेव एफएम बैंड और न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर हम आकाशवाणी के जगदलपुर केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 10 बजे हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम गुलशन। आज गुलशन में हम लेकर आए हैं शास्त्रीय रागों पर आधारित फिल्मी गीत। कार्यक्रम का आरंभ हम कर रहे हैं फिल्म बॉम्बे के गीत से। आवाज है चित्रा और साथियों की। गीतकार है महबूब, संगीत ए आर रहमान का है। ये गीत राग शिवरंजनी पर निबद्ध है।

अब प्रस्तुत है राग माल कौंस पर आधारित फिल्म मेरे हुजूर का गीत स्वर मन्ना डे का है। गीत हसरत जयपुरी का है और संगीतकार हैं शंकर जयकिशन।

शास्त्रीय रागों पर आधारित फिल्मी गीत आज आप सुन रहे हैं कार्यक्रम गुलशन में। लीजिए अब सुनिए हसरत जयपुरी का लिखा गीत, आवाज लता मंगेशकर की है। इस गीत को संगीतकार रामलाल ने राग भूपाली पर निबद्ध किया है।

गुलशन कार्यक्रम में अब हम आपको सुनवा रहे हैं राग पीलू में निबद्ध फिल्म बाजीराव मस्तानी का गाना। शब्द रचना है सिद्धार्थ करीमा की, धुन तैयार की है संजय लीला भंसाली ने।

गुलशन कार्यक्रम में आप सुन रहे हैं शास्त्रीय रागों पर आधारित फिल्मी गीत। अब प्रस्तुत है फिल्म तोहफा का गीत। गीत लिखा है इंदिवर ने, संगीत बप्पी लहरी का है और आवाज है एसपी बालसुब्रमण्यम और आशा भोसले की। ये गीत राग पहाड़ी पर आधारित है।

गुलशन कार्यक्रम में अब हम आपको सुनवा रहे हैं कार्यक्रम का अंतिम गीत। ये राग खमाज पर तैयार किया है फिल्म रंगीला का यह गीत, जिसे गाया है एआर रहमान और सोनलता ने। बोल महबूब के हैं, तर्ज बनाई है एआर रहमान ने।

अभी गुलशन कार्यक्रम में आप सुन रहे थे शास्त्रीय रागों पर आधारित फिल्मी गीत। हम आकाशवाणी के जगदलपुर केंद्र से बोल रहे हैं। इस समय सुबह के 10:30 हुए हैं। बस्तर के लोकगीतों के कार्यक्रम गुड़दुम में आज प्रस्तुत है ध्रुवी लोकगीत। गायक कलाकार हैं आयतू नाग और साथी।

0: किसान भाई बहन मन का जे नुआ उवाट एदाए रोजे शनिवार के सांझ बेरा 7:30 बजे ले 8 बजे तक सुना फोन इन किसान वाणी यथा कृषि महकमा चो विशेषज्ञ बल्लो ने खोजाकारी दादा दीदी दे दे आपन मन चो खेती कमाने ले जुड़लो सपाय समस्या चो समाधान बीज ले धरून हाट बाजार तक हर सवाल चो जवाब सीधा आपन मन के मिरे दे। और हाँ, ये कार्यक्रम चो रिकॉर्डिंग होय से रोजे मंगलवार अड़ौ पहार 3:30 बजे ले 4 बजे तक तो आपन मन सपाय सुना और आप लोग सवाल सीधा आम के फोन ने सांगा। आमचो फोन नंबर आए 07782222666। फोन इन किसानवाणी आपन मंचो सवाल आपन मंचो कहानी खेती बाड़ी चो जुबानी आकाशवाणी जगदलपुर ने।
1: एक मजबूत घर बिल्कुल उस पिता की तरह होता है जो हर मौसम सहकर भी घर की नींव को कभी हिलने नहीं देता।
2: आपके घर के लिए भरोसे का दूसरा नाम चेटिनाड सीमेंट का मैक्स क्रीट सीमेंट 64 सालों की बुनियाद के साथ। चेटिनाड सीमेंट द परफेक्ट कंक्रीट चॉइस।

गुर्दों में अभी आप ध्रुवी लोकगीत सुन रहे थे। कलाकार थे आयतू नाग और साथी। आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। दिन के 11 बजे हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम एक ही कलाकार। श्रोताओं, आज इस कार्यक्रम में हम जिस अभिनेत्री के बारे में बातें करने जा रहे हैं, वे हिंदी सिने जगत की अग्रणी और हर दिल अजीज अदाकारा के रूप में जानी जाती हैं। खूबसूरत सा चेहरा, प्यारी सी मुस्कान और हर किरदार में अपने आप को उतार लेने की कला, ये उनकी पहचान है। बातें हो रही हैं अभिनेत्री जूही चावला के बारे में, तो आइए सुनते हैं उनकी कुछ फिल्मों के गीत, जुड़ते हैं उनकी जिंदगी से और चलते हैं उनके फिल्मी सफर में कुछ देर साथ साथ।

0: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
1: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
0: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
1: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
0: डायल कीजिए 8700014242।
1: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।

0: मुक्त भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जीत और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: एक ही कलाकार में बातें हो रही हैं, अभिनेत्री जूही चावला के बारे में। जूही चावला का जन्म हुआ था 13 नवंबर सन 1967 में। 1984 में उन्होंने मॉडलिंग की दुनिया में कदम रखा और मिस इंडिया का खिताब जीता। उनकी हिंदी फिल्म जगत में कदम रखने की शुरुआत हुई फिल्म सुल्तानत से। इसके बाद उनकी चुलबुली अदाकारी और मासूमियत ने उन्हें दर्शकों के बीच चहेता बनाया। उनकी यादगार फिल्मों में कयामत से कयामत तक, डर, हम हैं राही प्यार के, यस बॉस, डुप्लीकेट, इश्क और दीवाना मस्ताना जैसी सदाबहार फिल्में शामिल हैं।

0: किसान भाई बहनों के लिए आकाशवाणी जगदलपुर की नई पहल। अब हर शनिवार को शाम 7:30 बजे से 8 बजे तक सुनिए फोन इन किसान वाणी, जहां कृषि विशेषज्ञ देंगे आपकी खेती से जुड़ी हर समस्या का आसान समाधान। बीज से लेकर बाजार तक हर सवाल का जवाब सीधे आपके लिए। और हाँ, इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग होगी हर मंगलवार दोपहर 3:30 बजे से 4 बजे तक, तो आप भी जुड़िए और अपने सवाल हमें सीधे फोन पर बताइए। हमारा नंबर है 07782222666। फोन इन किसान वाणी, आपकी आवाज, आपकी कहानी, आपके खेतों की जुबानी।
1: कम समय में ज्यादा मुनाफा, बस एक क्लिक में, कमाल है।
2: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए, RBI कहता है
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
4: जूही चावला ने न केवल हास्य और रोमांटिक किरदार निभाया, बल्कि 8 फिल्मों में भी संजीदा अभिनय किया और अपना लोहा मनवाया। उनकी कुछ खास यादगार फिल्में हैं माई ब्रदर निखिल, गुलाब गैंग, दीवारें और शहीद उधम सिंह जैसी पंजाबी फिल्मों में भी उन्होंने काम किया। उन्होंने अपने अभिनय के सफर में लगभग सभी शीर्ष अभिनेताओं के साथ काम किया। ऐसा कम ही होता है जब अभिनय के क्षेत्र में आपको लगातार काम मिलता रहे, क्योंकि हर तरफ इस क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा बहुत अधिक है। लेकिन जूही चावला ने यह साबित कर दिया कि जहां चाह होती है वहां राह होती है।

0: मिस्टर एंड मिसेस खिलाड़ी।
1: श्रोता, जूही चावला को अब तक दो फिल्म फेयर पुरस्कार मिले हैं, एक बार सहायक अभिनेत्री के लिए भी उनका नामांकन हुआ। उनके बारे में बताएं तो जूही चावला फिल्मों के अलावा खेल की भी शौकीन है और वे स्विमिंग का भी शौक रखती हैं। वे एक सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं और बिजनेस वुमन भी हैं, साथ ही साथ आज भी फिल्मों में भी वे लगातार सक्रिय हैं।

श्रोताओं, एक ही कलाकार में आज बातें हो रही हैं जूही चावला के बारे में। इस अभिनेत्री के निजी जीवन के बारे में कुछ बातें करें तो इनका विवाह हुआ बिजनेसमैन जय मेहता के साथ। उनकी एक पुत्री भी है जो जल्द ही बड़े पर्दे पर नजर आएंगी, जिनका नाम है जानवी। वे भी अभिनय और लेखन का जौहर रखती हैं। उम्मीद यही है कि आज जूही चावला के साथ जुड़ी हुई कुछ बातें और उनका फिल्मी सफर आपको पसंद आया होगा। उम्मीद करते हैं कि इसी तरह वे अपने दर्शकों के बीच आती रहें और अच्छी अच्छी फिल्में उन्हें मिलती रहें।

एक ही कलाकार। अभी आप ये कार्यक्रम सुन रहे थे। आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। दिन के 11:30 हुए हैं। प्रस्तुत है गुलदस्ता। इसमें हम सुनवा रहे हैं गैर फिल्मी गीत और गजलें। सबसे पहली गजल सुनते हैं जगजीत सिंह और चित्रा सिंह की आवाजों में।

0: है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
1: पर उससे मेरा क्या फायदा?
0: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुंच जाओ।
1: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
0: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो 8700014242।
1: ओ 8700014242। लो अभी फोन लगाता हूँ 8700014242 पर।
2: एक मजबूत घर बिल्कुल उस पिता की तरह होता है जो हर मौसम सहकर भी घर की नींव को कभी हिलने नहीं देता।
3: आपके घर के लिए भरोसे का दूसरा नाम चेटिनाड सीमेंट का मैक्स क्रीट सीमेंट, 64 सालों की बुनियाद के साथ चेटिनाड सीमेंट, द परफेक्ट कंक्रीट चॉइस।
4: आइए सुनते हैं अली शाह चिनॉय की आवाज में अगला नगमा।

सुनते हैं अगला गीत शंकर महादेवन की आवाज में, लिखा है जावेद अख्तर ने और संगीत शंकर महादेवन का है।

अभी आप गैर फिल्मी गीतों गजलों का कार्यक्रम गुलदस्ता सुन रहे थे। हम आकाशवाणी के जगदलपुर केंद्र से बोल रहे हैं। दिन के 11:55 होने को हैं। कुछ ही देर में अगला कार्यक्रम हम आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से रिले करेंगे। कृपया प्रतीक्षा करें।

0: शासन के स्कूल शिक्षा विभाग ने निजी स्कूलों की मनमानी रोकने के लिए प्रदेश भर में निगरानी और जांच समितियों का गठन किया है। ये समिति अशासकीय स्कूलों में फीस बढ़ोतरी तथा पुस्तक गणवेश क्रय की शिकायतों की निगरानी करेगी। इस संबंध में स्कूल शिक्षा विभाग ने सभी जिला कलेक्टरों को पत्र जारी किया है। जारी आदेश में कहा गया है कि शासन के संज्ञान में ये बात आई है कि छत्तीसगढ़ में संचालित अशासकीय स्कूलों द्वारा पालकों को पुस्तक गणवेश और अन्य सामग्री किसी एक ही फर्म से खरीदने के लिए बाध्य किया जा रहा है। फर्म के अप्रत्याशित दाम की वजह से पालकों पर वित्तीय बोझ बढ़ रहा है। पालकों की शिकायतों के त्वरित निराकरण के लिए जिला और विकासखंड स्तर पर निगरानी और जांच समितियों का गठन किया गया है। देश भर में आज आतंकवाद विरोधी दिवस मनाया जा रहा है। इस दिवस को मनाने का उद्देश्य युवाओं को आतंकवाद और हिंसा की संस्कृति से दूर करना है। इस अवसर पर शपथ ग्रहण समारोह सहित कई कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। इसी दिन वर्ष 1991 में पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी आतंकवादियों के षड्यंत्र का शिकार हुए थे। भारतीय सेना ने ऑनलाइन सामान्य प्रवेश परीक्षा की तिथि घोषित कर दी है। विभिन्न श्रेणियों के लिए निर्धारित ये ऑनलाइन परीक्षा आगामी 1 जून से 5 जून तक और इसके बाद 8 जून से 12 जून तक आयोजित की जाएगी। छत्तीसगढ़ के 5 प्रमुख शहरों भिलाई, दुर्ग, रायपुर, बिलासपुर और जगदलपुर में इसके लिए कुल 10 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जहां प्रत्येक दिन परीक्षा का आयोजन 3 से 4 शिफ्टों में किया जाएगा। सभी पंजीकृत उम्मीदवार भारतीय सेना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपना प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकते हैं। संस्कृति मंत्रालय ने वंदे मातरम फ्रेम्स राष्ट्रीय फिल्म निर्माण प्रतियोगिता के लिए प्रविष्टियां जमा करने की अंतिम तिथि 7 मई से बढ़ाकर 31 मई कर दी है। इस प्रतियोगिता का उद्देश्य राष्ट्र की साझा विरासत को पुनर्जीवित करना और उन आदर्शों के साथ एक नया जुड़ाव स्थापित करना है। यह प्रतियोगिता फिल्म निर्माताओं, रचनाकारों और नागरिकों को समकालीन प्रारूपों के माध्यम से वंदे मातरम की भावना को नए सिरे से प्रस्तुत करने के लिए प्रोत्साहित करती है। प्रतियोगिता 3 श्रेणियों में आयोजित की जा रही है, में रील्स, एआई आधारित फिल्में और लघु फिल्में शामिल हैं। विभिन्न श्रेणियों में 50 लाख रुपए तक के पुरस्कार दिए जाएंगे। आकाशवाणी के गौरवमयी 90 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आकाशवाणी केंद्र रायपुर द्वारा कल 22 मई को रायपुर में स्वरोत्सव संगीत समारोह का आयोजन किया जाएगा। ये कार्यक्रम शांति नगर स्थित विमतारा ऑडिटोरियम में शाम 6:30 बजे से आयोजित किया जाएगा। 2 सत्रों में होने वाले इस कार्यक्रम के दौरान सुगम संगीत और उपशास्त्रीय प्रस्तुतियां होंगी। पद्मश्री मदन चौहान सुगम संगीत कार्यक्रम पेश करेंगे, वहीं श्वेता शिवाले द्वारा उपशास्त्रीय संगीत की प्रस्तुति दी जाएगी। आकाशवाणी रायपुर के उपमहानिदेशक तथा क्लस्टर प्रमुख वी राजेश्वर ने बताया कि आकाशवाणी ने लोक प्रसारक के रूप में पिछले 90 वर्षों में उल्लेखनीय कार्य किया है। इस दौरान आकाशवाणी ने सूचना, शिक्षा, समाचार, मनोरंजन के माध्यम से अपने ध्येय वाक्य बहुजन हिताय बहुजन सुखाय की परिकल्पना को साकार करने का काम किया है। आकाशवाणी केंद्र रायपुर ने भी स्थानीय संस्कृति, लोक कला, शिक्षा, समाचार और मनोरंजन को गांव-गांव तक पहुंचाने में अहम भूमिका निभाई है। जांजगीर चांपा जिले के खोखसा ओवरब्रिज के ऊपर बीती शाम तेज रफ्तार एक चारपहिया वाहन के अनियंत्रित होकर पलट जाने से एक छात्र सहित 2 लोगों की मौत हो गई, वहीं एक अन्य छात्र घायल हो गया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। छत्तीसगढ़ शासन ने निजी स्कूलों की मनमानी रोकने के लिए प्रदेश भर में निगरानी और जांच समितियों का गठन किया है। भारतीय सेना ने ऑनलाइन सामान्य प्रवेश परीक्षा की तिथि घोषित कर दी है और आकाशवाणी द्वारा कल रायपुर में स्वरोत्सव संगीत समारोह का आयोजन किया जाएगा। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन छत्तीसगढ़ी में होगा, जिसे शाम 6:10 पर सुना जा सकता है। नमस्कार।
1: ये आकाशवाणी का जगदलपुर केंद्र है। दिन के 12 बजने को है। प्रस्तुत है पाटावे नार। इसमें हम सुनवा रहे हैं ध्रुवी लोकगीत। कलाकार हैं महांगुराम और साथी।

0: बधाई हो सेठ जी, आपकी कंपनी की इस नई अगरबत्ती की खुशबू तो लाजवाब है।
1: अरे भाई साहब, आप देखते जाइए, अब तो ये अगरबत्ती घर घर में महकेगी। मैंने पूरे शहर में इसके विज्ञापन बंटवाए हैं।
0: क्यों भाई, सिर्फ शहर में? अरे गांव में नहीं महकेगी क्या?
1: महकना तो गांव में भी चाहिए, मगर गांव के लोगों को हमारी नई अगरबत्ती के बारे में पता कैसे चलेगा?
0: आकाशवाणी से।
2: गांव हो या शहर, अपनी दुकान या उत्पाद की जानकारी पहुंचाइए घर घर। आकाशवाणी आइए और विज्ञापन बुक करवाइए।
3: पटावेनार में आप ध्रुवी लोकगीत सुन रहे हैं। कलाकार हैं मांगुराम और साथी

काजे नुआ उवाट एदाए रोज शनिवार के सांझ बेरा 7:30 बजे ले 8 बजे तक सुना फोन इन किसान वाणी यथा कृषि महकमा चो विशेषज्ञ बल्लो ने खोजाकारी दादा दीदी दे दे आपन मन चो खेती कमाने ले जुड़लो सपाय समस्या चो समाधान बीज ले धरून हाट बाजार तक हर सवाल चो जवाब सीधा आपन मन के मिरे दे। और हाँ, ये कार्यक्रम चो रिकॉर्डिंग होय से रोजे मंगलवार अड़ौ पहार 3:30 बजे ले 4 बजे तक। तो आपन मन सपाय सुना और आप लोग सवाल सीधा आम के फोन ने सांगा। आमचो फोन नंबर आए 07782226666। फोन इन किसानवाणी, आपन मंचो सवाल, आपन मंचो कहानी, खेती बाड़ी।

पाटावेनार में अभी आप ध्रुवी लोकगीत सुन रहे थे। कलाकार थे महंगूराम और साथी। आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। दोपहर के 12:30 होने को हैं। प्रस्तुत है ग्रामीण महिलाओं का कार्यक्रम घर द्वार।

0: कोई दिन असन लागे से कि कोई कार्यक्रम और आम जो बहुत महत्वपूर्ण कोई कोई दिवस होए से हर महीना ने उन दिन ने कार्यक्रम करतो आए तो पारा चो महिला मन के किशोरी बालिका मन के उन मन के सबके जमा करतो रहे और हुन जो विषय आसे उन विषय के सबके सांतो रहे जी तो हुथा उन मन के जानकारी मिलु आए
1: तो इतलो अच्छा गोट के सांगलास मंत्र सरासरी ने ये सपाय लाभ धरतो काजे आमचो रेडियो सुनतो बहिन मन के खाए बोलुक चाहे
0: मैं सपाय बहिन मन के यही गोठ बलें दे कि सब अपन अपन आंगनवाड़ी ने बिल्कुल आप लोग रजिस्टर जरूर करावा यदि गर्भवती जैसे ही मतलब गर्भ ठहरे से तुरंत आंगनवाड़ी ने एक तो रजिस्ट्रेशन करावा नाम लिखावा दूसरा पीला मन के बोले आप जो है बिल्कुल उता नाम लिखावा सबके और 3 से 6 साल जो जो पीला मन आसोत हुनमन के रोजे आंगनवाड़ी पठावा कसन बल्ले आंगनवाड़ी ने हुनमन बहुत अच्छा अच्छा चीज जो ना हुनमन के सीख दे समाज ने कसन रह दो आए रतो आए समाज में कसन व्यवहार करतो आए कौन चीज के काय बोलुआत कहाँ उपयोग हो से हर चीज हुनथा ने आंगनवाड़ी कार्यकर्ता सीखा से तो बिल्कुल आप लोग और जोन जोन योजना बोले चले से आंगनवाड़ी कार्यकर्ता समय समय ने आप गांव मन के दीदी मन के सांगे से बिल्कुल आप जाहा और हुथा लाभ उठावा यही मोचो आप सब से निवेदन आसे।
1: तो निशा पांडे तुम इतलो अच्छा बोले महिला बाल विकास विभाग ने पीला मन का जे और महिला मन का जे काय काय मंच उन्नति बाढ़ती स्वास्थ्य का जे योजना मना से वाट मना से सब गोट के सांगला साल खूब खूब जुआर।
2: हाँ तो दीदी मन कितरो नंगत गोट उवाट मन के जान लू ये उवाट मन ले जो लाभ मिले से उनके बोले जान लो तो ये उवाट जो लाभ के धर तो रहे तो दीदी मन नंगत गोट मन सुन लो ने मन हरी खून जवाए और मन हरी खोलो ने गीत गुमे सुन उभवाए तो असनी गीता से ये गीत कुरिया मनात लखेश्वर खुदराम और हुन मन जो संगवारी अले तिबे मन जो गीत के सुनू।

हाँ तो दीदी मन काय रसरसिया गीत के सुन लो। गीत गोविंद असन आए कितरी सुनते रलो ने भले मन नहीं भरे। और सुनो सुनुक भाव आए तो असनी और गीता से ये गीत कुरिया मन आद त्रिनाथ सी है और आले तेबे मंचो गीत के सुनू।

हाँ तो दीदी मन, काय रसरसिया गीत के बले सुन लू और आजी नंगत गोट उआट के बले जान लू। नंगत गोट मन के सुनते रलो ने खूबे नंगत लागू आए। ज्ञान ध्यान चो गोट मन असन आए ची कि सुनते रलो ने मन नहीं भरे और समय चो बले पता नहीं चले। तो दीदी मन मुचो जातो समय बले होली ये सब पाए गोट मन के सुनते सुनते। फिर कोनी दिने नंगत गोट मन संगे फिर भेंटघाट हो दे तो वची संगे मुके विदा दिया। घर द्वार सुन तो सपाए दीदी मन और मुचो संगवारी बहन मन के मैं सेवती करें से जुहार।

घर द्वार। अभी आप ग्रामीण महिलाओं का ये कार्यक्रम सुन रहे थे। आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। दोपहर के 1 बजने को है। कुछ ही देर में हिंदी में समाचार हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। कृपया प्रतीक्षा करें।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को खाद्य और कृषि संगठन के एग्रीकोला मेडल से सम्मानित किए जाने पर बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सिंह ने कहा कि यह सम्मान खाद्य सुरक्षा को मजबूत करने, टिकाऊ कृषि को बढ़ावा देने और ग्रामीण विकास को गति देने में श्री मोदी के शानदार नेतृत्व को दर्शाता है। रक्षा मंत्री ने प्रधानमंत्री को रॉयल नॉर्वेजियन ऑर्डर ऑफ मेरिट के ग्रैंड क्रॉस और स्वीडन के रॉयल ऑर्डर ऑफ द पोलर स्टार से सम्मानित किए जाने पर भी बधाई दी। उन्होंने कहा कि यह सम्मान श्री मोदी के नेतृत्व में भारत के प्रति बढ़ते सम्मान और वैश्विक मंच पर बढ़ती प्रतिष्ठा को दर्शाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों की सफल यात्रा के बाद स्वदेश लौट आए हैं। श्री मोदी संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की यात्रा पर थे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और दक्षिण कोरिया के देशभक्त और वयोवृद्ध मामलों के मंत्री कोन ओह यूल ने आज सियोल के इमुनगक पार्क में भारतीय समर स्मारक का संयुक्त रूप से उद्घाटन किया। इस अवसर पर रक्षा मंत्री ने कोरियाई प्रायद्वीप पर शांति और मानवीय सहायता के प्रति भारत के योगदान की अमिट विरासत का उल्लेख किया।
1: यह स्मारक करेज का सिंबल है, यह स्मारक कंपैशन का सिंबल है, यह स्मारक सेक्रीफाइस का सिंबल है। यह स्मारक भारत और कोरिया की जनता के बीच सदियों की मित्रता का भी संदेश दे रहा है। जब कोरियन पेनिनसुला युद्ध की त्रासदी में घिर गया था, तब भारत ने ह्यूमैनिटी के प्रति अपना दायित्व बखूबी निभाया। शांति और सेवा के आदर्शों से प्रेरित होकर

0: भारत ने अपनी 60 पैराफील्ड एम्बुलेंस यूनिट के माध्यम से इस बार में योगदान दिया।
1: सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि सरकार का लक्ष्य भारतीय ऑटोमोबाइल उद्योग को दुनिया में नंबर एक बनाना है। नई दिल्ली में भारत में अमरीकी वाणिज्य मंडल के वार्षिक नेतृत्व शिखर सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि देश का ऑटोमोबाइल उद्योग दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा उद्योग है, जिसने जापान को पीछे छोड़ दिया है। उन्होंने कहा कि अमरीका 79 लाख करोड़ के साथ पहले स्थान पर, जबकि चीन 49 लाख करोड़ के साथ दूसरे स्थान पर है। स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने स्वास्थ्य सेवा प्रणालियों को नया रूप देने में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई की क्षमता का उल्लेख करते हुए कहा कि जहां एआई स्वास्थ्य सेवा पहुंचाने में अपार अवसर प्रदान करता है, वहीं इसे ठोस नियमों, गहन शोधन और नैतिक निगरानी द्वारा सही दिशा दी जानी चाहिए। जिनेवा में विश्व स्वास्थ्य सभा के दौरान एक कार्यक्रम में श्री नड्डा ने यह बात कही। स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय ने इबोला रोग से प्रभावित देशों से आने वाले और वहां से गुजरने वाले यात्रियों के लिए एक परामर्श जारी किया है। इसके अनुसार कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, युगांडा और दक्षिण सूडान सहित प्रभावित देशों की यात्रा कर चुके यात्रियों को बुखार, सिरदर्द, मांसपेशियों में दर्द, बिना कारण रक्तस्राव और उल्टी जैसे लक्षण होने पर तुरंत चिकित्सा सहायता लेने का आग्रह किया गया है। पश्चिम बंगाल सरकार ने घोषणा की है कि अब सभी मदरसों में प्रार्थना गीत के तौर पर वंदे मातरम गाना अनिवार्य होगा। मदरसा शिक्षा विभाग ने एक निर्देश जारी करते हुए कहा कि अब से अल्पसंख्यक मामलों और मदरसा शिक्षा विभाग के अंतर्गत आने वाले संस्थानों के छात्रों को कक्षाएं शुरू होने से पहले वंदे मातरम गाना होगा। सरकार ने कहा है कि ये निर्देश पहले के दिशा निर्देशों और प्रथाओं का स्थान लेगा। तमिलनाडु में जोसेफ विजय के नेतृत्व वाली सरकार ने आज अपने मंत्रिमंडल का विस्तार किया। मंत्रिमंडल में 23 नए मंत्रियों को शामिल किया गया है। इनमें कांग्रेस पार्टी के 2 सदस्य भी शामिल हैं। इस विस्तार के साथ मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय को मिलाकर मंत्रिमंडल की कुल संख्या बढ़कर 32 हो गई है। 16वीं असम विधानसभा का पहला सत्र संवैधानिक परंपरा और भाषाई समावेशिता पर जोर देने के साथ आज शुरू हुआ। अस्थाई अध्यक्ष चंद्रमोहन पटवारी ने सदन की अध्यक्षता की तथा नव निर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाई। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक आज शुरुआती कारोबार में वृद्धि के साथ खुले, लेकिन बाद में इसमें गिरावट दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 232 अंक की गिरावट के साथ 75,087, जबकि निफ्टी 34 अंक गिरकर 23,625 पर था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। दोपहर के 1:05 हुए हैं। प्रस्तुत है कृषि सामयिकी बीड़ा खाड़ा चौगोट का पुनः प्रसारण।

भाई बहन मन, कांच बले फसल छो कमानी कर ले, बेड़ा ने खरपतवार बल्ले लाटा बूटा बले अखरू आए, और बेड़ा ने जितलो लाटा बूटा रह दे हुतलो फसल के नुकसान करे दे। ऐ लागुन एच रोकथाम करतोर खूबे जरूरी आए। गोटोक गोट बल्लो आसे बेड़ा ने कुनी बले एक बरक लाटा बूटा अखरुक देतोर, जो मतलब आए 7 बरक तक लगातार लाटा बूटा के बेड़ा ने अखरातोर। ऐ लागुन बेड़ा के लाटा बूटा ले बचातोर खूबे जरूरी आए। फसल संगे लाटा बूटा बले खद भात और दूसर जीनिस पाउन बाढ़ते जाऊआ और फसल संगे हरा जीता बाढ़ते जाऊआ। जेचो लागुन बेड़ा ने फसल जो उत्पादन कम हुआ है, संगे संगे बेड़ा ने अखर तो लाटा बूटा ने फसल जो दुश्मन कीड़ी मन जाऊटुआत, जोन फसल काजे खूबे हानिकारक हुआत। ऐ लागुन फसल जो अच्छा कमानी करतो काजे ए वाट मन के करतो राय। सबले पहल शुद्ध और साफ बीज के बुनतो राय। हमके कैंच बले फसल चो बीज के धरतो पहिल हुनके अच्छा दखुन पाकिट बीती बीज के बुनतो राय। संगे संगे बीज के पाकिट ले निस्काउन साफ करतो राय और कैंच बले दूसर बीज रले हुनके निस्कातो राय और सिर्फ फसल बीती बीज के बुनतो राय। दूसर वाट

0: जोन बेड़ा ने लाटा बुटा जुगे अखरुआ हूं थाने झपके बाढ़ तो बीती फसल के बुन तोड़ाए असन झपके बाढ़ तो बीती फसल बाड़ून भूई के ढाके से जेचो लागुन घाम खाले नी पाए और घाम नी पाओ तो लागुन बेड़ा ने लाटा बुटा जुगे नी अखरुक सके। लाटा बुटा चो रोकथाम काजे तीसर वाट बुन तोड़ विधि आए फसल के हमी छिड़काव बुनवाऊ छिड़काव विधि ने बुनले पाछे बाड़लो फसल ले लाटा बूटा झिकतोर बले बल्ले मिजानी ने भारी तकलीफ होय से संगे संगे ये विधि ने बेड़ा चो सभय भाग ने फसल चो बूटा समान नी रहे से जेचो लागुन उत्पादन ने कमी होय से। अइ काजे रोपा विधि ले बेड़ा ने फसल लगा ले बेड़ा चो लाटा बूटा के छुकछुका गुचाई होय से जेचो लागुन उत्पादन बले आगर होय से। असने बुनतो समय चो बले ध्यान रखून लाटा बूटा चो बाढ़ती के रोकथाम करुक सकूं। जोन भूई ने लाटा बूटा जुगे अखरुआ असन भूई ने समय चो आगे नहाले समय चो पाछे बुन तो राय समय चो आगे बुन ले फसल चो बूटा झपके बाड़े दे और लाटा बूटा खाले रहे दे तेबे घाम नी पड़तो लागून लाटा नी बाड़ूक सक दे। असने समय चो पाछे बुन ले जागलो लाटा बूटा के जोपुन निस्काउन पकाउन दे तो राय और ये चो पाछे फसल के बुन तो राय असन कर ले फसल ने लाटा बूटा ने बचाव लाए सकवा। बुन तो बेरा हम के ये गोट के बले लेख कर तो राय कि जोन ट्रेक्टर नहाले नागर ले कोनी बेड़ा ने बुनू से और हुन बेड़ा ने लाटा बूटा आगर आसोत असन बेड़ा ने बुनुन दूसर निको बेड़ा जोन थाने लाटा बूटा कम आसोत असन थाने हुनी ट्रेक्टर नहाले नागर ने बुनले पहिल लाटा बूटा बीती बेड़ा चो बीज दूसर निको बेड़ा ने जाय से जेचो लागुन हुन बेड़ा ने बले लाटा बूटा अखरुक सके। अई लागुन गोटोक बेड़ा ने बुनलो पाछे नागर के अच्छा ले साफ सफाई करतो राय ए जो पाछे दूसर अच्छा बेड़ा ने बुनतो राय ये गोट के बले ध्यान देतो राय कि भूई ने फसल चो बूटा चो संख्या ने कमी बले नी हो और आगर बले नी होतो राय बूटा कम होले लाटा बूटा आगर बाड़ुआ और बूटा जन होले पौधा चो बाढ़ती अच्छा होक नी सकुआ अई काजे बूटा चो संख्या भूई चो अनुसार बराबर होतो राय। असने बेड़ा मन ने फसल चक्र बले अपनातो राय फसल चक्र बले हमेशा धान नी बुनतो राय कोनी कोनी बरक दूसर फसल बुनुन देतो राय असन कर ले बले लाटा बूटा चो रोकथाम करुक लाय सकूं। लाटा बूटा चो रोकथाम काजे अकरस जोताई करतो राय अकरस जोताई कर ले गरम दिने घाम ने लाटा बूटा चो बीज मरे से संगे संगे ये बीज के चढ़ी चुड़ुम बले खास होत जेचो लागुन अखरस जोताई कर लो ने बेड़ा मन ने लाटा बूटा चो अखरतो के रोकथाम करुक लाय सकूं। असने बेड़ा मन ने पानी भरुन देतो राय बेड़ा ने पानी भरु रले भूई ने बल्ले लेहरा अमरुक नहीं सके जेचो लागुन लाटा बूटा मरुन जाऊआत अजिक दिन पाछे पानी के बेड़ा ले बाहर निस्काउन भूई सुकुक देतो राय असनु वाट दुई तीन हार कर ले बेड़ा ने लाटा बूटा मन नष्ट हो सोत। काश्तकार भाई बहन मन एबे सांगलो वाट के धरुन बेड़ा मन ने लाटा बूटा चो रोकथाम चो उपाय कर ले फसल चो उत्पादन नगद होय दे और फसल चो नगद उत्पादन होले आमदनी बले नगद होय दे।
1: अभी आप कृषि समय की बेड़ा खाड़ा चो गोट का पुनः प्रसारण सुन रहे थे। आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। दोपहर के 1:10 हुए हैं। प्रस्तुत है फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम श्रोता सुमन। पहला गीत हम सुनवा रहे हैं फिल्म कस्मे वादे से। आवाजें हैं किशोर कुमार और लता मंगेशकर की। गीत रचना है गुलशन बावरा की। संगीत है आरडी वर्मन का और इस गीत के फरमाइश करता है आप सभी श्रोता। दरियापुर भावली महाराष्ट्र से गजानन येले नवदीप येले शेरी वडनेर अकोला दामोदर अरुणा दामोदर ग्राम बुड़गहंस छत्तीसगढ़ से रामदुलारी प्रजापति राम शरण चंद्रेश कुमार चंद्रकला और शशिकांता प्रजापति गौरीनगर इंदौर से आनंद कुमार कामले रेखा कामले राखी पारस तपस्या और करिश्मा कामले इंदौर से लाल फतेह चंदानी लीला फतेह चंदानी संगीता सुनीता पिंकेश साक्षी मनन और तानिया बिहारी कॉलोनी लोनी से परवीन डोम सहफुद्दीन डोम कुमारी वली डोम कुमारी डब्लू डोम सरगुजा मैनपाट से सोनिया थापा सोनम थापा रेशमा थापा आदिपा थापा जेल रोड मथुरा से वसीम आसमा बेलदार अकरम आसमा उल्ला आसमा बेलदार तालुका बुरहानपुर ग्राम महोद मध्य प्रदेश से मुहत मध्य प्रदेश से तड़वी रीना तड़वी सनी बाबू रेजूबाई तड़वी परू मुबारक बारेकर मनोहर ठाकुर और तैमूर बारेकर भोकरी महाराष्ट्र से अरशद ताड़वी, आरिश अरसलान और यूनिस ताड़वी। जिला बुरहानपुर से ही हैं मुशर्रफ खां ताड़वी, जरीना मुबारक ताड़वी, परवेज बीटिया रोजमीन, तैमूर और समस्त परिवार। तेलीपारा बिलासपुर से रजन साहू, बेबी ईशानी साहू, छनुलाल श्रीवास और अनिता श्रीवास। सांकरा सोमनी राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से नारायण लाल, दिवेंद्र प्रताप साहू, मिलिंद कुमार साहू, कुलवंतीन साहू, नेहा देवी और टिकेश्वरी। फ्रेंड्स कॉलोनी करनाल से गुरविंदर सिंह पांधा, इंद्रजीत कौर, बेबी मनमीत, मनविंदर सिंह पांधा। घंटाघर चौक खंडवा से संजय पंचोलिया, प्रियंका पंचोलिया, गुनगुन, संप्रीत, हेमेंद्र और सन्मति। महाराष्ट्र से अंबादास शिंदे, संगीता शिंदे, अमोल अमृत और सुवर्णा। आइए सुनाते हैं आप सभी की फरमाइश का ये गीत।

फिल्म जानी दुश्मन से अभी आप ये गीत सुन रहे थे। आवाजें थी मोहम्मद रफी और आशा भोसले की। इस गीत के फरमाइश करता थे आप सभी श्रोता। आप हैं पांगरा शिंदेश, तहसील वसमत, जिला हिंगोली, महाराष्ट्र से। रामचंद्र धोंडीबा इंगोले, सिद्धांत इंगोले, टिंकू रामाबाई, सुरेंद्र मयूरी, सुरभि मंजूसा, गौतम नामदेव राव शिंदे पाटिल, मास्टर विलास शिंदे पाटिल और सुनील जबड़े। अशोकनगर वसमत हिंगोली महाराष्ट्र से दीपालू राज ठेके, पार्वती सखाराम ठोके, रोहित सोनू मोनू और परिवार। झुमरी तलैया से छकोली इंगोले देव, छोटू दादा इंगोले, पेंटर रामचंद्र और महेंद्र चौरसिया। इसी गीत की फरमाइश की थी आप सभी ने। आप हैं जामरून ता अर्धापुर से दुर्गादास जोशी, गंगाधर गजानन, संजय आशीष, पृथ्वीराज साध्वी और परभाणी, साथ ही साथ गणेश। भाटापारा दतरेंगी से द्वारिका प्रसाद वर्मा, किशोर कुमार वर्मा, दीपक कुमार वर्मा, झाविंद्र कुमार वर्मा। महादेवघाट अमलेश्वर से डोमन ठाकुर, सुमन ठाकुर, मिथिलेश ठाकुर, तारनी, सूरज, सुजला, ज्योति और रियांश ठाकुर। भाटापारा छत्तीसगढ़ से सोहन जोशी, अर्चना जोशी, हरमिंदर सिंह चावला, बानी चावला, लोकेश जोशी, पायल जोशी, वैदेही जोशी, हंसिका जोशी, अंकिता जोशी और कामठी नागपुर से कैलाश प्रसाद शर्मा, किरण शर्मा, आशीष कुमार शर्मा और अमृता शर्मा। दतरंगी से विश्राम यदु, पार्वती यदु, प्रतिमा रीना यदु, लक्ष्मीना यदु, दशरथ प्रसाद और मनोज कुमार। अगला गीत हम सुनवा रहे हैं आप सभी श्रोताओं की फरमाइश पर, जिसे हमने लिया है फिल्म अगर तुम ना होते। इस फिल्म से ये गीत है। इस फिल्म की फरमाइश करता है आप सभी श्रोता। आप हैं श्रीरामपुर भोकर से हरिराम बिडवे, शुभांगी, पूजा, अनिकेत, श्रावण, अनीता बिडवे। निवासा खोपटी से बंडू लोहार, पोपल घट, माया, शिवांश, चंद्रकला, देवाशीष और परिवार। इसी गीत को सुनना चाहे आप सभी ने। लक्षणपुर से सरोजनी रजक, सीमा रजक, कनक पल्लवी, रश्मि साहू और गीता साहू। हटरी चौक बिलाईगढ़ से खीखराम देवांगन, रेणु देवांगन, रजनी और पिंकी देवांगन। श्रृंगिरी पहाड़ से ग्राम बेलरगांव, मिथिलेश देवांगन, मधु देवांगन, हिमांशु और अंकित देवांगन। जसपुर उत्तराखंड से रियासत हुसैन, नाजमा बेगम, रियाज, रिफाकत, शमसीन, शमरीन परवीन, मोहम्मद रिहान और माहिरा नूर। पुणे से महेश, मितांशु और आदित्य। इचल करंजी महाराष्ट्र से ही है, वसंत जी हजारे और प्रमोद कुमार। सुनते हैं आप सभी की फरमाइश का फिल्म अगर तुम न होते से ये गीत।

0: किसान भाई बहन मन का जे नुआ उआ
1: स्वस्थ तन स्वस्थ मन जीवन का है अनमोल धन। कैसे रहें बीमारियों से सुरक्षित, कैसे करवाएं किसी स्वास्थ्यगत समस्या का उपचार, क्या है स्वस्थ रहने का आधार, जानिए बेहतर स्वास्थ्य के लिए विशेषज्ञों की सलाह। सुनिए आकाशवाणी रायपुर के प्राइमरी चैनल और छत्तीसगढ़ के अन्य आकाशवाणी केंद्रों से हर शनिवार सुबह 8:30 बजे डॉक्टर की सलाह।
2: जीएसटी काउंसिल ने बीमा पर लगने वाले 18% टैक्स को घटाकर जीरो कर दिया है। ऐसे में जीवन बीमा लेने वालों को अब सिर्फ इंश्योरेंस का प्रीमियम ही भरना होगा और इस पर कोई भी अतिरिक्त टैक्स नहीं देना होगा। ये हेल्थ इंश्योरेंस लेने वालों के लिए बड़ा फायदा है क्योंकि LIC को पहले से ही इनकम टैक्स में छूट मिली हुई है। वहीं अब GST भी हटने से बीमा लेना फायदे का सौदा होगा।

बढ़ते हैं अगले फरमाइश की ओर, जिसे हमसे सुनना चाहा है आप सभी श्रोताओं ने। फिल्म है खूबसूरत और इस फिल्म है खुदगर्ज और इस फिल्म का ये गीत सुनना चाहा है आप सभी श्रोताओं ने। आप हैं छिंदवाड़ा दरभा बस्तर से, रामघर कश्यप, रामधर कश्यप, सोनू राम बघेल, दुखुराम, मोतीराम और भीमा मंडावी, लोहंडीगुड़ा बस्तर से चंदन, हरीश, कमल और उदय, औरंगाबाद से प्रकाश बोरगांवकर, सुषमा प्रकाश, प्रजक्ता, प्रांजलि, सोहम बोरगांवकर, सदानंद बोरगांवकर, सुभाष और अंशुमन और ओवी, महाराष्ट्र हिंगोली से शाहजी बोड़खे, नंदा बोड़खे, हनुमान बोड़खे और उत्तम जाम रड़े, दरियापुर भावली महाराष्ट्र से गजानन नवदीप, शेरीवटनेर दामोदर और अरुणा, बलदेव दामोदर और अरुणा, एयरपोर्ट रोड वंदना नगर इंदौर से, मध्य प्रदेश से कुमारी वंदना मराठा, कुमारी देविका चौधरी, गणेश दादा, कार्तिक भाऊ मराठा, परी संजना, मालती चौधरी, स्वाति प्रयाग चौधरी और ललिता नारायण खर्चे, रामनगर रोड शांतिनगर इंदौर से कुमारी देविका चौधरी, कविता सजय वाणी, मनीष वाणी, ब्रोनो खर्चे, गणेश, कार्तिक, संजना, परी, ललिता नारायण और स्वाति प्रयाग चौधरी और मालती चौधरी। आइए सुनाते हैं आप सभी की फरमाइश का ये गीत।

कार्यक्रम में अगले गीत की फरमाइश करता है आप सभी, और आप सभी ने सुनना चाहा है ये गीत फिल्म अपने से। आवाजें हैं सोनू निगम, जयेश गांधी और जसपिंदर, बोल हैं अपने तो अपने। और इस गीत की फरमाइश करता है बलोदा अकलतरा से दिलहरण गौतम, अंजलि गौतम, आनंद पटेल, समृद्धि पटेल, रोडकेश्वर श्रोता संघ छत्रपति शाहूनगर हिंगोली से, रामचंद्र इंगोले, सिद्धांत, टिंकू, रामाबाई, मयूरी, सुरभि, मंजूषा और आप सभी परिवार। खंडवा मध्य प्रदेश से किसान श्रोता संघ जगन्नाथ पटेल, कमला पटेल, अंतिम, ज्योति, ललित, मनीषा, शुभम, देवी किशन, भावना, कनिका, आदित्य, मानस और मन पटेल। इसी गीत की फरमाइश करता है आप सभी। यादव मोहल्ला सनावद महाराष्ट्र से दिलीप मालाकर, योगेश, सुनीता और मुस्कान मालाकर। डोंगरगांव छत्तीसगढ़ से राष्ट्रपाल गजभिये, राधिका गजभिये, बेबी अनिष्का और तन्मय। सोमनाथ जलगांव सोमनाथ तालुका जिला जालना से डॉक्टर नामदेव भुतेकर, अभिषेक भुतेकर, गणेश, कार्तिक भुतेकर, अश्विनी जालगांव वैष्णवी, जगदाले, हर्षुल सवांगी, औरंगाबाद वैभव, गौरव लोखंडे, भाव सिंह पूरा औरंगाबाद, मेघराज युवराज कोलते, रिधोरा देवी रुद्र वकुलनणी और सभी परिवार।

फिल्म अपने का ये गीत आपने सुना सोनू निगम की आवाज में, संगीत था हिमेश रेशमिया का। इसी गीत के फरमाइश करता थे आप सभी श्रोता भी। आप हैं इंदौर से धनेश मटाई, राकेश, उमेश, सहजवानी, हनी, जिमनी, अमिता, दियाना और जियांश। बढ़ते हैं अगले गीत की ओर जिसके फरमाइश करता है आप सभी श्रोता। ये फिल्म है साजन चले ससुराल। आवाजें हैं कुमार शानू और अलका याग्निक की और गीत के फरमाइश करता है आप सभी। बुल्ढाणा इस्लामपुर महाराष्ट्र से सहदेव दामोदर, शशिकला कुमारी साधना और सुमेध कुमार दामोदर। इसी गीत को सुनना चाहते हैं आप सभी। सुंदरखेड़ राजमाता नगर बुल्ढाणा महाराष्ट्र से नरेंद्र नरवाड़े, ज्योति नरवाड़े, आकांक्षा और आकाश कुमार। सनावत से मोहम्मद सादिक, मुश्ताक, मोहम्मद साकीर, मोहम्मद अल कमा खत्री, मोहम्मद अल मश खत्री, रमेश गौड़, मोहम्मद शादाब खत्री। रायगढ़ से पुरुषोत्तम सिंह, उषा सिंह, ऋषभ सिंह, लीलू सिंह और रितु सिंह। झारखंड से अमित कुमार सिंह, प्रियंका सिंह, बेबी समृद्धि। बिहार से संजीव कुमार, पूजा सिंह और रवि आरती सिंह।

सुनते हैं फिल्म सनम तेरी कसम का ये गीत किशोर कुमार की आवाज में, जिसकी फरमाइश करता है छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा, करुणा वर्मा, फ्रांसी से राजकुमार ढुडीर, सरजीत सिंह, प्रमोद कुमार, हांसी शहर से राजू मिगलानी, बबीता और सुभाष योगी, वब्बू और डब्बू। इसी गीत की फरमाइश करता है सिमगा से रमेश कुमार यादव, माया यादव, रिंकू सन्नी, कोमल यादव। पुणे से पंकज वड़ोदे, आर्या प्रियंका, बीटी वड़ोदे, चंद्रप्रभा वड़ोदे। और बठिंडा से प्रेम सिंह जोड़ा, मनजीत कौर, करणवीर करण, दपिंदर वरिंदर और सिमरन, कुलदीप, एकम, दमन और अभिजांत।

श्रोता सुमन, अभी आप फरमाइशी फिल्मी गीतों का ये कार्यक्रम सुन रहे थे। आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। दोपहर के 2 बजने को हैं। कुछ ही देर में अंग्रेजी और हिंदी में समाचार हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। कृपया प्रतीक्षा करें।

0: Good afternoon. This is Akashvani and I am Valsa Williams with the Midday News. The headlines. India and Italy agree to further develop India-Middle East-Europe economic corridor for deepening economic relations. Government prohibits the use of cosmetic as injection by consumers, professionals and aesthetic clinics. Center issues health advisory for passengers arriving from or transiting through Ebola-affected countries. West Bengal government directs Vande Mataram compulsory as prayer song in all madrasas. Chief Minister C. Joseph Vijay-led cabinet in Tamil Nadu expanded to 32, including 4 women ministers. And in IPL cricket, Gujarat Titans to take on Chennai Super Kings in Ahmedabad this evening. India and Italy have agreed to further develop the India-Middle East-Europe Economic Corridor, IMEC, to strengthen trade, investment and supply chain resilience. In a joint statement, Prime Minister Narendra Modi and his Italian counterpart Giorgia Meloni reaffirmed their commitment to IMEC, recognizing its transformational potential in reshaping and promoting global trade, connectivity and prosperity. Appreciating the preliminary discussions around the project, they encouraged the first IMEC ministerial meeting to take concrete steps for advancing this initiative in 2026. In a joint press conference with the Prime Minister Narendra Modi in Rome, Italian Prime Minister Giorgia Meloni described IMEC as a major connectivity and economic corridor linking Europe, the Middle East and India with the potential to strengthen trade, investment and supply chain resilience. Ms. Meloni said, strengthening interconnectivity between the regions remains an important priority and added that both countries strongly support the development of the corridor. The two prime ministers also reaffirmed that innovation, science and technology are core drivers of the India-Italy partnership. Prime Minister Modi said, Italy is renowned worldwide for design and precision, and India's identity is that of a powerhouse of scale, talent and affordable innovation.
1: हमने हमारी भावी साझेदारी को और सशक्त बनाने के लिए विस्तृत रूप से चर्चा की भारत इटली जॉइंट स्ट्रेटेजिक एक्शन प्लान 2025 टू 2029 हमारी साझेदारी को एक प्रैक्टिकल और फ्यूचरिस्टिक ढांचा प्रदान करता है हम इस पर समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ रहे हैं हमारे साझा प्रयासों में द्विपक्षीय व्यापार 20 बिलियन यूरो के लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रहा है
0: The government has said that no cosmetic product is permitted to be used as an injection by consumers, professionals and aesthetic clinics. The Central Drugs Standard Control Organization, CDSCO, has said that cosmetics are only intended to be rubbed, poured, sprinkled or sprayed on the human body. It said the manufacture and import of cosmetics for sale and distribution are regulated under the provisions of the Cosmetics Rule 2020. CDSCO said the use of prohibited ingredients in cosmetic products, misleading claims on the label, use of cosmetics for treatment and the application of cosmetics through injection attract violations of the Act and rules. The Directorate General of Health Services has issued an advisory regarding Ebola disease for passengers arriving from or transitioning through affected countries. According to the advisory, travellers who have visited high-risk countries, including the Democratic Republic of Congo, Uganda and South Sudan, and are experiencing symptoms such as fever, headache, muscle pain, unexplained bleeding and vomiting, have been urged to seek immediate medical attention. It has also warned that passengers who have had direct contact with blood or body fluids of a suspected or confirmed Ebola patient must report immediately to the airport health officer or health desk before immigration clearance. Union Health Minister J.P. Nadda has said India has undertaken one of the world's largest screening and early detection efforts to eliminate tuberculosis under the National Tuberculosis Elimination Programme. Mr. Nadda said this while addressing an event on ministerial perspectives on lung health screening during the 79th session of the World Health Assembly in Geneva. The minister further informed that India has significantly scaled up modern diagnostics to detect TB and other lung diseases, highlighting the transformative potential of artificial intelligence, AI, in reshaping healthcare systems. Union Health Minister Mr. Jagat Prakash Nadda has said that while AI presents immense opportunities for advancing healthcare delivery, it must be shaped by sound regulation, rigorous research and ethical oversight.
2: India has recently launched the Strategy for Artificial Intelligence in Healthcare for India. The future of AI depends on our collective ability to build ethical and human-centric approach. India is known for pharmacy of the world for its leadership in generic medicines. India's commitment to global health partnership and cooperation was demonstrated during the COVID-19 pandemic through Vaccine Maitri initiatives under the India supplied 300 million vaccine doses to around 100 countries.
0: Union Road Transport and Highways Minister Nitin Gadkari today said the government aims to make the Indian automobile industry number one in the world. Addressing the AmTram's annual leadership summit in New Delhi, the minister highlighted that the country's automobile industry is the third largest in the world, surpassing Japan. He said the USA holds the first position, having the size of 79 lakh crore. China is second with 49 lakh crore, and now India has secured the third position at 22 lakh crore. Mr. Gadkari said India's annual automobile industry growth is at 30-40%.
3: The ministry total size of the automobile industry was at time was 14 lakh crore. Now the size of the automobile industry is 22 lakh crore. And now we have just surpassed Japan and our number is third. The first is USA having the size of 79 lakh crore. Second is China 49 lakh crore. And India is now 22 lakh crore. Our every year growth is 30-40%. Now our aim is to make Indian automobile industry number one in the world.
0: The minister added that the government is also working on alternative fuel and biofuel, ethanol, methanol, biodiesel, LNG, electric and hydrogen. In an effort to decongest examination centres for the Civil Services Preliminary Examination 2026, the Union Public Service Commission, UPSC, has introduced three new examinations. So the preliminary examination has increased from 80 to 83. According to UPSC, nearly 23,000 candidates have applied to these new centres, easing the rush at the adjoining centres for civil services examination. This is Akashvani giving you the news. For quick news updates round the clock, follow us on our X handle at AIR News Alerts. And for details of stories and more, log on to our website www.newsonair.gov.in and download News on AIR app. Welcome back to the Midday News. The West Bengal government has made the singing of Vande Mataram mandatory during morning assembly prayers in all madrasas across the state with immediate effect. The order has been issued by the Directorate of Madrasa Education. According to the notification, the directive will apply to government model madrasas, government aided madrasas, recognized unaided madrasas, as well as approved Shishu Shiksha Kendras and Madhyamik Shiksha Kendras functioning under the Minority Affairs and Madrasa Education Department. A report.
4: The move aims to bring uniformity in assembly practices across all educational institutions under the department. The order has been circulated to district magistrates, district inspectors of schools and the West Bengal Board of Madrasa Education for implementation. The development comes nearly a week after the state government made the singing of Vande Mataram compulsory in all state-run and aided schools. Heads of institutions were directed to ensure that all students participate in the national song before the commencement of classes. Meanwhile, the move also comes amid efforts by the union government to strengthen provisions related to respect for national symbols. The centre has proposed amendments to the Prevention of Insults to National Honour Act 1971, including making obstruction to the singing of Vande Mataram a punishable offence. Anuja Kumar for Akashwani News.
0: The repoll in the Paltta Assembly constituency is going on peacefully in West Bengal. Peaceful voting is being conducted in the Paltta Assembly constituency in South 24 Parganas district in the state today. Total 60.43% voting has been recorded till 1 p.m. After the withdrawal of TMC candidate Jahangir Khan from the contest, the main fight is among the BJP, Congress and CPIM. In Tamil Nadu, The Joseph Vijay-led government expanded its ministry today, paving the way for a coalition cabinet in the state. 23 new ministers, including two members from the Congress Party, were inducted into the cabinet. With the latest expansion, the cabinet strength has risen to 32, including Chief Minister C. Joseph Vijay. The Congress has now returned to the state cabinet after nearly six decades, with the National Party being represented in the Tamil Nadu ministry for the first time since 1967. The newly expanded cabinet also includes four women ministers. We have more from our correspondent.
4: The 10-day-old government led by Chief Minister Joseph Vijay has been on support given by the Congress, VCK, CPI, CPM, IUML and a part of the AIADMK. Earlier today, the newly inducted Congress ministers, accompanied by senior Congress leaders of the state, visited the Rajiv Gandhi Memorial at Sri Paramathur to pay their respects on his memorial day. The AIADMK faction supporting the government was not present at the expansion event today at Lok Bhavan. Joy, Akashwani reporting from Chennai.
0: The first session of the newly constituted Keralam Assembly commenced in Thiruvananthapuram today. Pro Tem Speaker G. Sudhakaran administered the oaths to the newly elected members. The election for the Speaker's post will be held tomorrow. The ruling UDF has nominated Thiruvanchur Radhakrishnan as its candidate for the post. The BJP, which has three members in the assembly, is expected to field B.B. Gopakumar as its candidate, while the opposition LDF is yet to announce its decision on the election. In Jharkhand, 25 CPI Maoist insurgents and two members of the extremist outfit JJMP surrendered before the state police at the headquarters in Dhurwa, Ranchi today. The surrendered ultras also laid down a large cache of arms and ammunition, including an LMG, INSAS and SLR rifles, a pistol, magazines and nearly 3,000 live cartridges. Police said eight of the surrendered Maoists carried a combined bounty of 33 lakh rupees and a total of 426 criminal cases were registered against them. Director General of Police Thadasar Mishra said the state government will ensure rehabilitation of the surrendered insurgents and address their demands under the surrender policy. India has called out Pakistan's long-tainted record of genocidal acts at the United Nations Security Council. Speaking at the annual UNSC open debate on protection of civilians in armed conflict yesterday, India's permanent representative to the UN, Ambassador Harish Parvathaneni, said Pakistan's inhuman conduct reflects its attempts over decades to externalize internal failures through acts of violence within and beyond its border.
5: It is ironic that Pakistan, with its long tainted record of genocidal acts, has chosen to refer to issues that are strictly internal to India. The United Nations Assistance Mission in Afghanistan has reported that in the first 3 months of 2026, 750 civilian deaths and injuries were documented in Afghanistan as a result of cross-border armed violence perpetrated by Pakistani military forces, most of which occurred due to airstrikes. It is hypocritical to espouse high principles of international law while targeting innocent civilians in the dark.
0: In IPL cricket, Gujarat Titans will take on Chennai Super Kings at the Narendra Modi Stadium in Ahmedabad this evening. The match is scheduled to begin at 7:30 p.m. Gujarat Titans have already secured a place in the playoffs, while Chennai Super Kings will be looking to strengthen their chances for the fourth spot in the points table. Meanwhile, Kolkata Knight Riders kept their playoff hopes alive with a four-wicket victory over Mumbai Indians at the Eden Gardens in Kolkata last night. The Intermeteorological Department, IMD, has issued a red colour warning for heat wave to severe heat wave conditions over Uttar Pradesh, Madhya Pradesh and Vidarbh till tomorrow. An orange colour warning for heat wave conditions has been issued over Delhi, Haryana and Chandigarh. Heat wave conditions are also expected over Punjab, Bihar, Chhattisgarh, Andhra Pradesh, Himachal Pradesh, Odisha, Rajasthan, Telangana and Uttarakhand today. And now before we end the bulletin, the headlines once again. India and Italy agree to further develop India-Middle East-Europe economic corridor for deepening economic relations. Government prohibits use of cosmetic as injection by consumers, professionals and aesthetic clinics. Centre issues health advisory for passengers arriving from or transiting through Ebola-affected countries. West Bengal government directs Vande Mataram compulsory as prayer song in all madrasas. Chief Minister C. Joseph Vijay-led cabinet in Tamil Nadu expanded to 32, including four women ministers. And in IPL cricket, Gujarat Titans to take on Chennai Super Kings in Ahmedabad this evening. And with that, we end the midday news.
6: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। भारत और इटली के बीच आर्थिक संबंधों को और मजबूत करने के लिए भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारे को और विकसित करने पर सहमति। सरकार ने उपभोक्ताओं, पेशेवरों और सौंदर्य बोध क्लिनिकों द्वारा किसी भी कॉस्मेटिक उत्पाद का प्रयोग इंजेक्शन के रूप में करने पर प्रतिबंध लगाया। केंद्र ने इबोला रोग से प्रभावित देशों से आने वाले और वहां से गुजरने वाले यात्रियों के लिए एक परामर्श जारी किया। पश्चिम बंगाल सरकार का सभी मदरसों में वंदे मातरम को प्रार्थना गीत के रूप में अनिवार्य करने का निर्देश। तमिलनाडु में मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय के नेतृत्व वाले मंत्रिमंडल का विस्तार। मंत्रिमंडल में अब 4 महिलाओं सहित कुल 33 सदस्य। और आईपीएल क्रिकेट में आज शाम गुजरात टाइटंस का मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स से। अब समाचार विस्तार से। भारत और इटली ने व्यापार, निवेश और आपूर्ति श्रृंखला की मजबूती के लिए भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारे को और विकसित करने पर सहमति जताई। एक संयुक्त बयान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारे पर सहयोग की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। दोनों नेताओं ने भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारे को एक प्रमुख संपर्क और आर्थिक गलियारा बताया जो यूरोपीय मध्य पूर्व और भारत को जोड़ता है, जिसमें व्यापार, निवेश और आपूर्ति श्रृंखला की मजबूती की क्षमता है। प्रधानमंत्री मोदी ने इस बात को दोहराया कि बातचीत और कूटनीति ही आगे बढ़ने का एकमात्र रास्ता है।
1: हमने हमारी भावी साझेदारी को और सशक्त बनाने के लिए विस्तृत रूप से चर्चा की। भारत इटली ज्वाइंट स्ट्रेटेजिक एक्शन प्लान 2025-2029 हमारी साझेदारी को एक प्रैक्टिकल और फ्यूचरिस्टिक ढांचा प्रदान करता है। हम इस पर समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। हमारे साझा प्रयासों में द्विपक्षीय व्यापार 20 बिलियन यूरो के लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रहा है।
6: इटली की प्रधानमंत्री ने कहा कि इन क्षेत्रों के बीच आपसी जुड़ाव को मजबूत करना एक महत्वपूर्ण प्राथमिकता बनी हुई है। उन्होंने कहा कि दोनों देश इस गलियारे के विकास का मजबूती से समर्थन करते हैं। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों की सफल यात्रा के बाद स्वदेश लौट आए हैं। श्री मोदी संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की यात्रा पर थे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को खाद्य और कृषि संगठन के एग्रीकोला मेडल से सम्मानित किए जाने पर बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सिंह ने कहा कि ये सम्मान खाद्य सुरक्षा को मजबूत करने, टिकाऊ कृषि को बढ़ावा देने और ग्रामीण विकास को गति देने में श्री मोदी के शानदार नेतृत्व को दर्शाता है। रक्षा मंत्री ने प्रधानमंत्री को रॉयल नॉर्वेजियन ऑर्डर ऑफ मेरिट के ग्रैंड क्रॉस और स्वीडन के रॉयल ऑर्डर ऑफ द पोलर स्टार से सम्मानित किए जाने पर भी बधाई दी। उन्होंने कहा कि ये सम्मान श्री मोदी के नेतृत्व में भारत के प्रति बढ़ते सम्मान और वैश्विक मंच पर बढ़ती प्रतिष्ठा को दर्शाते हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और दक्षिण कोरिया के देशभक्त और वयोवृद्ध मामलों के मंत्री क्वोन हुयुल ने आज सियोल के इमुनगक पार्क में भारतीय समर स्मारक का संयुक्त रूप से उद्घाटन किया। इस अवसर पर रक्षा मंत्री ने कोरियाई प्रायद्वीप पर शांति और मानवीय सहायता के प्रति भारत के योगदान की अमिट विरासत का उल्लेख किया।
7: यह स्मारक करेज का सिंबल है, यह स्मारक कंपैशन का सिंबल है, यह स्मारक सेक्रीफाइस का सिंबल है। यह स्मारक भारत और कोरिया की जनता के बीच सदियों की मित्रता का भी संदेश दे रहा है। जब कोरियन पेनिनसुला युद्ध की त्रासदी में घिर गया था, तब भारत ने ह्यूमैनिटी के प्रति अपना दायित्व बखूबी निभाया। शांति और सेवा के आदर्शों से प्रेरित होकर भारत ने अपनी 60 पैराफील्ड एम्बुलेंस यूनिट के माध्यम से इस बार में योगदान दिया।
6: भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में पाकिस्तान में वर्षों से जारी नरसंहार की निंदा की है। कल सशस्त्र संघर्ष में नागरिकों की सुरक्षा विषय पर आयोजित संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की वार्षिक खुली बैठक में भारत के स्थायी राजदूत हरीश पर्वत नैनी ने यह बात कही। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान का अमानवीय आचरण दशकों से अपनी आंतरिक विफलताओं को हिंसा के माध्यम से छिपाने के प्रयासों को दर्शाता है।
5: It is ironic that Pakistan with its long time.
8: ये विडंबना ही है कि पाकिस्तान ऐसे मुद्दों का जिक्र कर रहा है जो पूरी तरह से भारत के आंतरिक मामले हैं। अफगानिस्तान में संयुक्त राष्ट्र सहायता मिशन ने बताया है कि 2026 के पहले तीन महीने में अफगानिस्तान में 750 नागरिकों की मौतों के मामले दर्ज किए गए। एक तरफ अंतर्राष्ट्रीय कानून के ऊंचे सिद्धांतों की वकालत करना और दूसरी तरफ बेगुनाह नागरिकों को निशाना बनाना, ये सरासर दोहरा मानदंड है।
5: टारगेटिंग इनोसेंट सिविलियंस।
6: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। सरकार ने कहा है कि उपभोक्ताओं, पेशेवरों और सौंदर्य बोध क्लिनिकों द्वारा किसी भी कॉस्मेटिक उत्पाद का प्रयोग इंजेक्शन के रूप में करने की अनुमति नहीं है। केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन ने कहा कि कॉस्मेटिक्स का प्रयोग केवल मानव शरीर पर लगाने, छिड़कने और स्प्रे करने के लिए किया जाना चाहिए। इन उत्पादों में प्रतिबंधित सामग्री का इस्तेमाल, लेबल पर गुमराह करने वाले दावे, इलाज के लिए कॉस्मेटिक्स का इस्तेमाल और इंजेक्शन के द्वारा कॉस्मेटिक्स का प्रयोग अधिनियम और नियमों का उल्लंघन माना जाएगा। स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय ने इबोला रोग से प्रभावित देशों से आने वाले और वहां से गुजरने वाले यात्रियों के लिए एक परामर्श जारी किया है। इसके अनुसार कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, युगांडा और दक्षिण सूडान सहित प्रभावित देशों की यात्रा कर चुके यात्रियों को बुखार, सिरदर्द, मांसपेशियों में दर्द, बिना कारण रक्तस्राव और उल्टी जैसे लक्षण होने पर तुरंत चिकित्सा सहायता लेने का आग्रह किया गया है। अधिकारियों ने कहा कि आगमन के 21 दिनों के अंदर ऐसे लक्षण नजर आने पर किसी भी यात्री को तुरंत चिकित्सा सहायता लेनी चाहिए और स्वास्थ्य अधिकारियों को अपने यात्रा इतिहास के बारे में सूचित करना चाहिए। स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने स्वास्थ्य सेवा प्रणालियों को नया रूप देने में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की क्षमता का उल्लेख करते हुए कहा कि जहां एआई स्वास्थ्य सेवा पहुंचाने में अपार अवसर प्रदान करता है, वहीं इसे ठोस नियमों, गहन शोध और नैतिक निगरानी द्वारा सही दिशा दी जानी चाहिए। जिनेवा में विश्व स्वास्थ्य सभा के दौरान एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्री नड्डा ने ये बात कही।
2: India has recently launched.
9: भारत ने हाल ही में स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए एक रणनीति शुरू की है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भविष्य एक नैतिक और मानव केंद्रित दृष्टिकोण विकसित करने की हमारी सामूहिक क्षमता पर निर्भर करता है।

0: सामान्य दवाओं के क्षेत्र में अपने नेतृत्व के कारण भारत को दुनिया की फार्मेसी के रूप में जाना जाता है।
1: इट्स लीडरशिप इन जेनरिक मेडिसिन।
2: विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने आज नई दिल्ली में एक समारोह में उम्मीद नेटवर्क राष्ट्र को समर्पित किया। ये आनुवांशिक विकारों के प्रबंधन की अनूठी विधियां हैं। उम्मीद आनुवांशिक विकारों से निपटने के लिए जैव प्रौद्योगिकी विभाग के नेतृत्व में शुरू की गई एक राष्ट्रीय पहल है। पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य के सभी मदरसों में सुबह की प्रार्थना सभा के दौरान वंदे मातरम गाना तत्काल प्रभाव से अनिवार्य कर दिया है। ये आदेश मदरसा शिक्षा निदेशालय द्वारा जारी किया गया है। अधिसूचना के अनुसार ये निर्देश सरकारी मॉडल मदरसों, सरकारी सहायता प्राप्त मदरसों, मान्यता प्राप्त गैर सहायता प्राप्त मदरसों, साथ ही अल्पसंख्यक मामले और मदरसा शिक्षा विभाग के तहत संचालित अनुमोदित शिशु शिक्षा केन्द्रों और माध्यमिक शिक्षा केन्द्रों पर लागू होगा। अधिकारियों ने बताया कि इस कदम का उद्देश्य विभाग के अंतर्गत आने वाले सभी शैक्षणिक संस्थानों में प्रार्थना सभा की प्रक्रियाओं में एक रूपता लाना है। इस आदेश को लागू करने के लिए जिला मजिस्ट्रेटों, स्कूल के जिला निरीक्षकों और पश्चिम बंगाल मदरसा शिक्षा बोर्ड को भेजा गया है। पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले में फलता विधानसभा सीट के लिए पुनर्मतदान शांतिपूर्ण ढंग से जारी है।
0: पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले के फालता विधानसभा सीट पर आज शांतिपूर्ण मतदान हो रहा है। दोपहर 1 बजे तक कुल 60.43% मतदान दर्ज किया गया है। तृणमूल कांग्रेस उम्मीदवार जहांगीर खान के चुनावी मैदान से हटने के बाद अब मुकाबला भाजपा, कांग्रेस और मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के बीच है। कोलकाता से कल्याण लाहा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से शिवांग मिश्रा।
2: तमिलनाडु में जोसेफ विजय के नेतृत्व वाली सरकार ने आज अपने मंत्रिमंडल का विस्तार किया। मंत्रिमंडल में 23 नए मंत्रियों को शामिल किया गया। इनमें कांग्रेस पार्टी के 2 सदस्य भी शामिल हैं। इस विस्तार के साथ मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय को मिलाकर मंत्रिमंडल की कुल संख्या बढ़कर 32 हो गई है। इस नए विस्तारित मंत्रिमंडल में 4 महिला मंत्री भी शामिल हैं। आज सुबह लोकभवन में आयोजित एक समारोह में राज्यपाल विश्वनाथ आर्लेकर ने नए मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई।
3: मुख्यमंत्री जोसेफ विजय की नेतृत्व वाली 10 दिन पुरानी सरकार को कांग्रेस, वीसीके, सीपीआई, सीपीएम, आईयूएमएल और एआईएडीएमके के कुछ विधायकों का समर्थन मिला है। इससे पहले आज कैबिनेट में शामिल कांग्रेस के सदस्यों ने वरिष्ठ नेताओं के साथ श्री पेरुम्बुदूर में पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी स्मारक का दौरा कर उनकी पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित की। वहीं सरकार का समर्थन करने वाले एआईएडीएमके ने आज लोकभवन में हुए मंत्रिमंडल विस्तार कार्यक्रम में हिस्सा नहीं लिया। चेन्नई से जॉय की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मनोज।
2: 16वीं असम विधानसभा का पहला सत्र संवैधानिक परंपरा और भाषाई समावेशिता पर जोर देने के साथ आज शुरू हुआ। अस्थायी अध्यक्ष चंद्रमोहन पटवारी ने सदन की अध्यक्षता की तथा नव निर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाई। मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा ने सबसे पहले शपथ ली। इसके बाद मंत्रिमंडल के मंत्री अजंता नियोग, रामेश्वर तेली, चरण बोरो और अतुल बोरा ने शपथ ली। नवगठित केरलम विधानसभा का पहला सत्र आज तिरुवनंतपुरम में शुरू हुआ। अस्थायी अध्यक्ष जी सुधाकरन ने नव निर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाई। अध्यक्ष पद के लिए चुनाव कल होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित की है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। आईपीएल क्रिकेट में आज गुजरात टाइटंस का मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स से होगा। ये मैच अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में शाम 7:30 बजे से शुरू होगा। गुजरात टाइटंस ने पहले ही प्लेऑफ में अपनी जगह पक्की कर ली है, जबकि चेन्नई सुपर किंग्स अंक तालिका में चौथे स्थान के लिए अपनी संभावनाओं को मजबूत करने की कोशिश करेगी। आज अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस है। ये दिवस संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन द्वारा मनाया जाता है। इस वर्ष का विषय है चाय की उपयोगिता को बनाए रखना और समुदायों का समर्थन करना। इस दिवस का उद्देश्य मेहनती चाय श्रमिकों को उनका हक दिलाना और उनके जीवन को बेहतर बनाना है। एक रिपोर्ट।
4: ठीक है, आ गए हो तो चाय पी के लौट जाते हैं।
5: चाय, ये चाय आज अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस है। भारत के हर घर की रसोई से लेकर नुक्कड़ की टपरी तक

0: चाय हमारी रग रग में बसती है। तभी तो किसी शायर ने क्या खूब लिखा है, तमाम शिकवे गिले भुला देती है, ये चाय है जनाब मुर्दों को भी जगा देती है। रिश्तों में जब भी थोड़ी कड़वाहट आने लगे, बस एक कप चाय महफिलें जमा देती है। चाहे वो सिरदर्द को मिनटों में गायब करने वाली कड़क मसाला चाय हो, या फिर आज के फिटनेस फ्रीक युवाओं की पहली पसंद एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर जायकेदार ग्रीन टी, असम के हरे भरे मैदानों से लेकर दार्जिलिंग और नीलगिरी की खूबसूरत पहाड़ियों तक लाखों चाय श्रमिक दिन रात कड़ी धूप और बारिश में पसीना बहाते हैं, तब जाकर चाय की ये पत्तियां हमारी रसोई तक पहुंचती हैं। संस्कार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मीनाक्षी।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत आध्यात्मिक साधना और उपासना के साथ साथ साहस, शक्ति और जन कल्याण की पवित्र भूमि रहा है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में संस्कृत उद्धरण साझा करते हुए श्री मोदी ने कामना की कि महान विरासत और प्राचीन संस्कृति की ये पवित्र भूमि सदैव सभी को सुख और समृद्धि से परिपूर्ण रखे। मौसम विभाग ने कल तक उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और विदर्भ में भीषण लू का रेड अलर्ट जारी किया है। दिल्ली, हरियाणा और चंडीगढ़ में लू की स्थिति के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। आज पंजाब, बिहार, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, ओडिशा, राजस्थान, तेलंगाना और उत्तराखंड में भी लू की संभावना है। इस बीच कल तक ओडिशा और उत्तर प्रदेश में रात के समय मौसम गर्म रह सकता है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत और इटली के बीच आर्थिक संबंधों को और मजबूत करने के लिए भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारे को और विकसित करने पर सहमति। सरकार ने उपभोक्ताओं, पेशेवरों और सौंदर्य बोध क्लिनिकों द्वारा किसी भी कॉस्मेटिक उत्पाद का प्रयोग इंजेक्शन के रूप में करने पर प्रतिबंध लगाया। केंद्र ने इबोला रोग से प्रभावित देशों से आने वाले और वहां से गुजरने वाले यात्रियों के लिए एक परामर्श जारी किया। पश्चिम बंगाल सरकार का सभी मदरसों में वंदे मातरम को प्रार्थना गीत के रूप में अनिवार्य करने का निर्देश। तमिलनाडु में मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय के नेतृत्व वाले मंत्रिमंडल का विस्तार, अब मंत्रिमंडल में 4 महिलाओं सहित कुल 33 सदस्य। और आईपीएल क्रिकेट में आज शाम गुजरात टाइटंस का मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स से। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। दोपहर के 2:30 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम कला आओ कलाकार। दा, दा, दा, दा, दा, दा, दा, दा।

0: जुहार दादा दीदी मन जुहार। हाँ तो दादा दीदी मन, रोजे दिन आसन आमी हुनी समया ने ज्ञान ध्यान और गीत गोविंद के धरुण बाती अमरू से अले ते भी मैं मूर करे से इची संगे कला और कलाकार सुनतो सपाए गांव करिया दादा दीदी सियान सजन और संगजोहरिया मन के मैं सेवती करे से जुहार। हाँ तो दादा दीदी मन जुहार भेट तो होलू मानता नामी रोजे दिन आसन नंगत गोट बात मन के करूँ से हुसनी आजी आमी लोक कलाकार मंचो कहानी चो बारे ने गोट बात करूँ दे आमचो भारत देश अलगे अलगे संस्कृति और परंपरा चो देश है ए थान चो लोक कला और लोक कलाकार आमचो संस्कृति चो विरासत चो महत्वपूर्ण हिस्सा है। लोक कलाकार हुनमन आज जोन आप लोग पारंपरिक कला संगीत नाचा चित्रकला और हस्तशिल्प चो जरिया ले समाज चो संस्कृति और परंपरा के जीवंत संघास होत। ये कलाकार मंचो कला सोजे मनोरंजन चो नहीं आए बल्कि समाज चो भावना इतिहास और जीवन शैली के दखावत। लोक कलाकार मन कौन रहे से लोक कलाकार हुन कलाकार आज जोन मन लोक गीत के गाय सोत लोक नाचा कर सोत पारंपरिक चित्रकारी कर सोत हस्तशिल्प और शिल्प कला जो काम कर सोत एमन आप लोग कला के पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ाए सोत पहल खुद सीख सोत फिर पाछे आप लोग पीला जिला के सिखाए सोत। लोक कलाकार मन चो जीवना सुंदर और सरल रहे से कोनी कोनी लोक कलाकार मन गाँव और आदिवासी क्षेत्र मन ने रह सोत ये आप लोग जीवना के साधारण तरीका ले जिये सोत और आप लोग कला के जीवन संगाए सोत। कई कलाकार मन आर्थिक रूप ले परेशानी होलो ने बले आप लोग परंपरा के निशानोत ए मन का जे कला सोजे काम नहीं आए बल्कि हुन मंचो पहचान और संस्कृति आए। लोक कलाकार मंचो कई कला मन आसे जसन की लोक संगीत भारत चो हर राज्य चो आप लोग संगीत आसे लोक गायक मन पारंपरिक गीत चो जरिया ले लोक मंचो मनोरंजन कर सोत। लोक नाचा तिहार नहीं तो कई उत्सव होलो ने कर सो जसन की गरबा नाचा भांगड़ा कर्मा नाचा गोडी नाचा और कई लोक नाचा मन आसे। हाँ तो दादा दीदी मन असनी गुड बात होते रह दे असनी जहाला आसे ये जहाला के सुनो।
1: एक मजबूत घर बिल्कुल उस पिता की तरह होता है जो हर मौसम सह कर भी घर की नींव को कभी हिलने नहीं देता।
2: आपके घर के लिए भरोसे का दूसरा नाम चेटिनाड सीमेंट का मैक्सक्रीट सीमेंट 64 सालों की बुनियाद के साथ चेटिनाड सीमेंट द परफेक्ट कंक्रीट चॉइस।
3: क्या बात है उमेश, आजकल खूब छाए हो अखबार में नई नई रिपोर्टिंग के साथ।
4: हाँ यार, पत्रकार जो हूँ।
3: तो अब अगली रिपोर्टिंग किस पर कर रहे हो?
4: सुधीर, मुझे एक ऐसी 11 साल की लड़की के बारे में पता चला है जिससे एक परिवार वाले घर का सारा काम करवाते हैं और ऊपर से उस पर ज्यादती करते हैं। उसी पर एक स्टोरी बना रहा हूँ।
3: उमेश, स्टोरी बनाते समय इस बात का ध्यान रखना कि पीड़ित बालिका का नाम पता फोटो या स्कूल का पता या ऐसी कोई भी जानकारी सामने न आए जिससे उसकी पहचान होती हो।
4: क्यों?
3: क्योंकि ऐसा करना बाल न्याय तथा बच्चों की देखभाल और उनके संरक्षण संबंधी संवैधानिक अधिनियम 21A का उल्लंघन है और इस बात का ध्यान हमारे सभी प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकारों को भी रखना है।
5: बाल अधिकार हनन से पीड़ित बच्चों की पहचान उजागर करने वाली जानकारी का प्रकाशन या प्रसारण न करें क्योंकि इससे पीड़ित बच्चों के सामाजिक और मानसिक स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ सकता है।
0: हाँ तो दादा दीदी मन कितरो नंगत गोट मन के सुन लू और आमी गोट बात करते रहो लोक कलाकार मंचो बारे ने। लोक चित्रकला ने कलाकार मन पारंपरिक चित्र के बनाए सो जैसन की मधुबनी कला वारली कला पिथोरा कला और कई कला मंचो चित्रकारी चो जरिया ले पारंपरिक संस्कृति बनु रहे से। हस्तशिल्प कला ने माटी बांस दारू और धातु ले नगद चीज मन के बनाए सोत ये बले लोक कला चो हिस्सा आए। समाज लोक कलाकार मन का जे योगदान दे से जेचो ले संस्कृति सुरक्षित रहे से लोग मन के आप लोग परंपरा ले जोड़े से देश चो पहचान बढ़े से लोक कलाकार मन चो कला भारत चो सांस्कृतिक विविधता के दिखाए से। आधुनिक समय ने लोक कलाकार मन के सोशल मीडिया इंटरनेट चो जरिया ले इमन के नुआ पहचान मिले से इमन आप लोग गीत नाचा और कई कला मन के लोग मन लगे अमराए सोत। सरकार और कई संस्था मन लोक कला कार मन के प्रोत्साहन दे से बस्तर चो लोक कलाकार ने बस्तर आप लोग समृद्ध लोक संस्कृति काजे प्रसिद्ध से बस्तर चो कला ने ढोकरा कला बांस शिल्प लोक नाचा पारंपरिक संगीत और कई कला मन काजे प्रसिद्ध से ये लोक कलाकार मन बस्तर चो संस्कृति के देश विदेश ने पहचान दिलाला से लोक कलाकार मन अमचो संस्कृति चो सच्चा रक्षकात इमन आप लोग कला चो जरिया ले समाज के जोड़सोत और परंपरा के जीवंत सगाए सोत आमके हुनमन चो कला चो सम्मान करतो राय और प्रोत्साहित करतो राय तेबे हुनमन और आगे बढ़ती कर दे। हाँ तो दादा दीदी मन कितनो नंगत गोट मन के सुन लू और नंगत गोट सुन लो ने खिनिक गीत गुमी सुनुक भवाए तो असनी गीता से ये गीत कुरिया मनात राजेंद्र कश्यप और हुनमन चो संगवारी अले तेबे मन चो गीत के सुनू।

0: क्षेत्र ने रतो वो वारली जनजाति आत। वारली कला आपलो सरल रेखा प्राकृतिक रंग और गांवचो जीवनाचो चित्रण काजे प्रसिद्ध हासे। वारली कलाचो इतिहास खूबे पुराना मानुआत। ये कला सबले पहल घर चो भीती उपरे बनाते रहोत। गांव चो तिहार बिया और विशेष अवसर ने बायले मन ये कला के बनाते रहोत। मांतर एबे समया ने कलाकार मन कागज कपड़ा और केनवास ने ये चित्र के बनाए सोत। वारली कला चो विशेषता ने सरल आकृति मन के काम ने आंसो, जसन की गोला बनातोर त्रिकोण डब्बा बनातोर असन आकृति के काम ने आंसोत। प्रकृति और गांव चो जीवना के चित्र चो जरिया ले दखाए सो, जसन की रुख राई पशु जनावर चिरई बेड़ा नाचा बिया और कई चीज मन चो जरिया ले दखाए सोत। प्राकृतिक रंग के ये कला ने काम ने आंसोत। पहली ये कला ने माटी चावल चो घोल प्राकृतिक रंगले बनाते रहोत। 15 रंगले चित्रकारी बनावात। वारली कला ने लाल और भूरा रंग चो उपरे 15 रंगले चित्रकारी बनावात। हाँ तो दादा दीदी मन असनी गुड़ बात होते रह दे, असनी जहाला आसे ये जहाला के सुनू।
1: इत बदले मत्तांक अच्छा मानेडा इलाज चुडून सस्ता आता सेंगेन वेटरनरी सर्जिकल जाकी और वेंट सामान किन मोलवेंट कम मत्तांक जानवर किन इलाज तगवेंट राहत दरकना दुमीद मिंदे यू पूना मोलते ग्राहक लोर्क और व्यापारी लोर्क फायदा दरकिता। GST तक कोंडे पूनाव मोला 22 सितंबर 2025 तीना लागू आयना मिंदे।
2: किसान भाई बहन मन का जे नुआ उवाट एदाए रोजे शनिवार के सांझ बेरा 7:30 ले 8 तक सुना फोन इन किसान वाणी। यथा कृषि महकमा चो विशेषज्ञ बल्लो ने खोजाकारी दादा दीदी दे दे आपन मन चो खेती कमाने ले जुड़ लो सपाय समस्या चो समाधान। बीज ले धरून हाट बाजार तक हर सवाल चो जवाब सीधा आपन मन के मिरे दे। और हाँ, ये कार्यक्रम जो रिकॉर्डिंग होए से रोजे मंगलवार अड़ौ पहार 3:30 ले 4 तक तो आपन मन सपाय सुना और आप लो सवाल सीधा आम के फोन ने सांगा। आम चो फोन नंबर आय 07782226666। फोन इन किसान वाणी आपन मन चो सवाल आपन मंचो कहानी खेती बाड़ी चो जुबानी आकाशवाणी जगदलपुर ने।
3: GST चो दर के कम करलो ने सोझे मनुख जीव चो इलाज खंडिक सस्ता नहीं होली से बल्कि जानवर मंचो इलाज बोले सस्ता हो तो भरसा आसे। GST ले वेटनरी सर्जिकल चो सामान सस्ता होली से नुआ कीमत ले सामान बनातो लोग और घेंतो लोग दोनों के लाभ मिरे दे। ये नुआ GST दर 22 सितंबर 2025 ले लागू हो दे।
0: हाँ तो दादा दीदी मन नंगत गोट मन के सुन लू और आमी गोट बात करते रहूं वारली कलाकार चो बारे ने। वारली नाचा चित्र ने लोग मन एक दूसरा चो हाथ धरून गोल बनान बाती नाचा कर तो चित्र के दखाए सोत। ये हुनमन चो एकता और सामूहिक जीवना के दखाए से। वारली कलाकार लोक संस्कृति चो पहचानात, आदिवासी जीवना चो चित्रण आय, पारंपरिक कला चो संरक्षण आय, जोन पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़े से विश्व स्तर ने प्रसिद्ध लोक कला आय। आधुनिक समय ने वारली कला कपड़ा भित्ति सजावट हस्तशिल्प पेंटिंग साज सज्जा ये सपाय ने उपयोग होए से जेचो ले कलाकार मन के रोजगार और पहचान मिरे से। वारली कलाकार भारतीय आदिवासी संस्कृति चो सुंदर अभिव्यक्ति आय। ये कला सरल प्रकृति मया और सामूहिक जीवना चो संदेश दे से। आम के ये पारंपरिक कला चो सम्मान और संरक्षण करतो जरूरी है। वारली कलाकार आदिवासी जीवना और प्रकृति चो सुंदर चित्रण है। वारली कलाकार मंचो जीवना सामान्य और सरल जीवना के जीवसोत। एमन गांव और आदिवासी क्षेत्र मन ने रहन करी आपलो पारंपरिक कला के पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ाए सोत। ये कला कुनी स्कूल नहीं बल्कि परिवार और समाज ले सीखुक मिरुआ। पिला मन बड़े लोग के दखून करी धीरे धीरे ये कला के सीखुआत। प्रसिद्ध वारली कलाकार जिव्या सोम मसे ये मन वारली कला के अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाला। एमन चो कला ने आदिवासी जीवना और प्रकृति चो सुंदर चित्रण दखुक मिरुआ। हाँ तो दादा दीदी मन कितरो नंगत गोट मन के सुन लू और नंगत गोट सुन लू ने गीत गोमी सुनुक भवाए तो असनी मचो मोडरा ने गीत आसे जोन गीत कुरिया आज बलवीर सेकक छो और हुन मंचो संगवारी अले तेबे मंचो गीत के सुनू।

हाँ तो दादा दीदी मन रससिया गीत के सुन लू। गीत असर नाय कि मानु चो जूना ने कितरी दुख परेशानी रलो ने बले गीत गोविंद सुन लो ने मन हरी खून जवाए और मन हरी खुलो ने और गीत सुनुक भवाए। तो दादा दीदी मन असनी और गीता से ये गीत कुरिया मनात गेल मनी देवी और हनुमान जो संगवारी अले तेबे ये गीत के सुनू।

कला और कलाकार। अभी आप ये कार्यक्रम सुन रहे थे। मीडियम वेव 396.82 मीटर यानी 756 किलोहर्ट्ज़, एफएम बैंड 100.1 मेगाहर्ट्ज़ और न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। दोपहर के 3 बजने को हैं। हमारी ये सभा यहाँ समाप्त होती है। सांध्यकालीन सभा में आपकी सेवा में पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए दीजिए अनुमति। एफएम बैंड पर आप विविध भारती के कार्यक्रम सुन सकेंगे।

0: मीडियम वेव 396.82 मीटर यानी 756 किलोहर्ट्ज़, एफएम बैंड 100.1 मेगाहर्ट्ज़ और न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। शाम के 4 बजे हैं। अगला कार्यक्रम हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले कर रहे हैं।
1: ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है हमारा विशेष कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स।

0: सलाम है वीर सैनिकों को, हमारे उनके कर्तव्य अदम्य साहस और देश के प्रति उनके जांबाज जज्बे को, उनके बलिदान को नमन है। संदेश टू सोल्जर्स, हमारे शूर वीरों को आकाशवाणी रेनबो की तरफ से प्यार भरा सलाम और पैगाम है दिल से दिल तक। शाहिद आपके साथ 102.6 देश के नंबर 1 रेडियो आपके अपने रेनबो पर। और आज के संदेश टू सोल्जर्स में हमारे स्पेशल गेस्ट एक ऐसे जांबाज सोल्जर हैं जिन्होंने आतंक के ऐसे जहरीले नाग का सर कुचला था जिसे देश कभी नहीं भुला सकता। देश के दूसरे सबसे बड़े डिफेंस गैलेंट्री मेडल कीर्ति चक्र से सम्मानित, प्रेसिडेंट पुलिस मेडल फॉर डिस्टिंग्विश्ड सर्विस, पुलिस मेडल फॉर मेरिटोरियस सर्विस, अति उत्कृष्ट सेवा पदक और दूसरे कई अवार्ड से नवाजे जा चुके, आतंकियों के से जानलेवा मुठभेड़ में शरीर पर एक या दो नहीं 7 गोलियां खाकर भी डटे रहने वाले फॉर्मर डिप्यूटी इंस्पेक्टर जनरल बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स श्री नरेंद्र नाथ धर दुबे। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका संदेश टू सोल्जर्स आकाशवाणी रेनबो पर।
1: बहुत बहुत शुक्रिया शायद जी, बहुत अच्छा लग रहा।
0: सर, बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे स्टूडियो में आए हैं और आज का हम ये प्रोग्राम, मुझे उम्मीद है कि बहुत ही जोश भरा होने वाला है, क्योंकि आपका जो एक्सपीरियंस और आपकी जो सबसे खासियत, जो एक ऑपरेशन था जिस पर एक बॉलीवुड मूवी भी बनी है, उस पर हम करेंगे बात। तो आप बन रही है हमारे साथ संदेश टू सोल्जर्स में, यह है देश का नंबर 1 रेडियो आपका अपना रेनबो दिल से दिल तक।

0: संदेश टू सोल्जर्स में एक बार फिर स्वागत है हमारे सभी लिसनर्स का। देश भर में जो हमें सुन रहे हैं और देश के बाहर भी, आप हमारी मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR के माध्यम से दुनिया भर में जुड़े हुए हैं। और संदेश टू सोल्जर्स में आज के हमारे जो स्पेशल गेस्ट हैं वो कोई मामूली शख्स नहीं है। फॉर्मर DIG BSF बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स श्री नरेंद्र नाथ धर दुबे। सर एक बार फिर से मैं स्वागत करना चाहूंगा आपका संदेश टू सोल्जर्स आकाशवाणी रेनबो पर।
1: बहुत बहुत शुक्रिया शायद जी, थैंक यू सो मच।
0: तो श्री NN दुबे हमारे साथ हैं और मैंने जैसे आपको बताया कि कीर्ति चक्र से सम्मानित हैं अपने असाधारण वीरता के लिए, और उसके अलावा प्रेसिडेंट पुलिस मेडल फॉर डिस्टिंग्विश्ड सर्विस, पुलिस मेडल फॉर मेरिटोरियस सर्विस, अति उत्कृष्ट सेवा पदक और दूसरे कई अवार्ड से नवाजे जा चुके हैं। और सर यहां पर जो खास बात जो मुझे बार बार मतलब थोड़ा परेशान भी कर रही है और थोड़ा मैं एक्साइटेड भी हूं ये जानने के लिए, आप साक्षात मेरे सामने बैठे हुए हैं तो हम अक्सर मूवीज में जो देखते हैं सर वो सिचुएशंस जो दिखाई जाती हैं जैसे बैटल फील्ड की, वॉर सिचुएशंस की, या जो मिलिटेंसी पर जिस तरीके से जो हमारे सोल्जर्स होते हैं वो मुकाबला करते हैं, और आपकी लाइफ पर तो मूवी भी बनी है ग्राउंड जीरो। तो वो सिचुएशन वहां पर जो हुई आपके साथ उस ऑपरेशन में जिसमें एक बहुत ही खतरनाक आतंकवादी गाजी बाबा को आपने मार गिराया, सर वो सिचुएशन हम जानना चाहते हैं, वो एक्सपीरियंस आप शेयर कीजिए।
1: कश्मीर में जब आतंकवाद शुरू हुआ तो आप देख सकते हैं कि शुरुआती सालों में बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का एक बड़ा अहम रोल रहा है, और ये एक ऐसी फोर्स है जो जिसका श्रीनगर इसके पाम टॉप पे था, यानी श्रीनगर शहर की मिलिटेंसी को हैंडल करना ये बड़े गर्व की बात थी, बड़े एक अपॉर्चुनिटी और एक टास्क BSF को दिया गया था। और BSF उस समय ऑलरेडी 13 से 14 साल पंजाब टेररिज्म को हैंडल करके निकली थी, एक प्रूवन फोर्स और एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो बॉर्डर गार्डिंग के साथ साथ उसने इंटरनल सिक्योरिटी में उसका किरदार बहुत ही लाजवाब रहा है
0: जी।
1: तो शुरुआती दिनों के आतंकवाद के इस इतने बड़े बवाल में शुरू में तो किसी को समझ ही नहीं आ रहा था कि बेसिकली हो क्या रहा है यहाँ
0: जी,
1: और उन चीजों को एक अज्ञानता से हैंडल करना जिसका कि कोई पुराना बैकग्राउंड नहीं है, किसी टेररिस्ट की पुरानी हिस्ट्री नहीं है अपने पास, उसके अटैक करने का तरीका नहीं पता है, उसमें तपी और निकली हुई फोर्स थी। और मुझको पहला मौका 1994 में मिला था जब मैं साउथ कश्मीर के अनंतनाग पुलवामा में BSF के बैटालियन को लेकर डिप्लॉय हुआ था, और उन 3 सालों ने मुझको बहुत तपाया और मैं कश्मीर, साउथ कश्मीर की मिलिटेंसी का एक एक रग समझने में कामयाब हुआ। हेड टू हेड मैं वापस लाया 3 साल बाद बटालियन को, एक्सेप्ट 2 कैजुअल्टी और कंप्लीट लिस्ट ऑफ सक्सेस। और मुझे 3 साल के रिस्पाइट के बाद दोबारा 2000 में कश्मीर में जाने का मौका लगा
0: जी।
1: और ये वो साल था जब शताब्दी बदल रही थी, सन 2000, 1999 जो है 2000 हो रहा था, और दुनिया के नक्शे पे टेररिज्म की पूरी एक नई तस्वीर लिखी जा रही थी। और आप अगर 2001 देखें तो 9/11 2001 में हुआ,
0: बिल्कुल
1: जेएनके असेंबली अटैक हुआ 1 अक्टूबर 2001 को, और जहां बैठ के आप प्रोग्राम कर रहे हैं इससे 300-400 मीटर दूर पर जो भारत की संसद है
0: जी,
1: उस पर 13 दिसंबर 2001 को अटैक हुआ, और ये अटैक करने वाला और कोई नहीं जैश ए मोहम्मद नाम का एक आतंकवादी संगठन जिसकी स्थापना मौलाना मसूद अजहर ने IC-814 की रिहाई के एवज में भारतीय जेल से जिसको छोड़ा गया था कंधार के टारमैक पे, उसने जाके बहावलपुर पाकिस्तान ने इस ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना की। और ये वो ऑर्गेनाइजेशन है जिसने जम्मू कश्मीर की सरजमी पे खुदकश हमले का एक बहुत बड़ा टेरर आउटफिट रहा है, और आज भी वो ये काम कर रहा है। इसी दरमियान मेरी तैनाती हुई, और पार्लियामेंट अटैक के बाद तो दुनिया का पहला ये संसद था जिस पे हमला हुआ दिन दहाड़े। और इस हमले के बाद इसका जो चीफ आर्किटेक्ट मेन मास्टरमाइंड गाजी बाबा ओवरनाइट भारत का ओसामा बिन लादेन बन गया, और इसी दिल्ली में स्पेशल कोर्ट ने उसे मेन एक्यूज डिक्लेयर किया, और पार्लियामेंट स्ट्रीट पुलिस स्टेशन में उसका FIR दर्ज हुआ जो आपसे 200 मीटर दूर है पोटा लीगल रिजीम के तहत 2001 में। और उस FIR के बाद तो हॉट केक बन गया सारी एजेंसी के लिए, इंडियन आर्मी, सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेज, जेएनके पुलिस, इंटेलिजेंस एजेंसी, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स,
0: मतलब तो इतना बड़ा आतंकवादी और
1: इतना बड़ा
0: जी
1: कि सब कि भारत की संसद में दिन दहाड़े जबकि सत्र चल रहा है, 242 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अंदर बैठे हुए हैं, वाइस प्रेसिडेंट का भाषण कंक्लूड हो रहा है, और गेट नंबर 10 से विजय चौक की तरफ से दनदनाते हुए AK-47 से 5 खुदकश पाकिस्तानी इस संसद पर हमला करते हैं, जिसपे अडवाणी जी का बयान है कि हैड दोज खुदकश नॉट बीन किल्ड आउटसाइड द प्रमाइसेस द फ्लोर ऑफ पार्लियामेंट वुड हैव बीन टर्न्ड इनटू पूल ऑफ ब्लड। तो दुनिया ने इसकी आलोचना करी और ये मौका मुझको मिला। BSF के बटालियन के साथ मैं कश्मीर में तैनात था और प्रधानमंत्री महोदय का ही कश्मीर दौरा था
0: जी।
1: 27 और 28 अगस्त 2003 को एक अमन की आशा के उम्मीद में वो गए हुए थे
0: जी।
1: और इस टेररिज्म के पूरे दशाब्दी के अंदर शायद पहला भारतीय प्रधानमंत्री जिनका की कश्मीर के जमीन पर दौरा था, उनको सुरक्षित वेन्यू तक लाना, उनकी सुरक्षित वापसी करना, पूरे उनके प्रोग्राम को पीसफुली कंडक्ट करना, इसमें जैन के पुलिस BSF का बड़ा अहम किरदार रहा और हम लोगों ने इंसिडेंट फ्री ये पूरा कंक्लूड किया। लेकिन ज्यो ही वो 28 अगस्त को वापस हो रहे थे
0: जी,
1: उनका शियारा श्रीनगर एयरपोर्ट से उड़ा और एक जिंदा टेररिस्ट जिसको कि 28 अगस्त को खुदकश हमले की जिम्मेदारी दी गई थी मीडिया में आने के लिए कि वर्ल्ड मीडिया में वो जैश ए मोहम्मद ये प्रूव कर सके कि सदर रियासत इस समय कश्मीर के अंदर हैं और उनकी मौजूदगी में हमें हमला कर सकते हैं, ये ऑडासिटी प्रूव करने के लिए। और वो उनका जो एम्बिशन था वो उनके लिए खुदकश साबित हुआ। दैट वॉज द लास्ट नेल इन द कॉफिन ऑफ गाजी बाबा। BSF ने जिंदा पाकिस्तानी खुदकश को पकड़ा मेरी बटालियन ने और वो मैं करीब 48 घंटे के फॉलो अप ऑपरेशन के बाद 29/30 के रात को अगस्त में डाउनटाउन श्रीनगर के नूरबाग में थर्ड फ्लोर पे उसके एक गुप्त तहखाने में घुसकर
0: जी
1: गाजी बाबा और उसके दो साथियों को उसको हम लोगों ने मार गिराया। और देश के वाइस मतलब उप प्रधानमंत्री ने बयान दिया कि द बिगेस्ट पावर ऑफ वर्ल्ड USA इज स्टिल लुकिंग फॉर ओसामा बिन लादेन रिस्पॉन्सिबल फॉर 9/11। लेकिन सीमा सुरक्षा बल पे हमें गर्व है
0: जी
1: कि जिसने एक एंड भारत के सबसे बड़े आतंकवादी को हॉट शॉट मास्टर को सीधा इनकाउंटर में खोज के मारा, हम इस पे गर्व करते हैं। तो ये एक बड़ी भारी कामयाबी रही और
0: बिल्कुल
1: BSF को 12 गैलेंट्री अवार्ड इसमें मिले थे सिंगल ऑपरेशन में, इंक्लूडिंग कीर्ति चक्र, शौर्य चक्र और 10 गैलेंट्री प्रेसिडेंट पुलिस मेडल फॉर गैलेंट्री। एक बड़े नाज और बड़े एक फक्र की बात,
0: बिल्कुल बहुत सम्मान की बात है और ये देश के लिए भी देशवासियों के लिए भी बहुत बड़ी बात थी। तो सर यहाँ पर कुछ थोड़ा सा अपना एक्सपीरियंस, जब सिचुएशन आई वो एनकाउंटर वाली, जो मोमेंट रहा होगा वो कैसे आप लोगों ने आपकी टीम ने फेस किया और वो सब जो इंसिडेंट हुआ जब फायरिंग हुई फिर आप घायल हुए और बहुत बुरी तरीके से घायल हुए, वो सब जानना चाहेंगे।
1: 28 अगस्त को जब हमने जिंदा पाकिस्तानी को पकड़ा, जैश ए मोहम्मद का डिप्टी चीफ अंसार भाई जो कि उस मिशन पे था कि आज प्रधानमंत्री वापस जा रहे हैं तो आज मुझे श्रीनगर शहर में कहीं कहीं
0: कुछ बड़ा
1: करना है, लेकिन उसके उस एग्जीक्यूट करने से पहले हमने उसको जिंदा पकड़ा। हमारी बटालियन की बड़ी एक सतर्क पेट्रोल पार्टी गली में उसने उसको जिंदा पकड़ा, उसको डिसआर्म किया, आइडेंटिटी एस्टेब्लिश किया, उसको लेकर

0: कि हम अपने इंट्रोगेशन सेंटर में आए और तब तक तो खबर आग की तरह से फैल गई थी। इसलिए फैल गई थी कि पीएम का श्रीनगर से उसी दिन वापसी था, ये कोई छोटा मोटा इवेंट नहीं था।
1: बिल्कुल।
0: और एक इतना बड़ा सुसाइड अटैक को होने से पहले बचा लिया। अटैक होने के बाद देखिए रिएक्शन सब लोग करते हैं,
1: बिल्कुल,
0: लेकिन अटैक ना होने देना, उसको बचा लेना एक बहुत बड़ा डिजास्टर को रोकने वाली बात थी। तो उसके पकड़े जाने के बाद जो फॉलोअप में हमने गाजी बाबा के हाइड आउट का पता किया, तो इतना तो हमको पता था कि वी आर नॉट गोइंग टू वॉक ऑन केक।
1: बिल्कुल,
0: एक डिफिकल्ट इनकाउंटर होने जा रहा है और उसका पक्का ठिकाना पता करने में हमको करीब 36 घंटे लगे।
1: 36 घंटे
0: कंटीन्यूअस ऑपरेशन, कंटीन्यूअस पूछताछ, इंट्रोगेशन। हमारे जो गिरफ्त में पाकिस्तानी टेररिस्ट था, उसके एक खुफिया तहखाने का जो मकान मालिक था, और प्लस एक आर्किटेक्ट था जो जिसको कि आप कारपेंटर कह सकते हैं, मैसन कह सकते हैं, जिसने गाजी बाबा के तमाम गुप्त तहखानों को बनाया था, डिजाइन किया था और बड़ा साइंटिफिकली डिजाइन किया था। उस जमाने में हमारे पास वॉकी टॉकी सेट के अलावा कुछ होता नहीं था, टेक्नोलॉजी के नाम पे जीरो था, ह्यूमन इंटेलिजेंस के बल पे ही सारे ऑपरेशन होते थे। उस समय क्लोज सर्किट टीवी विथ नाइट डिवन डिवाइस लगाकर अगर कोई टेररिस्ट बैठा है तो इसका तो हमको इल्म ही नहीं था।
1: बिल्कुल।
0: तो हम लोगों ने उस ऑपरेशन के लिए जब हम रात को 3:30 चले तो एक एक जवान की ब्रीफिंग हुई, खतरात के बारे में डिस्कशन हुआ कि आज क्या ये ऑपरेशन है, इसका कुछ भी रिजल्ट हो सकता है, और ये भी पता था कि स्टेक्स आर वेरी हाई। अगर इस ऑपरेशन में कहीं वो बच गया या वो अगर गाजी बाबा बचने में कामयाब हो गया तो शायद हमारे करियर और हमारे एक ऑपरेशनल इमेज पर बहुत बड़ा धक्का लगेगा, क्योंकि इंडिया का मोस्ट वांटेड टेररिस्ट हमारे स्टेक पे था और सारी कोई आवाज नहीं करेगा, कोई चेन की आवाज नहीं करेगा, शू की आवाज नहीं करेगा, कार में हम नहीं जाएंगे, हम लोग वॉक किए, पैदल गए, शाम को ही हमने मकान की रेकी कर ली सिविल गाड़ी में, और अचानक घर को लाइटनिंग स्पीड से घेरा। 3:45 मॉर्निंग, उसके फर्स्ट फ्लोर पर हम सीधे मेन गेट के ऊपर जंप करके अंदर घुसे। हमने मौका किसी को दिया नहीं कि कोई घर के अंदर से रिएक्ट करे या टेररिस्ट इनिशिएटिव ले हमारे पर फायर करे, हमारे
1: भागने की कोशिश करे,
0: क्योंकि उसने अपने तहखाने से एक इंटरनल सीढ़ी भी बना रखी थी।
1: अच्छा।
0: जो कि उस मकान में इनकाउंटर के बाद हम लोगों ने उसको डिटेक्ट किया कि एक इंटरनली भागने का भी एस्केप रास्ता था, और उस पर करीब 9 आदमी की टीम लेकर के, जिसमें 2 और अफसर थे
1: जी।
0: मैं सीढ़ियों से चढ़ा, फर्स्ट फ्लोर सर्च किया, सेकंड फ्लोर सर्च किया, और ये लगता था किसी भी क्षण कोई भी फायर आ सकता है, किसी कमरे में इनकाउंटर हो सकता है।
1: बिल्कुल।
0: और डाउनटाउन का घना एरिया, मकान से सटे मकान, छोटे छोटे कमरे, कहीं आपको एक तरह से कन्वेंशनल हाइड नहीं है जहां बच करके कोई ऑपरेशन कर सकते हैं, यू हैव टू टेक एवरीथिंग ऑन योर बॉडी। थर्ड फ्लोर पर घुसने के बाद जब लाइट जलाया हमने तो कमरे का आलम यह था कि बिल्कुल जिसको सस्पिशियस सस्पेंस, कोई भी ह्यूमन ट्रेस नहीं, लग नहीं रहा था इसमें कोई रह रहा है। एक बार आया ये बेवकूफ बना दिया इन्फॉर्मर, शायद सही जगह नहीं आए, और पूरा कमरा हम लोगों ने सर्च किया, कुछ नहीं दिखा सिवाय एक आदमकद शीशे के जो कि वॉल में फिट था।
1: अच्छा।
0: और बड़ा एक्स्ट्राऑर्डिनरी साइज का था, नीचे ट्रे था, कुछ उसमें परफ्यूम और मेकअप के सामान रखे थे, कोई जूता नहीं, चप्पल नहीं, कांगड़ी नहीं, कंबल नहीं, कोई फेरन नहीं, तौलिया नहीं, शूज कुछ भी नहीं था,
1: कुछ भी नहीं,
0: लग रहा था खाली है। और वो सीसीटीवी से हमको
1: देख रहा था
0: जिसका हमको इल्म नहीं था।
1: बिल्कुल।
0: तो वो शीशा एक एंट्री पॉइंट था, शीशे के पीछे पैरेलल एक केबिन और एक चैम्बर बना था, और वो केबिन और चैम्बर के अंदर वो और राशिद भाई जो उसका दूसरा लेफ्टिनेंट था। अच्छा। पाकिस्तानी टेररिस्ट दोनों देख रहे थे, उनको ये नहीं पता था शायद कि जिसने डिजाइन किया है ये उसको लेके आए हैं।
1: अच्छा।
0: अगर ये उसको जरा भी पता होता
1: तो शायद
0: इनकाउंटर का सीन बदल जाता।
1: ओके।
0: हम लोगों को घुसते ही फायरिंग का सामना करना पड़ता, इनकाउंटर लंबा चलता, हमारी कैजुअलिटी शायद बढ़ सकती,
1: ज्यादा होती,
0: मार तो हम तब भी लेते लेकिन हमको शायद उसकी कीमत कुछ ज्यादा चुकानी पड़ती, और अंदर सिविलियन भी 8-9 थे घर के फरीक।
1: अच्छा।
0: अब उन लोगों को भी सेफ रखना है, और इस ऑपरेशन में बताऊं आपको, एक भी सिविल मेंबर को सिंगल गोली नहीं लगी, सब सेफ। Okay. निकले, सब सेफ निकले,
1: मतलब सिविलियन की भी पूरी हिफाजत की गई और अपने ऑपरेशन को भी,
0: और ग्लास हम लोगों ने तोड़ा, हमारा इस्तकबाल हुआ गोलियों।
1: अच्छा।
0: से ग्रेनेड और गोलियों से, जिसमें हमारा एक अनफॉर्चुनेटली जवान गार्ड का बलबीर सिंह, उसको गोली लगी, वो गिर गया एंड वो शहीद हो गया। उसके अलावा बाकी जो 2 ऑपरेटर थे, कुछ ऑफिसर्स थे, उनको गोली और ग्रेनेड के छर्रों से चोट लगी, उन्हें सीन छोड़ना पड़ा। 3 ऑफिसर्स अंदर ट्रैप हो गए, फायरिंग शुरू हो गई, भागने का रास्ता एक ही था, लेकिन वहां ये था कि एक को मरना है, एक को भागना है, अगर हमको मरना है तो वो भागेगा, अगर उसको हम मारेंगे तो हम बच सकते हैं, और उसके बाद वो सेकेंड अपॉर्चुनिटी गाजी भवन नहीं देता। और मुकद्दर कभी भी आपको इतने बड़े ऑपरेशन में दूसरा मौका नहीं देती। पहले मौके में अगर आप कर गए तो आप सिकंदर हैं, नहीं कर गए तो फिर आपके लिए बड़ी बदकिस्मती की बात है, बड़ी बेइज्जती की बात है। लेकिन एक चीज बताऊं कि बीएसएफ के इतने टफ लड़के, किसी ने घर नहीं छोड़ा, और हमको, हमने उनकी माद में ही उनको मार के हम आए, इंजर्ड कंडीशन में आए
1: जी,
0: बैडली इंजर्ड, गोलियां लगी, कितनी गोली लगी तब इसका पता भी नहीं लगा। वो तो हॉस्पिटल में जाके जब मुआयना हुआ, डॉक्टरी मुआयना बॉडी का, तब पता लगा सब इतने शॉट्स लगे हैं, इतनी गोली है, एक गोली पेट में है।
1: यानी कि आपको जो गोलियां लगी उस टाइम पर, जो आपके ऊपर फायरिंग हुई, अटैक हुआ, उसका आपको अंदाजा भी नहीं हो पाया?
0: आप
1: उस वक्त
0: सिर्फ हाथ का,
1: सिर्फ हाथ का,
0: बाकी इंजरीज का कुछ पता नहीं लगा, स्टमक, लेग, चेस्ट का कुछ अंदाजा नहीं लगा
1: जी।
0: और वो तो फिर हॉस्पिटल के टेबल पे ही, सर्जिकल टेबल के ऊपर ही ओटी में पता लगा। डॉक्टर्स ने अपना काम किया, हम लोगों ने इस टेररिज्म के खिलाफ अपना काम किया
1: जी। सर, हम इसकी बात जैसे आपने बताई कि जिस तरीके से फायरिंग, और आप बहुत बैडली इंजर्ड हुए और आपके साथ ही लोग भी, तो हम इस पर भी आगे बात जारी रखेंगे आपके आज के संदेश टू सोल्जर्स में। हमारे साथ हैं कीर्ति चक्र से सम्मानित फॉर्मर डिप्यूटी इंस्पेक्टर जनरल बीएसएफ श्री नरेंद्रनाथ धर दुबे, और आप हमसे बात कर सकते हैं, सवाल कर सकते हैं, आप अपनी बात कह सकते हैं हमारे व्हाट्सएप नंबर 9868107 पर, और आप हमको कॉल भी कर सकते हैं 011 2342 1084 और 2342 1080 पर।

0: संदेश टू सोल्जर्स में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज हमारे साथ हैं बहुत ही खास मेहमान श्री नरेंद्रनाथ धर दुबे, जो फॉर्मर डिप्टी इंस्पेक्टर हैं, जनरल हैं, बीएसएफ रहे हैं, कीर्ति चक्र से सम्मानित और दूसरे कई पुलिस मेडल, प्रेसिडेंट पुलिस मेडल और दूसरे कई अवार्ड से सम्मानित। जानलेवा मुठभेड़ में अपने शरीर पर एक दो नहीं सात सात गोलियां खाने वाले और उसके बावजूद भी दुश्मन के सामने डटे रहने वाले, सर हम जानना चाहेंगे कि ये जो मोमेंट था, आपकी बहुत ही सीवियर इंजरी हुई और आपके हाथ पर, दाएं हाथ पर सबसे ज्यादा, और आपके पेट में भी गोली लगी और आपकी कुछ गोलियां बदन को, जिस्म को चीर करके भी निकल गई, वो जो लम्हा रहा होगा, वो मोमेंट, वो सिचुएशन कैसे आपने फेस की, कैसे हैंडल किया और इतने बड़े आतंकवादी को ढेर भी किया?
1: ये बड़ा अलग तजुर्बा है, क्योंकि जब गोली लगती शरीर पे तो दूसरे के तजुर्बे से ही आदमी जानता है कि बेसिकली लगता कैसे है। तो मुझे जो इंजरीज हुई उसमें जो हाथ की इंजरीज रही
0: जी,
1: वो बहुत ज्यादा फैटल इसलिए रही कि अल्ना, रेडियस, मीडियन तीनों नर्व उड़ गई।
0: अच्छा।
1: और बोन्स पूरी शैटर्ड हो गई। उससे क्या हुआ, हाथ का सेंसेशन ही खत्म हो गया। तो दाहिने हाथ से राइफल मेरी गिर गई, जो कि करीब हाफ मैगजीन में फायर कर चुका था।
0: अच्छा।
1: मेरे साथ पिस्टल भी थी, तो वो जो हाथ लटक गया, इसलिए उस मोमेंट में ऐसा दिखा कि मेरे हाथ पे तो कई गोलियां लग गई और उससे काफी ब्लड बह रहा था और हाथ में कोई सेंसेशन ही नहीं था।
0: अच्छा।
1: रही बात पैर में जो गोली लगी, तो वो उसने स्किन को चीर करके निकल गई। लेफ्ट चेस्ट में जो लगी, उसका तो अंदाजा ही अगले दिन लगा मुझे।
0: अच्छा।
1: क्योंकि मैं एक डायरेक्टर जनरल इंसिग्निया, करीब एक इंच साइज का स्टील का एक होता है।
0: अच्छा।
1: कमेंडेशन
0: जी, जी,
1: मैं
0: जी,
1: अपने यूनिफॉर्म पे लगा रखा,
0: छाती पर लगता है
1: जी जी जी, उस पे कंप्लीट बस्ट लगा, वो क्रश हो गया।
0: अच्छा।
1: और वो मेरे वाइटल पार्ट, जो कार्डिक एरिया
0: जी जी,
1: उसमें ना घुस के, यस, उसके साइड से फ्लैशी पार्ट को पेनेट्रेट करके पूरा निकल गया। तो सवेरे ओटी से मैं निकलने के बाद जब देखा स्टिचेस लगे हैं उस साइड में, तो मैंने देखा यहां क्यों स्टिच लगा है, तो देखा को तो पियर्स कर रखी है। और पेट में जो गोली लगी उसका तो मुझे बिल्कुल पता नहीं लगा, वो दाहिने से घुसी और अंदर ही लॉस्ड हो गई, लेफ्ट ग्रेटर सियाटिक नॉच में। तो मेरे इंटेस्टाइन में हैमरेज शुरू हो गया, उसका इमीडिएट कोई आइडिया लगा नहीं। डॉक्टर्स ने जब यूनिफॉर्म काटा, पूरे बॉडी को एग्जामिन किया मेडिकली, तो उन्होंने कहा कि एंट्री पॉइंट तो गोली का दिख रहा है, एग्जिट नहीं दिख रहा है। तो तुरंत एक्सरे हुआ, एक्सरे में वो गोली अंदर अटकी हुई। तो उन्होंने बोला कि एक्सप्लोरेटरी लेप्रोटोमी, आपका एब्डोमेन हमें तुरंत ही फाड़ना पड़ेगा। मुझे लगता था मेरा दाहिना हाथ बहुत ज्यादा क्रिटिकल है, क्योंकि मुझे दिख रहा था
0: जी,
1: लेकिन इंटेस्टाइन के अंदर जो रक्त श्राव हो रहा था वो मुझे दिख नहीं रहा था। तो ओटी में लिया उन्होंने और मेरा एक्सप्लोरेटरी लेप्रोटोमी हुआ। मॉर्निंग में जब मैं करीब एनेस्थीसिया के होश से वापस आया
0: जी,
1: तो पूरी बॉडी कटी हुई कि कहीं पर यूरिन कैथेटर लगा है, ब्लड लाइन लगी है, इंट्रावेनस लगा है, ऑक्सीजन लगा है, और दाहिना हाथ फिक्सेटर पे है, लेफ्ट चेस्ट की तरफ पूरी सिलाई हो रखी है, पैर में स्टिचेज हैं, पेट पूरा फटा हुआ सामने से, उसके ऊपर टेप चिपका हुआ, और ड्रेन पाइप लगी है, जो उसका खराब ब्लड होता है, बैंक के बाहर आता है। फिर मैंने कहा ये तो मेरा पूरा ये पूरा भूत बना हुआ, शरीर में कहां कहां चोट लगा कुछ पता ही नहीं, लेकिन मैं जिंदा था, सांस ले रहा था, मैं पहचान सकता था, और मैं उसी इंजर्ड कंडीशन में चल के थर्ड फ्लोर से नीचे तक भी आया
0: जी। आपने जैसे बताया फायरिंग के दौरान,
1: नहीं तो कमरे में ट्रैप हो जाता मैं, मतलब मैं चल सकता था, समझ सकता था, सुन सकता था, बोल सकता था।
0: आपको ये अंदाजा नहीं था कि आपके ऑलरेडी सात गोलियां शरीर में?
1: सिर्फ हाथ का अंदाजा लगा, क्योंकि हाथ का विजिबल था
0: जी,
1: बाकी इंजरी विजिबल नहीं थी। तो डॉक्टर्स ने बोला कि, तो वाइफ जब मिलने आए तो उन्होंने मुझे वो डायरेक्टर जनरल का इंसिग्निया दिखाया कि ये क्रश हो गया है, और वॉशरमैन ने इस कपड़े को मॉर्निंग में ब्लड संग यूनिफॉर्म को जब धो रहा था तो उसकी पिन उसके हाथ में चुभी। आज भी मेरे पास वो यूनिफॉर्म है जिसमें एक एक होल है गोलियों के, और वो इंसिग्निया है जिसको मैंने एक जीवन रक्षक के तौर पर ड्राइंग रूम में लगा रखा,
0: जिसने आपका दिल बचाया।
1: उसमें यस, और उसमें एक गोली सफिशियंट थी शहीद होने के लिए, सफिशियंट थी,
0: बिल्कुल बिल्कुल।
1: तो जिंदगी और मौत के बीच फासला बहुत ही कम था, बल्कि मैंने एक डेथ का इमेजिनेशन भी दिमाग में आया कि आदमी फिर गोली लगता है तो प्यास लगती है।
0: अच्छा।
1: फिर वो शायद धीरे धीरे धीरे धीरे डाउन होने लगता है, फिर ये भी ख्याल आया
0: फेंट हो जाता है, फिर
1: हाँ कि मैं अगर कुछ दिन बाद मैं नहीं रहा तो बॉडी सवेरे कल घर गांव जाएगी, तो ऐसे होगा। मतलब ये जो कहते हैं ना कि मन है पाप शंकी, जो खराब ख्याल होते हैं मन में आने लगते हैं।
0: जी, जी, जी।
1: बट मैं चल रहा था और ऐसा लग रहा था कि प्यास के अलावा तो कुछ फील हो नहीं रहा है, तो उम्मीद भी जारी थी। और उसके बाद जब अंदर हमने टेररिस्ट मार लिए जिनका कि तुरंत तो आइडेंटिटी
0: नहीं
1: हो पाया, शिनाख्त बाद में हुई
0: जी,
1: और नीचे आए पूरा घर ट्रैप करके घेरा था। और हॉस्पिटल में अगले दिन पोस्ट सर्जरी जब डायरेक्शनल बीएसएफ मिले मुझसे
0: जी,
1: मेरी वाइफ आई, 15 कोर कमांडर जनरल निर्भय शर्मा, ऑल केम टू सी मी इन आईसीयू एंड फर्स्ट दे वर विद वेरी ग्रिम फेस कि वी आर वेरी सॉरी तुम बहुत ज्यादा सीरियसली इंजर्ड हो
0: जी,
1: क्रिटिकल हो, लेकिन डॉक्टर से हमने डिस्कस कर लिया, योर लाइफ विल बी सेव्ड एंड कांग्रेचुलेशंस। लाइफ विल बी सेव्ड एंड कांग्रेचुलेशन दोनों एक साथ बोलना मतलब बड़ा एक अजीब सा भी लग
0: जी,
1: रहा था
0: जी।
1: मैंने कहा सर फॉर व्हाट, बोले कि यू क्रिएटेड द हिस्ट्री एंड गाजी बाबा हैज बीन किल्ड, मेन एक्यूज्ड ऑफ इंडियन पार्लियामेंट अटैक एंड होल कंट्री होल नेशन एंड बीएसएफ इज प्राउड ऑफ यू एंड बीएसएफ टीम। तो वो ऐसा रहा ना, सारा दर्द काफू
0: खत्म हो गया, सही
1: नहीं लगा कि दर्द में तो हम थे
0: जी,
1: और दर्द तो होता ही है, ह्यूमन बॉडी पेन अगर है तो महसूस होगा, लेकिन जो एक कामयाबी का एक मैसेज मिला तो उससे लगा कि अगर आपका मिशन कंप्लीट होता है, अगर आप फाइनल फतह कर लेते हैं
0: जी, जी।
1: तो फाइनल फतह के साथ जुड़ी हुए जो दर्द है ना, वो कहीं ना कहीं उसका पेन कम हो जाता है
0: यस, उसका एहसास कम हो जाता है, क्योंकि वो जो अचीवमेंट थी वो इतनी बड़ी थी, कि उसका शायद अंदाजा लगा पाना ही बड़ा मुश्किल होगा।
1: ड्रीम चेज फॉर एवरी फोर्सेज,
0: बिल्कुल
1: हॉट केक इन द वैली,
0: और अगर वो वहां पर उस दिन बाई चांस बच जाता तो फिर पता नहीं और कितने आतंक के वो नमूने पेश करता।
1: 9 years वैली में 1994 से 2001 तक ही वॉज एन किलिंग स्प्री। एक आदमी ने लैंडमार्क अटैक किए, 1984 पहलगांव टूरिस्ट किडनैपिंग, 1995 अगस्त टूरिस्ट किडनैपिंग, IC-814 हाईजैकिंग, दिस सारी मर्क किलिंग्स फॉलोड बाय सुसाइड अटैक्स इन श्रीनगर सिटी, उसके बाद JNK असेंबली अटैक 1 अक्टूबर 2001, तो उसने तो अटैक के पराकाष्ठा पे था, इम्तहा बिल्कुल, कि अब पार्लियामेंट अटैक कर देना मतलब छोटा मोटा अचीवमेंट थोड़ी है,
0: बिल्कुल बिल्कुल,
1: वो भी दिन में 11 बजे जब पार्लियामेंट सेशन में है
0: जी,
1: परिंदा नहीं पर मार सकता, तो इतना बड़ा प्लान,
0: इतना बड़ा प्लान है
1: से लाके 5 सुसाइडर को दिल्ली में रख के
0: जी,
1: लॉजिस्टिक्स वेपन आईडी एक्सप्लोसिव कार को सुसज्जित करना और सरेआम पार्लियामेंट पर टकराना, वो तो मुकद्दर थी कि वो अटैक फेल हो गया थैंक्स टू आवर सिक्योरिटी फोर्सेज और पार्लियामेंट्री स्टाफ कि उन्होंने इतनी बड़े एम्बेरसमेंट से बचाया जान पे खेल के, और उसमें 13 लोग शहीद हुए जिनको कि हर साल 13 दिसंबर को याद किया जाता है। तो देखा जाए तो ये बहुत बड़ी कामयाबी,
0: बहुत बड़ी सर, यहाँ पर
1: ये सब का सिर बहुत ऊंचा हुआ,
0: बिल्कुल
1: देश का सर मस्तक ऊंचा हुआ,
0: बिल्कुल, और सर इसका सहरा, इसका ताज वो आपके सर पर सजा है,
1: क्योंकि ये डेयरडेविल हूं, क्योंकि बीएसएफ

0: नंबर थ्री को भोज सकता था,
1: लेकिन आप फ्रंट पर रहे।
0: खुद के रहने से
1: जी
0: मोराल बड़ा अप होता है,
1: बिल्कुल।
0: जवान बेपरवाह काम करता है, मौत के मुंह में भी घुस
1: गया, मौत के मुंह में घुस गया
0: और घुसे वो,
1: बिल्कुल।
0: गाजीबाव के माथे में घुसना कोई सिंपल,
1: और जैसा आपने बताया कि जो सिचुएशन थी वो तो बिल्कुल ट्रैप था,
0: 100% ट्रैप था, अदरवाइज वो मिलता नहीं, हम
1: मिलता नहीं।
0: और वह मौका हम छोड़ देते तो शायद पूरी जिंदगी खुद को कोसते,
1: बिल्कुल,
0: कि इतना बड़ा टारगेट हमारा आज मिस हो गया, बट हो नहीं पाया वो। एंड वी आर प्राउड ऑफ दोज मोमेंट्स।
1: दुबे सर, यहां पर मैं बताना चाहूंगा कि बहुत सारे मैसेजेस मेरे पास लगातार आ रहे हैं, मैं बीच में ले नहीं पाया, लेकिन मैं बताता हूं आपको। ये है यश शिंदे मुंबई से, संदेश टू सोल्जर्स लिख रहे हैं, जय हिंद वंदे मातरम। वतन की हिफाजत में जिन्होंने दी हैं कुर्बानियां, उनके जज्बे और शहादत को दिल से सलाम है। दहशत की हर एक साजिश को नाकाम किया है और करेंगे, हमारे देश का हर नागरिक अब सजग और तैयार है।
0: शुक्रिया भाई साहब, शुक्रिया, ग्रेट वर्ड्स एंड अप्रिशिएशन टू द सोल्जर्स।
1: और सर, ऑस्ट्रेलिया से आया है जोया का, मेलबर्न से, ऑस्ट्रेलिया से। सर, आई सल्यूट फॉर योर करेज, यू आर मोस्ट करेजियस मैन आई हैव एवर हर्ड इन माय लाइफ, योर स्टोरी गिव्स मी गूज बम्स।
0: So great words, because we still remember the bloodshed in Australia, the Bondi Beach, very recently by the IC,
1: जी.
0: by the ISIS cadres. हम ऑस्ट्रेलिया में भी जो घटना हुई उसके दर्द को समझ सकते हैं, और इसमें आप हमारे साथ हैं, हमारी तारीफ कर रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है
1: जी। और एक और है सर ये मैसेज, मेरा भारत मेरा बहुत फेवरेट प्रोग्राम है, सैल्यूट सैल्यूट अगेन एंड अगेन, एंड इन दुबे सर को, आप जैसे जांबाज हैं तभी हम सेफ हैं, एकदम फिल्म की तरह स्टोरी लग रही है, आप हीरो हैं, सैल्यूट टू यू, रियली प्राउड ऑफ यू। मीरा सिंह है ये सिलचर असम से।
0: मीरा सिंह जी को मैं बताना चाहूंगा कि जब ग्राउंड जीरो फिल्म बन रही थी तो इसकी स्टोरी जब स्टोरी राइटर लिख रहे थे तो वो जब प्रोड्यूसर के पास ले गए एक्सेल एंटरटेनमेंट के बाद, तो उन्होंने बोला यह स्टोरी फिल्मी से भी ज्यादा फिल्मी है, ये वर्ड उनके थे।
1: अच्छा।
0: बिल्ला नंबर जो आप बिल्ला नंबर सास होता ना कि
1: जी जी
0: बच्चन,
1: हाँ अच्छा जी,
0: वो बिल्ला नंबर की स्टोरी आपने फिल्मों में देखी थी
1: जी,
0: बट इसमें एक्चुअली मेरे साथ हुई है, और वो रेप्लिका भी मेरे पास रखी है,
1: रखी है वो आपकी यादगार।
0: काम में सारे होल काउंट कर सकते हैं आज के तारीख में भी, मैंने उसको धो के एक एक होल मार करके लगाया हुआ है।
1: मैं सर मैसेज आगे पढ़ूंगा, लेकिन मैं बता दूं कि सर मैंने आपसे बात करने से पहले, इंटरव्यू से पहले आपके, मैंने वो मूवी देखी ग्राउंड जीरो, और वो इसीलिए मैंने देखी कि मैं कम से कम वो समझ पाऊं वो सिचुएशन क्या रही होगी। हालांकि फिल्म में काफी फ्रीडम होती है उसको बनाने के लिए, लेकिन फिर भी वो अपने आप में जो सिचुएशन थी उसको समझना और उसको महसूस करना वो बहुत ही मतलब
0: फिल्म
1: अनबिलीवेबल,
0: काफी उन्होंने अथेंटिक बनाने की कोशिश की। फिल्म के अंदर देखिए फिक्शन का पार्ट तो होता ही है
1: जी,
0: क्योंकि वो सिनेमाटोग्राफी का एक फ्रीडम है,
1: बिल्कुल,
0: और एक कमर्शियल पर्पस से बनती है, एक लार्जर व्यूअरशिप के लिए बनती,
1: बिल्कुल,
0: है।
1: सर एक चीज लेकिन यहाँ पर मैं कहना चाहूंगा, अक्सर हम लोग बात करते हैं कि फिल्म में रीटेक के चांसेस होते हैं,
0: होते,
1: लेकिन जब आप फ्रंट पर थे और आप मुकाबला कर रहे थे इतने खतरनाक आतंकवादियों का, वहां पर तो कोई मतलब ही नहीं कि रीटेक होता क्या है,
0: 100% नहीं होता, वहां कैसे होगा, वहां कुछ नहीं होता,
1: कुछ नहीं होता,
0: वहां
1: जान जाएगी या जान ली जाएगी,
0: वहां जो वहां या तो सीरियसली इंजर्ड होने का खतरा होता है या मरने का,
1: या मरने का,
0: तीसरा कुछ नहीं होता,
1: तीसरा कुछ नहीं, या तो
0: मतलब दो ही चीज होती है, या तो आप सीरियसली इंजर्ड की कैटेगरी में आते हैं या आप
1: जान से जाते हैं, शहीद होते हैं,
0: दो ही कैटेगरी होती है। मैं पहली वाली कैटेगरी में रहा, हमारी मुकद्दर अच्छी थी कि मैं इतने शॉट्स के बावजूद भी जिंदा रहा, और आज के तारीख में आपके सामने मैं एक लाइव प्रोग्राम का पार्ट हूं,
1: और बहुत ही शानदार पर्सनालिटी के साथ। सर सर एक मैसेज और है, हाय सर मैं शशि, जय हिंद सर, मैं भी आर्मी ज्वाइन करना चाहता हूं, मैं अभी क्लास 11 में हूं। सर ये एकदम बच्चा यंग लड़का है ये, कोई पीसीएम से हूं, जी के थ्रू कैसे करें, देश को महान बनाना चाहता हूं, मैं आजमगढ़ से हूं, यूपी से।
0: आपके अंदर ये जज्बात बड़े सही टाइम पे आया है
1: जी,
0: क्योंकि आप पीसीएम से हैं, 11th में हैं, दिस इज द राइट टाइम। आप पीसीएम बहुत बढ़िया रखिएगा, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ एक क्वेश्चन पेपर जो सीडीएस के हैं, जो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन से पब्लिश होता है, उसमें इसके क्वेश्चंस के काफी ज्यादा इसका रेशियो होता है। अगर आपका पीसीएम मजबूत है, आप पहले झटके में रिटर्न निकालिए, उसके बाद फिजिकल होगा, और आपके अंदर जो जज्बात फूटे हैं ना, बिल्कुल सही टाइम पे फूटे हैं,
1: बिल्कुल,
0: प्रिपेयर ऑल द बेस्ट।
1: और सर एक मैसेज और है, ये शबनम है, ये बोल रही है, मैं शबनम हूं, बी के दत्त कॉलोनी नई दिल्ली से ही बात कर रही है। जय हिंद सर, आपको सुन रही हूं, बहुत ही गर्व महसूस कर रही हूं, आपको बहुत बहुत धन्यवाद सर, इसीलिए हम भारतीय हमारे जवानों पर फख्र करते हैं।
0: आप बहुत ही एक बड़े वीर पुरुष की कॉलोनी में रह रही हैं, जिसके नाम पे बीके दत्त
1: जी,
0: तो वो कॉलोनी बड़ी ही पॉश कॉलोनी है, जोरबाग के पास, और उस कॉलोनी की मिट्टी में एक बहादुर आदमी की आत्मा है और आपके तरफ से शुभकामना आ रही है, तो मैं खुद ही महसूस कर सकता हूँ कि इट्स अ वेरी ग्रेट थिंग फॉर अस। थैंक यू सो मच
1: सर। देश पर

0: तो सर हम आगे और भी बात करेंगे, हमारे पास समय इतना तेज भाग रहा है कि हमें पता नहीं लग रहा है कि कब इतना वक्त गुजर गया है, और अभी आपसे बहुत सारी बातें करनी बाकी है। लेकिन आगे बढ़ूंगा मैं आपसे कुछ पर्सनल लाइफ के बारे में पूछूंगा, आपका करियर कैसे शुरू हुआ, आप कैसे आए बीएसएफ में, वो सब जानेंगे। लेकिन मैं चाहता हूं कि आपकी पसंद का एक गाना चलाया जाए। सर बहुत देर से हम बात कर रहे हैं
1: आप इस मौके पर, मुझे हकीकत फिल्म के गाने की याद आ रही है
0: जी,
1: के मजबूर मुझे उसने भुलाया होगा।
0: ये क्या बात,
1: फील्ड सिचुएशन का गाना है, जब सैनिक चाइना वार के समय एक डिफिकल्ट एरिया में बैठे हैं और उनको कोई एक्सेस नहीं है अपने घर द्वार का, तो उन्होंने वो अपने परिवार के बारे में क्या सोच रहे हैं। इस गाने से बढ़िया मुझे कोई गाना नहीं लगता, क्योंकि मुझे भी जिंदगी में पिता बनने का जो पहला
0: मैसेज
1: आया था।
0: अच्छा, और आप अपनी ड्यूटी पर थे,
1: ट्रेनिंग में था, मेरा बेटा पैदा हुआ, उसके 45 डेज बाद में उसे मिल पाया
0: जी।
1: तो उसके पैदा होने का भी मुझे इतला खत के जरिए मिला 15 दिन बाद।
0: ओके,
1: तो बड़ा प्रीशियस खत है, मेरे ग्रैंडफादर ने लिखा था, बिकम फादर। तो ये आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर फील्ड पे हैं, फ्रंट लाइन पे हैं, और ऐसी क्रिटिकल सिचुएशन देश की रक्षा की आ गई, तो वो पहले है,
0: पहले है।
1: तो मजबूर मुझे उसने बुलाया होगा, अगर आप सुना सकें।
0: बिल्कुल सर, आपकी पसंद का ये गीत, और हम वापस आएंगे और आपके मैसेजेस काम करेंगे इंतजार। आप सुन रहे हैं संदेश सोल्जर्स, आज के हमारे खास मेहमान फॉर्मर डीआईजी बीएसएफ श्री नरेंद्र नाथ दर्दुबे।

0: और हमारे साथ हैं आज के हमारे खास मेहमान फॉर्मर DIG BSF श्री नरेंद्रनाथ धर दुबे। और हम जो कहानियां सुन रहे हैं दुबे साहब से, वो सब सच्ची घटना है जिनको फिल्म में पिक्चराइज किया गया है। उनकी बायोपिक ग्राउंड जीरो आपने अगर नहीं देखी है तो उसमें आप देख सकते हैं, और वही सच्ची घटना जो एक एनकाउंटर किया गया एक बहुत ही खतरनाक आतंकवादी का। सर, हम जानना चाहेंगे कि आप किस तरीके से फोर्सेस में आए, मतलब BSF आपने ज्वाइन की, फैमिली में आपके परिवार में कहीं पर कोई आर्मी से या जुड़े हुए थे फोर्सेस से किसी भी तरह की?
1: देखिए, मैं एक अगर देश का उत्तर प्रदेश का नक्शा आप खींचें तो मैं एक बड़े मुश्किल इलाके में पैदा हुआ था, चोरी चूरा तहसील गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट।
0: अच्छा।
1: हिमालयन नदी राप्ती के किनारे मेरा गांव, जो कि मानसून में करीब 4 महीने डूबा रहता था।
0: अच्छा।
1: कोई सड़क नहीं, कोई बिजली नहीं, कोई कनेक्शन नहीं, पेड़ों के नीचे प्राइमरी स्कूल।
0: अच्छा।
1: की पढ़ाई की आंवले के पेड़ के नीचे, उसके बाद की मिडिल स्कूल और टेंथ की पढ़ाई जो कि 13 किलोमीटर दूर की, 20 किलोमीटर दूर की, पैदल और साइकिल हमारी
0: पढ़ाई के लिए
1: होती थी।
0: Yes. अच्छा।
1: तो बहुत डिफिकल्ट एरिया में हम लोग पैदा हुए, और जिसके नदी नाले भरे हुए, मानसून के टाइम में आपको तैर के जाना है, तो इतने मुश्किलात में हमारे जीवन की शुरुआत हुई। लेकिन एक थी घर के अंदर पढ़ाई और देश प्रेम का जज्बा बहुत ज्यादा था।
0: जी।
1: मेरे ग्रैंडफादर, मेरे दादाजी इंडियन नेशनल आर्मी में।
0: अच्छा।
1: थे नेताजी सुभाष चंद्र बोस के साथ, और वो 1940 में मेरे फादर को 12 डेज का छोड़ करके चले गए थे जब इस स्वाधीनता आंदोलन का बिगुल बजा। 12वें दिन गांव वालों को खाना वाना खिला के वो चले गए
0: दादाजी।
1: उसके बाद वो 1946 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की विमान दुर्घटना में मृत्यु के बाद, जब इंडियन नेशनल आर्मी
0: जी
1: अपने एक्चुअल फॉर्मेट में नहीं रह गई
0: जी,
1: उसके बाद वो मांडले जेल बर्मा में बंद रहे और 1 साल के बाद छूटे और एक अज्ञात व्यक्ति की तरह से वापस गांव आए यूनिफॉर्म में। और मेरे फादर को उन्होंने 6.5 साल का देखा, जिसको 12 दिन का छोड़ के गए थे
0: जी।
1: और वो बड़े जबरदस्त नेशनल फरवर के आदमी थे, देश प्रेमी, पूरे टाइम अपने सिद्धांतों पर रहना, पूरी जिंदगी लीड किया सोसाइटी को, कोई सरकारी पद नहीं लिया, कोई पॉलिटिकल पोस्ट नहीं ली, खाली पब्लिक की सेवा की,
0: जनसेवा।
1: तो यस, तो घर के अंदर सेकेंड वर्ल्ड वार की कहानियां वो
0: चारपाई
1: पर बैठ के सुनाते अच्छा। थे। उसके बाद नेताजी सुभाष चंद्र बोस, इंडियन नेशनल आर्मी, तो ये एक जज्बात घर में था। और उतने मुश्किल जगह में पैदा होने के बावजूद भी पढ़ाई का माहौल घर में बहुत बढ़िया था। तो हम बस एक इत्तफाक लेके आया सीमा सुरक्षा बल में, तब ऐसी वैकेंसी निकली, पता चला कोई बॉर्डर की फोर्स है, क्योंकि उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य है जिसका कोई इंटरनेशनल बॉर्डर नहीं लगता है
0: जी,
1: एक्सेप्ट की नेपाल बॉर्डर का पार्ट
0: जी,
1: बाकी तो, और नेपाल बॉर्डर तो ओपन बॉर्डर है, तो उस पर कोई इतनी बड़ी सेंट्रल फोर्स डिप्लाय हो ये तो तब था ही नहीं। ये तो सन 2001 के बाद SSB डिप्लाय हुई है। तो बस सीमा सुरक्षा बल में ऐसे कदम घुसा हमारा, और फिर सीमा सुरक्षा बल ने पूरी जिंदगी बदल दी। उसने उसमें हम वो सब कुछ कर पाए जो शायद उस दुरूह गांव में, डिफिकल्ट गांव में रह के नहीं कर सकते,
0: नहीं
1: थे,
0: कर सकते थे।
1: और शायद सीमा सुरक्षा बल ने मुझे वो दिया जो मैं किसी और जगह नहीं पा सकता था।
0: बिल्कुल।
1: तो मेरे लिए एक बड़ी सौभाग्य की बात है।
0: बिल्कुल। तो आपके खून में, नस नस में ही देशभक्ति पहले से ही मौजूद थी, आपने जिस तरीके से बताया। सर, अब जैसे कोई भी बच्चा, कोई यंगस्टर, कोई जाना चाहता है BSF में, तो क्या तरीका हो सकता है जाने के लिए, उसको एंगेज कैसे हो सकता है, वो उसके अंदर शुरुआत कैसे कर सकता है?
1: BSF में एंट्री के लिए 3 लेवल है, एक ग्रुप सी लेवल, एक ग्रुप बी लेवल, एक ग्रुप ए लेवल
0: जी।
1: ग्रुप ए लेवल ऑफिसर्स की डायरेक्ट भर्ती होती है, जिसकी बेसिक क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन है,
0: ठीक है,
1: उसके साथ यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन से उसकी वैकेंसी निकलती है, उसके लिए रिटन टेस्ट होता है, प्रिलिमिनरी टेस्ट फॉलोड बाई मेन रिटन टेस्ट, फिजिकल इंटरव्यू, ये प्रोसेस है ग्रुप ए सर्विस का। ग्रुप बी का भी प्रोसेस यही है, लेकिन स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की तरफ से उसकी वैकेंसी निकलती है, और ग्रुप सी यानी कांस्टेबल पद की भी वैकेंसी इन्हीं इसी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन से निकलती है। रिटन शुरुआती में आवश्यक है, और कुछ इसके फिजिकल मापदंड हैं जो किसी भी बच्चे को ट्राई करने से पहले अपने फिजिकल मापदंड और मेडिकल का एक प्रिलिमिनरी एग्जाम जरूर करा लेना चाहिए। हो सकता है कि वो रिटेन बहुत अच्छा हो, लेकिन किसी स्टेज पे वो इन मापदंडों को पूरा ना करने की वजह से अगर छंटेगा तो उसको तकलीफ ज्यादा होगी। तो उसको फिजिकल और मेडिकल पैरामीटर्स का इनफॉर्मल एक जांच कर लेनी चाहिए और रिटर्न की अच्छी तैयारी करनी चाहिए। ये बहुत बड़ा एक पूल है सरकारी सर्विस का, जो कि भारत के करीब 15,000 किलोमीटर लैंड बॉर्डर पे आपको काम करने का मौका देता है।
0: बिल्कुल।
1: और 6 देशों के साथ जो भारत की सीमाएं हैं उस पे आपको वर्क करने की अपॉर्चुनिटी देता है।
0: बिल्कुल।
1: और वर्ल्ड का सबसे डिफिकल्ट एरिया पाकिस्तान और बांग्लादेश पे भी काम करने का मौका देता है, विदेश में जाने का मौका मिलता है।
0: जी सर, ये तो हो गई बात किस तरीके से कोई भी नया बच्चा ज्वाइन कर सकता है, कैसे एनरोल कर सकता है, लेकिन मैं आप यह भी जानना चाहूंगा, आपने न सिर्फ एक डायरिंग सोल्जर के तौर पर अपनी ड्यूटी निभाई, इतना नाम आपने कमाया, इतने आपको गैलेंट्री अवार्ड से नवाजा भी गया, लेकिन इसके अलावा आपकी और बहुत सारी एक्सपर्टीज हैं जो मैं यहां पर बताना चाहूंगा अपने लिसनर्स को। आप मोटिवेशनल स्पीकर हैं, लीडरशिप की बात करते हैं, आप लोगों को बताते हैं, मॉरल बिल्डिंग करते हैं, और आप का जो एक्सपर्टीज रहा है उसके अलावा आपने जो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म है उसकी बहुत अच्छे से आपको समझ है और उसकी आप गाइडेंस देते हैं जो नए सोल्जर्स हैं, जो नए ऑफिसर्स होते हैं, और उसके अलावा आपने ओवरसीज असाइनमेंट भी किए हैं, जैसे कि आप यूएसए, रशिया, कनाडा, श्रीलंका, ताजिकिस्तान, जर्मनी और नेपाल वगैरह में भी आप गए हैं इन्हीं सब चीजों को बताने के लिए और शेयर करने के लिए।
1: इस इंजरी के बाद में दोबारा दूसरी इनिंग में अपनी शुरू किया
0: जी,
1: 26/11 का बड़ा अनफॉर्चुनेट अटैक हुआ लश्कर तोयबा की तरफ से
0: जी।
1: उसके बाद से देश के अंदर एक फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी NIA क्रिएट हुई
0: जी,
1: और उसने मुझको 9 साल सेवाएं मुझसे लिया। 9 ईयर्स के दौरान मैंने एक इन्वेस्टिगेशन का पार्ट बड़ा क्लोजली देखा और उसी सिलसिले में मैं इन तमाम मुल्कों में
0: जी।
1: सरकारी
0: तो 25 साल जो सर आपने BSF में दिए
1: उसके अलावा ये 9 वर्ष NIA में,
0: अच्छा
1: 2 साल में बाकी एजेंसीज में भी काम किया
0: जी, जी,
1: और
0: जी।
1: कश्मीर मेरे चेस्ट से लगा हुआ है,
0: अच्छा
1: मेरे दिल से लगा हुआ है,
0: बिल्कुल
1: मैं घूम घूम के वापस कश्मीर में ज्यादा काम किया।
0: अच्छा।
1: और काउंटर इंसर्जेंसी और नेशनल सिक्योरिटी मेरा कोर एरिया है जिसमें मैं हमेशा कंट्रीब्यूट करने की कोशिश करता हूं और अपने को अपडेट करने की कोशिश करता हूं।
0: जी सर, आगे बढ़ूंगा मैं और यहां पर और भी कुछ मैसेजेस आए हैं, मैं वो आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। सर, FM रेनबो की ऑल टीम को बहुत बहुत धन्यवाद। मैं ग्रेटर नोएडा से गिरीश, आज का विशेष प्रोग्राम संदेश टू सोल्जर को बहुत गौर से सुन रहा हूं, बहुत इंस्पिरेशन मिल रही है और मैं आज ही ये ग्राउंड जीरो मूवी देखूंगा। एंड वंस अगेन थैंक्स अ लॉट एंड जय हिंद।
1: थैंक यू सो मच गिरीश, आप तो उस एरिया में रह रहे हैं जहां मैं रिटायरमेंट के बाद रह रहा हूं।
0: अच्छा,
1: थैंक यू सो मच। हिंडन नदी के आसपास आप रह रहे होंगे तो बढ़िया है, आप इस फिल्म को देखिए और उसको एंजॉय करिए, बड़ी प्रोफेशनल और नीट एंड क्लीन फिल्म है। फ्रॉम माई साइड बेस्ट ऑफ लक।
0: जी सर, ऐसे बहुत कम लोग आए हैं हमारे, ऐसे सोल्जर्स आए हैं हमारे संदेश सोल्जर्स में जिनकी लाइफ पर कोई बॉलीवुड की फिल्म बनी हो, फुल फ्लेज कमर्शियल मूवी, तो वो है ग्राउंड जीरो जो आपकी लाइफ पर बनी है।
1: सब भारत सरकार का क्रेडिट है, उन्होंने काफी दिन बाद इसके लिए आदेश दिया, गृह मंत्रालय के ऑर्डर से बनी है
0: जी,
1: और सरकारी आदेश के बगैर ये फिल्म इस लेवल की बन नहीं सकती थी
0: जी,
1: और बड़ा उन्होंने ऑथेंटिक बनाने की कोशिश की थी।
0: बिल्कुल।
1: बट हमारे देश में पिछले अप्रैल में एक बड़ी भारी एक ट्रेजडी हुई थी कश्मीर में, उस ट्रेजडी के साए में फिल्म रिलीज हुई थी।
0: okay.
1: तो थोड़ा सा सारा अटेंशन लोगों का मीडिया पे था, जैसा मेरा मानना है
0: जी।
1: 25 अप्रैल इसका रिलीज था, 22 अप्रैल को एक ट्रेजडी हुई थी देश में
0: जी, जी, जी।
1: कश्मीर में, तो वो एक वजह है, बट अभी प्राइम पे तो बहुत अच्छा ये
0: जी। सर, एक मैसेज और आया है, वो कुछ पंक्तियां आपकी तारीफ में कुछ लिखना चाहते हैं। यश शिंदे हैं ये। DIG नरेंद्रनाथ दुबे सर, आपके सम्मान, कर्तव्य निष्ठा और व्यक्तित्व की प्रशंसा में कुछ पंक्तियां मेरी तरफ से कुछ इस कदर है कि वर्दी की आन देश की शान है, आप मजलूमों का संबल, जालिमों का काल हैं आप। नरेंद्रनाथ सर, आपकी कर्तव्य निष्ठा को सलाम, इस खाकी के गौरव की सच्ची पहचान है आप। चेहरे पर तेज, आंखों में ईमानदारी का नूर है, आपके आने से हर जुल्म खाक में मिलने को मजबूर है।
1: क्या बात है,
0: क्या बात। नरेंद्र नाथ सर का नाम ही ऐसा है जिससे अपराधियों का हौसला चकनाचूर है।
1: जबरदस्त आपने लाइन लिखी, आप तो आशु कवि हैं, आप जज्बाती हैं,
0: बिल्कुल
1: प्रेमी हैं। थैंक यू सो मच फॉर सच ए ग्रेट वर्ड।
0: और सर, यही जो यंगस्टर्स हैं हमारे, जो हमारा फ्यूचर, देश का फ्यूचर है, जो देश को भविष्य की तरफ, तरक्की की तरफ लेकर के जाएंगे, हम बस प्रोग्राम खत्म होने पर है तो हम चाहेंगे कि सर कुछ ऐसी बात कहें जो लोगों को इंस्पायर करें। जैसे आप मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं, आप गाइड करते हैं लोगों को, आप अपने एक्सपीरियंसेस से लोगों को सिखाते हैं, समझाते हैं, तो यहाँ पे भी आप जरूर अपने
1: युवा पीढ़ी को ये बताना चाहूंगा कि आपकी एक जिंदगी है, उसको आप अपने तरीके से शेप करिए, उसको बनाइए, बिल्ड करिए। आपके अंदर भी कुछ अरमान है, कुछ ऑब्जेक्टिव है, कुछ पर्पज है अपने फ्यूचर के लिए, लेकिन एक चीज हमेशा ध्यान रखिए कि हमारा देश एक ऐसे जियोपॉलिटिकल एरिया में बसा हुआ है कि कि जिसका अगर हिमालय उसको टीका लगाता है तो हमारा जो है भारत देश आपको जो है आप समुद्र देख लीजिए कि हिंद महासागर उसके पैर धोता है। तो ऐसे देश के दुश्मनों की कोई कमी नहीं है, हमारे बॉर्डर्स बड़े ही टफ हैं, तो आप अपनी सुरक्षा, समाज की सुरक्षा और नेशनल सिक्योरिटी को भी मन में ध्यान में रख के चलिए, शायद ये हमारे लिए बड़े काम की चीज होगी।
0: बिल्कुल सर, बहुत अच्छी आपने बात कही। और सर बहुत बहुत धन्यवाद, आप स्टूडियो में आए, अपना समय दिया और आप जिस शख्सियत से बात करना हमारे लिए बहुत गर्व की बात है, बहुत सम्मान की बात है, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ रहे श्री नरेंद्रनाथ धर दुबे, फॉर्मर DIG BSF। बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू सो मच। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी रेनबो, अगला प्रोग्राम लेकर के आए हैं रेशमा, सेटेलाइट आप सुनेगा दिल से दिल तक।

0: मीडियम वेव 396.82 मीटर यानी 756 किलोहर्ट्स और एफएम बैंड 100.1 मेगाहर्ट्स पर हम आकाशवाणी के जगदलपुर केंद्र से बोल रहे हैं। आप हमारे कार्यक्रम मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी सुन सकते हैं। शाम के 5 बजे है। प्रस्तुत है कार्यक्रम विवरण। पहले जानिए आज के शेष कार्यक्रमों के बारे में। अब से कुछ देर बाद शाम 5:05 पर होगा हल्बी बोली में समसामयिक विषयों पर आधारित कार्यक्रम भारत सरकार आपके द्वार। युवावाणी कार्यक्रम आप सुनेंगे 5:10 पर। रामो बिसाई और साथियों का गाया हल्बी लोकगीत आप सुन सकते हैं 6:35 पर। दैनिक कार्यक्रम बस्तर के स्वर का प्रसारण किया जाएगा 7:00। 7:21 पर प्रसारित किया जाएगा प्रायोजित कार्यक्रम किसान वाणी। लोकगीतों के कार्यक्रम डांडा माली में 8:00 आप सुन सकते हैं झीनकी नाग और साथियों के गाए ध्रुवी लोकगीत। पीला मन का जे गोट बच्चों के लिए हल्बी बोली में ये कार्यक्रम प्रसारित किया जाता है 8:30 पर। 9:15 पर होगा हल्बी बोली में कार्यक्रम ग्राम पंचायत की विकास गाथा। इसमें आप सुनेंगे वार्ता साहूकारी लेन देन पर प्रतिबंध अंधविश्वास जादू टोना। वार्ताकार होंगे बलबीर सिंह कच्छ। बस्तर के लोकगीतों के कार्यक्रम घुमकली में 9:30 पर आप सुन सकते हैं लंबोदर बघेल और साथियों का गाया भद्री नाट गीत। गैर फिल्मी गीतों का कार्यक्रम सुनेगा आज 10:00। फिल्म संगीत का प्रसारण किया जाएगा 10:30 पर। अब जानिए कल के कार्यक्रमों के बारे में। कल सुबह 8:30 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम इनसे मिलिए, जिसे आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से रिले किया जाएगा। कल हमारी पहली सभा में सुबह 6:05 पर होगा भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना चिंतन 6:20 पर। श्री रामचरित मानस का गायन सुबह 6:25 पर हम प्रसारित करते हैं। कृषि सामयिकी बेड़ा खाड़ा चुगोट का प्रसारण किया जाएगा 6:35 पर और दिन में 1:05 पर। हुलहुली में सुबह 6:40 पर आप सुनेंगे बिरखम देवपाड़। वादक कलाकार होंगे पाखलू और साथी। दैनिक कार्यक्रम नमस्कार जगदलपुर का प्रसारण किया जाएगा 7:05 पर। इसमें कल आप सुनेंगे आज के अतिथि कार्यक्रम के अंतर्गत गणपति चौधरी से ली गई भेंट वार्ता। आपसे बातें करेंगी चंद्र ऋषि ठाकुर। साथी होगी फिल्मी गीतों की मधुरिमा। प्रायोजित कार्यक्रम एनसीईआरटी का प्रसारण समय होगा 9:00 का। एक ही फिल्म से ये कार्यक्रम आप सुनते हैं 9:30 पर। गुलशन कार्यक्रम में कल 10:00 आप सुनेंगे क्रम मेरी पसंद। बस्तर के लोकगीतों के कार्यक्रम गुड़दुम में आप सुन सकते हैं सुबरी बघेल और साथियों के स्वर में हल्बी लोकगीत। प्रसारण समय होगा कल 10:30 का। एक ही कलाकार ये कार्यक्रम प्रसारित किया जाएगा 11:00। कल का हमारा ये कार्यक्रम केंद्रित होगा सुप्रसिद्ध निर्माता निर्देशक और गीतकार सावन कुमार पर। लोकगाथाओं के कार्यक्रम रुसरुसा में कल 11:30 पर आप सुनेंगे लोकगाथा चंद्रकांत राजा का दूसरा भाग। गायिका होंगी शांति और साथी। लोक साहित्य पत्रिका मोचो माटी का प्रसारण किया जाएगा कल दिन में 12:00। संपादक होंगे बलबीर सिंह कच्छ। कल दिन में 12:30 पर प्रसारित किया जाएगा ग्रामीण महिलाओं का कार्यक्रम घर द्वार। फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम श्रोता सुमन आप सुनते हैं 1:10 पर। कला और कलाकार ये कार्यक्रम प्रसारित किया जाता है 2:30 पर। कल शाम 5:05 पर आप सुनेंगे गोंडी बोली में समसामयिक विषयों पर आधारित कार्यक्रम भारत सरकार आपके द्वार। युवावाणी कार्यक्रम का प्रसारण हम करेंगे कल शाम 5:10 पर। 6:35 पर राजेंद्र कश्यप और साथियों के गाए हल्बी लोकगीत आप सुन सकते हैं। बस्तर के स्वर ये दैनिक कार्यक्रम आप सुनते हैं 7:00। ग्रामीण श्रोताओं का कार्यक्रम आम चौगाव प्रसारित किया जाएगा कल 7:21 पर। लोकगीतों के कार्यक्रम घलर में कल 8:00 आप सुनेंगे रामनाथ और साथियों के गाए हल्बी लोकगीत। पीला मन काजी गोट बच्चों के लिए हल्बी बोली में ये कार्यक्रम प्रसारित किया जाता है 8:30 पर। हल्बी में भेंट वार्ताओं का कार्यक्रम नंजर प्रसारित किया जाएगा कल रात 9:15 पर। इसमें कल आप सुनेंगे भूवैज्ञानिक प्रियंका कश्यप से बलबीर सिंह कच्छ की बातचीत। हल्बी में खेल पत्रिका सुनिए कल रात 9:30 पर। इसके अंतर्गत आप सुनेंगे नैना सिंह धाकड़ से पूर्णिमा सरोज की भेंट वार्ता। कल रात 10:00 आप सुनेंगे फरमाइशी लोकगीतों का कार्यक्रम लोकरस। प्रस्तुति होगी संपत राम नाग की, संयोजन चंद्र ऋषि ठाकुर का होगा। ये था कार्यक्रम विवरण। आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। शाम के 5:05 हुए हैं। लीजिए सुनिए हल्बी बोली में समसामयिक विषयों पर आधारित कार्यक्रम भारत सरकार आपके द्वार।
1: जुहार रेडियो सुनते भाई बहन मन, समसामयिक विषयों पर आधारित कार्यक्रम संगे मैं शांति नाग। भाई बहन मन, आज जो आमचो ए कार्यक्रम केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह चो छत्तीसगढ़ प्रवास ने केंद्रित आसे। बस्तर चो दुरिया बाटे रतोबिता लोग मन के अदाय शासकीय योजना मन चो लाभ मिर्तो संगे ची डिजिटल सेवा मन बले आसानी ले मिरे दे। हाल ले ची आपलो छत्तीसगढ़ प्रवास दाए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बस्तर जिला चो नेतानार गांव ने जन सुविधा केंद्र चो उद्घाटन करला। ये जन सुविधा केंद्र के आदिवासी नेता और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी शहीद वीर गुंडाधुर चो नाव ने बनालो रासे। ये जन सुविधा केंद्र CRPF चो सुरक्षा परिसर ने बनालो रासे। कार्यक्रम के संबोधित करते श्री शाह बल्ला की गेलो 6 दशक दाए नक्सलवाद चो कारण ने बस्तर के बड़े असन जोन आर्थिक सामाजिक और सांस्कृतिक नुकसान होली से हुंचो भरपाई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चो नेतृत्व ने सरकार ए तो 5 बरक ने करे दी। हुनमन बल्ला की ए तो 1.5 बरक ने बस्तर ने बनालो सुरक्षा बल मंचो 200 असन कैंप मन ले 70 ठान कैंप मन के जन सेवा केंद्र मन ने बदरून हुनमन के आदिवासी कल्याण चो केंद्र बनातोर हो दे। ये सेवा केंद्र मन ने बैंकिंग आधार राशन कार्ड कौशल प्रशिक्षण संगे केंद्र और राज्य सरकार चो सपाई योजना मन बीती सपाई सुविधा मन देतोर हो दे। एक छाड़ून नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड चो सहायता ले बस्तर संभाग ने रतोबिती मेहरार मन के पशुपालन और डेयरी उद्योग ले बले जोड़तोर हो दे। जन सुविधा केंद्र ने जन्म आय जाति और बले प्रमाण पत्र गुटकी ठान ने बनाओ खोय दे। ये केंद्र ने मेहरार मन के बैंक सखी चो बले प्रशिक्षण देतर हो दे। केंद्रीय गृह मंत्री अमली प्रशिक्षण केंद्र ने प्रशिक्षण धरतोर स्व सहायता समूह मंचो मेहरार मन ले गोठ बात करला और हुनमन ले जानला की कसन हुनमन तेतर के बिकुन आपलो आमदनी ने बाढ़ती कर सोत। केंद्रीय गृह मंत्री श्री शाह जगदलपुर ने आयोजित उजर बस्तर बदलते बस्तर की नई पहचान कार्यक्रम ने बले शामिल होला। ए मौका ने हुनमन शहीद जवान मंचो घर चो लोग मन ले सुरक्षा बल मंचो जवान मन संगे ची नक्सलवाद हिंसा ले प्रभावित लोग मन संगे गोठबात करला। कार्यक्रम के संबोधित करते हुनमन बल्ला की जेबे केंद्र सरकार नक्सलवाद खत्म करतो संकल्प धरू रहे तो हुनचो उद्देश्य माओवाद के खत्म करतोर चिन्हुआ है बल्कि बस्तर क्षेत्र चो गरीब आदिवासी मन चो जीवना ने हुन सपाई सुविधा अमरातोर बले रहे जोन बड़े बड़े शहर मन ने आसे। केंद्रीय गृह मंत्री बस्तर प्रवास दाए अमर वाटिका अमरून माओवाद चो विरुद्ध लड़ाई ने सबले बड़े बलिदान देतो बिता शहीद जवान मन के श्रद्धांजलि दिला। ए मौका ने केंद्रीय गृह मंत्री बल्ला की बस्तर चो माटी ने शांति सुरक्षा और बाढ़ती बनातो ने जवान मंचो बलिदान नि भूलकतो बीती आए। हुनमन बल्ला की केंद्र और राज्य सरकार बस्तर ने स्थायी शांति बनातो ने बाढ़ती के आखिरी मनुक तक अमरातोर और माओवाद चो समूल उन्मूलन काजे पूरा प्रतिबद्धता संगे काम करे से। एदा श्री शाह बीजापुर नक्सली हमला ने शहीद जवान कालेन्द्र प्रसाद नायक और पवन कुमार मंडावी चो घर चो लोग मन संगे बले भेंट करला। हुनमन घर चो लोग मन चो मंजी बसुन हुनमन चो दुख के बाटला और सरकार बाटले हर प्रकार चो होतो असन सहायता चो भरोसा दिला। केंद्रीय गृह मंत्री सुरक्षा बल मन चो जवान मन संगे गोठबात करून हुनमन चो उत्साह वर्धन करला और हुनमन चो साहस और समर्पण के सहराला। कार्यक्रम ने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा संगे जन प्रतिनिधि और बड़े पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी रला। एचो पहल केंद्रीय गृह मंत्री रायपुर ने 400 अत्याधुनिक डायल 112 और 32 फोरेंसिक मोबाइल वैन के हरा झंडा दिखाउन रवाना करला। एबे तक छत्तीसगढ़ चो सिर्फ 16 जिला मन ने ये सेवा रली मानतर अदाय राज्य सरकार ये सेवा सेवा के सपाय 33 जिला मन ने कर ली से। डायल 112 सेवा ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्थान पहचान तकनीक के जोडोरा से जेचोले संकट ने फसलो मनुख चो वास्तविक भौगोलिक स्थिति चो सही पता लगाऊ खोय दे। हुताय महिला सुरक्षा के पहल संगाते ए व्यवस्था ने पैनिक बटन और विशेष निगरानी सुविधा मन के बले जोड़लो रासे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 19 मई के जगदलपुर ने आयोजित मध्य क्षेत्रीय परिषद चो बसका चो अध्यक्षता करला। ए बसका ने छत्तीसगढ़ संगे मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड चो मुख्यमंत्री और बड़े अधिकारी शामिल होला।
0: अभी आप सुन रहे थे हल्बी बोली में समसामयिक विषयों पर आधारित कार्यक्रम भारत सरकार आपके द्वार। हम आकाशवाणी के जगदलपुर केंद्र से बोल रहे हैं। 5:10 हो चुके हैं। अब प्रस्तुत है नौजवान श्रोताओं के लिए हमारा दैनिक कार्यक्रम युवा वाणी।

0: हेलो, हाय, गुड इवनिंग, नमस्कार, आदाब और सत श्री अकाल दोस्तों। उम्मीद है आप सभी जहां भी हैं अच्छे होंगे, मुस्कुरा रहे होंगे और इस खूबसूरत शाम का आनंद ले रहे होंगे। स्वागत है आप सभी का आज के सुहानी सी शाम में आपके और हमारे पसंदीदा कार्यक्रम युववाणी में, जिसमें मैं हूं आपके साथ आपका रेडियो साथी खिलेश पांडे
1: और मैं हूं पूजा बघेल। स्वीकार करें हमारा प्यार भरा अभिवादन।
0: नमस्कार पूजा।
1: हाँ,
0: आजकल गर्मी कुछ ज्यादा ही बढ़ गई है नहीं?
1: हाँ।
0: सुबह से ही तेज धूप परेशान कर देती है।
1: बिल्कुल खिलेश, और सिर्फ गर्मी ही नहीं, मौसम भी अब पहले जैसा नहीं रहा।
0: सही कहा तुमने, कभी अचानक बारिश तो कभी तेज गर्म हवाएं चलने लगती हैं।
1: हाँ, और इसका सबसे बड़ा कारण है पर्यावरण में लगातार हो रहा बदलाव। प्रकृति हमें लगातार संकेत दे रही है।
0: बिल्कुल पूजा, इसीलिए आज का हमारा चर्चा का विषय है पर्यावरण के प्रति युवाओं में जागरूकता।
1: आज बढ़ता प्रदूषण, पेड़ों की कटाई और जल संकट बहुत बड़ी समस्या बन चुके हैं, और इन समस्याओं का असर सबसे ज्यादा युवाओं पर ही पड़ता है।
0: इसीलिए जरूरी है कि युवा सिर्फ बातें ना करें बल्कि आगे आकर काम भी करें।
1: खिलेश,
0: हाँ?
1: देखा जाए तो आज के युवा पर्यावरण के प्रति पहले से ज्यादा जागरूक दिखाई दे रहे हैं।
0: हाँ, वो तो है। सोशल मीडिया पर भी लोग पेड़ लगाने, प्लास्टिक का उपयोग कम करने की बातें करते हैं।
1: हाँ, और कई युवा स्वच्छता अभियान और वृक्षारोपण कार्यक्रमों में बढ़ चढ़कर हिस्सा भी ले रहे हैं।
0: बिल्कुल, यही छोटी कोशिशें आगे चलकर बड़ा बदलाव बनती हैं। पर्यावरण संरक्षण सिर्फ पेड़ लगाने तक सीमित नहीं है, इसके और भी तरीके हैं, जैसे पानी बचाना, बिजली की बचत करना और प्लास्टिक का कम उपयोग करना।
1: आज कई युवा साइकिल का उपयोग कर रहे हैं और कपड़े के बैग इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन अभी भी बहुत से लोग पर्यावरण की समस्याओं को गंभीरता से नहीं लेते हैं।
0: बिल्कुल पूजा, कहीं नदियों में कचरा फेंका जा रहा है तो कहीं पेड़ों की अंधाधुंध कटाई हो रही है।
1: हाँ, और इसका असर हम सभी अपने आसपास महसूस कर रहे हैं। मौसम का बदलता रूप हमें लगातार ये बता रहा है कि अब संभलने का समय आ गया है।
0: बिल्कुल, मुझे लगता है कि पर्यावरण के प्रति जागरूकता की शुरुआत हमें घर और स्कूलों से होनी चाहिए।
1: हाँ खिलेश, अगर बच्चों को बचपन से ही प्रकृति का महत्व समझाया जाए तो वे जिम्मेदार नागरिक बनेंगे।
0: बिल्कुल, स्कूलों और कॉलेजों में पर्यावरण से जुड़े कार्यक्रम और रैलियां आयोजित करनी चाहिए।
1: और आज तकनीक का दौर है, युवा इंटरनेट और सोशल मीडिया के माध्यम से लाखों लोगों तक संदेश पहुंचा सकते हैं।
0: बिल्कुल, मुझे लगता है कि युवाओं में ऊर्जा और जोश की कोई कमी नहीं होती, जरूरत सिर्फ सही दिशा की होती है। अगर युवा ठान ले तो पर्यावरण संरक्षण को जन आंदोलन बनाया जा सकता है।
1: बिल्कुल खिलेश, और पर्यावरण बचाना सिर्फ जिम्मेदारी नहीं बल्कि हमारे भविष्य की सुरक्षा है। आज हम विकास की दौड़ में प्रकृति से दूर होते जा रहे हैं, लेकिन हमें समझना होगा कि विकास और पर्यावरण दोनों साथ साथ चल सकते हैं।

0: सकते हैं।
1: और इसके लिए संतुलन जरूरी है, हमें ऐसे विकल्प अपनाने होंगे जो प्रकृति को नुकसान न पहुंचाए।
0: श्रोताओं, एक बात हमेशा याद रखिए, पृथ्वी हमारी जरूरतें पूरी करती है, इसलिए हमें प्रकृति का सम्मान करना सीखना होगा।
1: बिल्कुल, और जब युवा जागरूक होंगे तभी समाज भी जागरूक बनेगा, क्योंकि प्रकृति सुरक्षित होगी तभी हमारा भविष्य सुरक्षित होगा।
0: हाँ बिल्कुल श्रोताओं, ये था हमारे आज का चर्चा का विषय, पर्यावरण के प्रति युवाओं में जागरूकता। तो चलिए दोस्तों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और जानते हैं आज के कार्यक्रम में क्या है खास।
1: दोस्तों, आज आप सुनेंगे आज के फनकार, साथ ही कुछ खेल समाचार, सामान्य ज्ञान की बातें और वार्ता।
0: दोस्तों आइए चलते हैं कार्यक्रम आज के फनकार की ओर। आज की ये खास शाम समर्पित है हिंदी सिनेमा के उस सितारे को, जिनकी आवाज में अपनापन था, जिसकी आंखों में सच्चाई थी और जिसकी जिंदगी संघर्ष, प्यार और इंसानियत की मिसाल थी।
1: जी हाँ, आज हम बात करेंगे महान अभिनेता, निर्माता, समाजसेवी और नेता सुनील दत्त साहब की।
0: सुनील दत्त हिंदी सिनेमा के सबसे सम्मानित कलाकारों में से एक थे। उनका असली नाम बलराज दत्त था। उनका जन्म 6 जून 1929 को झेलम जिले के खुर्द गांव में हुआ था, जो आज पाकिस्तान में है। उनके पिता का नाम रघुनाथ दीवान दत्त था।
1: भारत पाकिस्तान विभाजन के बाद उनका परिवार भारत आ गया। शुरुआती दिनों में उन्हें काफी संघर्ष किया। वो कॉलेज के साथ नौकरी भी करते थे और बाद में रेडियो अनाउंसर बने। वहीं से फिल्मों की दुनिया में उन्होंने कदम रखा।
0: 1950 से 80 के दशक में उनकी सुपर हिट फिल्मों में से वे गंभीर, देशभक्त और भावनात्मक भूमिका के लिए जाने जाते रहे हैं।
1: इनकी कुछ प्रसिद्ध फिल्मों में जैसे पड़ोसन, मदर इंडिया, मुझे जीने दो, यादें, वक्त, साधना है, जिनकी छाप आज भी लोगों के दिलों में छाई हुई है।
0: तो इसी के साथ शुरू करते हैं आज का पहला गीत, जो साल 1968 में आई फिल्म पड़ोसन से है, जिसमें सुनील दत्त ने भोले भाले भोलाराम का किरदार निभाया था। और इसी फिल्म की कॉमेडी आज भी लोगों को हंसाती है। और अब सुनते हैं वही गीत जिसमें पड़ोस वाली खिड़की से पैर शुरू होता है।

0: एक मजबूत घर बिल्कुल उस पिता की तरह होता है जो हर मौसम सह कर भी घर की नींव को कभी हिलने नहीं देता।
1: आपके घर के लिए भरोसे का दूसरा नाम चेटिनाड सीमेंट का मैक्स क्रीट सीमेंट, 64 सालों की बुनियाद के साथ। चेटिनाड सीमेंट, द परफेक्ट कंक्रीट चॉइस।
2: चन चन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
3: पौष्टिक आहार है टीबी के खिलाफ सबसे बड़ा हथियार। पौष्टिक आहार से उपचार परिणाम बेहतर होते हैं और स्वास्थ्य में तेजी से सुधार आता है। इसीलिए तो निक्षय पोषण योजना के अंतर्गत इलाज के दौरान हर रोगी को मिलते हैं 1,000 रूपए प्रतिमाह पोषण सहायता के रूप में, और सभी टीबी रोगियों के लिए न्यूट्रिशन सप्लीमेंट देने का प्रावधान है। साथ ही टीबी रोगियों के इलाज के दौरान हजारों निक्षय मित्र उन्हें पोषण किट प्रदान करते हैं। आप भी निक्षय मित्र बनकर टीबी रोगियों की सहायता कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए निक्षय.in पर जाएं। आइए हम सब साथ मिलकर देश को टीबी मुक्त बनाएं।
4: सुनील दत्त की शादी मशहूर अभिनेत्री नरगिस से हुई। दोनों की प्रेम कहानी बॉलीवुड की सबसे प्रसिद्ध कहानियों में गिनी जाती है। फिल्म मदर इंडिया की शूटिंग के दौरान आग लगने पर सुनील दत्त ने नरगिस की जान बचाई थी, जिसके बाद दोनों करीब आए और 1958 में शादी कर ली। तो क्यों ना इसी फिल्म का एक गीत सुनें।

0: मदर इंडिया जो 1957 में आई थी, ये फिल्म उनकी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट बना जिसमें उन्होंने बिरजू के किरदार को बखूबी निभाया। फिल्म ऑस्कर तक पहुंची और आज भी भारतीय सिनेमा की महान फिल्मों में गिनी जाती है।
1: तो दोस्तों, गीतों का सिलसिला तो यूं ही चलता रहेगा, इसे देते हैं थोड़ी देर विराम और सुनते हैं वार्ता रोजगार के नए अवसर। वार्ताकार हैं मुस्कान यादव।
2: कार दोस्तों, मैं मुस्कान यादव आप सबके सामने एक विषय में बोलने जा रही हूँ जो कि आज के दौर में बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, जो है रोजगार के नए अवसर और बदलता जॉब मार्केट। आज के दौर में रोजगार का स्वरूप तेजी से बदल रहा है। पहले जहाँ लोग पारंपरिक नौकरियाँ जैसे सरकारी नौकरी, बैंकिंग या स्थायी निजी क्षेत्र को ही सुरक्षित मानते थे, वहीं आज के समय में जॉब मार्केट कहीं अधिक गतिशील हो गया है। तकनीकी विकास, वैश्वीकरण, डिजिटल क्रांति और बदलती आर्थिक नीतियों ने रोजगार के नए अवसरों के द्वार खोल दिए हैं। अब नौकरी का अर्थ केवल ऑफिस में बैठकर काम करना नहीं रह गया है, बल्कि यह फ्रीलांसिंग, स्टार्टअप, रिमोट वर्क और गिग इकोनॉमी तक विस्तारित हो चुका है। बदलता जॉब मार्केट का एक परिचय, जहां जॉब मार्केट का परिवर्तन मुख्य रूप से तकनीकी नवाचार और वैश्विक प्रतिस्पर्धा के कारण हुआ है। पहले जहां एक व्यक्ति एक ही नौकरी में पूरी जिंदगी काम करता था, आज के समय में लोग अपने करियर में कई बार बदलाव करते हैं। कंपनियां भी अब स्थायी कर्मचारियों के बजाय प्रोजेक्ट आधारित या कॉन्ट्रैक्ट वर्क को प्राथमिकता देने लगी है। इंटरनेट और डिजिटल प्लेटफॉर्म के विकास में दुनिया को एक वैश्विक गांव बना दिया है। अब एक व्यक्ति भारत में बैठकर अमेरिका या यूरोप की कंपनी के लिए काम कर सकता है। इससे न केवल रोजगार के अवसर बढ़े हैं, बल्कि प्रतिस्पर्धा भी बढ़ी है। तकनीकी क्रांति और रोजगार के नए अवसर भी आए हैं। तकनीकी क्रांति ने रोजगार के क्षेत्र में सबसे बड़ा परिवर्तन किया है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन डेटा साइंस, क्लाउड कंप्यूटिंग और साइबर सिक्योरिटी जैसे क्षेत्रों में नई नौकरियां की मांग तेजी से बढ़ी है। पहले जिन कामों को करने के लिए मानव श्रम की आवश्यकता होती थी, आज वे काम मशीनों द्वारा किए जा रहे हैं। इससे कुछ पारंपरिक नौकरियां समाप्त हुई हैं, लेकिन इसके साथ ही नई नौकरियों का सृजन भी हुआ है। उदाहरण के लिए है जैसे ऐप डेवलपर, डिजिटल मार्केटिंग विशेषज्ञ, कंटेंट क्रिएटर, डेटा एनालिस्ट, यूएक्स यूआई डिज़ाइनर। इन सभी क्षेत्रों में युवाओं के लिए व्यापक अवसर उपलब्ध हैं। डिजिटल प्लेटफॉर्म और गिग इकोनॉमी। गिग इकोनॉमी आज के जॉब मार्केट का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुका है। इसमें लोग फुल टाइम नौकरी के बजाय प्रोजेक्ट या अस्थायी कार्य करते हैं, जैसे फ्रीलांसिंग, ऑनलाइन ट्यूशन, कंटेंट राइटिंग, ग्राफिक डिजाइनिंग आदि। प्लेटफॉर्म जैसे फाइबर, अपवर्क और फ्रीलांसर में लोगों को अपनी प्रतिभा के अनुसार काम करने का मौका दिया है। इससे युवाओं को स्वतंत्रता मिली है कि वे अपनी पसंद के अनुसार काम करें और अपने समय का बेहतर प्रबंधन करें। हालांकि गिग इकोनॉमी में स्थायित्व की कमी होती है, लेकिन यह नए कौशल विकसित करने और आय के विभिन्न स्रोत बनाने का अच्छा माध्यम है। स्टार्टअप संस्कृति का विकास। भारत में स्टार्टअप संस्कृति तेजी से विकसित हो रही है। सरकार की स्टार्टअप इंडिया जैसी योजनाओं ने युवाओं को उद्यमिता की ओर प्रेरित किया है। आज के युवा नौकरी खोजने के बजाय नौकरी देने वाले बनना चाहते हैं। ई कॉमर्स, फिनटेक, हेल्थ टेक, एड टेक जैसे क्षेत्रों में कई नए स्टार्टअप उभर कर सामने आए हैं। इससे न केवल रोजगार के अवसर बढ़े हैं बल्कि नवाचार को भी बढ़ावा मिला है। स्टार्टअप में काम करने का अनुभव भी युवाओं के लिए काफ़ी उपयोगी होता है क्योंकि यहाँ उन्हें कई तरह के कौशल सीखने का अवसर मिलता है। महिलाओं के लिए बढ़ते अवसर भी सामने आए हैं। बदलते जॉब मार्केट ने महिलाओं के लिए भी नए अवसर प्रदान किए हैं। वर्क फ्रॉम होम और रिमोट जॉब के कारण महिलाएं अब घर और काम दोनों को संतुलित कर पा रही हैं। डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से महिलाएं ऑनलाइन बिजनेस, ब्लॉगिंग, यूट्यूब चैनल और फ्रीलांसिंग जैसे क्षेत्रों में अपनी पहचान बना रही हैं। इससे उनकी आर्थिक स्वतंत्रता भी बढ़ी है। इसके कारण कई चुनौतियों और समस्याएं भी सामने आई हैं। हालांकि नए अवसरों के कारण कई चुनौतियां भी सामने आई हैं। पहला, कौशल की कमी। तेजी से बदलती तकनीक के कारण कई लोगों के पास आवश्यक कौशल नहीं होते। दूसरा, नौकरी की अस्थायित्व। गिग इकोनॉमी और कॉन्ट्रैक्ट जॉब्स में स्थायित्व की कमी होती है। तीसरा, प्रतिस्पर्धा में वृद्धि। वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धा बढ़ गई है। चौथा, ऑटोमेशन का खतरा। कई पारंपरिक नौकरियां मशीनों द्वारा प्रतिस्थापित हो रही है। इन चुनौतियों से निपटने के लिए निरंतर सीखना और खुद को अपडेट रखना आवश्यक है। इसका यह निष्कर्ष है कि रोजगार का स्वरूप आज पहले से कहीं अधिक बदल चुका है, जहां एक और पारंपरिक नौकरियां कम हो रही हैं, वहीं दूसरी ओर नए अवसर तेजी से उभर रहे हैं। यह परिवर्तन चुनौतीपूर्ण जरूर है, लेकिन इसमें अपार संभावनाएं भी छिपी हुई है। यदि युवा सही दिशा में अपने कौशल का विकास करें और समय के साथ खुद को अपडेट रखें, तो वे इस बदलते जॉब मार्केट में न केवल सफल हो सकते हैं बल्कि अपने लिए नए रास्ते भी बना सकते हैं।
0: दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे वार्ता रोजगार के नए अवसर पर। वार्ताकार थी मुस्कान यादव। अब वापस चलते हैं गीतों की ओर।
1: सुनील दत्त और नरगिस की शादी 1958 में हुई और उनके तीन बच्चे हुए, संजय दत्त, प्रिया दत्त और नम्रता दत्त।
0: 1961 में आई फिल्म छाया, जिसका गीत आज भी काफी ट्रेंड में है। हम बात कर रहे हैं गीत इतना न मुझसे तो प्यार बड़ा, जिसे ये अपनी आवाज दी है लता तलत महमूद ने और संगीत से सजाया है सलील चौधरी ने। खिलेश,
1: हाँ,
0: क्यों ना इस गीत से पहले एक शायरी हो जाए।
1: बिल्कुल। दिल की धड़कन और मेरी सदा है वो, मेरी पहली और आखिरी वफा है वो, चाह है उसे चाहत से भी बढ़कर, मेरी चाहत और चाहत की इंतहा है वो। तो इसी शायरी के साथ चलिए सुनते हैं ये प्यारा सा गीत।

0: एक मजबूत घर बिल्कुल उस पिता की तरह होता है जो हर मौसम सह कर भी घर की नींव को कभी हिलने नहीं देता।
1: आपके घर के लिए भरोसे का दूसरा नाम चेटिनाड सीमेंट का मैक्स क्रीट सीमेंट, 64 सालों की बुनियाद के साथ। चेटिनाड सीमेंट, द परफेक्ट कंक्रीट चॉइस।
2: जीएसटी काउंसिल ने बीमा पर लगने वाले 18% टैक्स को घटाकर जीरो कर दिया है। ऐसे में जीवन बीमा लेने वालों को अब सिर्फ इंश्योरेंस का प्रीमियम ही भरना होगा और इस पर कोई भी अतिरिक्त टैक्स नहीं देना होगा। ये हेल्थ इंश्योरेंस लेने वालों के लिए बड़ा फायदा है क्योंकि LIC को पहले से ही इनकम टैक्स में छूट मिली हुई है। वहीं अब GST भी हटने से बीमा लेना फायदे का सौदा होगा।
0: एक मजबूत घर बिल्कुल उस पिता की तरह होता है जो हर मौसम सह कर भी घर की नींव को कभी हिलने नहीं देता।
1: आपके घर के लिए भरोसे का दूसरा नाम चेटिनाड सीमेंट का मैक्स क्रीट सीमेंट, 64 सालों की बुनियाद के साथ। चेटिनाड सीमेंट, द परफेक्ट कंक्रीट चॉइस।
3: दोस्तों, गीतों को देते हैं थोड़ा सा ब्रेक और सुनते हैं कुछ खेल समाचार। इंडियन प्रीमियर लीग के प्लेऑफ की रेस रोमांचक हो गई है। क्वालिफाई करने वाली टीम है रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु 18 अंकों के साथ, गुजरात टाइटंस 16 अंकों के साथ, सनराइजर्स हैदराबाद 16 अंकों के साथ अपनी जगह पक्की कर चुके हैं, जबकि राजस्थान रॉयल्स, पंजाब किंग्स, कलकत्ता नाइट राइडर्स, चेन्नई सुपर किंग्स और दिल्ली कैपिटल अभी भी चौथे स्थान के रेस में है।
4: दिल्ली में आयोजित कुमार सुरेंद्र सिंह शूटिंग चैंपियनशिप में मेघना सज्जनार और साहू माने ने मिक्स एयर राइफल में स्वर्ण पदक जीता है। भारत के अजय कुमार सरोज ने अमेरिका में आयोजित पोर्टलैंड ट्रैक फेस्टिवल की 1500 मीटर स्पर्धा में शानदार प्रदर्शन करते हुए चौथा स्थान प्राप्त किया है। हम वापस आ गए हैं आज के फनकार की ओर। दोस्तों, सुनील दत्त जी को 1968 में भारत सरकार द्वारा पद्मश्री प्राप्त हुआ है।
3: उन्हें फिल्म मुझे जीने दो और खानदान के लिए फिल्म फेयर बेस्ट एक्टर का अवार्ड भी मिल चुका है और 1996 में फिल्म फेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड भी प्राप्त हो चुका है।
4: दत्त साहब की फिल्म मेरा साया जो 1966 में आई थी, ये एक रहस्य और रोमांस से भरी फिल्म थी। तो चलिए सुनते हैं ये गीत जिसे स्वर दिया है लता मंगेशकर ने, गीतकार है राजा मेहंदी अली खान, संगीतकार है मदन मोहन। सुनते हैं ये गीत।

0: पृथ्वी पर लगभग 8 मिनट में पहुंचता है।
1: मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है।
0: अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष में तैरते हुए दिखाई देते हैं।
1: दोस्तों, ये थी कुछ रोचक जानकारियां जो आपके काम आई होगी। तो वापस चलते हैं आज की फनकार की ओर।
0: दोस्तों, सुनील दत्त सिर्फ अभिनेता नहीं थे, वे एक शानदार इंसान भी थे। उन्होंने अपनी पत्नी नरगिस जी की याद में नरगिस दत्त फाउंडेशन की शुरुआत की, जो कैंसर मरीजों की मदद करती है।
1: जी हाँ दोस्तों, दत्त साहब ने 1987 में पंजाब में शांति के लिए लंबी पदयात्रा भी की थी। इसके बाद वो राजनीति में आए और सांसद भी बने।
0: दोस्तों, 1963 में आई फिल्म गुमराह, ये B.R. चोपड़ा द्वारा निर्मित और निर्देशित एक क्लासिक बॉलीवुड ड्रामा है। इस फिल्म में सुनील दत्त, मीना, अशोक कुमार और शशिकला ने साथ काम किया है।
1: इस फिल्म के सदाबहार गीत चलो एक बार फिर से के गीतकार हैं साहिर लुधियानवी और संगीतकार हैं रवि। इस गाने की मशहूर गायक महेंद्र कपूर ने अपनी आवाज दी थी। तो सुनते हैं ये प्यारा सा गीत।

0: 25 मई 2005 को हिंदी सिनेमा ने अपना अनमोल सितारा खो दिया। सुनील दत्त साहब इस दुनिया को अलविदा कह गए।
1: दोस्तों, सुनील दत्त की आखिरी फिल्म मुन्ना भाई MBBS थी। ये फिल्म 2003 में रिलीज हुई थी, जिसमें उन्होंने अपने बेटे यानी संजय दत्त के पिता श्री हरि प्रसाद शर्मा का किरदार निभाया था।
0: सुनील दत्त ने अपने जीवन काल में वे पर्दे के पीछे की दुनिया से कहीं अधिक वास्तविक जीवन में एक बड़े नायक के रूप में रहे हैं।
1: तो इसी के साथ सुनते हैं आज का अगला गीत फिल्म वक्त से, जिसे स्वर दिया है मुन्ना डे ने, संगीतकार हैं रवि और गीतकार हैं साहिर लुधियानवी। तो सुनते हैं ये गीत।

दोस्तों अब सुनते हैं आज का आखिरी गीत फिल्म चिराग से, जिसे स्वर दिया है मोहम्मद रफ़ी ने, संगीतकार हैं मदन मोहन, गीतकार हैं मजरूह। तो चलिए दोस्तों सुनते हैं ये प्यारा सा गीत।

0: दोस्तों, समय हो चुका है आपसे विदा लेने का। आज की शाम में बस इतना ही। हम उम्मीद करते हैं आज का कार्यक्रम आपको पसंद आया होगा।
1: कल फिर होगी आपसे मुलाकात किसी नए कंपेयर साथी के साथ।
0: तब तक के लिए दीजिए हमें अनुमति। मैं पूजा बघेल
1: और मैं अखिलेश पांडे।
0: नमस्कार।

अभी युवावाणी कार्यक्रम का प्रसारण किया गया आकाशवाणी के जगदलपुर केंद्र से। शाम के 6 बजने वाले हैं। कुछ ही पलों में होंगे हिंदी समाचार। इसे हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे।

0: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। भारत और इटली ने व्यापार, निवेश और आपूर्ति श्रृंखला की मजबूती के लिए भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारे को और विकसित करने पर सहमति व्यक्त की है। संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने इस गलियारे पर सहयोग करने की प्रतिबद्धता दोहराई। उन्होंने कहा कि वैश्विक व्यापार, संपर्क और समृद्धि को बढ़ावा देने में इस गलियारे में महत्वपूर्ण क्षमता है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि बातचीत और कूटनीति ही आगे बढ़ने का एकमात्र रास्ता है।
1: हमने हमारी भावी साझेदारी को और सशक्त बनाने के लिए विस्तृत रूप से चर्चा की। भारत इटली ज्वाइंट स्ट्रेटेजिक एक्शन प्लान 2025-2029 हमारी साझेदारी को एक प्रैक्टिकल और फ्यूचरिस्टिक ढांचा प्रदान करता है। हम इस पर समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। हमारे साझा प्रयासों में द्विपक्षीय व्यापार 20 बिलियन यूरो के लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रहा है।
0: इटली की प्रधानमंत्री मेलोनी ने कहा कि दोनों देश इस गलियारे के विकास का मजबूती से समर्थन करते हैं। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड्स, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की सफल यात्रा के बाद स्वदेश लौट आए हैं। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि दुनिया भारत को एक भरोसेमंद साझेदार के रूप में देख रही है। प्रधानमंत्री की 5 देशों की यात्रा के बारे में आज नई दिल्ली में श्री गोयल ने कहा कि इस यात्रा से समाज के हर वर्ग को लाभ मिलेगा। उन्होंने बताया कि इस दौरान 57 महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि भारत ने कृषि उत्पादन बढ़ाकर खाद्य सुरक्षा को मजबूत करके और लाखों किसानों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाकर विश्व के सामने एक नया आदर्श प्रस्तुत किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को रोम में खाद्य और कृषि संगठन के एग्रीकोला मेडल से सम्मानित किए जाने पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए श्री चौहान ने कहा, ये सम्मान नए भारत की बढ़ती प्रतिष्ठा का प्रतीक है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और दक्षिण कोरिया के देशभक्त और वयोवृद्ध मामलों के मंत्री क्वोन ओह यूल ने आज सियोल में भारतीय समर स्मारक का संयुक्त रूप से उद्घाटन किया। इस अवसर पर रक्षा मंत्री ने कोरियाई प्रायद्वीप पर शांति और मानवीय सहायता के लिए भारत के योगदान की अमिट विरासत का उल्लेख किया। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज नई दिल्ली में उच्च स्तरीय सुरक्षा समीक्षा बैठक की। बैठक में रेलगाड़ियों में हाल की आग की कई घटनाओं में असामाजिक तत्वों के शामिल होने की जानकारी दी गई। मंत्रालय ने कहा कि ऐसी घटनाओं को गंभीरता से लिया गया है और रेलवे सुरक्षा बल इनकी जांच कर रहा है। बैठक में खुफिया जानकारी जुटाने की व्यवस्था मजबूत करने पर विशेष ध्यान दिया गया। सरकार ने कहा है कि देश में कच्चे तेल, पेट्रोल, डीजल, प्राकृतिक गैस और एलपीजी का पर्याप्त भंडार है। नई दिल्ली में पश्चिम एशिया की स्थिति पर आज पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि आपूर्ति स्थिर बनी हुई है और सभी पेट्रोल पंप पर उपलब्धता सुनिश्चित की जा रही है।
2: हमारी रिफाइनरीज ऑप्टिमम कैपेसिटी पर ऑपरेट कर रही हैं ताकि जो देश की डिमांड है उसको मीट किया जा सके। इसके अलावा रिफाइनरीज में एलपीजी प्रोडक्शन को रैंप अप किया गया है और लगभग 46,000 से 47,000 टन एलपीजी देश की रिफाइनरीज में बनाई जा रही है।
0: पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के अपर सचिव मुकेश मंगल ने कहा कि विन नाविकों की सुरक्षा और सुचारू समुद्री परिचालन के लिए विदेश मंत्रालय भारतीय मिशनों और समुद्री क्षेत्र से जुड़े हितधारकों के साथ लगातार समन्वय बनाए हुए हैं। उन्होंने कहा कि इस क्षेत्र में सभी भारतीय नाविक सुरक्षित हैं। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने इस वर्ष की कैलाश मानसरोवर यात्रा के यात्रियों का चयन करने के लिए कंप्यूटर से ड्रॉ निकाला। ये यात्रा जून में शुरू होकर अगस्त में संपन्न होगी। विदेश मंत्रालय ने कहा कि निष्पक्ष और पारदर्शी कंप्यूटर आधारित चयन प्रक्रिया के माध्यम से 1,000 यात्रियों का चयन किया गया है। ये यात्री लिपुलेख और नाथुला दर्रे के जरिए 20 जत्थों में रवाना होंगे। महाराष्ट्र में कौशल विकास, रोजगार, उद्यमिता और नवाचार विभाग ने दक्षिण कोरिया के शैक्षणिक संस्थानों के साथ आज 3 समझौतों पर हस्ताक्षर किए। इस अवसर पर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि कौशल विकास के क्षेत्र में दक्षिण कोरिया के साथ महाराष्ट्र की साझेदारी से राज्य के युवाओं के लिए वैश्विक अवसर सृजित होंगे। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: मीडियम वेव 396.82 मीटर यानी 756 किलोहर्ट्ज और एफएम बैंड 100.1 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के जगदलपुर केंद्र से बोल रहे हैं। आप हमारे कार्यक्रम मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी सुन सकते हैं। शाम के 6:05 हुए हैं।

मीडियम वेव और एफएम बैंड पर हम आकाशवाणी के जगदलपुर केंद्र से बोल रहे हैं। आप हमारे कार्यक्रम मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन एआईआर पर भी सुन सकते हैं। शाम के 6:10 होने वाले हैं। कुछ ही पलों में होंगे छत्तीसगढ़ी में समाचार। इसे हम आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे।

0: ये आकाशवाणी रायपुर है। छत्तीसगढ़ी समाचार बुलेटिन के संग किरण वर्मा के जय जोहार। अब सुनाओ आज के प्रमुख समाचार। छत्तीसगढ़ शासन के स्कूल शिक्षा विभाग ह निजी स्कूल के मनमानी रोके पर प्रदेश भर में निगरानी और जांच समिति के गठन करे है। भारतीय सेना ह ऑनलाइन सामान्य प्रवेश परीक्षा के तिथि घोषित कर दे है। औ आकाशवाणी के 90 बछर पूरा होए के उपलक्ष्य में आकाशवाणी केंद्र रायपुर डहर ले काली रायपुर में स्वरोत्सव संगीत समारोह के आयोजन करे जाही। अब समाचार विस्तार ले। छत्तीसगढ़ शासन के स्कूल शिक्षा विभाग ह निजी स्कूल के मनमानी रोके बर प्रदेश भर में निगरानी औ जांच समिति के गठन करे है। ये समिति अशासकीय स्कूल में फीस बढ़ोतरी और पुस्तक गणवेश खरीदी के शिकायत मन के निगरानी करही। इस संबंध में स्कूल शिक्षा विभाग जम्मू जिला कलेक्टर मन चिट्ठी जारी करे है। जारी आदेश में कहे गए है कि शासन के संज्ञान में ये बात आए है कि छत्तीसगढ़ में संचालित अशासकीय स्कूल मन को तिले अभिभावक मन पुस्तक गणवेश और दूसर जीनीस एके ही फर्म ले खरीदे बर बाध्य करे जाते। फर्म के अप्रत्याशित कीमत के सेती अभिभावक मन ऊपर वित्तीय बोझा बढ़त है। उमन के शिकायत के तुरते निराकरण पर जिला और विकासखंड स्तर में निगरानी और जांच समिति के गठन करे गए है। केंद्र सरकार कहे है कि उपभोक्ता पेशेवर और सौंदर्य बोध क्लिनिक टहार ले कोनो भी कॉस्मेटिक उत्पाद के प्रयोग इंजेक्शन के रूप में करे के अनुमति नहीं है। केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन कहे है कि कॉस्मेटिक के प्रयोग केवल मानव शरीर में लगाए छिड़के और स्प्रे करे बर होना चाहिए। ये उत्पाद में प्रतिबंधित सामग्री के उपयोग भ्रामक दावा इलाज बर कॉस्मेटिक के इस्तेमाल और इंजेक्शन ले कॉस्मेटिक के प्रयोग अधिनियम और नियम के उल्लंघन माने जाही। प्रदेश में चलत सुशासन तिहार के तहत मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय आज सूरजपुर जिला अस्पताल में अत्याधुनिक सिटी स्कैन मशीन के वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिया शुभारंभ करें। ये मशीन करीबन 4.5 करोड़ रूपया के लागत ले स्थापित करे गए है। ए मौका में मुख्यमंत्री कहिन कि नवा सिटी स्कैन मशीन के शुरू हुए ले तीर तखार के मरीज मनला इलाज के बने सुविधा मिल पाही। एकर पहली मुख्यमंत्री अपन सूरजपुर प्रवास के दौरान रामानुजनगर में तेंदुपत्ता संग्राहक मन ले गोट बात करीन। ओमन तेंदुपत्ता संग्रहण काम के जायजा लेवत संग्राहक मन के समस्या और ओमन के आजीविका ले जुड़े बुनियादी सुविधा के जानकारी लेन। श्री साय कहिन कि वनोपज संग्रहण करैया वाला मन के जीवन में समृद्धि लाना सरकार के प्राथमिकता है। रामानुजनगर क्षेत्र के वनोपज सहकारी समिति डहर ले ए साल निर्धारित लक्ष्य ले ज्यादा मात्रा में तेंदुपत्ता संग्रहण करे जा चुके है। बता दें कि ए साल राज्य सरकार तेंदुपत्ता संग्रहण के दर 5,500 रूपया प्रति मानक बोरा तय करे है। देश भर में आज आतंकवाद विरोधी दिवस मनाए जाते। ए दिवस ल मनाए के उद्देश्य युवा मन ल आतंकवाद और हिंसा के प्रवृत्ति ले दूर करना है। ए मौका में आने आने शासकीय और अशासकीय संस्था मन में आतंकवाद विरोधी शपथ घलो दिलाएगीस। आज के दिन बछर 1991 में पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी एक आतंकवादी हमला के शिकार हुए रहिन। भारतीय सेना ऑनलाइन सामान्य प्रवेश परीक्षा के तिथि घोषित कर दे है। आने आने श्रेणी पर निर्धारित ए ऑनलाइन परीक्षा अवैया 1 जून ले 5 जून तक और एकर बाद 8 जून ले 12 जून तक आयोजित करे जाही। छत्तीसगढ़ के 5 प्रमुख शहर भिलाई दुर्ग रायपुर बिलासपुर और जगदलपुर में एकर बर कुल 10 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जिहां हरेक दिन परीक्षा के आयोजन 3 ले 4 शिफ्ट में करे जाही। जम्मू पंजीकृत उम्मीदवार भारतीय सेना के आधिकारिक वेबसाइट में जाके अपन प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकत हैं। धमतरी जिला के युवा मनला रोजगार के मौका उपलब्ध कराए बर जिला प्रशासन और एक निजी संस्था के बीच समझौता ज्ञापन में हस्ताक्षर करे गए है। एक तहत जिला के बेरोजगार युवा आईटीआई उत्तीर्ण अभ्यर्थी डिप्लोमा धारक मन के संग्रह कुशल और अर्धकुशल श्रमिक मनला देश के आने आने राज्य में रोजगार के मौका दे जाही। छत्तीसगढ़ी समाचार बुलेटिन आप मन आकाशवाणी रायपुर ले सुनत हो।
1: छत्तीसगढ़ के खबर ले है आपकी वास्ता और खबर के विश्वसनीयता ले है हमार वास्ता। आकाशवाणी समाचार रायपुर के प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के संगे संग हमार समसामयिक कार्यक्रम आप रेडियो के संग अपन मोबाइल में घलो सुन सकत हो। आकाशवाणी समाचार फेसबुक ट्विटर और यूट्यूब में घलो हावय। हमार फेसबुक पेज हरे छत्तीसगढ़ न्यूज ऑन AIR, ट्विटर हैंडल CGAIR न्यूज और हमार यूट्यूब चैनल हरे छत्तीसगढ़ AIR न्यूज। तो अब रेडियो के संगे संग आपके मोबाइल के माध्यम ले हम आप तक पहुंचत हन छत्तीसगढ़ के हर खबर पर सुनत रहो आकाशवाणी समाचार।
0: अब आगू बढ़ो माचे समाचार कुती। आकाशवाणी के 90 बछर पूरा होए के उपलक्ष्य में आकाशवाणी केन्द्र रायपुर डहले काली 22 मई के रायपुर में स्वरोत्सव संगीत समारोह के आयोजन करे जाही। ए कार्यक्रम शांतिनगर स्थित विमतारा ऑडिटोरियम में संझा 6:30 बजे ले आयोजित करे जाही। दू सत्र में होवैया ए कार्यक्रम के दौरान सुगम संगीत और उप शास्त्रीय प्रस्तुति हुई। पद्मश्री मदन चौहान सुगम संगीत कार्यक्रम पेश कर ही उन्हें श्वेता शिवाले डहले उप शास्त्रीय संगीत के प्रस्तुति दे जाही। आकाशवाणी रायपुर के उप महानिदेशक और क्लस्टर प्रमुख वी राजेश्वर है बताइन कि आकाशवाणी है लोक प्रसारण के रूप में पाछू 90 बछर में उल्लेखनीय काम करे है। इस दौरान आकाशवाणी है सूचना शिक्षा समाचार मनोरंजन के माध्यम ले अपन ध्येय वाक्य के बहुजन हिताय बहुजन सुखाय के परिकल्पना न साकार करे के काम करे है। आकाशवाणी केन्द्र रायपुर है घलो स्थानीय संस्कृति लोक कला शिक्षा समाचार और मनोरंजन ल गांव गांव तक पहुंचाए में अहम भूमिका निभाए है। राज्य सरकार है कहे है कि मछली पालन ला प्रदेश में कृषि के दर्जा दे जाए ले एक लागत में लगभग 10% के कमी आए है। एक हले मछली पालक मन ला बने आर्थिक फायदा घलो मिला थे। आज रायपुर में मछली पालन के वैज्ञानिक तकनीक में रखे गए चिंतन शिविर ला संबोधित करन मछली पालन मंत्री रामेचार ने ताम हकीन कि प्रदेश के किसान मन पर मछली पालन अब ओमन के समृद्धि के साधन बन गए है। ओमन कहिन कि मछली पालक मन के आमदनी बढ़ाए बर आने आने वैज्ञानिक तरीका अपनाया जाते। इही कड़ी में गिफ्ट तिलापिया तकनीक के तहत रायपुर और कांकेर में विशेष क्लस्टर बनाए गए है। श्री नेताम कहिन कि बछर 2028 तक तिलापिया मछली उत्पादन ला 30,000 मीट्रिक टन पहुंचाए के लक्ष्य रखे गए है। बता दन कि मछली उत्पादन के मामला में छत्तीसगढ़ देश में 6वां स्थान में है। यहाँ सालाना 9.5 लाख मीट्रिक टन ले ज्यादा मात्रा में मछली के उत्पादन होवत है। संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी है ए पछर भारतीय प्रशासनिक सेवा के प्रारंभिक परीक्षा पर भुवनेश्वर कानपुर और मेरठ में 3 नवा परीक्षा केंद्र शुरू करे है। एकरे संग अब केंद्र के कुल संख्या 83 हो गए है। आयोग के अनुसार लगभग 23,000 उम्मीदवार मन ए नवा केंद्र पर आवेदन करे है। आयोग के अध्यक्ष डॉ अजय कुमार कहे है कि एकर उद्देश्य केंद्र में भीड़ ल कम करना और परीक्षा प्रक्रिया ल अनुकूल सुलभ और कुशल बनाना है। ए बछर सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा 24 मई के रखे जाही। परीक्षा पर कुल 8,19,000 ले ज्यादा आवेदन मिले है। इही बीच रायपुर में यूपीएससी के सिविल सर्विस प्रारंभिक परीक्षा जिला के 22 केंद्र में 2 पाली में होगी। पहली पाली बिहनिया 9:30 बजे ले 11:30 बजे तक और दूसर पाली मझनिया 2:30 बजे ले संझा 4:30 बजे तक संचालित होगी। अब थोरकुन समाचार सारमा। लोक निर्माण विभाग के सचिव मुकेश कुमार बंसल है आज नवा रायपुर में विभागीय समीक्षा बैठक में जम्मो टेंडर प्रक्रिया ल पारदर्शिता के संग पूरा करे बर कहिन। केंद्र सरकार है प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार बर अवैया 31 जुलाई तक नामांकन मंगाए है। एकर बर 5 ले 18 बछर के भारतीय नागरिक पात्र हुई। भिलाई पुलिस है नौकरी दिलाए के नाव में करीबन 7.5 लाख रूपया के ठगी के आरोपी ल गिरफ्तार करे है। रायपुर के स्वामी विवेकानंद विमानतल के प्रतीक्षालय में 30 फीट ऊंचा सीलिंग ले गिरे के सेती एक मजदूर के मौत हो गए। पुलिस ने मामला के जांच शुरू कर दी है। जांजगीर चांपा जिला के अर्जुनी गांव में तरिया में डूबे ले 8 और 9 साल के 2 सगे बहनी की मौत हो गई। जांजगीर चांपा जिला के खोखसा ओवरब्रिज के ऊपर पाछू संझा तेज रफ्तार 4-चक्का गाड़ी के अनियंत्रित होके पलटे ले 1 छात्र समेत 2 मनखे के मौत हो गए। उन्हें 1 दूसरा छात्र घायल हो गए। दुर्ग स्थित छत्रपति शिवाजी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में काली 22 मई के जिला स्तरीय रोजगार मेला और प्लेसमेंट कैंप रखे जाही। आखिर में प्रमुख समाचार एक घंव फेर। छत्तीसगढ़ शासन के स्कूल शिक्षा विभाग हां निजी स्कूल के मनमानी रोके बर प्रदेश भर में निगरानी और जांच समिति के गठन करे है। भारतीय सेना हां ऑनलाइन सामान्य प्रवेश परीक्षा के तिथि घोषित करते है। औ आकाशवाणी के 90 बछर पूरा होए के उपलक्ष्य में आकाशवाणी केंद्र रायपुर डहले काली रायपुर में स्वरोत्सव संगीत समारोह के आयोजन करे जाही। एकरे संग छत्तीसगढ़ी समाचार बुलेटिन इहे सिरावत है। जय जोहार।
2: इयम आकाशवाणी संप्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचकः जतिन शर्मा। आदौ मुख्य वार्ताः। भारत इटली देशौ व्यापार निवेश आपूर्ति श्रृंखलां सुदृढ़ीकर्तुं भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक वीथेः उत्तरोत्तर विकासार्थं परस्परं सहमतिं प्रकटितवन्तौ। सर्वकारेण कस्यापि सौन्दर्य प्रसाधनोत्पादनस्य सूचिका भेषजत्वेन प्रयोगः उपभोक्तृभ्यः विशेषज्ञेभ्यः अथवा सौन्दर्य चिकित्सालयेभ्यः सर्वथा निषेधितम्। स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालयेन इबोला संक्रमणेन प्रभावित देशेभ्यः आगच्छद्भ्यः अथवा पारगमनं कुर्वद्भ्यः यात्रिणां कृते कश्चन विशेष स्वास्थ्य परामर्शः प्रसारितः। तमिलनाडु राज्ये मुख्यमन्त्रिणः सी जोसेफ विजयस्य नेतृत्वयुते मन्त्रिमण्डले द्वात्रिंशत् जनाः सम्मिलिताः, येषु चतस्रः महिला मन्त्रिणः सन्ति। अपि च आईपीएल क्रिकेट स्पर्धायाम् अद्य सायम् अहमदाबाद नगरे गुजरात टाइटन्स तथा चेन्नई सुपर किंग्स दलयोः मध्ये प्रतिस्पर्धा भविष्यति। अथ वार्ताः विशदीकृत्य। भारत इटली देशौ व्यापार निवेश आपूर्ति श्रृंखलां सुदृढ़ीकर्तुं भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक वीथेः उत्तरोत्तर विकासार्थं परस्परं सहमतिं प्रकटितवन्तौ। एकस्मिन् संयुक्त वक्तव्ये भारतस्य प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी तथा च तस्य इटली समकक्षीया जॉर्जिया मेलोनी इत्येतौ भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक कॉरिडोर इत्यत्र सहकार्याय स्वकीय प्रतिबद्धतां ज्ञापितवन्तौ। अस्याः परियोजनायाः भूरिशः प्रशंसां कुर्वन्तौ उभौ नेतारौ ऐषमः 26,000+ अस्य उपक्रमस्य प्रगतये आईमेक मन्त्रिस्तरीय गोष्ठ्याः प्रथमायोजने दृढपदक्षेपं स्वीकर्तुं प्रोत्साहितवन्तौ। रोमनगरे प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्र मोदिना सह आयोजिते संयुक्त संवाददातृ सम्मेलने इटली देशस्य प्रधानमन्त्री जॉर्जिया मेलोनी आईमेक इत्येतं यूरोप मध्य पूर्व भारत देशान् संयोजयितुं कश्चन महान् आर्थिक सम्पर्क मार्गः वर्तते इति वर्णितवती। तया प्रोक्तं यदस्मिन् व्यापार निवेश आपूर्ति श्रृंखला स्थैर्यं दृढीकर्तुं महत् सामर्थ्यं वर्तते। मेलोनी इत्येषा अवोचत् यत् क्षेत्रीयान्तर सम्पर्कस्य सुदृढीकरणार्थं सर्वोपरि प्राथमिकता अस्ति तथा च उभावपि देशौ अस्य वीथिमार्गस्य विकासं दृढतया समर्थयतः। उभावपि प्रधानमन्त्रिणौ पुनरपि प्रोक्तवन्तौ यत् नवोन्मेषः विज्ञानं प्रौद्योगिकी च भारत इटली देशयोः मूलाधाराः सन्ति। अत्रावसरे प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी प्रोक्तवान् यत् इटली देशः स्वस्य विशिष्टाभिकल्पनायै सूक्ष्मता कौशलाय च विश्वविश्रुतोऽस्ति। अपरत्र भारतस्य ख्यातिः विशालतायै प्रतिभायै सुलभ नवोन्मेषाय च वर्तते।
3: हमने हमारी भावी साझेदारी को और सशक्त बनाने के लिए विस्तृत रूप से चर्चा की। भारत इटली ज्वाइंट स्ट्रेटेजिक एक्शन प्लान 2025-2029 हमारी साझेदारी को एक प्रैक्टिकल और फ्यूचरिस्टिक ढांचा प्रदान करता है। हम इस पर समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। हमारे साझा प्रयासों में द्विपक्षीय व्यापार 20 बिलियन यूरो के लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रहा है।
2: सर्वकारेण प्रोक्तं यत् कस्यापि सौन्दर्य प्रसाधनोत्पादनस्य सूचिका भेषजत्वेन प्रयोगः उपभोक्तृभ्यः विशेषज्ञेभ्यः अथवा सौन्दर्य चिकित्सालयेभ्यः सर्वथा निषिद्धो वर्तते। केन्द्रीय औषध मानक नियन्त्रण संघटनेन स्पष्टीकृतं यत् प्रसाधन सामग्र्यः केवलं मानव शरीरे घर्षणाय सेचनाय प्रोक्षणाय अथवा विकिरणाय च उद्दिष्टाः सन्ति। संघटनेन प्रोक्तं यत् विक्रयण वितरणार्थं प्रसाधनानां निर्माणं तथा च आयात प्रक्रिया प्रसाधन नियम 20/20 इत्यस्य प्रावधानैः नियन्त्रिता भवति। CDSCO इत्यनेन दृढीकृतं यत् प्रसाधनोत्पन्नेषु प्रतिबन्धित तत्त्वानाम् उपयोगः नामपत्रे भ्रामकोक्तिः संक्रमणोपचारार्थं सौन्दर्य प्रसाधनानां प्रयोगः तथा च सूचिका भेषजमाध्यमेन एते

ले जाही जन्म जन मांगले से बचन दे मिस्की नाई बोलबा के देवी बोली मुही जोड़ छुई सहित कर ली मुही वर्षा नईलार पानी मांगसी आदे

ब्राह्मण लागे नेलाय से ये दे गोसी मा पुरे दे ब्राह्मण निया तुम्ही बोलसे या से राजा से नहीं नहीं एम के देले मोय ने भी नहीं सुनो सुनो राजा पूर्ण खाने कमला बची रानी एबे कोई भी अछे मुही ये के मारी खरी

रामो बिसाई और साथियों के स्वर में अभी आप सुन रहे थे हल्बी लोकगीत आकाशवाणी के जगदलपुर केंद्र से। शाम के 6:45 होने वाले हैं। कुछ ही समय में विज्ञापनों के बाद आप सुनेंगे हिंदी में प्रादेशिक समाचार। इसे हम आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे।

0: बिल जीरो करने का भी है।
1: मैंने प्रधानमंत्री जी के कहने पर सोलर पैनल लगवाया और मेरा बिजली बिल जीरो आया। आप भी लगवा लो।
2: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना आज ही रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर। सूर्य घर
3: क्या बात है उमेश, आजकल खूब छाए हो अखबार में नई नई रिपोर्टिंग के साथ।
4: हाँ यार, पत्रकार जो हूँ।
3: तो अब अगली रिपोर्टिंग किस पर कर रहे हो?
4: सुधीर, मुझे एक ऐसी 11 साल की लड़की के बारे में पता चला है जिससे एक परिवार वाले घर का सारा काम करवाते हैं और ऊपर से उस पर ज्यादती करते हैं। उसी पर एक स्टोरी बना रहा हूँ।
3: उमेश, स्टोरी बनाते समय इस बात का ध्यान रखना कि पीड़ित बालिका का नाम, पता, फोटो या स्कूल का पता या ऐसी कोई भी जानकारी सामने ना आए जिससे उसकी पहचान होती हो।
4: क्यों?
3: क्योंकि ऐसा करना बाल न्याय तथा बच्चों की देखभाल और उनके संरक्षण संबंधी संवैधानिक अधिनियम 21A का उल्लंघन है। और इस बात का ध्यान हमारे सभी प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकारों को भी रखना है।
5: बाल अधिकार हनन से पीड़ित बच्चों की पहचान उजागर करने वाली जानकारी का प्रकाशन या प्रसारण न करें, क्योंकि इससे पीड़ित बच्चों के सामाजिक और मानसिक स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ सकता है।
6: अरे गोपाल, जा तो सब्जी बाजार से नींबू और मिर्ची लेकर आना।
7: क्या बात है मालिक, आज आप नींबू और मिर्ची क्यों खा रहे हैं?
6: अरे पगले, खाने के लिए नहीं, दुकान में लगाने के लिए मंगवा रहा हूँ। तू तो देख रहा है, दिन भर बैठ कर मक्खी मारता हूँ, 10 ग्राहक भी दुकान में नहीं आते।
7: आएंगे कैसे मालिक, हमारी दुकान का ठीक से प्रचार भी तो नहीं हो रहा है। मेरी मानिए तो आप भी अपनी दुकान का प्रचार आकाशवाणी से करवाइए, फिर देखिए हमारी दुकान में भी ग्राहकों की भीड़ लगेगी।
6: गोपाल, आज पहली बार तूने अक्लमंदी की बात की है रे।
7: क्यों नहीं मालिक, रेडियो जो सुनता हूँ।
5: अपनी दुकान, व्यापार या सेवा का प्रचार रेडियो से करवाइए, विज्ञापन बुक करने आकाशवाणी आइए।
8: बधाई हो सेठ जी, आपकी कंपनी की इस नई अगरबत्ती की खुशबू तो लाजवाब है।
7: अरे भाई साहब, आप देखते जाइए, अब तो ये अगरबत्ती घर घर में महकेगी। मैंने पूरे शहर में इसके विज्ञापन बंटवाए हैं।
9: क्यों भाई, सिर्फ शहर में? अरे गांव में नहीं महकेगी क्या?
7: महकना तो गांव में भी चाहिए, मगर गांव के लोगों को हमारी नई अगरबत्ती के बारे में पता कैसे चलेगा?
9: आकाशवाणी से।
5: गांव हो या शहर, अपनी दुकान या उत्पाद की जानकारी पहुंचाइए घर घर, आकाशवाणी आइए और विज्ञापन बुक करवाइए।
7: भाई साहब, आपके यहाँ कपड़ों पे 25% छूट अभी भी चल रही है ना?
9: हाँ हाँ जरूर, आपको किसने बताया?
7: मेरे रेडियो ने, वरना मैं तो इस डिस्काउंट से वंचित रह जाता।
5: विज्ञापन बुक करवाने आकाशवाणी आइए।
10: ये आकाशवाणी रायपुर है, प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं विभाष कुमार झा। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। स्कूल शिक्षा विभाग ने निजी स्कूलों की निगरानी के लिए प्रदेश भर में समितियों का गठन किया है। सुशासन तिहार के तहत मुख्यमंत्री ने आज सूरजपुर जिले का दौरा किया। आकाशवाणी द्वारा कल रायपुर में स्वरोत्सव संगीत समारोह का आयोजन किया जाएगा और भारतीय सेना ने ऑनलाइन सामान्य प्रवेश परीक्षा की तिथि घोषित कर दी है। अब समाचार विस्तार से। छत्तीसगढ़ शासन के स्कूल शिक्षा विभाग ने निजी स्कूलों की निगरानी के लिए प्रदेश भर में समितियों का गठन किया है। ये समिति अशासकीय स्कूलों में फीस बढ़ोतरी तथा पुस्तक गणवेश खरीदी की शिकायतों की जांच करेगी। इस संबंध में स्कूल शिक्षा विभाग ने सभी जिला कलेक्टरों को पत्र जारी किया है। जारी आदेश में कहा गया है कि शासन के संज्ञान में यह बात आई है कि छत्तीसगढ़ में संचालित अशासकीय स्कूलों द्वारा अभिभावकों को पुस्तक, गणवेश और अन्य सामग्री किसी एक ही फर्म से खरीदने के लिए बाध्य किया जा रहा है। संबंधित फर्म के अप्रत्याशित दाम की वजह से अभिभावकों पर वित्तीय बोझ बढ़ रहा है। उनकी शिकायतों के त्वरित निराकरण के लिए जिला और विकासखंड स्तर पर निगरानी और जांच समितियों का गठन किया गया है। प्रदेश में चल रहे सुशासन तिहार के तहत मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने आज सूरजपुर जिला अस्पताल में अत्याधुनिक सीटी स्कैन मशीन का वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए शुभारंभ किया। इससे पहले मुख्यमंत्री ने अपने सूरजपुर प्रवास के दौरान रामानुज नगर में तेंदुपत्ता संग्राहकों से बातचीत की। रामानुज नगर पटना में आयोजित

0: रक्तदान शिविर में मुख्यमंत्री ने रामानुज नगर में मिनी स्टेडियम और पटना में हायर सेकेंडरी स्कूल खोलने की घोषणा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि सुशासन तिहार के तहत वे 10 जून तक प्रदेश के सभी जिलों का दौरा करेंगे।
1: सुशासन तिहार चल रहा है, 10 जून तक चलने वाला है और अभी करीब 10 जिले में हमारा प्रवास हुआ है, बाकी 23 जिले बाकी हैं। तो प्रतिदिन हम 3 जिला जा रहे हैं और शाम को तीनों जिले का एक समीक्षा बैठक करेंगे और गांव में जाते हैं, लोगों से बातचीत करते हैं, चौपाल लगाते हैं, तो पूरा फीडबैक मिलता है कि हमारी योजना कहाँ तक गाँव में पहुँच पा रही है।
0: राज्य सरकार ने कहा है कि मछली पालन को प्रदेश में कृषि का दर्जा दिए जाने से इसकी लागत में लगभग 10% की कमी आई है। इससे मछली पालकों को बेहतर आर्थिक लाभ भी हो रहा है। आज रायपुर में मछली पालन के वैज्ञानिक तकनीक पर आयोजित चिंतन शिविर को संबोधित करते हुए मछली पालन मंत्री रामविचार नेताम ने कहा कि प्रदेश के किसानों के लिए मछली पालन अब उनकी समृद्धि का साधन बन गया है। उन्होंने कहा कि मछली पालकों की आमदनी बढ़ाने के लिए विभिन्न वैज्ञानिक तरीके अपनाए जा रहे हैं। इसी कड़ी में गिफ्ट तिलापिया तकनीक के तहत रायपुर और कांकेर में विशेष क्लस्टर बनाए गए हैं। श्री नेताम ने कहा कि वर्ष 2028 तक तिलापिया मछली उत्पादन को 30,000 मीट्रिक टन पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। इससे राज्य को लगभग 100 करोड़ रूपये का विदेशी राजस्व मिलने की संभावना है। मुख्य सचिव विकासशील ने जल जीवन मिशन के तहत राज्य में नियमित पेयजल आपूर्ति और पानी की गुणवत्ता की लगातार जांच सुनिश्चित करने के निर्देश अधिकारियों को दिए हैं। मंत्रालय में राज्य जल और स्वच्छता मिशन की अपेक्स कमेटी की बैठक में जल जीवन मिशन के दूसरे चरण और पीएम जनमन कार्यक्रम तथा पीवीटीजी बसाहटों में पेयजल व्यवस्था सहित कई विषयों पर चर्चा हुई। मुख्य सचिव ने कहा कि अब नल जल योजनाओं के सुचारू संचालन और निगरानी पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी ने इस वर्ष भारतीय प्रशासनिक सेवा की प्रारंभिक परीक्षा के लिए भुवनेश्वर, कानपुर और मेरठ में 3 नए परीक्षा केंद्र शुरू किए हैं। इसके साथ ही अब केंद्रों की कुल संख्या 83 हो गई है। इस वर्ष सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा 24 मई को आयोजित की जाएगी। इस परीक्षा के लिए कुल 8,19,000 से अधिक आवेदन प्राप्त हुए हैं। इस बीच रायपुर में यूपीएससी के सिविल सर्विस प्रारंभिक परीक्षा जिले के 22 केंद्रों में 2 पालियों में होगी। पहली पाली सुबह 9:30 बजे से 11:30 बजे तक और दूसरी पाली दोपहर 2:30 बजे से शाम 4:30 बजे तक संचालित होगी। परीक्षा में 8,449 अभ्यर्थी शामिल होंगे। देशभर में आज आतंकवाद विरोधी दिवस मनाया जा रहा है। इस दिवस को मनाने का उद्देश्य युवाओं को आतंकवाद और हिंसा की प्रवृत्ति से दूर करना है। इस मौके पर विभिन्न शासकीय तथा अशासकीय संस्थाओं में आतंकवाद विरोधी शपथ भी दिलाई गई। आज ही के दिन वर्ष 1991 में पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी एक आतंकवादी हमले का शिकार हुए थे। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रायपुर से सुन रहे हैं।
2: छत्तीसगढ़ की खबरों से है आपका वास्ता और खबरों की विश्वसनीयता से है हमारा वास्ता। आकाशवाणी समाचार रायपुर के प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ ही हमारे समसामयिक कार्यक्रम आप रेडियो के अलावा अपने मोबाइल पर भी सुन सकते हैं। आकाशवाणी समाचार फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब पर भी उपलब्ध है। हमारा फेसबुक पेज छत्तीसगढ़ न्यूज ऑन AIR, ट्विटर हैंडल CGAIR न्यूज और हमारा यूट्यूब चैनल है छत्तीसगढ़ AIR न्यूज। तो अब रेडियो के साथ ही आपके मोबाइल के जरिए भी हम पहुंच रहे हैं आप तक। छत्तीसगढ़ की हर खबर के लिए सुनते रहिए आकाशवाणी समाचार।
0: और अब आगे बढ़ते हैं बाकी के समाचारों की ओर। आकाशवाणी के 90 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आकाशवाणी केंद्र रायपुर द्वारा कल 22 मई को रायपुर में स्वरोत्सव संगीत समारोह का आयोजन किया जाएगा। यह कार्यक्रम शांतिनगर स्थित विमतारा ऑडिटोरियम में शाम 6:30 बजे से आयोजित किया जाएगा। 2 सत्रों में होने वाले इस कार्यक्रम के दौरान सुगम संगीत और उपशास्त्रीय प्रस्तुतियां होंगी। पद्मश्री मदन चौहान सुगम संगीत कार्यक्रम पेश करेंगे, वहीं श्वेता शिवाली द्वारा उपशास्त्रीय संगीत की प्रस्तुति दी जाएगी। आकाशवाणी रायपुर के उप महानिदेशक तथा क्लस्टर प्रमुख वी राजेश्वर ने बताया कि आकाशवाणी ने लोक प्रसारक के रूप में पिछले 90 वर्षों में उल्लेखनीय कार्य किया है। इस दौरान आकाशवाणी ने सूचना, शिक्षा, समाचार, मनोरंजन के माध्यम से अपने ध्येय वाक्य बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय की परिकल्पना को साकार करने का काम किया है। आकाशवाणी केंद्र रायपुर ने भी स्थानीय संस्कृति, लोक कला, शिक्षा, समाचार और मनोरंजन को गांव-गांव तक पहुंचाने में अहम भूमिका निभाई है। भारतीय सेना ने ऑनलाइन सामान्य प्रवेश परीक्षा की तिथि घोषित कर दी है। ये ऑनलाइन प्रवेश परीक्षा आगामी 1 से 5 जून तक और इसके बाद 8 से 12 जून तक आयोजित की जाएगी। इसके लिए भिलाई, दुर्ग, रायपुर, बिलासपुर और जगदलपुर में कुल 10 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जहां हर दिन 3 से 4 पालियों में परीक्षा ली जाएगी। सभी पंजीकृत उम्मीदवार भारतीय सेना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपना प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकते हैं। संस्कृति मंत्रालय ने वंदे मातरम फिल्म्स राष्ट्रीय फिल्म निर्माण प्रतियोगिता के लिए प्रविष्टियां जमा करने की अंतिम तिथि 7 मई से बढ़ाकर 31 मई कर दी है। इस प्रतियोगिता का उद्देश्य राष्ट्र की साझा विरासत को पुनर्जीवित करना और उन आदर्शों के साथ एक नया जुड़ाव स्थापित करना है। ये प्रतियोगिता फिल्म निर्माताओं, रचनाकारों और नागरिकों को समकालीन प्रारूपों के माध्यम से वंदे मातरम की भावना को नए सिरे से प्रस्तुत करने के लिए प्रोत्साहित करती है। प्रतियोगिता 3 श्रेणियों में आयोजित की जा रही है, जिनमें रील्स, एआई आधारित फिल्में और लघु फिल्में शामिल हैं। विभिन्न श्रेणियों में 50 लाख रुपए तक के पुरस्कार दिए जाएंगे। केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार के लिए आगामी 31 जुलाई तक नामांकन आमंत्रित किए हैं। इसके लिए 5 से 18 वर्ष के भारतीय नागरिक पात्र होंगे। ये पुरस्कार उन बच्चों को दिया जाता है जो वीरता, खेल, सामाजिक सेवा, विज्ञान प्रौद्योगिकी, पर्यावरण, कला और संस्कृति के क्षेत्र में विशिष्ट कार्य करने वाले होते हैं। नामांकन केवल राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल पर ऑनलाइन माध्यम से ही स्वीकार किए जाएंगे। रायपुर के कृषि महाविद्यालय का 66वां स्थापना दिवस कल मनाया जाएगा। इस मौके पर वार्षिक समारोह के साथ ही महाविद्यालय के पूर्व छात्रों का सम्मेलन भी आयोजित होगा। कार्यक्रम के दौरान महाविद्यालय के पहले बैच के उन 3 विद्यार्थियों को सम्मानित भी किया जाएगा जो अब विभिन्न क्षेत्रों में विशिष्ट उपलब्धि प्राप्त कर चुके हैं। और अब पेश है मौसम का हाल। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान रायपुर, बिलासपुर, रायगढ़, धमतरी, दुर्ग, कबीरधाम सहित राज्य के 14 जिलों के कुछ स्थानों पर ग्रीष्मलहर चलने की संभावना व्यक्त की है। अगले 5 दिनों तक मध्य छत्तीसगढ़ के कुछ स्थानों पर ग्रीष्मलहर चल सकती है। इसके साथ ही अधिकतम तापमान में 1 से 3 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी होने की संभावना है। धमतरी जिले के युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के लिए जिला प्रशासन और एक निजी संस्था के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। इसके तहत जिले के बेरोजगार युवाओं, आईटीआई उत्तीर्ण अभ्यर्थियों तथा डिप्लोमा धारकों के साथ ही कुशल और अर्धकुशल श्रमिकों को देश के विभिन्न राज्यों में रोजगार के अवसर दिए जाएंगे। कलेक्टर अविनाश मिश्रा ने कहा है कि जिला प्रशासन युवाओं को स्थानीय और राष्ट्रीय स्तर पर बेहतर अवसरों से जोड़ने के लिए लगातार प्रयास कर रहा है। कुछ खबरें संक्षेप में सुन लीजिए। बेमित्रा में पिछले 15 दिनों से चल रहा विकसित कृषि संकल्प अभियान संपन्न हो गया। इस दौरान शिविरों के माध्यम से करीब 6000 किसानों को वैज्ञानिक खेती की जानकारी दी गई। रायपुर रेल मंडल द्वारा विश्व पर्यावरण दिवस अभियान के तहत 19 से 22 मई तक स्वच्छता और वेस्ट मैनेजमेंट पर विशेष जागरूकता अभियान आयोजित किया जा रहा है। भिलाई पुलिस ने नौकरी दिलाने के नाम पर करीब 7.5 लाख रूपये की ठगी के आरोपी को गिरफ्तार किया है। रायपुर के स्वामी विवेकानंद विमानतल के प्रतीक्षालय में 30 फीट ऊंची सीलिंग से गिरने के कारण एक मजदूर की मौत हो गई। जांजगीर चांपा जिले के अर्जुनी गांव में तालाब में डूबने से 8 और 9 वर्ष की 2 सगी बहनों की मौत हो गई। इसी जिले के खोखसा ओवरब्रिज के ऊपर बीती शाम तेज रफ्तार चार पहिया वाहन के अनियंत्रित होकर पलट जाने से एक छात्र सहित 2 लोगों की मौत हो गई। और दुर्ग स्थित छत्रपति शिवाजी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में कल 22 मई को जिला स्तरीय रोजगार मेला और प्लेसमेंट शिविर का आयोजन किया जाएगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। स्कूल शिक्षा विभाग ने निजी स्कूलों की निगरानी के लिए प्रदेश भर में समितियों का गठन किया है। सुशासन तिहार के तहत मुख्यमंत्री ने आज सूरजपुर जिले का दौरा किया। आकाशवाणी द्वारा कल रायपुर में स्वरोत्सव संगीत समारोह का आयोजन किया जाएगा और भारतीय सेना ने ऑनलाइन सामान्य प्रवेश परीक्षा की तिथि घोषित कर दी है। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन हिंदी में कल सुबह 9:55 पर सुना जा सकता है। नमस्कार।
3: मीडियम वेव 396.82 मीटर यानी 756 किलोहर्ट्ज़ और FM बैंड 14.1 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। आप हमारे कार्यक्रम मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी सुन सकते हैं। शाम के 7 बजे हैं। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम बस्तर के स्वर।

बदले से पै समुडरी चु सकत दखा बाग के धरली कोडरी, पै समुडरी चु सकत दखा बाग के धरली कोडरी, चोर डरालो कोतवाल के कसन जुग होली, चोर डरालो।

आय ते बेत दाना खाऊक लाय धरतीच ने उतरसित ते भेंद्रा बल्लो सते आय ते बेत दाना खाऊक धरतीच ने उतरसित तीर धनऊ झगड़ा होला बनवा के मार तो काजे तीर धनऊ झगड़ा होला बनवा के मार तो काजे गोटक खांदे तीर बसली गोटक खांदे धनऊ गोटक खांदे।

0: काल कलहो।
1: मचो तीसर कविता चो शीर्षक है बायले बुधिया।
0: जवन बेरा गेले डोकरा हवन ईले, जवन बेरा गेले डोकरा हवन ईले, कनिया होली टेड़गा धरले बावस बड़गा, कनिया होली टेड़गा धरले बावस बड़गा।

होली घर नवा बुहारी ईली बिहाव दान होली घर नवा बुहारी ईली सरली घर चुगदिया बेटा होलो बायले बुधिया सरली घर चुगदिया बेटा होलो बायले बुधिया माए बाप के बड़गा धर लो ये कसन कर लो माए बाप के बड़गा धर लो ये कसन कर लो घर ने कुकुर पोस लो माए बाप के घर ले खेद लो घर ने कुकुर पोस लो माए बाप के घर ले खेद लो बायले काजे सोना बायले काजे सोना माए बाप के नहीं पेज दोना माए बाप के नहीं पेज दोना मेरे पेंशन बाप चो मेरे पेंशन बाप चो भरली हांडी पाप चो भरली हांडी पाप चो

0: रेंगासे, सत चो बाटने रेंगासे, माए बाप चो सेवा करासे, माए बाप चो सेवा करासे। धन्यवाद।
1: गो भादु
2: रे
1: चा कविता पाठ एन पाडरी चिला
2: हो
1: पाडरन मंजे आय सरवण दास मानिकपुरी
2: चिला
1: ई ते पाटल खेरे रेड हम खूब वेड़ का पेता
2: वेड़ का पेता नो
1: मंत्री पटीन बेल मेरी युग बादु चिला
2: मेरे पाड़ रहा दादा
1: मेरी पाड़ रही आले गोई पटे के गेड़ी केल छुडोट गो हम चंदन बेरा एरमो
2: एरमो
1: तो बे हम बेरती के हम बिदा पत्ती में नोडे के बस्तर स्वर कार्यक्रम वेंदान जामा दादर भाइयो सियान साजन और संजोरी लोगिन चंदन ले मुंदेल आन चंद्रू
2: और आन बादुम
1: आमिरुल शाह जमम
2: राम राम, राम।

0: बस्तर के स्वर अभी इस कार्यक्रम का प्रसारण किया गया आकाशवाणी के जगदलपुर केंद्र से।
1: एक मजबूत घर बिल्कुल उस पिता की तरह होता है जो हर मौसम सहकर भी घर की नींव को कभी हिलने नहीं देता।
2: आपके घर के लिए भरोसे का दूसरा नाम चेटिनाड सीमेंट का मैक्स क्रीट सीमेंट, 64 सालों की बुनियाद के साथ। चेटिनाड सीमेंट, द परफेक्ट कंक्रीट चॉइस।
3: जीएसटी काउंसिल ने बीमा पर लगने वाले 18% टैक्स को घटाकर जीरो कर दिया है। ऐसे में जीवन बीमा लेने वालों को अब सिर्फ इंश्योरेंस का प्रीमियम ही भरना होगा और इस पर कोई भी अतिरिक्त टैक्स नहीं देना होगा। ये हेल्थ इंश्योरेंस लेने वालों के लिए बड़ा फायदा है क्योंकि LIC को पहले से ही इनकम टैक्स में छूट मिली हुई है। वहीं अब GST भी हटने से बीमा लेना फायदे का सौदा होगा।
0: हम आकाशवाणी के जगदलपुर केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 7:21 हुए हैं। प्रस्तुत है प्रायोजित कार्यक्रम किसान वाणी।
4: ये कार्यक्रम जो प्रायोजक

0: జువార్ రే బాదు జువార్
1: జువార్ చంద్రు జువార్ ఏదన్నది రే
0: ఏదేనండి రే
1: అలే ఇద్దు పక్కిల్తి ఉంది గాడుకు
0: అలే ఆమె పక్కిల్తి చిన్నో తిన్ పక్కిల్ ఉంది గో మాధు అలే ఆమ్ గో జువార్ బెటెన్ జమ్ చూడు ఈ దిన్ సెంగడి ఏకే కిసాన్ వాణి కార్యక్రమ వెందాన్ జమ్మా దాదర్ భయ్య వీనికి ఆన్ చంద్రు
1: ఆర్ ఆన్ బాదు
0: ఆమిరుల్ చాజమం జువార్ గో బాదు ఎనోటికి అమ్మతేకే చిలా రోజేక పోగ్రామ్ జమ్మా పున్మం ఎన పొలుప్ గుడే తాయకే మూర్ కామయ్యనోడేకే అమ్ నందిల్ వాడిన్ కమయ్యాయ్ కమయ్యాయ్ చిలా ఆరు ఏకే దినం దునియా బెల్ ఆవుతాయి పడ లిఖే దునియా చిలా మున్నిత్ లోకే లెంగ్టి మారు రేబే
1: మారమ్మా
0: గాయల్ బడాలి వీడ్ కట్టేర్ లో ట్రాక్టర్ పాతారు ట్రాక్టర్
1: ట్రాక్టర్ చంద్రు ఎబ్బే చూడని నింది వాదకి జటా వాదక తో కమాయి
0: చాదే
1: చిలాడేకే ఉదయమేరు దురాన్లో చిలాడేకే గోందెక్ బెలే అదిన్ వీతురాను ఉదురాను బెలే
0: బాదు ఈ ಕಾಟಾವುಲ್ ಕೂಚೋಟ್ಪರಿ ಹೊಕ್ಕುಟ್ ಮಿಡ್ರಾನ
1: ಮಂತ್ರಿ
0: ಅಮ್ ಡಾಕೋಡ ಅವ್ರದ ಬೆಲ್ ಪಾಟೆಲ್ ಮನ್ ಮೊಳಕೆ ಅವನ್ ಬೆಲೆ ಏರ್ಪಿ ಪಾಮ್ ಗಾಟ್
1: ಅಲ್ಲೇ ತೇವೆ ಆ ಪಾಟೆಲ್ ಏರ್ಪಿ
0: ಅಲ್ಲೇ ಏರ್ಪಿ
2: एक मजबूत घर बिल्कुल उस पिता की तरह होता है जो हर मौसम सहकर भी घर की नींव को कभी हिलने नहीं देता।
3: आपके घर के लिए भरोसे का दूसरा नाम चेटिनाड सीमेंट का मैक्स क्रीट सीमेंट 64 सालों की बुनियाद के साथ चेटिनाड सीमेंट द परफेक्ट कंक्रीट चॉइस।
4: जीएसटी काउंसिल बुधवार नेट इन घोषणा की सरकार सीमेंट तपोर्रो जीएसटी मोला 28% तुन कम किस इंजे 18% किस इत्ता टैक्स तगा कमी कित्ता आवासीय आड़ व्यवसायिक प्रोजेक्ट तगा लागत दबाव कम आयना दुमिद मिंदे इलेकेन संगमरमर इंदनाद और ट्रेवकिन ट्रेवटीन ब्लॉक इतके उनले कटाद बंडकल तगवेन टैक्स दर 12% से गटे मास 5% किस इत्तोड़ ग्रेनाइट ब्लॉक तगवेन मुन्ने 12% मत्ता आदिंजे 5% जीएसटी लगे माता इदेन संगेन उसका चुन्नामता ईटा और बंडाकल तीन जोड़ाई कियान बूताते वेंड मोला 12% ते कम मास 5% की सित्तोड़।
5: अरे अरे अरे क्या कर रहा है इधर इधर इधर हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का
6: पुतला बोल रहे
5: पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं
6: मतलब
5: देख बेटा तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी हाँ? अरे पहले ऐसा नहीं था पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से कैसे फसल लहलहाती थी शुद्धता झलकती थी माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी पहली वाली बात कहाँ
6: पर हम तो सब यही डाले हैं
5: सब नहीं आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं
6: सच है
5: रे बेटे एक्सपीरियंस से बता रहे हैं धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं
6: ठीक है भाई मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूँगा
7: माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती
1: हाँ तो चंद्र चूड़नी ये पाटल इनको हम किसान दादर भाई और ले कड़े पिकतम रेसिला
0: पिकतम में के
1: और ये वहाँ में बेफोकरों की कमेचाजुरा चूड़नी अबे को कमेचाजुरा दी नंबर ले दतो चिला
0: ले दता है कि अबे
1: किसान दादर भाई और ले अबे को वितुरीर अबे मंत्र अबे किंडिक किंडिक ಉದುರನ್ ವಾಟ್ ಬಿಲ್ ಚಾಜುರನ್ ಚಿಲ್ಲ
0: ಹೋ ಇಬ್ಬೇಕಿ ಬಾದು ಏತೇನು ಜಮ್ಮ ಇಪ್ಪಟಿಗೆ ರೋಪ ಅವಧಿಯ ಮೇಲೆ
1: ರೋಪ ಅವಧಿಯ ಮೇಲೆ
0: ಜಮ್ಮ ಇಲಾಖಾಟ್ ಇಬ್ಬೆ ಏದು ಏದು ಲೋಗ್ ಕೆ ಟಿಕಾಮ್ ಟಿಕಾಮ್ ಎನ್ನ ಅಂಬೆ ಆ ಲೋಗ್ ವೀತೆ ಮೇಲೆ
1: ವೀತೆ
0: ಮೇಲೆ ಜಮ್ಮ ರೋಪೆ ಕೆಲ್ ಬಿ
1: ರೋಪೆ ಕೆಲ್ ಬಿ
0: ಅಗೆ ಕೆ ಅಬಿ ಜಮ್ಮಗೆ ಬಿ ವಾಯಲಿನ್ ಗೆ ಊಡೆ ಜತ್ನಾಕ್ ಮೇರೆ ಕೆ ಮಂತ್ರ ಪಲಬೆಲ್ ಟಿಂಟಾರ್ ಬೆ
1: ಟಿಂಟಾರ್ ಬೆ
0: ವಾಯ್ ಮಂತ್ರ ಕೆ ನೀರ್ ವ್ಯವಸ್ಥಾ ಲೋಗ್ ಓರೆ ಕೆ ಪಲಬೆಲ್ ಟಿಂಟುಕ್ ಮೇಲೆ
1: ಹೋ ಟಿಂಟುಕ್ ಮೇಲೆ ಮಂತ್ರ ಜೋನ್ ಯಾರು ಕಿಸಾನ್ ದಾದಾ ಓದ್ ವೀತೆ ಮೇಲೆ ಓದಿಯಾ ಡೇರಾ ಎಬ್ಬೆ ವೆನ್ ಮೇಲೆ ಜಾಲೆ ಕಿಂಡಿಕ್ ಉದುರಾನ ಬಲ್ ಕಿಂಡಿಕ್ ಕಿಂಡಿಕ್ ಚೂಡ್ರಾನು ಉದಯ ಕೇರ್ ಚಿಲ್ಲ ಅವರನ್ ಪೋಕಾಲ್ತಿಯಕ್ಕೆ ಅವ್ರ ನಿಕ್ಕ ಉದಯ ಕೇರ್ ಚಿಲ್ಲ ಚಂದ್ರು ಚೂಡ್ನಿ ಇತ್ನಿ ಆಮ್ ಇನ್ನೆ ಬೆಲೆ ಆಮ್ ಕಿಸಾನ್ ದಾದರ್ ಬಾಯೋ ಕಿ ಭೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಎಂದ್ರ
0: ಈ ನಾಯ್ಕೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹಿತೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಮಿಶ್ರಾ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಬೇಡ್ ಗಟ್ಟೆ ಅವ್ರು ಭೇಟ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಅಲ್ಲಿ ವೆನಾರ್
1: ಅಲ್ಲಿ ವೆನಾರ್ ಅವ್ರ ಆಮ್ ಕಿಸಾನ್ ದಾದರ್ ಬಾಯೋ
8: किसान वाणी सुनने वाले आप सभी श्रोता भाई बहनों को चंद्र ऋषि ठाकुर का नमस्कार। श्रोताओं, आज किसान वाणी में हम आपको जानकारी देने वाले हैं गिनी फाउल यानी चाइनीज मुर्गियों के पालन व प्रबंधन के बारे में। इस विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर हितेश मिश्रा। आप कृषि विज्ञान केंद्र कोंडागांव में विशेषज्ञ हैं पशुपालन प्रबंधन में। तो सबसे पहले डॉक्टर हितेश मिश्रा जी, आपका स्वागत है आकाशवाणी के स्टूडियो में।
9: बहुत बहुत धन्यवाद।
8: जैसे कि आज का विषय थोड़ा अलग है, गिनी फाउल जिसे हम चाइनीज मुर्गी भी कहते हैं, तो आखिर आप सबसे पहले हमारे श्रोताओं को ये बता दें कि ये गिनी फाउल क्या है।
9: मैं अपने किसान भाइयों को सबसे पहले बताना चाहता हूँ कि गिनी फाउल एक जो विदेशी नस्ल की जो पक्षी है और ये गिनी जो द्वीप है अफ्रीका वहाँ से आई हुई है, लेकिन इसकी खासियत यह है कि भारत में हर क्षेत्र में इसकी अनुकूलता है। इसे आप ठंडे में, गर्मी में कहीं भी पाल सकते हैं। और आमतौर पे इसको हम लोग तीतर के नाम से, लोकल नाम से जानते हैं, और लोग चाइनीज मुर्गी भी इसे कहते हैं, चकोर कहते हैं। और ये जिसकी जो मांस है बड़ी स्वादिष्ट है, कम वसा, इसके कारण इसकी जो अभी प्रसिद्धि है, नाम है, इसके कारण है।
8: इसे चाइनीज मुर्गी क्यों कहा जाता है? क्योंकि जैसा कि आपने बताया कि ये अफ्रीका के गिनी द्वीप से आए हुए है, तो इसे चाइनीज मुर्गी क्यों कहते हैं?
9: बस इसका कुछ लुक ही ऐसा है कि छोटा सा नाक होता है, छोटी सी मुर्गी है, और बढ़िया काले में सफेद डॉट डॉट इसके रंग होते हैं। तो हो सकता है ओरिजिन तो इसका अफ्रीका है, लेकिन ये चाइना के माध्यम से, चूंकि मैंने बताया इसकी सर्व अनुकूलता है, सर्वग्राही है, तो चाइना में इसे ज्यादा पालन करते हैं, वहां के माध्यम से भारत में आया हो।
8: जी जी, तो आखिर ये गिनी फाउल जो है वो किसानों के लिए किस तरह से फायदेमंद है इसका पालन करना?
9: जैसे कि हम देखते हैं, हम कोई भी सलाह किसानों को देते हैं कि आप इस चीज़ का पालन करिए, इस चीज़ की खेती करिए, लेकिन आमतौर पे देखा गया है कि किसान असफल हो जाते हैं। इसलिए सफल होते हैं, या तो उस चीज़ की अनुकूलता हमारे क्षेत्र में नहीं होती, या तो इसलिए असफल होते हैं कि उसकी लागत ज़्यादा होती है, या तो असफलता का कारण एक यह भी रहता है कि उसके पालन में या खेती में बहुत ही दिक्कत का या ज़्यादा तकनीक का उपयोग होता है। और यह सारी चीज़ें गिनी फाउल के लिए साबित नहीं होती है। किसान कम लागत में कम या बीमार कम होती है तो दवा कम लगता है, किसी विशेषज्ञता के लिए इसकी आवश्यकता नहीं पड़ती चूंकि यह बीमार कम पड़ती है। और सामान्यतः यदि इसको चराई के माध्यम से आप पालते हैं तो ये कीड़े मकोड़े खा के भी जीवित रह सकती है। तो मुझको ऐसा लगता है कि मेरे बस्तर के किसान भाइयों के लिए जो चाहते हैं कि मुझे बस ऐसे ही एक साइड बिजनेस के रूप में अतिरिक्त आय का एक साधन मिल जाए, तो मुझको लगता है कि किसान भाइयों के लिए गिनी फाउल का पालन फायदेमंद हो सकता है।
8: तो इनके प्रबंधन के लिए ज्यादा, जैसे हम मुर्गियों का, ब्रॉयलर मुर्गी का अगर पालन करते हैं तो उसके लिए एक पर्टिकुलर हमें पोल्ट्री फार्म चाहिए होता है। पोल्ट्री फार्म भी हमें बहुत सारी चीजें, एक एसी वाला होता है, नॉन एसी होता है, टेम्परेचर उनका मेंटेन करना पड़ता है, फिर उसके बाद उनका खाने पीने का भी अलग रहता है। तो क्या इस तरह का प्रबंधन गिनी फाउल के लिए लगता है या नहीं लगता, या फिर इन्हें जो खुले वातावरण में भी इनका पालन किया जा सकता है?
9: देखिए, रही बात सेड की, एक बात आपने आवास की बात की कि मुर्गियों की तुलना में क्या इनको इस तरीके का खान पान और आवास की आवश्यकता की होती है। जहां तक आवास के बारे में बातचीत है तो निसंदेह इनको सुरक्षा की दृष्टि से आवास की आवश्यकता होती है, लेकिन आप यदि मुर्गियों से तुलना करते हैं तो जी मैं बताऊंगा कि इनको खान पान की दृष्टि से और रहने की दृष्टि से उतनी सुविधाओं की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि ये कम पोषक वाले खाने से भी अपना गुजारा कर सकते हैं। और रहने के लिए भी एक मुर्गी को 3 से 4 फीट की आवश्यकता होती है, चूंकि इनका जो स्वभाव होता है मुर्गियों की तुलना में उड़ने वाला होता है। एक मुर्गी लगभग 400 से 500 मीटर उड़ सकती है, तो इसलिए और इनको आवास स्पेशली, मतलब मुख्यतः रात्रिकालीन इनको आवास की आवश्यकता नितांत है।
8: जी, ये भी उड़ते हैं?
9: जी मैम, उड़ते हैं, 400 मीटर एक फ्लाइट में उड़ सकते हैं। लेकिन यदि किसान भाई बड़े मुर्गी खरीद के ला रहे हैं तो बिल्कुल भी आपको बाहर रखना नहीं है, आपको उनको पिंजरे में रखना है या एक बंद कमरे में रखना है। और यदि एक से ज़्यादा मुर्गी लाए तो पहले एक मुर्गी गिनी फाउल को बाहर आप निकालेंगे कुछ दिन, और उसके बाद दूसरा, और उसके बाद तीसरा, फिर धीरे धीरे आप सारी मुर्गियों को बाहर निकाल सकते हैं। पहले उनको अपने को दाना चराई का आदत डलाना पड़ेगा, नहीं तो वो तो उड़ जाएंगे। ये पेड़ों में रहना बहुत पसंद करते हैं, इनका नेचर है अर्ध जंगली प्रकार का। इनका मांस का स्वाद भी यदि आप पूछेंगे किसी से तो बोलेंगे अजीक अजीक जंगली लागे से मौके।
8: जी जी जी, तो इनका औसतन साइज क्या होता है ये मुर्गियों की?
9: ये जो वयस्क जो मुर्गियां रहती है ये लगभग 1 किलो 200 ग्राम से लेके 1 किलो 500 ग्राम तक का 5 महीने में आराम से ये आ जाती है।
8: और जैसे हम लोग अभी तुलना करें तो ब्रॉयलर का जो दाम है वो अभी 200 रुपए किलो के करीब चल रहा है, इसकी क्या मार्केट में प्राइस होगी?
9: मैं बता दूंगा, बस्तर के लिए गिनी फाउल पालन नया है, इसका कोई जो मार्केट अभी फिक्स नहीं है। और अच्छी बात हमारे लिए ये होगी कि हमारा इसमें कोई प्रतिस्पर्धा भी मार्केट में नहीं है। अभी मैं देखता हूँ रोड के बाजू में आंध्र प्रदेश से इसके व्यापारी आते हैं और एक एक मुर्गी को 1,000 से लेकर 1,500 रुपये की कीमत में बेच के जाते हैं। यदि हम अपने यहाँ पालन करें तो आसानी से एक जो वयस्क मुर्गी है वो 800 से 1,000 रुपये में बिक ही जाएगी।
8: जी, तो जब हम गिनी फाउल का पालन करते हैं तो ऐसी कौन कौन सी सावधानियां हमें रखनी चाहिए?
9: देखिए, गिनी फाउल के पालन में सावधानियां, हम तुलना कर रहे हैं मुर्गी से तो मैं तो बोलूंगा कि न के बराबर है इनको, लेकिन जहां हम पालते हैं तो जो इनका सेड है ये ऊंचा होना चाहिए। जैसे कि मैंने बताया ये उड़ती है, तो एक पहली बात आप सेड ऊंचा रख लीजिए, और दूसरा कि इनको आसपास में पेड़ यदि लगा के आप देते हैं और यदि आपके घर में मतलब इनको आदत हो गया अपने को तो ये पेड़ में भी रात को सो सकती है। तो और हाँ, एक चीज खास मैं बता दूं आपको कि जब हम गिनी फाउल का पालन कर रहे हैं और हम यदि चराई विधि में इसको रखना चाहते हैं, ग्रेजिंग करवाना चाहते हैं, तो आसपास के खेतों में हमको थोड़ा देखना पड़ेगा कि भाई किसी को बाहर आजू बाजू में समस्या न हो,
8: उनकी फसलें ना हो।
9: ये फसलों को नुकसान वैसे कम पहुंचाते हैं, उसमें फसलों में जो कीड़े मकोड़े हैं उनको खाते, लेकिन कोई यदि सब्जियां उगाए हैं कुछ है जो इनका फेवरेट है तो खा सकते हैं।
8: जी, और बीमारी की अगर बात करें तो ये कितने बीमार होते हैं?
9: जी हाँ, जो सबसे जो मुख्य कारण है कि हमें लगता है कि इसे बस्तर में होना चाहिए गिनी फाउल का पालन, वो इसकी जो एक खासियत है रोग प्रतिरोधकता क्षमता इनमें काफ़ी ज़्यादा होती है और इनमें बीमारी न के बराबर लगती है। लेकिन हाँ, मैं किसान भाइयों को एक सुझाव जरूर दूंगा कि आप इसमें टीकाकरण जो मुर्गियों में लगता है वो करिए, क्योंकि सामान्यतः देखा गया है कि पक्षियों में यदि कोई बीमारी आता है तो उसका इलाज नहीं होता है, बचाव ही जो सही रास्ता होता है एक सफल व्यवसाय के लिए। तो पक्षी पालन में, किसी भी प्रकार के मुर्गी पालन में हमको टीकाकरण तो जरूर ही लगाना चाहिए। तो बीमारी इसमें बहुत कम रहता है, मैं किसान भाइयों को बताऊंगा बीमारी, और न इनमें दवाओं का खर्चा भी बहुत कम आता है इसलिए।
8: जी, और इनके अंडे का उत्पादन किस तरह से होता है और प्रजनन कैसे होता है, आप ये बताएं।
9: प्रजनन के लिए सबसे पहले तो मैं बताऊंगा कि हर 4 से 5 मुर्गियों के पीछे में एक नर इनका होना चाहिए और ये वयस्क हो जाते हैं 5 महीने में हो जाते हैं और 6वें महीने से अंडा देना चालू कर देते हैं। साल भर में देखा जाए तो यह 90 से 120 अंडा दे पाते हैं और मुर्गियों में जो अंडे में बैठने का जो इनका जो क्षमता होता है या प्रवृत्ति होती है वो पाई जाती है। लगभग लगातार 20 से 25 अंडे देने के बाद ये अपने अंडे में बैठती है और अंडे से जो फूट कर बच्चा बाहर आता है इसकी अवधि 26 से 28 दिन की होती है। और मैं एक चीज बता दूंगा कि भाई बच्चा सभी का नाजुक होता है, इनका भी नाजुक होता है चूंकि इनका अंडे का साइज भी कम होता है। तो किसान भाइयों को यदि सफल व्यवसाय करना है तो इनके बच्चों का जो देखभाल है वो बहुत ही अच्छे से करना पड़ेगा, जैसे मुर्गियों में करते हैं। एक ब्रूडर गार्ड बना के उसमें ऊपर से हमें गर्मी देना पड़ेगा लाइट से, और इनका जो खान पान है, जो प्री स्टार्टर फीड आता है जो मुर्गियों में आता है, वो मात्र मैं आपको सुझाव देता हूँ कि 15 दिन के लिए चलाइए। उसके बाद आप अपने घर में जो भी पिसान है, आपका मक्का है या कनकी है या जो भी घर पे जूठा उठा है, इसमें आराम से किसान भाई इसको पाल सकते हैं।
8: जी, ज़्यादातर हम बाज़ार में देखते हैं तो जो मुर्गियाँ उपलब्ध होती हैं ब्रॉयलर या फिर देसी किस्म की, वही मुर्गियाँ उपलब्ध होती हैं, तो इनको किसान भाई कहाँ बेच सकते हैं, इनसे कैसे व्यवसाय कर सकते हैं?
9: देखिए, जो आज का जो युग है ये फिटनेस का युग है, हर कोई, अब देखिए पुराने में हम मिलेट्स में चले गए, कोदो कुटकी रागी में चले गए हैं अपने अच्छे फिटनेस के लिए। तो जी हाँ, जिनको मांस पसंद है उनको ये भी चाहिए कि उनके मांस में जो खा रहे हैं उसमें कम फैट हो, कम कोलेस्ट्रॉल हो और अतिरिक्त ऐसी चीज हो जो उनके फिटनेस को कायम रखे। सारा जो गुण है गिनी फाउल के मांस में है। इनके मांस में मैं बता दूं ओमेगा 3 फैटी एसिड भी पाया जाता है जो स्किन के लिए बहुत ही अच्छा रहता है। तो यदि बाजार में इनको प्रतिस्पर्धा की बात करेंगे तो अभी तो कोई प्रतिस्पर्धा नहीं है क्योंकि बहुत ही कम किसान पालते हैं। यदि किसान भाई पालेंगे तो बिल्कुल अभी तो बाजार में हाथों हाथ बिक जाता है।
8: जी जी, तो वैसे इसका शुरुआत करने के लिए, इसका पालन करने के लिए लागत कितनी लग सकती है हमारे किसान भाई बहनों को?
9: लागत के लिए मैं सबसे पहले तो किसान भाइयों को बताऊंगा कि आप पहले छोटे समूह में लाके इसको आप चालू करिए। ऐसा नहीं कि आप 1,500 ला रहे हैं, आप 50 से लेके 100 पक्षियां खरीद के पहले आप चालू करिए। और जैसे एक मुर्गी को बड़ा करने में, गिनी फाउल को व्यस्क करने में लगभग 200 रुपए का खर्च आ जाता है, 200 से सवा 200 रुपए का खर्च आता है। यदि किसान भाई पूरा चराई में इसको रखते हैं तो यह खर्च और भी कम आता है और बड़ी ही आसानी से एक व्यस्क मुर्गी 600 से 800 रुपए की बिना मेहनत के बाजार में बिक जाती है। तो किसान भाई एक मुर्गी से 500 से 600 रुपए कमा सकते हैं।
8: जी जी, तो मतलब बहुत ही कम लागत से इस,
9: जी हाँ, उत्तर भारत में, यदि आप उत्तर भारत में देखेंगे तो किसान वहां खेतों में इसको जो प्लास्टिक के तंबू में बना के हजार हजार मुर्गियां पालते हैं और एक किसान उसको लगातार चराता रहता है। और हाँ, वो अपने घर का बना हुआ राशन तो जरूर देते हैं लेकिन इसमें उनकी जो खर्च है वो आधे से भी कम आती है, तो फायदा तो दिखता है यदि किसान करेंगे तो।
8: जी जी, और छत्तीसगढ़ में बस्तर की बात हमने की है तो क्या इसको छत्तीसगढ़ के अन्य जगहों पर भी इसका पालन किया जा सकता है?
9: जी हाँ, मतलब ये जो गिनी फाउल है इसकी जो सर्वग्राहिता इसी बात से ही है कि ये हर प्रकार के मौसम में अनुकूल है। बस इसमें मैं एक नकारात्मक बात जो किसान भाइयों को जरूर आपको मैं प्रकाश डालना चाहूंगा कि इनका जो उड़ने वाला नेचर है, जो मैंने बताया ना अर्ध जंगली प्रवृत्ति के होते हैं, तो उसके लिए हमको इनको धीरे धीरे, अब आपको तो पता है कोई भी चीज जब पालतू बन जाता है तो कहीं नहीं जाता है, तो यदि बचपन से पाल रहे हैं तो इस चीज का आपको कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कोई बड़ा ला रहा है पक्षी तो आपको इस विषय में जरूर जागरूक रहना पड़ेगा।
8: जी, तो इसके जो छोटे छोटे बच्चे हैं या कहे चूजे, मुर्गियों के चूजे होते हैं, इनके जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं उन्हें भी शायद चूजे ही कहते हैं।
9: जी जी, हाँ, कीट, तो, कीट नाम है वैसे इनका,
8: कीट नाम कीट, है कीट, तो ये कहाँ से हमारे किसान भाई बहनों को मिल सकते हैं?
9: किसान को आस पास के कृषि विज्ञान केंद्र में पता करना चाहिए और अभी यह भुवनेश्वर में जो इनका सेंटर है, रिसर्च पक्षियों का सेंटर है, वहाँ उपलब्ध है और आंध्रा में लोकल वेंडर्स, लोकल जो विक्रेता है वो रोड के किराने लाके बेचते हैं।
8: और इनका उपयोग सिर्फ मांस के लिए ही किया जाता है?
9: मांस के लिए किया जाता है।
8: जी जी, तो आपने तो गिनी फाउल के पालन व प्रबंधन के लिए बहुत सारी बातें बताई हैं, लेकिन फिर भी कोई बात रह गई हो या फिर आप हमारे श्रोताओं से कुछ कहना चाहते हो तो कहें।
9: मैं श्रोताओं को ये बोलना चाहता हूं कि हमारे यहाँ जो छत्तीसगढ़ में, जो बस्तर में देखो तो छोटे और सीमांत किसान ज़्यादा है, जिनके पास जमीन कम रहती है और वर्ष में बहुत ही कम समय में खेती बाड़ी करते हैं, लेकिन जो आय की चाहत होती है उनके अंदर में वो ज़्यादा होती है कि हर किसान के मन में रहता है कि भाई मैं ज़्यादा पैसा कमाऊँ। तो ऐसे किसानों के लिए खुले खेत या बाड़ी यदि आपके पास में है तो मैं ज़रूर उनको आपको सुझाव देना चाहूँगा, आपकी गिनी फाउल का पालन करें। और वर्तमान में जो सरकार है प्राकृतिक खेती, जैविक खेती के लिए बड़ा ही संवेदनशील है, तो मैं बोलूंगा कि ये देख जो गिनी फाउल पालन है वो प्राकृतिक खेती का एक

0: है, और मैं बोलूं जहां सामान्य मुर्गी रोजमर्रा के भोजन के लिए है, वही यह गिनी फाउल स्वास्थ्य वर्धक स्वाद के लिए है। तो किसान भाई कम खर्च और ज्यादा दाम देने वाला विकल्प के रूप में गिनी फाउल को ही अपनाएं, यही मेरी उनसे आग्रह है।
1: जी, तो डॉक्टर हितेश मिश्रा जी, आपने गिनी फाउल पालन के बारे में और उनके प्रबंधन के बारे में हमारे श्रोताओं को इतनी अच्छी बातें बताएं, इसके लिए आपका धन्यवाद।
0: बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।
2: हाँ तो चंद्रु
3: गोय बादु
2: चूर्णी अपेगो वेत्तमी
3: वेत्तमी
2: कोर काम है
3: आ मेके उबम ना तो ने दिलवाड़ इन काम ही ने कुल
2: जी
3: मान तर छोड़ी इता इता बिल काम है मेन मोर
2: मेन मोर के
3: चाइना कोर ले निकल जिला
2: हो चाइना
3: कर को पोस्टिक तो आए पर
2: हो
3: छोड़े के राम के आम के ना तो कोयला आरु चिक मारु गाट का तीना मा
2: हो
3: वर्षी वे तीन मा मात्र एबे के वर्षी वे तिक बीमार पेता ही पर के कोयला आर्टिकल चिनगे
2: कोयला गाट का राटा चावा टिटका चिनगे
3: आउ तीन दाने नि पोके मेर
2: हो
3: आत्ने के इना तो ई चाइना कुरुल बेले हम शरीर मेन ता कोई पौष्टिक ता के नि पोके
2: ओ पौष्टिक
3: तो ई ते के आम यूनिट पर एज पर ए पड चिला পরে তো মেরো ডামুং বেলগো চানাটা না পাইছে তোন্দুরা রে
2: তোন্দুরা আচ্ছা যে মে নট গেরা আয়া ছিল এবে কামে চা জরা নং বানিং বানিং তো আমি দাও চেন রে চিন চুরনি এ দেখে আসবেল পরি কিল বেলে আপলো জিউনা কাওনা চেলু না মিকতা ছিল ডেকে মিনু লেন্য ছিল ডেকে ইতনি আর পারিয়াল বেলেন্য ছিল এবে কো পারিয়াল
3: চুরি এবে পরে তান লোক ছিল তিন
2: দান লোক কো বেন্য
3: আগে কে পরে তান না তো কা পরে ইসকুল বিড়া না মুগে কে कुबे लाबियर में
2: लाबियर में के ओ
3: यो
2: तो इदिन गो इ बेट वार्ता एबे वेतम छिला
3: वेतम इदिन के बेट एक बेटर रु
2: इदिन चंद्र रे सिटा
3: ठाकुर और एरोडे नोड के इतेश कुमार मिश्रा
2: मिश्रा ओ
3: वैज्ञानिक है
2: छिला डॉक्टर वैज्ञानिक
3: है
2: तो इदिन हम किसान दादर भाई ओ बेल वेतो बे
3: और के मेंती बंजर रु पर ध्यान पाती आदि आनिन बेल चा चुड़े केर
2: ओ
3: छिला तो अलबादु
2: ओरे
3: उबाल उबाल ते के उबाल चंद्रा इन दाला चंद्र चंद्रा ये
2: चंद्रा
3: चंद्रा मंत्र हम डकड़ और रिचर्ड पार्ट हमें वाले आदिन बले अर्पित
2: आले बन पिक पा

Pelas papin kage na na da da bau melkai padai ki da da ri hari.

ladrare. Vai, meu irmão.

0: आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम किसान वाणी। ये कार्यक्रम आपकी सेवा में आकाशवाणी के जगदलपुर केंद्र से प्रसारित किया गया। रात्रि के 8 बज चुके हैं।
1: एक मजबूत घर बिल्कुल उस पिता की तरह होता है जो हर मौसम सहकर भी घर की नींव को कभी हिलने नहीं देता।
2: आपके घर के लिए भरोसे का दूसरा नाम चेटिनाड सीमेंट का मैक्स क्रीट सीमेंट, 64 सालों की बुनियाद के साथ। चेटिनाड सीमेंट, द परफेक्ट कंक्रीट चॉइस।
0: आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। प्रस्तुत है लोकगीतों का कार्यक्रम डांडा माली। इसमें सुनिए झीन के नाग और साथियों के स्वर में ध्रुवी लोकगीत।

लोकगीतों के कार्यक्रम डांडा माली में अभी आप सुन रहे हैं झिनकी नाग और साथियों के स्वर में ध्रुवी लोकगीत।

0: ध्रुवी लोकगीत अभी आप सुन रहे थे झिनकी नाग और साथियों के स्वर में। ये आकाशवाणी का जगदलपुर केंद्र है। रात के 8:30 होने को है।
1: एक मजबूत घर बिल्कुल उस पिता की तरह होता है जो हर मौसम सह कर भी घर की नींव को कभी हिलने नहीं देता।
2: आपके घर के लिए भरोसे का दूसरा नाम चेटिनाड सीमेंट का मैक्स क्रीट सीमेंट, 64 सालों की बुनियाद के साथ। चेटिनाड सीमेंट, द परफेक्ट कंक्रीट चॉइस।
0: आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। प्रस्तुत है हल्बी बोली में बच्चों के लिए दैनिक कार्यक्रम पीला मन काजे कोट।

0: तुमतो पाठ के दखा उठा काय उठा हो भारत माय तो वीर पीलामन।
1: पीलामन चो गोट सुनतो सप्पा नानी बड़े पीलामन की मचो बाटले खुबे खुबे मया। पीलामन आमी तुमके रोजे दिना कोनी ना कोनी महापुरुष शिक्षाविद राजनीतिक नेता महात्मा मंचो जीवना और विचार के सांगू से। तो असने आज मैं तुमके आमचो देश ने जन्म धरलो गोटुक महात्मा जोन संसार के गोटुक नुआ बाट दखाला और ए बाट ने चलून आमी आप लो जीवना के नगद बनोक सकू ये चु ज्ञान दिला। ये महात्मा संसार चो सपाय सुख सुविधा के छाड़ून महात्मा बनला और गोटुक धर्म चलाला जेके बौद्ध धर्म बलसोत। तो पीलामन तुम्ही तो जानला सोती ये मनात महात्मा गौतम बुद्ध। महात्मा गौतम बुद्ध चो जन्म 563 ईसा पूर्व कपिल वस्तु चो लुम्बिनी नाव चो ठान ने जोन एबे नेपाल देश ने आसे इच्छुआकु वंशीय क्षत्रिय शाक्य कुल चो राजा सुद्धोधन घरे हो रहे। ए मनचो माय चो नाव महामाया आय। जन्म धरलो 7 पाछे माय चो मरना होलो कारण ने ए मनचो पालन पोषण माय चो नानी बहिन बल्लो ने नानी माय महाप्रजापति गौतमी करली। ए मनचो पिला दाय चो नाव सिद्धार्थ रली। राज परिवार ने जन्म धरलो कारण ने गुरु विश्वामित्र ले एमन वेद पुराण उपनिषद संगे संगे राजकाज और युद्ध विद्या चो शिक्षा बले धरला। एमन कुश्ती लड़तोर घोड़ा दौड़ातोर तीर चलातोर और रथ चलातोर ने बले खुबे पारंगत रला। सिद्धार्थ चो मन ने पीला दाय ले दया और करुणा चो भाव रहे। हुनमन काकई दुखी दखुक नहीं सकते रहो। खेल तो खेलने बले हुनमन कोचई ले जीतून हारलो लोग के दुखी दखुक नहीं सकते रहो। ए मन चो विचार रहे कि मार तो बीता ले बचा तो बीता बड़े हुए से एही काजे कोनी बले जीव के नुकसान नियम रातो राय। सिद्धार्थ चो बिया 16 चो उमर ने राजकुमारी यशोधरा संगे होली। सिद्धार्थ चो बाबा राजा सुद्धोधन बिया होलो पाछे ए मन काजे सपाय सुख सुविधा चो इंतजाम करून दिला। 3 काजे 3 महल और हुन महल ने नाच गाना और दास दासी चो सपाय सुविधा रली। मानतर इत्रो सुख सुविधा बले ए मन के संसार चो मोहले बांधुक नी सकली। गोटोक दिन सिद्धार्थ आपलो बगीचा ने भूलुक निकरला और गोटोक सियान मनुक के दखला। सियान चो गोटोक दात नी रहे, चुंदी मुंडी बुड़बुड़ा पाकू रहे, गाल जामड़ी बोसुन रहे, देह पाए लोन रहे। दूसर दिन बगीचा ने भूलत बेरा गोटोक बीमार मनुक के दखला जो निनास धरुक नी सकते रहे, पेट फुलून रहे और हिंडुक बुलुक नी सकते रहे। तीसर दिन बोलते समिया गोटोक मरलो लोग के दखला 4 मनुक बोन मोड़ी के नेते रहोत। पाटकुती ले लोग खुबे गागा बोगा होते रला। असन लोग मन के दखुन ए मन के बिचारीली ए जीवना बेकारा, ए थाने खुबे दुख तकलीफ सहुक पड़े से लोग मन मरते रह दे। असन मन ने विचार करते रहोत हुदले दाए गोटोक साधु बाबा के दखला और हुनके दखुन हरी खोला कि ये सपाय लोगले साधु सन्यासी चो जीवना नगताए। जीवनाले विरक्त होऊन ए मन आपलो सुंदर बायले यशोधरा बेटा राहुल और कपिल वस्तु राज्य चो मोह के छाड़ून तप करतो काजे निकरला। ए मन बुलून बुलून भिक्षा मांगला संगे संगे योग साधना और समाधि धरुक सीखला। मांतर ए मन के संतोष नी मिरली। फिर पहिल तिल चाउर के खाऊन तप करतो मुर करला। पाछे धीरे धीरे खातोर पीउतर बले छाड़ून दिला जे चोले ए मन चो देह पाए सुखुन कमजोर होली। संगे संगे 6 तक सरलगा तप करते रला। गोटुक दिन तप करतो ठान लगे मेहरार मन गीत गावते जाते रहोत कि बीड़ा चो तार के ढीला नी छाड़ा, ढीला छाड़ लो ने नंगत स्वर नी निकरे। मांतर तार के इत्रो बले नी झिका कि तार टूटतो असन हो। ये गीत ए मन चो मन के भेदली और ये जानला कि भूखे रहून तप कर लो ने तो मचो देह कमजोर होए दे और पाछे खाना पीना के मुर करून फेर तप करू मुरियाला। महात्मा बुद्ध चो प्रमुख गुरु रला गुरु विश्वामित्र आलार कलाम उद्दका रमापुत। मांतर सन्यासी समया चो पहिल गुरु आलार कलाम रहोत जे मनले एमन शिक्षा धरला। 35 चो उमर ने बैसाखी पूर्णिमा दिने सिद्धार्थ निरंजना नदी रेटे चो पीकड़ गज खाले ध्यान करते रला। हुनी समया ने लगे चो गांव चो सुजाता नाव चो मेहरार आपलो मनोकामना पूरा करतो काजे खीर धरून अमरली और हुनके लागली कि गच देवता ध्यान करून बसला से। असने विचार करून हुन खीर सिद्धार्थ के भेंट करली और बल्ली कि जसन मचो मनोकामना पूरा होली से हुसने तुमचो बले हो। हुनचे हाथ ले खीर खाऊन सिद्धार्थ आपलो उपवास टूटाला और हुनी राती ध्यान लगा लो के सिद्धार्थ के ज्ञान मिरली बल्लो ने बोध होली हुनी समयाले सिद्धार्थ के बुद्ध बल तोर होय से और हुन पिकड़ गज के बोधि वृक्ष ठान के बोध गया बलसोत। सिद्धार्थ चो गोत्र गौतम रली ज्ञान मिरलो पाछे एमन के भगवान गौतम बुद्ध बलतोर होली। एमन हत्या यज्ञ पशु बलि और अंधविश्वास चो विरोध करला और लोग मन के सत चो बाटने हिंडतो काजे बल्ला। एमन का एक ठान उपदेश बले दिला जसन दूसर चो नुकसान नी करा आप लो जीव के बचातो काजे दूसर जीव के नी मारा। सत चो बारे ने सांगला तीन ठान जिनिस खुबे दायले लुकुक नी सके होनाए बेर जोन और सत। जसन बेर और जोन रोजे पूरे दखा देवाए हुसने सत बले केबे ना केबे पूरे जरूर दखा देवाए यही काजे झूठ।

तर नुहाय. जीवनाचे उद्देश सही संगाहा. जीवनाने आपलो लक्ष पावतो बाटके नंगत बनाहा. लक्ष जरूर मिरे दे. माया प्रेमचो बाटके अपनाहा. बुराईले बुराई के बैनी मिटे. माया प्रेमले चिएके गुचौ खुवाय. ए अटूट सताय. आपलो असन दूसर के बले समझतो राय. जसन मैं आय हुसने हुन बले आय. और हुन जसन आय हुसने मैं आय असन समझतो राय. आपलो उपरे जीत. जीवनाने हजार लड़ाई जीतो ले नंगत आय की तुम्ही खुदे अपने आप के जीता. फिर हमेशा जीत तुमचो होय दे. एके तुमचो ले कोने झिकुक नी सके. दूसर के सुख दिया. मनुक ए विचार करे से कि मैं जीव मन करे से मरुक नी चाहे. असने दूसर जीव काजे बले विचार करतो राय. जीव हत्या करतो नु है. बैर भाव नी संगातो राय. सब संगे हरिक ने रतो राय. पशु मारतो ले बाचतो राय. धर्म कर्म चो नाव ले पशु के नी मारतो राय. चामड़ा पिंतोर नुहाय. बाघ चीता नहाले कोनी बोली पशु चो. कोनी बोले पशु चो चामड़ा के पिंतोर नुहाय. गौतम बुद्ध चार आर्य सत्य और अष्टांगिक मार्ग के मनुख जाति चो दंड दुख और कष्ट के मिटातो काजे आपलो सपाय जीवना के दिला. ए मन चो चार आर्य सत्य आय. पहल संसार दुख और तकलीफ ले भर ली से. दूसर इच्छा और जुगे अपेक्षा ए दुख चो कारण आय. तीसर इच्छा के छाड़ून आमी निर्वाण के पौक सकू. चौथा अष्टांगिक मार्ग ले आमी निर्वाण बाटने अमरुक सकू. ये अष्टांगिक मार्ग आय. पहला है सम्यक दृष्टि. चार आर्य सत्य ने विश्वास करतोर. दूसरा है सम्यक संकल्प. मानसिक और नैतिक विकास चो प्रतिज्ञा करतोर. तीसरा है सम्यक वाणी. हानि करतोर गोठ और झूठ निगोठियातो राय. चौथा है सम्यक कर्म. हानि करतो बीती कर्म करतोर नुहाय. सम्यक जीविका. कोनी बले हानि बीती व्यापार करतोर नुहाय. सम्यक प्रयास. खुदे सुधरतोर कोशिश करतो राय. सम्यक स्मृति. स्पष्ट ज्ञान ले दखतो मानसिक योग्यता पावतो कोशिश करतो राय. सम्यक समाधि. आठवां निर्वाण पावतोर और घमंड के गुचातोर. बौद्ध धर्म चो सिद्धांत भित्री पंचशील चो सिद्धांत सबले जरूरी सिद्धांत आय. ए सिद्धांत सपाय लोक काजे आय. पहला है जीव हत्या ले दूर रतोर. दूसर चोरी नी करतोर. तीसर झूठ नी गुठियातोर. चौथा व्याभिचार ले दूर रतोर. बलों ने ठगा फारसी करतोर नुहा. पांचवा है निशा पानी ले दूर रतोर. बौद्ध धर्म संसार भर चो धर्म ने गोटोक धर्म आय. आमचो भारत देश ने हिंदू धर्म चो पाछे ये सबले बड़े धर्म आय. बौद्ध धर्म चो प्रचार प्रसार बौद्ध भिक्षु मन करसोत. हुन समय ने बौद्ध धर्म चो प्रचार प्रसार सम्राट अशोक जसन महान राजा बले करला. ये मन देश संगे संगे विदेश मन ने बले प्रचार प्रसार करला. जसन श्रीलंका थाईलैंड बर्मा कोरिया चीन जापान नेपाल भूटान अमेरिका संगे संगे यूरोप चो और बले का एक ठान देश मन ने करला. हर बरक बैसाख पूर्णिमा चो दिने बुद्ध पूर्णिमा नहाले बुद्ध जयंती चो तिहार बनाऊ से. ये तिहार चो हिंदू और बौद्ध दोनों धर्म ने खूबे महत्व आसे. गौतम बुद्ध के भगवान विष्णु चो नवा अवतार बले बलसोत. गौतम बुद्ध संसार के सत्य प्रेम अहिंसा दयालुता करुणा सहानुभूति और परोपकार चो पाठ पढ़ाउरला. ये मान जन्म ले सन्यासी नी रहोत. बल्कि गौतम बुद्ध चो जन्म गोटक राज परिवार ने हौरली. जोन थाने सपाय सुख सुविधा रहे मानतर ये मन सपाय के छाड़ून सन्यासी बनला. गौतम बुद्ध ए संसार ले मुक्ति कसन पावला ए बारे ने अलग अलग कथा आसे. गोटक कथा अनुसार ए मन चुमरना गोटक घरे छाती साग खादलो कारण ने होली. कसन बल्लो ने हुन छाती बीस बीती रहे. दूसर कथा अनुसार कुशीनारा ने गोटक जूना चेला कुंडा घरे मांस खादलो कारण ने हुन मन के फूड पॉइजनिंग होली और हुन मन मरला असन बलसोत. मानतर ये मन कसन ने मरला ए स्पष्ट निहाय. गौतम बुद्ध 483 ईस्वी ने कुशीनारा नगर ने 80 बरख चो उमर ने संसार ले विदा धरला. ये ठान एवे चो उत्तर प्रदेश चो देवरिया जिला ले 28 किलोमीटर दूर ने आसे. ये ठान बौद्ध धर्म चो लोग मन चो गोटोक तीर्थ स्थल आए. तो पिला मन तुम्ही आज ही महात्मा गौतम बुद्ध चो जीवनी और विचार बल्लो ने कहनी के सुनलास कि कसन गोटोक साधारण मनुक बले आपलो तप और ज्ञान संकल्प चो बल्ले ज्ञान पाउक सके.
तो पिला मन इतरो सुंदर गोट के सुनलो पाछे मन नंगत और हरिक लागे से और मन हरिक होलो ने गीत और भजन तो सुनुक भाय से। तो सुनाइए गीत।

पिलामान गीत तो सुनलास मात्र अदाएं समय होली मचो जातो तो असने कोनी दिने फेर भेट हुआ जातो पूरे पिलामान छो गोट सुनतो सब पाए नानी बड़े पिलामान के मचो बाटले खूबे खूबे माया।

0: पीला मन काजे गोट। बच्चों के लिए हल्बी बोली में ये कार्यक्रम अभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी के जगदलपुर केंद्र से। रात के 8:45 होने को हैं, कुछ ही पलों में होंगे समाचार क्रमशः हिंदी और अंग्रेजी में। इसे हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं मुकेश कुमार। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 5 देशों की यात्रा से समाज के हर वर्ग को लाभ की गारंटी। कहा, दुनिया भारत को एक भरोसेमंद साझेदार के रूप में देख रही है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने रेलवे में प्रौद्योगिकी आधारित सुरक्षा प्रणाली को बेहतर बनाने और संचालन सुरक्षा में सुधार लाने पर बल दिया। सरकार ने देश में कच्चे तेल, पेट्रोल, डीजल, प्राकृतिक गैस और एलपीजी के पर्याप्त भंडार की उपलब्धता का भरोसा दिलाया। केंद्र ने इबोला वायरस के प्रभावित देशों से आने वाले या वहां से गुजरने वाले यात्रियों के लिए स्वास्थ्य संबंधी परामर्श जारी किया। भारत अफ्रीका फोरम शिखर सम्मेलन स्थगित। मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और विदर्भ में कल के लिए

0: शामिल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की सफल यात्रा के बाद आज स्वदेश लौट आए। यात्रा के अंतिम चरण में भारत और इटली ने व्यापार, निवेश और आपूर्ति श्रृंखला की मजबूती के लिए भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारों को और विकसित करने पर सहमति जताई। संयुक्त बयान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने इस गलियारे पर सहयोग करने की प्रतिबद्धता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि वैश्विक व्यापार, संपर्क और समृद्धि को बढ़ावा देने में इस गलियारे में महत्वपूर्ण क्षमता है। इटली की प्रधानमंत्री मेलोनी ने कहा कि दोनों देश इस गलियारे के विकास का मजबूती से समर्थन करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने बताया कि दोनों देशों के बीच भावी साझेदारी को और सशक्त बनाने के लिए विस्तृत चर्चा की गई।
1: भारत इटली ज्वाइंट स्ट्रेटेजिक एक्शन प्लान 2025 टू 2029 हमारी साझेदारी को एक प्रैक्टिकल और फ्यूचरिस्टिक ढांचा प्रदान करता है। हम इस पर समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। हमारे साझा प्रयासों में द्विपक्षीय व्यापार 20 बिलियन यूरो के लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रहा है।
0: कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि भारत ने कृषि उत्पादन बढ़ाकर खाद्य सुरक्षा को मजबूत करके और लाखों किसानों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाकर विश्व के सामने एक नया आदर्श प्रस्तुत किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को रोम में खाद्य और कृषि संगठन के एग्रीकोला मेडल से सम्मानित किए जाने पर उन्होंने प्रसन्नता व्यक्त की।
2: कल संयुक्त राष्ट्र संघ के खाद्य और कृषि संगठन ने एग्रीकोला मेडल से उनको सम्मानित किया है। इससे देशवासियों का सीना गर्व से भर उठा है, माथा उन्नत हुआ है। प्रधानमंत्री जी के जो प्रयास है, ये FAO ने कहा है, भूखमरी मिटाना, गरीबी कम करने के प्रयास करना, खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना और उत्पादकता एग्रीकल्चर के क्षेत्र में बढ़ाना, ये उनके ऐसे काम है जो सचमुच में अभूतपूर्व और अद्भुत है।
0: कृषि मंत्री ने कहा कि ये पुरस्कार देश के मेहनती किसानों के परिश्रम का प्रमाण है। उन्होंने कहा कि सरकार ने कोविड महामारी के बाद लगभग 80 करोड़ लोगों को विश्व का सबसे बड़ा खाद्य सुरक्षा कवच प्रदान किया। श्री चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के माध्यम से लाखों किसानों को सहायता प्रदान की गई है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत और अमरीका प्रौद्योगिकी, नवाचार, रक्षा, डिजिटल डेटा केंद्र, क्वांटम कंप्यूटिंग और चिकित्सा उपकरण सहित विभिन्न क्षेत्रों में एक दूसरे के पूरक हैं। नई दिल्ली में आज अमरीकी वाणिज्य उद्योग परिसंघ के वार्षिक लीडरशिप शिखर सम्मेलन में श्री गोयल ने कहा कि दोनों देशों के बीच साझेदारी आपसी विश्वास और साझा आर्थिक हितों से मजबूत हो रही है।
3: अमेरिका एंड इंडिया,
4: भारत और अमेरिका स्वाभाविक साझेदार के रूप में काम कर रहे हैं। अमेरिका को एक भरोसेमंद साझेदार की तलाश है। मुझे लगता है कि भारत का दशकों से एक देश के रूप में वास्तव में काम करने का प्रमाणित ट्रैक रिकॉर्ड है। यहाँ व्यवसायों का एक ऐसा समूह है जो विदेशी कंपनियों की बौद्धिक संपदा का सम्मान करता है और जिस पर समय पर उच्च गुणवत्ता का काम करने के लिए भरोसा किया जा सकता है। भारत में अपार प्रतिभाएं हैं और कुछ मायनों में ये दो अर्थव्यवस्थाएं हैं जो एक दूसरे की पूरक हैं।
3: इकोनॉमीज विच टोटली कॉम्प्लीमेंट ईच
0: अदर। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज नई दिल्ली में उच्च स्तरीय सुरक्षा समीक्षा बैठक की। बैठक में रेलगाड़ियों में हाल की आग की कई घटनाओं में असामाजिक तत्वों के शामिल होने की जानकारी दी गई। मंत्रालय ने कहा कि ऐसी घटनाओं को गंभीरता से लिया गया है और रेलवे सुरक्षा बल इनकी जांच कर रहा है। सुरक्षा समीक्षा बैठक के दौरान बेहतर रिपोर्टिंग प्रणाली के माध्यम से खुफिया जानकारी जुटाने की व्यवस्था को मजबूत करने पर विशेष जोर दिया गया। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

सुरक्षा स्कीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1454 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।

0: लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। AFCAT 1 of 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या afcat.edcil.go.in पर।
2: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। सरकार ने देश में कच्चे तेल, पेट्रोल, डीजल, प्राकृतिक गैस और एलपीजी के पर्याप्त भंडार की उपलब्धता का भरोसा दिलाया है। नई दिल्ली में आज पश्चिम एशिया की स्थिति पर पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि आपूर्ति स्थिर है और सभी पेट्रोल पंप पर उपलब्धता सुनिश्चित की जा रही है।
3: हमारी रिफाइनरीज ऑप्टिमम कैपेसिटी पर ऑपरेट कर रही हैं ताकि जो देश की डिमांड है उसको मीट किया जा सके। इसके अलावा रिफाइनरीज में एलपीजी प्रोडक्शन को रैंप अप किया गया है और लगभग 46 से 47 हजार टन एलपीजी देश की रिफाइनरीज में बनाई जा रही है।
2: सुश्री शर्मा ने नागरिकों से केवल जरूरत के हिसाब से ही खरीदारी करने और ऊर्जा बचाने की सलाह दी। पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के अपर सचिव मुकेश मंगल ने क्षेत्र में सभी भारतीय नागरिकों के सुरक्षित होने की पुष्टि की।
4: द मिनिस्ट्री ऑफ पतन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय नाविकों की सुरक्षा और समुद्री परिचालन को सुचारू रूप से चलाने के लिए विदेश मंत्रालय, भारतीय मिशनों और समुद्री क्षेत्र से जुड़े हितधारकों के साथ लगातार समन्वय बनाए हुए है। इस क्षेत्र में मौजूद सभी भारतीय नाविक सुरक्षित हैं और पिछले 72 घंटों में भारतीय ध्वज वाले किसी भी जहाज या भारतीय चालक दल वाले किसी भी विदेशी जहाज से जुड़ी किसी भी घटना की कोई खबर नहीं मिली है।
2: विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने इस वर्ष की कैलाश मानसरोवर यात्रा के यात्रियों का चयन करने के लिए कंप्यूटर से ड्रॉ निकाला। यह यात्रा जून में शुरू होकर अगस्त में संपन्न होगी। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि निष्पक्ष और पारदर्शी कंप्यूटर आधारित चयन प्रक्रिया के माध्यम से 1000 यात्रियों का चयन किया गया है। ये यात्री लिपुलेख और नाथुला दर्रे के जरिए 20 जत्थों में रवाना होंगे। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज़ ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं।

पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जीत और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: ये आकाशवाणी है। स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय ने इबोला वायरस से प्रभावित देशों से आने जाने वाले यात्रियों के लिए परामर्श जारी किया है। परामर्श के अनुसार कांगो, युगांडा और दक्षिण सूडान सहित अधिक जोखिम वाले देशों की यात्रा कर चुके लोगों से चिकित्सा सहायता लेने का आग्रह किया गया है। एक रिपोर्ट।
4: सरकार ने कहा है कि संदिग्ध और पुष्ट इबोला रोगी के रक्त तथा शरीर के तरल पदार्थों के सीधे संपर्क में आए यात्रियों को आव्रजन जांच से पहले हवाई अड्डे के स्वास्थ्य अधिकारी को तुरंत सूचित करना चाहिए। आगमन के 21 दिनों के अंदर ऐसे लक्षण नजर आने पर किसी भी यात्री को तुरंत चिकित्सा सहायता लेनी चाहिए और स्वास्थ्य अधिकारियों को अपने यात्रा इतिहास के बारे में सूचित करना चाहिए। यात्रियों को सुरक्षा सुनिश्चित करने और अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य नियमों का अनुपालन करने के लिए स्वास्थ्य जांच और सार्वजनिक स्वास्थ्य उपायों में सहयोग करने की सलाह दी गई है। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
3: लगातार बिगड़ती स्वास्थ्य स्थिति के कारण 28 मई को नई दिल्ली में शुरू होने वाला भारत अफ्रीका फोरम शिखर सम्मेलन स्थगित कर दिया गया है। विदेश मंत्रालय ने बताया कि भारत अफ्रीकी संघ के अध्यक्ष और अफ्रीकी संघ आयोग के बीच परामर्श के बाद ये निर्णय लिया गया। मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और विदर्भ में कल तेज लू चलने का रेड अलर्ट जारी किया है। ऐसी ही स्थिति पूरे सप्ताह बनी रहेगी। हमारे संवाददाता ने बताया है कि दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़ और तटीय आंध्र प्रदेश में भी लू की स्थिति बने रहने की संभावना है।
5: मौसम विभाग के अनुसार बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, ओडिशा, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु, पुडुचेरी, कराईकल और तेलंगाना में कल से लेकर इस सप्ताहांत तक लू चलने की संभावना है। मौसम विभाग ने पश्चिमी बंगाल में गंगा से सटे इलाकों में और ओडिशा में अगले 2-3 दिनों तक गर्म और उमस भरे मौसम का पूर्वानुमान लगाया है। विभाग ने कहा कि उप हिमालय, पश्चिमी बंगाल और सिक्किम में रविवार तक भारी बारिश होने की आशंका है। ईशानी के साथ शिवांग मिश्रा, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
3: केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने नीट परीक्षा प्रश्न पत्र लीक मामले में लातूर के एक बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर मनोज शिरुरे को हिरासत में लिया है। सूत्रों के अनुसार जांच एजेंसी को संदेह है कि डॉक्टर शिरुरे ने कथित तौर पर अपनी बेटी के लिए नीट परीक्षा का प्रश्न पत्र खरीदा था। आईपीएल क्रिकेट में अहमदाबाद में गुजरात टाइटंस और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच मुकाबला जारी है। ताजा समाचार मिलने तक गुजरात ने 16वें ओवर में एक विकेट पर 164 रन बना लिए थे। इससे पहले चेन्नई ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का निर्णय लिया। मलेशिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट में अश्मिता चालिहा मलेशिया की गो जिन वेई को हराकर महिला सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई हैं। अब उनका मुकाबला डेनमार्क की लाइन हुजमार्क कजर्सफेल्ड से होगा। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 5 देशों की यात्रा से समाज के हर वर्ग को लाभ की गारंटी। कहा, दुनिया भारत को एक भरोसेमंद साझेदार के रूप में देख रही है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने रेलवे में प्रौद्योगिकी आधारित सुरक्षा प्रणाली को बेहतर बनाने और संचालन सुरक्षा में सुधार लाने पर बल दिया। सरकार ने देश में कच्चे तेल, पेट्रोल, डीजल, प्राकृतिक गैस और एलपीजी के पर्याप्त भंडार की उपलब्धता का भरोसा दिलाया। केंद्र ने इबोला वायरस से प्रभावित देशों से आने वाले और वहां से गुजरने वाले यात्रियों के लिए स्वास्थ्य पर संबंधी परामर्श जारी किया। भारत अफ्रीका फोरम शिखर सम्मेलन स्थगित। मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और विदर्भ में कल के लिए तेज लू का रेड अलर्ट जारी किया और आईपीएल क्रिकेट में गुजरात टाइटंस और चेन्नई सुपर किंग्स का मुकाबला जारी। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
6: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी एंड आई एम अभिषेक मुखोपाध्याय विद द न्यूज एट 9। Commerce and Industry Minister Piyush Goyal says Prime Minister Narendra Modi's five-nation visit guarantees advantages for every segment of the society, asserts the world is looking towards India as a trusted partner. Railway Minister Ashwini Vaishnav stresses on enhancing technology-driven security systems and improving operational security. Government reiterates that country has sufficient supplies of crude, petrol, diesel, natural gas and LPG. Center issues health advisory for passengers arriving from or transiting through Ebola-affected countries. India-Africa Forum Summit postponed. IMD issues red alert for heatwave conditions over Uttar Pradesh, Madhya Pradesh and Vidarbha for tomorrow. And in IPL cricket, match between Gujarat Titans and Chennai Super Kings underway in Ahmedabad. Union Commerce and Industry Minister and BJP leader Piyush Goyal today said that the world is looking towards India as a trusted partner. Addressing a press conference in New Delhi on Prime Minister Narendra Modi's five-nation visit, Mr. Goyal said that the visit guarantees advantages for every segment of the society. He said that the Prime Minister's visit reflects that India stands strongly on the global stage. He said 57 significant agreements were signed, including the commitment of UAE to invest $75 to $100 billion in India during the tour. He also hit out at Congress leader Rahul Gandhi for his alleged derogatory remarks against Prime Minister Narendra Modi. He said due to the negative politics of Mr. Gandhi, people are rejecting the Congress in elections. Later in a different program, Mr. Goyal said that India and the United States are working as natural partners and complement each other across sectors including technology, innovation, high precision, defense, digital data centers, quantum computing and medical devices. Addressing the annual leadership summit of the American Chamber of Commerce in New Delhi, Mr. Goyal said the partnership between the two countries is strengthened by mutual trust and shared economic interest. The minister said that India provides a trusted framework for global companies and combines scale, talent and market opportunity.
0: America and India truly are working as natural partners. We complement each other. America is looking for a trusted partner. I think India has proven track record over decades of truly working as a country, as a set of businesses here who respect the intellectual property of foreign companies, who can be trusted to deliver high quality on time. There's a large pool of talent available for all of you. And in some sense, these are two economies which totally complement each other.
6: Highlighting the role of MSMEs in strengthening global supply chains, Mr. Goyal said that the government has initiated coordinated efforts to support technology upgradation and skill development for MSMEs. The minister said that the government is also adopting an area-based approach to industrial development through the Bhavya scheme aimed at creating 100 new industrial parks across the country. Mr. Goyal said that the country's GDP growth forecast was upgraded from 6.4% to 6.5% despite challenges such as the Ukraine conflict and the West Asia crisis. He said this reflects country's capability, decisive leadership and growing confidence in engaging with the world as a reliable and favoured investment destination. Agriculture and Farmers Welfare Minister Shivraj Singh Chauhan today said that India has presented a new model to the world by increasing agricultural production, strengthening food security and bringing positive changes in the lives of millions of farmers. Expressing happiness over the conferment of Food and Agriculture Organization, FAO Agricola Medal to Prime Minister Narendra Modi in Rome, Mr. Chauhan said that this honour is a symbol of the growing prestige of New India. He said the world looks upon India's policies, leadership and humanitarian vision with respect. He said that this award is a living testament to the country's hard-working farmers.
7: Yesterday, the United Nations Food and Agriculture Organization, FAO, honored the Prime Minister with the Agricola Medal. This has filled every Indian with the pride and raised the nation's stature. The FAO has recognized Prime Minister Modi's efforts towards eliminating hunger, reducing poverty, ensuring food security, and increasing productivity in the agriculture sector. These are truly unprecedented and remarkable achievements.
6: Railway Minister Ashwini Vaishnav today held a high-level security review meeting in New Delhi with field officers. During the meeting, it was noted that preliminary investigations into several recent fire incidents in trains have revealed the involvement of anti-social elements. The ministry said that such incidents have been taken up seriously and the Railway Protection Force is actively probing them. The discussions during the security review meeting focus on strengthening intelligence gathering mechanisms from the field through an improved reporting system. Emphasis was also laid on enhancing technology-driven security systems, expanding CCTV coverage across the railway network, and improving operational security. The meeting also highlighted strengthening cyber security, upgrading camera specifications, and deploying AI-based surveillance and monitoring systems. The government today reassured that India has sufficient supplies of crude petrol, diesel, natural gas, and LPG. Addressing an inter-ministerial briefing in New Delhi on the West Asia situation, Joint Secretary in the Ministry of Petroleum and Natural Gas, Sujata Sharma, said the refineries are operating at optimum capacity to meet the demand.
8: We have a sufficient supply of crude oil, natural gas, petrol and diesel. Our refineries are operating at the optimum capacity to meet the country's demand. Furthermore, LPG production has been ramped up at the refineries with around 46 to 47,000 tons of LPG being produced in the country.
9: Refineries mein banai ja rahi hai.
6: Ms. Sharma said steps have been taken to ensure availability across all petrol pumps. Supply of LPG for cooking purposes.

0: बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु, पुडुचेरी, केरल एंड तेलंगाना आर लाइकली टू एक्सपीरियंस हीट वेव कंडीशंस फ्रॉम टुमारो टिल दिस वीकेंड. द वेदर एजेंसी हैज आल्सो फोरकास्ट हॉट एंड ह्यूमिड वेदर कंडीशंस ओवर गैंगेटिक वेस्ट बंगाल एंड उड़ीसा फॉर द नेक्स्ट 2 to 3 days. द आईएमडी सेड दैट सब हिमालयन वेस्ट बंगाल एंड सिक्किम आर एक्सपेक्टेड टू विटनेस हैवी टू वेरी हैवी रेनफॉल टिल संडे. द मेट डिपार्टमेंट हैज प्रेडिक्टेड थंडरस्टॉर्म्स अकंपनीड बाय हेल स्टॉर्म्स over Himachal Pradesh, Jammu and Kashmir and Ladakh till tomorrow. Meanwhile, IMD has predicted thunderstorms accompanied by lightning and gusty winds over the Andaman and Nicobar Islands, Kerala, Mahe, Lakshadweep, Uttarakhand, coastal Karnataka, Konkan, Goa and the northeastern region for the next 2 days. Ishani Yadav, Akashwani News, Delhi.
1: Benchmark domestic equity indices ended on a negative note after volatile trade today. The Sensex declined 135 points to close at 75,183, while the Nifty dipped marginally by 4 points to settle at 23,655. The broader market on the National Stock Exchange ended mixed. In IPL cricket, Gujarat Titans were 196 for 1 in 17.4 overs against Chennai Super Kings in Ahmedabad when reports last came in. Earlier, Chennai Super Kings won the toss and opted to field. In the Malaysia Masters Super Badminton, India's Ashmita Chaliha advanced to the women's singles quarterfinals after 21-13, 21-16 win over Malaysia's Go Jin Wei in the pre-quarterfinals in Kuala Lumpur today. She will next face 8-seeded Lien Højmark Kjærsfeldt of Denmark. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. Commerce and Industry Minister Piyush Goyal says Prime Minister Narendra Modi's five-nation visit guarantees advantages for every segment of the society, asserts world is looking towards India as a trusted partner. Railways Minister Ashwini Vaishnav stresses on enhancing technology-driven security systems and improving operational security. Government reiterates that country has sufficient supplies of crude, petrol, diesel, natural gas and LPG. Centre issues health advisory for passengers arriving from or transiting through Ebola-affected countries. India-Africa Forum Summit postponed. IMD issues red alert for heat wave conditions over Uttar Pradesh, Madhya Pradesh and Vidarbh for tomorrow. And an IPL cricket match between Gujarat Titans and Chennai Super Kings underway in Ahmedabad. And for details of these stories and more, log on to our website www.newsonair.gov.in and News on AIR app. And that is all in the news at 9. Good night.
2: मीडियम वेव 396.82 मीटर यानी 756 किलोहर्ट्ज और एफएम बैंड 100.1 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है. आप हमारे कार्यक्रम मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी सुन सकते हैं. रात के 9:15 हुए हैं.
3: एक मजबूत घर बिल्कुल उस पिता की तरह होता है जो हर मौसम सह कर भी घर की नींव को कभी हिलने नहीं देता.
4: आपके घर के लिए भरोसे का दूसरा नाम चेटिनाड सीमेंट का मैक्स क्रीट सीमेंट, 64 सालों की बुनियाद के साथ. चेटिनाड सीमेंट, द परफेक्ट कंक्रीट चॉइस.
2: ये आकाशवाणी का जगदलपुर केंद्र है. प्रस्तुत है हल्बी बोली में कार्यक्रम ग्राम पंचायत की विकास गाथा. विषय है साहूकारी लेन देन पर प्रतिबंध, अंधविश्वास, जादू टोना. वार्ताकार है बलबीर सिंह कच्छ.

पंचायती राज चो गोट के धरुन हारक फेर मैं अमरले आर ढीले से मचो मंडरा के सियान सजन दादा दीदी मन गोट के मचो माना पंचायती राज ने सबके बराबर हक गोट के तुम भी जाना सियान सजन दादा दीदी मन गोट के मचो माना पंचायती राज ने सबके बराबर हक गोट के तुम भी जाना सरकार चो वाटमन ग्राम पंचायत आरो ग्राम सभाले मोर होतो के गांव ने रतोलोक चो हरी कुदिम दखा देव मुरियाली से गांव ने आगे सरकारी अधिकारी कर्मचारी मन उवाट के अमराते रला होनी मन आपलो हिसाब ने काम करते रला मांतर एदाय गांव ने काय काम के पहिल करतो राय एके गांव चो ग्राम सभा तय करे से गांव ने कोनी बीमार होले हुंचो वार्ड करतो जिम में ग्राम सभा लगी आसे गांव ने कोने रोजगार मुर करे दे हुनके बाट दखा तो वार्ड वाले ग्राम सभा ग्राम पंचायत लगी आसे गांव ने कोने गंदगी करुन बीमारी आने से हुनके जुर्माना धरुन गांव के सुंदर संगातो जिम में आरु हक वाले ग्राम सभा लगे आसे।

गावने कोने जादू टोना पांगन नासंच गोठ गोठ्याय से हुनके समझा तो हक ग्राम सभा लग्या से आपलो हल्का चो पानी रानबन भूई के नगत सकल ओंडिया करुन संगातो हुंचोले नफा धरतो ए हक बले ग्राम पंचायत ग्राम सभा लगे आसे ककाए पैसा चो चीपा पड़ली हुनके कोनी सौकार जुगे ब्याज धरुन पैसा दय से जाल हुनके मना करतो गरीब लोग के सहा होतो हक बले ग्राम सभा ग्राम पंचायत के मिरले से ये सब वाट मंचो हक ग्राम पंचायत ग्राम सभा के मृतो के लोग ए हक मन के अदाएं जानुक मुरियाला एचोले गांव धीरे धीरे बाढ़ती करते जाए से गांव चो परिवार कुटुम हर एक उदुम ने रहुक मुरियाला गांव ने कौन गरीबा से कौन सौकारा से एचो सर्वे बले नियम हिसाब ले सरकार कराते रहे से आरु गरीबी रेखा ने जीवना जूत लोग का जे सरकार पंचायत ने अनगर वाट बले बना ली से।

पंचायत राज ने इत्र जमाए उवाट होलो पाछे वले बेरा पस्ता गांव पारा ने केबे केबे कहीं ना कहीं अड़ना फांदा सुना देते रहुआ है। हुन भित्रे गोटोकाए पैसा कौड़ी चो लेन देन गोट कोनी सौकार कोनी गरीब की निठगो एचो काजे सरकार छत्तीसगढ़ साहूकारी अधिनियम 2010 बनाउन साहूकारी लेन देन प्रतिबंध उवाट कर तो काजे बले ग्राम पंचायत के हक दिली। छत्तीसगढ़ पंचायत राज भित्रे छत्तीसगढ़ साहूकारी अधिनियम 2010 चो धारा 1 उपधारा 2 नियम हिसाब ने साहूकारी कर्जा लेन देन के छत्तीसगढ़ चो अनुसूचित हलका ने पूरा बंद कर तोर नियम बना ली से। भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ सेवी ने जोन संस्था पंजीयन कराली से होने चे अनुसूचित क्षेत्र ने कर्जा बोड़ी लेन देन काम के कर उकलाय सके। असन पंजीयन करालो संस्था हुन पंचायत ने पैसा कौड़ी कर्जा बोड़ी चु लेन देन कर तो पहिल गांव चो पंचायत भवन ने नहाले गांव चो चौक ने कितरो प्रतिशत ब्याज धरुआ ये चो गोटो खबर पट्टी लगाए दे। असन कर्जा बोड़ी देउन ब्याज धर तो संस्था के बरक ने थरक 14 अप्रैल चो ग्राम सभा ने सांग तो काजे हल्का ने दिलो कर्जा ब्याज धर असन गोट मन के ग्राम पंचायत ने सांग पड़े दे। असन पंजीयन करालो संस्था चो छाड़े कोनी वाले गांव पारा ने पैसा कौड़ी चो लेन देन करुन ब्याज धरे से जाले उनके गांव चो शांति और न्याय समिति के सांगा उन समिति असन सौकार चो विरुद्ध ने कार्यवाही करे दे। कोने मनुख कर्जा धरुन कर्जा पटाउक नी सकले हुंचो संगे हुंचो भूमि बाड़ी चो नीलामी होतो होले असन कर्जा धरु बीता चो जीवना इत्रो के छाणुन आधो के नीलाम कर तो काजे ग्राम सभा बल उक सके। मांतर आम चो लगे आजी कर्जा धरतो होले सरकारी बैंक आसे आम के हुता जमाए सुविधा मिले से पंचायत और ग्राम सभा जरूरी कागज पत्र तैयार करुन दे से ये सब गोट की जान तो काजे आम के ग्राम सभा ने जातो राय। आम चो लगे सरकारी बैंक आसे फिर काय काजे सौकारी बैंक ले कर्जा धरवा आम चो सुविधा काजे आम की सरकार नियम हिसाब ने कर्जा धर तो उवाड बनाउन दिले से आम के कर्जा धर ले जे काम काजे कर्जा धर लो हुने काम ने लगा तो राय अरु आमचो व्यवहार के चला तो राय तेबे आमचो बाढ़ती होए दे अरु लागा धरुन घिउ खादले घर कुड़की होए दे। आमचो बाढ़ती काजे सरकार साहूकारी लेन देन प्रतिबंध वाट बनाउन ग्राम सभा ग्राम पंचायत के हक दिली एचो नफा धरु आरु पूरे हिंदू।

अदायजा नो अंधविश्वास जादू टोना पांगन नासन झगड़ा नियम चो गोट के जादू टोना पांगन नासन चो गोट बलून ककाय बदनाम करतो कानूनी जुर्म आए गांव पारा ने असन बलून ककाय कोनी झगड़ा धंद करे से जाले हुन ग्राम पंचायत ने एवं एचो लिखित शिकायत करुक सके। ग्राम पंचायत के असन झगड़ा के निपटा तो काजे पंचायती राज वाट ने हक मिरली से और पंचायत ने असन झगड़ा नी निपटले हुन झगड़ा के ऊपरे पठाउक सके। एचो काजे दूसर पक्ष बीता के नोटिस पठाउन उनके तारीख आरु समय ने झगड़ा निपटारा ठान ने ए तो काजे हुक्म दे दे। सुनवाई दिने दोनों पार्ट चु लोक चु गोट के सुन लो पाछे गलती कर लो बीता के पंचायत जुर्माना वाले धरुक सके। असन करुन पंचायत ले गांव ले अंधविश्वास जादू टोना पांगन नासन मामला चु निपटारा करुन असन आंधा काम मन के गांव ने रोक लगाउ सके। ए जमाए गोट की जान तो काजे नफा धर तो काजे आम के ग्राम पंचायत ग्राम सभा चो बैठक मन ने दंडिक समय निक्राउन जातोर चियाए तेबे आमी हर एक उद्यम ने रोआ तो फिर आमी जानू ग्राम सभा ने आमचो बाढ़ती आमचो उन्ती काजे काय काय ताकत आसे।

गोट सरली घेत सरली नफा धरा आज गांव पारा चो बाढ़ती काजे बनली पंचायती राज। ये गोट की एताय थेवाऊं धरे से मोचो बाट नुआ भाग संगे फेर होंदे तुम चो संगे भेंट घाट सेवा जुहार।

0: आप सुन रहे थे हल्बी बोली में कार्यक्रम ग्राम पंचायत की विकास गाथा। विषय था साहूकारी लेन देन पर प्रतिबंध, अंधविश्वास, जादू टोना। वार्ताकार थे बलबीर सिंह कच्छ। ये कार्यक्रम आपकी सेवा में आकाशवाणी के जगदलपुर केंद्र से प्रसारित किया गया।
1: एक मजबूत घर बिल्कुल उस पिता की तरह होता है जो हर मौसम सहकर भी घर की नींव को कभी हिलने नहीं देता।
2: आपके घर के लिए भरोसे का दूसरा नाम चेटिनाड सीमेंट का मैक्स क्रीट सीमेंट, 64 सालों की बुनियाद के साथ। चेटिनाड सीमेंट, द परफेक्ट कंक्रीट चॉइस।
3: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
4: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
3: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
4: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
3: डायल कीजिए 870-001-4242।
4: नंबर एक बार फिर नोट करें 870-001-4242।
0: मीडियम वेव और एफएम बैंड पर हम आकाशवाणी के जगदलपुर केंद्र से बोल रहे हैं। रात के 9:30 हुए हैं। प्रस्तुत है बस्तर के लोकगीतों का कार्यक्रम घुमकली। इसमें सुनिए लंबोदर बघेल और साथियों के स्वर में भतरी नाट गीत।

ಚಿಕ್ಕ ಪುತ್ರ ಜೀವೋ ಪ್ರಭು ನಾರಾಯಣ ಬಾಜಿ ಕಾಯ ಪುತ್ರ ಜೀವೋ

0: சுந்தரேயா உட்டின போசிலா,
1: ஹரிபத
0: நமஸ்கார கொலாஜ சுந்தரேயா, ஹரிபத நமஸ்கார கொலாஜ சுந்தரேயா, পুত্র মোকলে আছি তুমি কাই কি রদলে কুরছ চুচারে কাই কা দুচি ন যুবদে চুচারে কাই কা দুচি।

दुष्ट ततमु बाजी खाइतिलु काय रुपालो जीवदान तु पलाई जा हे दुष्ट पुत्र को छाड़ी दे सुंदरी हे दुष्ट पुत्र को छाड़ी दे प्राणनाथ काय को छाड़ीबि देखो मु केते कष्टले मु पुत्र पाई अछि प्राणनाथ न मारो न मारो राजा।

0: बस्तर के लोकगीतों के कार्यक्रम घुमकली में अभी आप सुन रहे थे भतरी नाट गीत। गायक कलाकार थे लंबोदर बघेल और साथी। ये कार्यक्रम आपकी सेवा में आकाशवाणी के जगदलपुर केंद्र से प्रसारित किया गया।
1: एक मजबूत घर बिल्कुल उस पिता की तरह होता है जो हर मौसम सहकर भी घर की नींव को कभी हिलने नहीं देता।
2: आपके घर के लिए भरोसे का दूसरा नाम चेटिनाड सीमेंट का मैक्स क्रीट सीमेंट, 64 सालों की बुनियाद के साथ। चेटिनाड सीमेंट, द परफेक्ट कंक्रीट चॉइस।
0: आकाशवाणी का ये जगदलपुर केंद्र है। रात के 10 बजे हैं। प्रस्तुत है गैर फिल्मी गीतों का कार्यक्रम।

कार्यक्रम के आरंभ में लीजिए सुनिए हिमेश रेशमिया की आवाज में ये गीत। समीर के बोल है, हिमेश रेशमिया का संगीत है।

कैलाश खेर की आवाज़ में अभी आप ये गाना सुन रहे हैं। गीतकार है कैलाश खेर और संगीत है कैलाश परेश नरेश का।

गैर फिल्मी गीतों का कार्यक्रम अभी आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के जगदलपुर केंद्र से। एस शुभम और सलोनी ठक्कर की आवाजों में लीजिए अब सुनिए ये गीत। गीतकार और संगीतकार है शब्बीर अहमद।

आइए अब आपको सुनवाते हैं मोहम्मद इरफान की आवाज़ में संगीता गुप्ता का लिखा ये गीत, जिसे संगीत दिया है अनुराग सैकिया ने।

कार्यक्रम के अंत में लीजिए सुनिए यासर देसाई के स्वर में ये गीत। जीत गांगुली के संगीत निर्देशन में इस गीत को लिखा है मनोज यादव ने।

गैर फिल्मी गीतों का कार्यक्रम अभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी के जगदलपुर केंद्र से। रात के 10:30 हुए हैं। अब प्रस्तुत है फिल्म संगीत।

आइए पहले सुनते हैं राज 3 फिल्म का ये गीत। शफाकत अमानत अली की आवाज है, जीत गांगुली के बोल, संगीत दिया है संजय मासूम ने।

कार्यक्रम का अगला गीत मिस्टर एक्स फिल्म से, जिसे लिखा है मोनीश रजा ने, स्वर और संगीत है अंकित तिवारी का।

फिल्म संगीत का अभी प्रसारण किया जा रहा है आकाशवाणी के जगदलपुर केंद्र से। इसी क्रम में अब लीजिए सुनिए सईद कादरी की शब्द रचना। स्वर और संगीत निर्देशन है हर्षित सक्सेना का।

क्रूक फिल्म का गीत अब हम आपको सुनवाने जा रहे हैं निखिल डिसूजा की आवाज में। गीतकार है कुमार और संगीत है प्रीतम चक्रवर्ती का।

आइए अब सुनते हैं के और सुनिधि चौहान की आवाजों में अक्सर फिल्म का ये गीत। समीर के बोलो को सुरों में पिरोया है हिमेश रेशमिया ने।

फिल्म संगीत के आखिर में हम आपको सुनवाने जा रहे हैं राज फिल्म से ये गीत। तोशी साबरी की आवाज है, गीत रचना सईद कादरी की है, संगीत शरीफ तोशी का।

0: फिल्म संगीत का भी प्रसारण किया गया आकाशवाणी के जगदलपुर केंद्र से। रात के 11 बजने वाले हैं। कुछ ही पलों में होंगे समाचार क्रमशः हिंदी और अंग्रेजी में। इसे हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रशांत कुमार। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि दुनिया भारत को एक भरोसेमंद साझेदार के रूप में देख रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 5 देशों के दौरे के बारे में आज नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में श्री गोयल ने कहा कि इस यात्रा से समाज के हर वर्ग को लाभ की गारंटी है। उन्होंने बताया कि 5 देशों की यात्रा के दौरान 57 महत्वपूर्ण समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। इसमें भारत में 75 से 100 अरब डॉलर के निवेश की संयुक्त अरब अमीरात की प्रतिबद्धता भी शामिल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड्स, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की सफल यात्रा के बाद आज स्वदेश लौटे। यात्रा के अंतिम चरण में भारत और इटली ने व्यापार, निवेश और आपूर्ति श्रृंखला की मजबूती के लिए भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारे को और विकसित करने पर सहमति जताई। एक संयुक्त बयान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने इस गलियारे पर सहयोग करने की प्रतिबद्धता दोहराई। उन्होंने कहा कि वैश्विक व्यापार, संपर्क और समृद्धि को बढ़ावा देने में इस गलियारे में महत्वपूर्ण क्षमता है। इटली की प्रधानमंत्री मेलोनी ने कहा कि दोनों देश इस गलियारे के विकास का मजबूती से समर्थन करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने बताया कि दोनों देशों के बीच भावी साझेदारी को और सशक्त बनाने के लिए विस्तृत चर्चा की गई।
2: हमने हमारी भावी साझेदारी को और सशक्त बनाने के लिए विस्तृत रूप से चर्चा की। भारत इटली ज्वाइंट स्ट्रेटेजिक एक्शन प्लान 2025-2029 हमारी साझेदारी को एक प्रैक्टिकल और फ्यूचरिस्टिक ढांचा प्रदान करता है। हम इस पर समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। हमारे साझा प्रयासों में द्विपक्षीय व्यापार 20 बिलियन यूरो के लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रहा है।
1: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत और अमेरिका प्रौद्योगिकी, नवाचार, रक्षा, डिजिटल डेटा केंद्र, क्वांटम कंप्यूटिंग और चिकित्सा उपकरण सहित विभिन्न क्षेत्रों में एक दूसरे के पूरक हैं। नई दिल्ली में आज अमेरिकी वाणिज्य उद्योग परिसंघ के वार्षिक लीडरशिप शिखर सम्मेलन को संबोधित करते हुए श्री गोयल ने कहा कि दोनों देशों के बीच साझेदारी आपसी विश्वास और साझा आर्थिक हितों से मजबूत होती है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज नई दिल्ली में उच्च स्तरीय सुरक्षा समीक्षा बैठक की। बैठक में रेलगाड़ियों में हाल की आग की कई घटनाओं में असामाजिक तत्वों के शामिल होने की जानकारी दी गई। मंत्रालय ने कहा कि ऐसी घटनाओं को गंभीरता से लिया गया है और रेलवे सुरक्षा बल इनकी जांच कर रहा है। सुरक्षा समीक्षा बैठक के दौरान बेहतर रिपोर्टिंग प्रणाली के माध्यम से खुफिया जानकारी जुटाने के तंत्र को मजबूत करने

विशेष जोर दिया गया। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज कहा कि भारत ने कृषि उत्पादन बढ़ाकर खाद्य सुरक्षा को मजबूत करके और लाखों किसानों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाकर विश्व के सामने एक नया आदर्श प्रस्तुत किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को रोम में खाद्य और कृषि संगठन के एग्रीकोला मेडल से सम्मानित किए जाने पर प्रसन्नता व्यक्त की है। स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय ने इबोला वायरस से प्रभावित देशों से आने जाने वाले यात्रियों के लिए परामर्श जारी किया है। परामर्श के अनुसार कांगो, युगांडा और दक्षिण सूडान सहित अधिक जोखिम वाले देशों की यात्रा कर चुके लोगों से बुखार, सिरदर्द, मांसपेशियों में दर्द, उल्टी और गले में खराश जैसे लक्षण महसूस होने पर तुरंत चिकित्सा सहायता लेने का आग्रह किया गया है। पुलवामा आतंकी हमले के कथित मास्टरमाइंड हमजा बुरहान की आज पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में गोली मारकर हत्या कर दी गई। वे अलबद्र आतंकी संगठन का कमांडर था और भारत ने उसे वर्ष 2022 में आतंकवादी घोषित किया था। पुलिस के अनुसार मुजफ्फराबाद में अज्ञात हमलावरों ने उस पर कई गोलियां चलाई। हमजा बुरहान जम्मू कश्मीर के पुलवामा जिले का रहने वाला था। अहमदाबाद में आईपीएल क्रिकेट में गुजरात टाइटंस ने चेन्नई सुपर किंग्स को 89 रन से हरा दिया है। इस मुकाबले में हार के बाद चेन्नई सुपर किंग्स प्रतियोगिता से बाहर हो गई है। इस मुकाबले में शुभमन गिल ने 64 और साई सुदर्शन ने 84 रन की पारी खेली। इस जीत के साथ ही गुजरात टाइटंस ने टॉप टू में जगह बनाने के लिए अपनी प्रतिबद्धता पुष्ट कर दी है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।